ना मुमा, एक बात बोले, माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना, कहना ही है तो बस यही कहना, मेरी माँ का क्या कहना है? अगर कहना ही है बस यही कहना, मेरी माँ का क्या कहना। तो माँ जगदम्बा, मात भवानी का प्रकट कैसे हुआ, जरा चर्चा सुनिए। नाम उमा, देवी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण

0: जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म के बढ़ने से जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते, तो कभी कृष्ण बनकर के आते, तो कभी चामुंडा बनकर आते, तो कभी अम्बा बनकर के आते हैं। माँ के अनेक रूप,
1: अष्टे भोजाओं वाली करुणा बरसाने वाली
0: माता, अष्ट भुजाओं वाली करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी माँ अम्बा, महिषासुर मर्दिनी बनी, पर प्रकट कैसे हुई?
1: थे रंभ करंभ पुत्र धनु के जो लोकों में बलशाली थे।
0: दो भाई थे रंभ करंभ, धनु के दोनों पुत्र बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है इंद्र को टेंशन हो जाता है। इंद्र को इसलिए टेंशन हो जाता है कहीं हमारा सिंहासन ना हिल जाए। ऐसा होता ही है, अक्सर छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। बोलो सीताराम। छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। उनके दिमाग इसलिए खराब हो जाते कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। इसीलिए बड़े नेता हमेशा छोटे नेताओं के बार करते रहते हैं कि इनके बड़े कार्यक्रम होने ही ना पाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ही यहां पर टेंशन नहीं चल रही, नीचे ऊपर भी टेंशन चल रही, देवताओं में इंद्र को टेंशन कहीं हमारा सिंहासन ना कोई छुड़ा ले। तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ एक का नाम करम, दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम्भ का पैर पकड़ा, मार डाला, करम्भ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई, उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भए, वरदान मांगो। रंभ बोला, महाराज हमारे कोई बचा ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए, जितने वरदान, आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं। अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता है जिनका नाम शंकर जी, शंकर जी ऐसे हैं जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। दोनों देवताओं में अलग है, ब्रह्मा जी वही देते जो कर्म होता है, शंकर जी क्या देते? शंकर जी कहते तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले महादेव, एक बाल्टी और ले। बोलो सीताराम। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चलेगा, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे भोले बाबा की कृपा से मिलेगा। क्यों?
1: भाभी मैटी सकही त्रिपुरारी।
0: भाग्य को मिटाने वाले, भाग्य की रेखाओं को ऊपर भी देने वाले श्री अनंत बलवंत हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप है, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए हुए। पार्वती जी ने पूछा, मुंह क्यों लटका है? कहा दिमाग खराब है, क्या हो गया, कुटपिट के आए हो? का ब्रह्मा जी बोले, कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर दो, किसी और को दो काम। क्या बात, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम करें क्यों, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने पूछा, क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सोल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन तुम्हारे पति ही है। पार्वती जी बोले, हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझा, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले, जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले धट से बेटा दे देते। हमारा तो दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर लेते, कौन रखे। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव हैं, भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान, दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा बलिदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, संतान नहीं है जो तो ठीक है, लोगाई है। भाई संतान होगी कहाँ, जब दो लोग होंगे पति पत्नी, तुम तो अकेली हो क्या, तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे। रम बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। रम बोला क्यों, बोले जब लुगाई है नहीं संतान मांग रहे। एक आदमी हमें भी ऐसे ही मिला, गुजरात का आदमी, दांता का रहने वाला आदमी, बागेश्वर धाम पे फंस गया 2022 में। हमने कहा और बताओ कब से आ रहे, बोले 3 साल से आ रहा है बागेश्वर धाम। हम कहा हुआ है कुछ, बोले कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है हमारा। हम कहा दिमाग खराब मत करो, तमे केम छो, बोले नोट मजा माछो, आनंद में नहीं है। क्या हुआ, अर्जी पूरी नहीं हो रही। हमने पूछा क्या अर्जी लगाई थी, बोले बेटा होने की अर्जी लगाई थी। हम कि बेटा हुआ, बोले बेटा तो ठीक है, विवाह नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बरे नकटा, जब शादी नहीं हुई तो बेटा की अर्जी क्यों लगाई। लेकिन गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। गुजरात का आदमी, दाता का रहने वाला आदमी बोला हमने थोक में अर्जी लगा दी थी बेटा हो जाए, और बेटा तभी होगा जब विवाह होगा, तो विवाह की अलग से क्या लगानी है। बताओ ऐसे लोग, खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अंबाजी का ही था, वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि 24 घंटा और गुजारने हैं यहाँ। बोलो श्री राम जय राम। रम ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद, अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रम वापस आया, दृष्टवा चक्र

बाप वापस आया, रंभ रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महसी को देखा। महसी जानते हो, भैंस। भैंस को देखा रंभ ने, महसी को देखा।

इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महसी के ऊपर आसक्त हुआ। महाराज वर्णन आया है महसी के ऊपर आसक्त हुआ, और ऐसा होता है। खैर रंभ की गलती नहीं है, अक्सर लोग बुरा ना मानना, नेता और लुगाई दोनों मन के चुनते हैं। नेता और लुगाई, लुगाई मतलब वाइफ, नेता और वाइफ व्यक्ति हमेशा मन का चुनता है, पर ये चुनने के बाद किसी की नहीं सुनते। ईश्वर की कृपा है कि अभी हमें तो बजरंग बली बचाए हैं, हम तो तुम्हारा ही एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे हैं। खैर कई लोग तो इमरजेंसी केस वाले भी बैठे हैं, बोल नहीं रहे, चूंकि धर्म पत्नी साथ में है तो हंस इसलिए नहीं रहे कि कुछ लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, जो हंस रहे कि नहीं हंस रहे, ये तो डर लगा रहता है। बोलो सीताराम, जय जय जय जय, बोलो सीताराम।

महसी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया और वह महसी गर्भवती हो गई। महसी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महसी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महसों ने आक्रमण कर दिया। ये महसी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महसी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई तो महसी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी उसी वक्त तदंतर महसी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी उसी में जाकर बैठी तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर, दो लोग प्रकट भए, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भए। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ ब्रह्मा जी को टाइम ही कुछ, फिर प्रकट हो। महिषासुर तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज वरदान मांगो। महिषासुर बोला वरदान देना ही है तो अमरत्व तो दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है और तुम कह रहे हैं अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है, पर इसने विचार किया नारी तो अबला होती, अबला नारी करेगी क्या, और लोग नारी को अबला समझते हैं पर भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आचार्य चरण पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, हमारे दादा गुरु जी कहते थे ना

कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी माँ है, माँ शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। बोलो सीताराम। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहां से। यहां तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया, विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोले, चार कदम चोर से, महाराज जी चार कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, लात मारने वाला घोड़ा, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहां पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ कर नहीं है, इंद्र का राज पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुर्सी। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया। हे इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर हम तो खबरदार हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ, इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा, पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मरे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया, हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा देवता भागने में बड़े माहिर हैं, जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते ही मिलते, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर हैं। एक जन बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता है।

0: रख मिले सो दो दो लाते होए। इसलिए मूर्ख कोई मिल जाए तो फायदा इसी में है कि भाग जा। बोलो सीताराम, ऐसा कह दिया करो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हमारा यकीन मानिए कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी गुड न्यूज टुडे के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं, तो अपने टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें बिहार के छपरा से यशराज सिंह ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें पनवेल से महेश पाटिल ने भेजी है। यहाँ बड़े ही आकर्षक पंडाल में बप्पा को विराजमान किया गया है। तो वहीं बप्पा को शानदार पोशाक भी पहनाई गई है, साथ ही मनमोहक फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। बप्पा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है, फलों का भोग भी बप्पा को लगाया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर

0: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के नौवे दिन बप्पा के पंडाल की भव्य सजावट, दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मानित। एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना, सुबह 10:30 बजे से मुकाबला। एयरफोर्स को आज मिलेगा मेड इन इंडिया C-295 विमान, गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम, टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबेस के सहयोग से बने विमान। जोधपुर में वीर गार्जन युद्धाभ्यास का होगा समापन, आसमान में दोनों देशों के वायुवीर कर रहे हैं शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भारत श्रीलंका के बीच आज गोल्ड मेडल की जंग, एशियन गेम्स के फाइनल्स में विमेन क्रिकेट टीम्स होंगी आमने सामने, सुबह 10:30 बजे जापान के आईची नागोया में खिताबी जंग। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर रहेगी टीम इंडिया, करोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा T20 फाइनल। श्रीलंका के खिलाफ भारत का T20 रिकॉर्ड मजबूत, T20 में दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए, टीम इंडिया ने 25 मैचों में दर्ज की है जीत। T20 में श्रीलंका का पलड़ा रहा है कमजोर, श्रीलंका को सिर्फ 5 मैचों में मिली है जीत, जबकि एक मैच रहा है बेनतीजा, इस टूर्नामेंट में श्रीलंका का प्रदर्शन रहा शानदार। टूर्नामेंट में अजय रही है टीम इंडिया, भारत श्रीलंका महामुकाबले पर रहेगी क्रिकेट प्रेमियों की नजर, फैंस में खिताबी जंग को लेकर भारी उत्साह। भारत जापान मेंस क्रिकेट टीम के बीच आज T20 का ऐतिहासिक मुकाबला, सुबह 9:30 बजे जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा ये मैच। पहली बार भारत जापान के बीच फ्रेंडली मैच, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रहा है ये मैच, अनोखे मुकाबले को सुजुकी कप नाम दिया गया। जापान के तोचिगी प्रीफेक्चर स्थित मैदान पर उतरी हैं दोनों टीमें, जापानी धरती पर पहली बार खेल रही है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। युवा भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं श्रेयस अय्यर, जापानी टीम की अगुवाई कर रहे हैं अनुभवी कप्तान केंडल कारुवाकी फ्लेमिंग। भारत जापान के बीच एकमात्र T20 मुकाबला खेला जाएगा, इसके साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में लेगी हिस्सा। केवड़िया में आज सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, दिल्ली से बाहर पहली बार गुजरात में हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी, वडोदरा एयरपोर्ट पर दिखी फिल्म में सितारों की हलचल, रणदीप हुडा, धनुष, पद्मिनी कोल्हापुरी समेत कई हस्तियां गुजरात पहुंची। जूरी सदस्य अक्षय कुमार परीजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश भी पहुंचे, कोरियोग्राफर मास्टर कला समारोह में लेंगी हिस्सा, फिल्म मेकर जयराज राजशेखरन नायर, स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद भी आए नजर। राष्ट्र सम्मान के लिए जुटा भारतीय सिनेमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे विजेताओं का सम्मानित, 2024 के लिए चुने गए कलाकारों और टेक्नीशियनों को मिलेगा सम्मान। एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1000 VIP मेहमानों के लिए भव्य व्यवस्था। नेशनल अवार्ड से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन, आदिवासी पारंपरिक नृत्य देखकर हुए भावुक, गुजरात की समृद्ध संस्कृति को करीब से देखा। आदिवासी नृत्य ने खींचा कार्तिक आर्यन का ध्यान, नानी देवरूपण के होली और राठवा डांस का लिया आनंद, नर्मदा और छोटा उदयपुर की लोक संस्कृति की दिखी झलक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्तिक आर्यन ने किया सरदार पटेल को नमन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्तिक आर्यन ने किया सरदार पटेल को नमन, देश की एकता के प्रतीक को देखकर जताया गर्व। कार्तिक आर्यन ने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा, व्यूइंग गैलरी से नर्मदा और सरदार सरोवर डैम का लिया दीदार, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला भी देखी। कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म के नेशनल अवार्ड को बताया गर्व की बात, बोले पहली बार मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा है बप्पा का पंडाल। घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है ये पंडाल। जंगल की थीम पर तैयार किया गया है बप्पा का पंडाल, मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवरों की प्रतिमाएं भी सजाई गई। पिछले 26 साल से घाटकोपर के राजा पशुपतिनाथ थीम पर ही किए जाते हैं स्थापित। हर साल बप्पा का होता है बिल्कुल नया श्रृंगार। पंडाल में बप्पा को शिवलिंग पर विराजमान दिखाया गया। गजानन की प्रतिमा करीब 52 फीट ऊंची है। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन को भक्त पहुंच रहे हैं और पंडाल की सुंदरता को निहार रहे हैं। अकोला में पानी की कमी के चलते 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का नहीं किया जाएगा विसर्जन। प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से किया मूर्ति विसर्जन टालने का आह्वान, केवल छोटी मूर्तियों का ही होगा विसर्जन। कई गणेश मंडलों ने प्रशासन अपील को किया स्वीकार, बड़ी प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखने का लिया फैसला। घरेलू गणपति और छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड किए जा रहे हैं तैयार। छोटी प्रतिमाओं से विसर्जन से पहले बड़ी प्रतिमाओं के साथ निकाली जा रही है शोभा यात्रा। जोधपुर में आज भारत जापान वायुसेना के वीर गार्जन युद्धाभ्यास का होगा समापन। 9 सितंबर से जोधपुर में चल रही थी दोनों देशों की एयर कॉम्बैट ड्रिल। 14 दिनों तक आसमान में दिखी भारत जापान की साझा ताकत, तेजस सुखोई राफेल ने भारत की ताकत दिखाई। जापान के F-2A फाइटर भी पहली बार भारतीय जमीन से ऑपरेट हुए। भारत जापान ने युद्ध जैसे हालात में परखी हवाई क्षमताएं, एयर स्ट्राइक और अलग अलग ऑपरेशनल मिशन का अभ्यास हुआ। वीर गर्जन में आज आखिरी बार गर्जेंगे फाइटर जेट्स। तेजस की उड़ान ने बढ़ाया वीर गर्जन का रोमांच। भारत के स्वदेशी फाइटर और एरोस्पेस क्षमता का अद्भुत दर्शन, आसमान में एयर स्ट्राइक से लेकर कॉम्बैट ड्रिल तक शानदार प्रदर्शन। रियलिस्टिक कॉम्बैट जैसे हालात में तैयारियों को परखा गया दोनों देशों के एयर वॉरियर्स ने, ऑपरेशनल रणनीति पर काम किया। वीर गर्जन में टेक्निकल टीमों ने भी साझा किए अनुभव। अम्बाला में वामन द्वादशी मेले में पहुंचे सीएम नाभसिक सैनी, ऐतिहासिक मेले में भगवान वामन के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने की संत से मुलाकात, पिजावर मठ के संत श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी से मिले अमित शाह ने लिया संत का आशीर्वाद। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने किया आईसीयू और आधुनिक सीएसएसडी का उद्घाटन, एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में नई सुविधा की शुरुआत, क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी इससे मजबूती। अगरतला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिली नई मजबूती, इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा, मरीजों के इलाज और संक्रमण नियंत्रण में इससे मिलेगी मदद। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन और निरीक्षण किया, निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा, फरवरी मार्च तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त। यहाँ विराजमान गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेकर स्थानीय लोगों की करीब 50 साल पुरानी है मान्यता। पौड़ी में अनूठे पत्ती मेले का आयोजन, ग्रामीणों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ खास प्रतियोगिता में भी भाग लिया। मान्यता के अनुसार पेड़ के सबसे ऊपर पत्तियां, पहाड़ी फल और कुछ पैसे रखे जाते हैं। जो व्यक्ति पेड़ के शीर्ष पर पहुंचता है वो विजेता घोषित किया जाता है। प्रतियोगिता में शामिल होने और मेले का आनंद लेने बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी हुए शामिल। एएनटीएफ के राष्ट्र सम्मेलन का मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नशा नियंत्रण और ड्रग तस्करी पर होगी चर्चा। फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर। विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में फिल्म हनुमान अंश की कास्ट से मिले गृह मंत्री अमित शाह, फिल्म की सफलता पर बधाई दी। नागपुर में 23 सितंबर के बाद अच्छी बारिश का अनुमान, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में 24 और 25 तारीख को बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हैदराबाद में अगले 4 से 5 दिन तेज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत की जीत, ढोल नगाड़ों के साथ मना जश्न। बीजेपी ने अजमेर, अलवर, उदयपुर, पाली में मेयर पद जीते, पार्टी कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। त्योहारी सीजन में संभाजीनगर में फूड डिपार्टमेंट की बड़ी कामयाबी, 4,765 किलो नकली मावा किया जब्त, 7 लाख से ज्यादा है कीमत। जहीर खान आईपीएल 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच नियुक्त। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम की जर्सी लॉन्च, कोलकाता में हुए कार्यक्रम में की गई लॉन्च। रेगिस्तान में दुर्लभ कैराकाल के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, वन विभाग की टीम ने रेडियो कॉलर युक्त मादा कैराकाल को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC का नया पैकेज, हवाई जहाज से करें 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन, 3 स्टार होटल में रहें। सुरकुंडा देवी रोपवे को वार्षिक रूटीन मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण के लिए 21 सितंबर 2026 तक रखा जाएगा बंद। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक किसान का अनूठा देश प्रेम, अपने खेत में लगाई देश के लिए जान न्यौछावर करके वीर जवानों की प्रतिमाएं। किसान लोकेंद्र साहू हैं क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेटर सूर्य कुमार और अन्य खिलाड़ियों की आदमकद प्रतिमाएं भी की गई स्थापित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।
3: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से रमाकांत साहू जी ने अपने बप्पा की सुंदर तस्वीरें हमसे शेयर की है। पारंपरिक साफा और फूलमाला पहने बप्पा की ये सुंदर सी तस्वीर किसी का भी मन मोहलेगी। गौरीपुत्र की छोटी सी प्रतिमा दिल जीतने वाली है। विघ्नहर्ता की ये सुंदर तस्वीर अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमारे दर्शक रमाकांत साहू ने हमें भेजी है और हम आपके साथ इसे शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हमें अहमदाबाद से दिनेश शर्मा जी ने भेजी है। बेहद खूबसूरत वीडियो क्लिप जिसमें बप्पा का ये दिव्य स्वरूप हर किसी को भा जाए। गणेशोत्सव के दौरान भगवान गजानन के प्रति श्रद्धा भाव दिनेश शर्मा की इस छोटी सी वीडियो क्लिप में साफ नजर आ रहा है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की बात करेंगे जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन के प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसके बारे में नियम और शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत की महिमा ये है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं, उपासना करते हैं, तो जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का पालन करने से, साधना उपासना करने से इस लोक में भौतिक संपन्नता मिलती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी एकादशी के समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए इस व्रत को रखने से, पूजा उपासना करने से भगवान गणेश और श्री हरि यानी भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिल सकती है। अलग अलग एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है, जिस स्वरूप में उन्होंने दान में सारी सृष्टि ले ली थी। जिन लोगों को संतान का सुख चाहिए या जिनको जीवन में धन चाहिए, उनके लिए परिवर्तिनी एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी है। और सबसे मूल्यवान बात यही है कि जाने अनजाने अगर गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने अगर पाप हो गए हैं
और आप परिवर्तिनी एकादशी का पालन करते हैं, हृदय से क्षमा याचना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। परिवर्तनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब परिवर्तनी एकादशी की महिमा आपने जान ली, इस व्रत की विधि क्या है, तरीका क्या है। प्रातः काल 12 बजे के पहले कोशिश करें नहा करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की और गणपति गजानन की पूजा करें। श्री हरि को भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू और दूर्वा अर्पित करें। पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और तब भगवान विष्णु के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी भी मंत्र का जप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अगर आप कर सकें तो परिवर्तनी एकादशी पर अन्न का सेवन ना करें, लिक्विड ग्रहण करें या फल ग्रहण करें तो अच्छा होगा। अगर आप बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, मजबूरी है, भोजन करना ही पड़ेगा, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। परिवर्तनी एकादशी के विशेष उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी के दो विशेष प्रयोगों के बारे में। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ ये उपाय करें और पति या पत्नी की उम्र के बराबर लड्डू या मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें, और इसके बाद कम से कम 3 बार संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करिएगा। पति पत्नी एक साथ मिलकर के या ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। एक एक लड्डू पति पत्नी खा लेंगे और बाकी जो लड्डू का प्रसाद है वो लोगों में बांट देंगे। अगर ये प्रयोग परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय किया जाए, उसके बाद प्रार्थना की जाए, तो संतान की प्राप्ति आसान होगी।
अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, पैसे रुपए की मुश्किल है, आर्थिक समस्या है, तो क्या उपाय करेंगे? परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय भगवान गणेश की पूजा करें, उनको एक मिट्टी का या धातु, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, किसी मेटल का चूहा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश को पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, कम से कम एक माला 108 बार या 3 माला या 11 माला मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा कि आपको धन मिले और आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। और जो चूहा आपने गणपति को अर्पित किया था, इसको अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने पूजा के स्थान पर सामान्यतः घी या तिल के तेल का ही दीपक जलाइएगा। सामान्य स्थितियों में पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक कभी ना जलाएं। दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के नवे दिन बप्पा के पंडालों की भव्य सजावट, दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित। एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना, सुबह 10:30 से मुकाबला। एयरफोर्स को आज मिलेगा मेड इन इंडिया C-295 विमान, गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से बने विमान। जोधपुर में वीरगार्जुन युद्धाभ्यास का होगा समापन, आसमान में दोनों देशों के वायुवीर कर रहे हैं शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बच्चों को शुभ संस्कार किस प्रकार दें, अलग अलग उम्र में किस तरह से उपाय करें जिससे उन्हें शुभ संस्कार मिले, इस बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: देखिए, आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसे बचपन से गायत्री मंत्र का जप करना अवश्य सिखाइए। हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करना सिखाना चाहिए। अगर बच्चा बचपन से ही गायत्री मंत्र का जप करेगा तो बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि तेज होगी और उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी।
4: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे 22 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं, इसके पीछे की रहस्य क्या होते हैं।
5: जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि आप कौन से उपाय करें अपने बच्चे के किस उम्र में किस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा संस्कारी बने। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं और इसके पीछे की कुल स्थिति क्या है। देखिए, किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर 21 साल तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है और जन्म से लेकर 21 वर्ष तक जो आदतें आपके बच्चों को पड़ती हैं वो आगे चल करके संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता तक, पूजा उपासना तक, हर बड़ी छोटी चीज का अपना महत्व होता है।

0: ये तमाम चीजें उसके ऊपर असर डालती हैं। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है, माता पिता की आदतों का भी प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी संस्कार के लिए केवल बच्चे की आदतें जिम्मेदार नहीं हैं, उसके माता पिता की आदतें, उसके माता पिता का खान पान भी बच्चे के संस्कार पर असर डालता है।
1: तो वहीं पंडित जी से इस बारे में भी जान लेंगे कि जन्म से लेकर 5 साल तक की आयु तक किन बातों का ध्यान हमें बच्चों के लिए रखना चाहिए।
0: किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल की आयु तक किन बातों का ध्यान रखें संस्कार के मामले में, देखिए जन्म से लेके 5 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के आहार का और खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जन्म से लेके 5 साल तक जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है वो जीवन भर नहीं छूटती है, और चूंकि खान पान से सोच और विचार बनते हैं, इसीलिए बच्चे को सोच समझकर खान पान और आहार देना चाहिए। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाले भोजन से शुरुआत में जन्म से लेकर 5 साल तक आपको अपने बच्चे को बचाना चाहिए, ताकि वहां से खान पान के संस्कार बेहतर होने शुरू हो जाएं।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है दैनिक राशिफल जानने का। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, संतान को लेकर परेशान ना हों, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पंडित जी से ये जान लेंगे कि 6 साल से 10 साल के बच्चों के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है।
0: अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी उम्र है 6 साल से लेकर 10 साल तक। ऐसे बच्चों के संस्कार में किन बातों का ध्यान रखें? 6 साल से 10 साल की उम्र के जब बच्चे होते हैं तो इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। बच्चे को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में और अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। तो जब आपका बच्चा 6 साल से 10 साल के बीच का हो, उस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखिए और घर के लोग अपने व्यवहार और अपने आचरण को ठीक रखिए। घर में गाली गलौच करना, झगड़े लड़ाई करना, चीखना चिल्लाना ये सब बंद करिए और 6 से 10 साल के बीच की उम्र में बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाइए, क्योंकि इस समय आपका बच्चा गलत और सही चीजों के बीच में पड़ेगा। तो इसी समय आपको आपके बच्चे को एजुकेट करना है, अच्छा व्यवहार सिखाना है और बच्चे को झूठ सच गलत सही के बीच का अंतर बताना है।
1: और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज सबसे पहला सवाल आप किसका लेंगे
0: जी। आज का पहला प्रश्न अस्मिता जी ने हमें लिखा है और अस्मिता जी हमें उज्जैन से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 1996, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है उज्जैन। अस्मिता जी कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब के लिए काफी समय से कोशिश कर रही हूं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग जॉब मिल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अस्मिता जी, आप शिक्षा क्षेत्र के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो प्रयास करते रहिए। कुंडली के हिसाब से साल 2027 में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आने वाला समय आपका बेहतर है। करियर को लेकर, जीवन को लेकर आप शांति से रह सकेंगी। करियर में आपको जल्दी सफलता मिले, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पुखराज बनवा के पहनिए। एक पीला पुखराज 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको सफलता मिलेगी।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी, आप दूसरा प्रश्न किसका लेने वाले हैं
0: जी? अगला प्रश्न सपना जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 25 नवंबर 2004, जन्म का समय दोपहर के 2:45, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, आगे उसे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, अगर ये फाइनेंस में जाएं, अकाउंटिंग में जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों में जाने पर इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा दें तो मुझे लगता है इनके लिए काफी बेहतर होगा। आप

0: पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको धारण कराएं और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर जप किया जाए और बेटी के लिए आप प्रार्थना करें तो जीवन बेहतर होगा।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि 11 साल से 15 साल की उम्र के बीच बच्चों के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: अगर आपके बच्चे की उम्र 11 साल से 15 साल के बीच की है तो बच्चे के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए 11 साल से 15 साल वाली उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के मामले में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान पर ध्यान देता है और इसी उम्र से बच्चे को अपनी पढ़ाई के विषय की, अपने करियर की और अपने सफलता की चिंता होने लगती है। जब आपका बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच का हो तो बच्चे को मंत्रों के बारे में, योग के बारे में और आसन के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए। बच्चे पर अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए। बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने दीजिए। बच्चे को अपनी इच्छानुसार सब्जेक्ट या विषय लेने दीजिएगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान।

0: ध्यान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब जान लेते हैं कि 17 साल से 21 साल तक बच्चों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें शुभ संस्कार मिले।
0: अगर आपके बच्चे की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच की है तो इसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, 17 से 21 साल किशोरावस्था से युवावस्था में जाने का समय है। टीन एज से बच्चा यंग एज में जाता है। ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। मानसिक और शारीरिक बदलाव बड़ी तेजी से होते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। बच्चा 17 से 21 साल के बीच का है तो इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें, जिम्मेदारी निभाने में, काम करने में, आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। उनके कपड़ों का, उनकी जीवनचर्या का और उनकी संगति का ध्यान रखें। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका रूटीन कैसा है, उनकी संगति कैसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस उम्र में बच्चों को बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दीजिएगा। बुजुर्गों के साथ समय बिताने को कहिए और धीरे धीरे इस उम्र से बच्चों को व्रत उपवास रखने की आदत डालिएगा, काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, दैनिक राशिफल जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल पंडित जी से जानेंगे।
0: मकर राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पंडित जी आज आप तीसरा सवाल किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1978। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म स्थान है दिल्ली। नवीन जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूटने की नौबत आ गई है तो क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? क्या मुझे दूसरी नौकरी आगे मिल सकती है? नवीन जी, आपकी कुंडली में नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है तो आपको दूसरी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस बात की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है और नई नौकरी आपको दिसंबर या जनवरी के महीने में मिलेगी और लगभग पहले के समान ही होगी, एक पार होगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। आप ऐसा करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार और एक मूंगा बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब आपका चौथा सवाल ले लेते हैं पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अंजलि ने हमें लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। 2 जुलाई 1993 का जन्म है। सुबह के 11:00 जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय चल रहा है 2026 से, और 2027 का जो समय है इसमें आपके विवाह होने की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा ऐसा लग रहा है। विवाह के बाद यानी 27 के बाद आपके करियर और आपके स्थान में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आपका आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा है। शीघ्र विवाह और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 22 सितंबर को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ के योग हैं। इस साल स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी होगा। हालांकि अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ने का और आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या समय ना होने पर भी चलते फिरते मंत्र पढ़ सकते हैं, चलते फिरते स्तुति कर सकते हैं? देखिए, मंत्र और स्तुति बैठ कर पढ़ना, बैठ कर करना ज्यादा उचित होता है। जब आप मंत्र पढ़ें, स्तुति करें, उस समय शरीर आपका स्थिर हो और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। भगवान के नाम का जप, नाम मंत्र का जप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि 22 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपनी पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है सिंह। इनको पूजा में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा।
1: और चलिए अंत में आगे बढ़ते हैं अपने सबसे जरूरी सवाल की ओर, जो है कि आज का महा उपाय कौन सा है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके प्रेम संबंध टूट रहे हों, आप रिश्ते को बचाना चाहते हों, तो क्या करेंगे। इसके लिए रोज सुबह श्री राधा कृष्ण की पूजा करिएगा, उनको गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा और इसके बाद सुबह के समय ही ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: तो इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें पटियाला के कुलदीप चंद ने भेजी है। कुलदीप के पप्पा के सर पर सुंदर पगड़ी सजी है। बच्चों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। चमकीली ज्वेलरी से गणपति का श्रृंगार किया गया है जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर नागपुर के सुरेश केशव राव चौरसिया ने भेजी है। हरे रंग का साफा बप्पा पर खूब फब रहा है। मैचिंग हरी धोती और ज्वेलरी में बप्पा बेहद सुंदर लग रहे हैं। साथ ही सफेद फूलों की माला से बप्पा का श्रृंगार किया गया है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एक वक्त जो फिल्म 300 स्क्रीन से हटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ऊंचाई छलांग लगाई कि 347 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। फिल्म ने 45वें दिन दंगल की कमाई को भी पछाड़ दिया है, महावतार नरसिम्हा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो MP में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया नागर हाल ही में दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची। अनुप्रिया के मुताबिक एक समय उनके फिल्म हनुमान अंश का प्रदर्शन काफी गिर गया था। फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर केवल 30 स्क्रीन पर आ गई थी। उस समय उन्होंने बागेश्वर महाराज से मुलाकात की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और जब मैं मंच पर बैठी थी, मैं इतने सारे लोगों को देख रही थी और मैं लिटरली देख रही थी कि गुरुदेव इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों को वो क्योर कर रहे हैं। और जब मैं उधर बैठी थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो मैं पूछना चाहती हूँ वो सबके सामने इतना छोटा है, इतना कम है, और ये तो सबसे बड़ी सेवा है लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना। और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाना है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 45वें दिन दंगल की कमाई को भी पछाड़ दिया। दंगल ने चीन में हुई कमाई की बदौलत 10.48 करोड़ की कमाई की थी। वहीं हनुमान अंश ने केवल भारत की मिट्टी पर 45वें दिन 13.75 करोड़ की कमाई कर डाली। फिल्म ने भारत में अब तक 272 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। विदेशों में फिल्म ने अब तक 26 करोड़ रुपए की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 347 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस तरह हनुमान अंश ने कमाई के मामले में महावतार नरसिम्हा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 248 करोड़ था। फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे बड़ी मुस्कान ला दी है।
2: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he says, he tells अर्जुना that कर्मण्येवाधि करस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वही थी कि लाखों करोड़ों लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे। ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। सो वी थिंकिंग ऑफ इन्फ्लेटेबल थिएटर्स लेटर ऑन, कि भाई ऐसे थिएटरकल एंड खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा, प्रॉब्ली द बिजनेस एंड देन द होल थिंग इज प्रॉब्ली नॉट माई कप ऑफ टी एंड नॉट माई, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है।
0: प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हाल ही में भारत के प्रोजेक्ट चीता को 4 साल पूरे हुए। करीब 4 साल पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से 8 चीतों को मंगवाकर खुद उन्हें कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा था और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। खुशी की बात यह है कि प्रोजेक्ट चीता पूरी तरह से सफल रहा। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है।

0: प्रोजेक्ट चीता अब अपने नए दौर में प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश के नीमच में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीता प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीएम मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को गांधी सागर में रिलीज किया। इसके साथ ही अभ्यारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
1: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं।
0: गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ी गई CCB2 एक मादा चीता है। इस अभ्यारण्य में अब 2 नर और 2 मादा चीते हो गए हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। CCB2 चीते को कूनू से लाकर यहाँ छोड़ा गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि कूनू नेशनल पार्क की तरह ही यहाँ चीतों के कुनबे में जल्द बढ़ोतरी होगी। आज से करीब 4 साल पहले 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी, जब नामीबिया से चीते भारत लाए गए थे। तब उम्मीद के साथ साथ चीतों के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट को लेकर आशंकाओं के बादल भी मंडरा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ तमाम आशंकाएं गलत साबित हुई और उम्मीद की जीत हुई। आज कूनू नेशनल पार्क चीतों के कुनबे से लहला रहा है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। 29 चीतों में से 19 जीवित रहे, यानी कि जिंदा रहने की दर 65% से अधिक रही। कूनू में अब तक 49 शावकों का जन्म हुआ है। इनमें 33 जीवित हैं और इनके जीवित रहने की दर 67% से अधिक है। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की परिस्थितियां अफ्रीका के खुले घास के मैदानों से काफी अलग हैं। अफ्रीकी चीतों को बड़े इलाके की आदत होती है, जबकि कूनू का दायरा थोड़ा सीमित है। अफ्रीका की तुलना में कूनू में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है, जो अफ्रीकी चीतों के लिए डिहाइड्रेशन और बड़ी चुनौती की वजह बनता है। कूनू में तेंदुओं की अच्छी खासी आबादी भी चीतों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए चीतों की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी साधनों के साथ साथ मानवीय निगरानी पर भी जोर दिया गया है। शावकों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए गुफा के पास निगरानी रखी गई है। इसके अलावा चीतों के गले में विशेष सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है, जो GPS तकनीक के जरिए इनकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करने में मदद करता है। 100 से अधिक वनरक्षक, ट्रैकर्स, CCTV और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जब मादा चीता बाहर शिकार पर जाए, तब टीम सुरक्षित दूरी से शावकों की सेहत की जांच कर सके। इस तरह का प्रयोग भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इससे मादा चीता के साथ नन्हे शावकों की देखरेख भी की जा सकी। ये नया तरीका गहन निगरानी और गैर हस्तक्षेप की दूरी के बीच संतुलन बनाने में कारगर साबित हुआ। भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके चीतों का कुनबा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। MyGov.in ने X पर पोस्ट कर बताया है कि भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। इनमें बीते 18 सितंबर को ही कूनू नेशनल पार्क में 4 नए शावकों का जन्म हुआ। कूनू के बाद गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में अब चीतों का दूसरा घर बनता जा रहा है। गांधी सागर के बाद नौरादेही नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाने की तैयारी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
10: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 9वें दिन बप्पा के पंडालों की भव्य सजावट, दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार।
11: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुड़वा मंगल उत्सव की धूम, हनुमान मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतार, विधि विधान से किए दर्शन पूजन।
10: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मानित।
11: एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना, सुबह 10:30 बजे से मुकाबला।
10: सेना के अजय और भीष्म होंगे और भी घातक T-72 और T-90 टैंकों के लिए रक्षा मंत्रालय की बड़ी डील, 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी पावर सिस्टम खरीदने का समझौता।
11: कारगिल की ओर से बड़ा वायु सेना का साइकिल दल, दिल्ली में मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, कन्याकुमारी से कारगिल की यात्रा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
11: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज के उन पांच खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत गणेशोत्सव के साथ करेंगे। हर ओर उत्साह गजब का है, बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडालों में विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई ऐसे गणपति पंडाल हैं जो अपनी अनोखी थीम और अनोखी गणेश प्रतिमाओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
11: साथ ही बात अनोखे गणपति विवाह की भी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई में हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों की ओर से बनवाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहाँ हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी, तो इसके बारे में भी विस्तार से आपको दिखाएंगे।
10: तो वहीं गुजरात में आज 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच सजेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ये भव्य आयोजन होगा। पहली बार दिल्ली से बाहर गुजरात में राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह हो रहा है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
11: साथ ही एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस है। दरअसल फाइनल में श्रीलंका के सामने ये मुकाबला होने वाला है। ये मैच अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा।
10: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा, जहां एक ऐसा अनोखा कैफे है जो स्कूल की थीम पर ना सिर्फ बनाया गया है बल्कि यहां आने वाले ग्राहक उनके बचपन और स्कूल के दिनों की याद में भी उनको लिए जाता है। इस कैफे का इंटीरियर बिल्कुल स्कूल क्लासरूम की तरह डिजाइन किया गया है, और क्या कुछ है इसमें खासियत आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
11: केवड़िया में आज 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच सजेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन। पहली बार दिल्ली से बाहर गुजरात में राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह हो रहा है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं का सम्मान करेंगी। 2024 के लिए चुने गए कलाकारों और टेक्नीशियनों को भी सम्मान मिलेगा।
10: मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर बप्पा का पंडाल सजाया गया है। ये पंडाल घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है। बप्पा का पंडाल जंगल की थीम पर तैयार किया गया है। मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवरों की प्रतिमाएं भी सजाई गई हैं। पंडाल में बप्पा को शिवलिंग पर विराजमान दिखाया गया है। गजानन की ये प्रतिमा करीब 52 फीट ऊंची है।
11: अकोला में पानी की कमी के चलते 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से किया मूर्ति विसर्जन टालने का आह्वान। इसके बाद कई गणेश मंडलों ने प्रशासन अपील को स्वीकार कर लिया है। बड़ी प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया है।
10: एयरफोर्स को आज मेड इन इंडिया C-295 विमान मिलेगा। गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान ये विमान सौंपा जाएगा। ये विमान एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की साझेदारी में गुजरात के वडोदरा स्थित फैसिलिटी में तैयार किया गया है। भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब देश की किसी निजी कंपनी ने भारतीय वायुसेना को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंपा है।
11: जोधपुर में आज भारत जापान वायुसेना के वीरगाजन युद्धाभ्यास का समापन होगा। 9 सितंबर से जोधपुर में दोनों देशों की एयर कॉम्बैट ड्रिल चल रही थी। इसके तहत 14 दिनों तक आसमान में भारत जापान ने की साझा ताकत दिखी। तेजस सुखोई 30 और राफेल ने भारत की ताकत दिखाई। जापान के F-2A फाइटर भी पहली बार भारतीय जमीन से ऑपरेट हुए।
10: एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम गोल्ड अपने नाम करने उतरेगी, जिसमें टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। पिछली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भी इन दोनों टीमों के बीच टक्कर देखने को मिली थी। पिछली बार भारत ने बाजी मारी थी। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक बेजोड़ प्रदर्शन किया है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगी।
11: भारत जापान मेंस क्रिकेट टीम के बीच आज T20 का ऐतिहासिक मुकाबला होने जा रहा है। ये मैच सुबह 9:30 बजे से जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये पहली बार है जब भारत जापान के बीच फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने पर यह मैच हो रहा है। अनोखे मुकाबले के सुजुकी कप नाम दिया गया है।
10: फिल्ममेकर करण जौहर ने एक नई फिल्म की घोषणा की है। ये फिल्म भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के संस्थापक आरएन काओ की जिंदगी और उनके काम पर आधारित होगी। फिल्म में आरएन काओ के साथ साथ रॉ के शुरुआती दौर और एजेंसी के पहले मिशन की कहानी को भी दिखाया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2028 तय की है। 2028 में रॉ के 60 साल पूरे हो जाएंगे।
11: लंदन में प्रिंस हैरी ने बच्चों से खास मुलाकात की। वेल चाइल्ड अवार्ड्स के विजेताओं और उनके परिवारों से वो मिले भी। बच्चों की बहादुरी और उपलब्धियों को उन्होंने सम्मानित किया। प्रिंस हैरी ने बच्चों से बात की और पोस्टर पर साइन किया। प्रिंस हैरी साल 2007 से वेल चाइल्ड से जुड़े हुए हैं। वो वेल चाइल्ड अवार्ड्स अब तक 15 बार इसमें शामिल हो चुके हैं।

0: शुभ समाचार की शुरुआत गणपति बप्पा के साथ। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक है और सबसे भव्य और दिव्य उत्सव के रंग में सराबोर है माया नगरी मुंबई, जहां लालबाग चौराहा के दरबार से लेकर अंधेरी चौराहा तक हर दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं बप्पा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। फूलों से सजे भव्य पंडाल, बप्पा की मनमोहक प्रतिमाएं और दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, मुंबई में हर तरफ गणपति बप्पा की भक्ति का रंग नजर आ रहा है। मुंबई में गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और उत्साह का ऐसा संगम है जहां हर रास्ता बप्पा के दरबार तक पहुंचता नजर आता है। और मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हर पंडाल में आपको लेकर चलेंगे और बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूपों के दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में। हर दिन आस्था विश्वास का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लालबाग राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बहुत लंबे समय से गणेश उत्सव वहाँ पे चल रहा है और हर दिन जो श्रद्धालुओं की कतार है वो लंबी ही होती जा रही है। हर कोई भगवान के स्पर्श दर्शन के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहा है। आप देख सकते हैं कई जगह पर गणपति प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है, लेकिन लालबाग चौराहा में अभी गणेश प्रतिमा का विसर्जन होना बाकी है। ऐसे में श्रद्धालु जो हैं रोज सुबह से लंबी लंबी कतारें लगाकर यहां पर बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं।
0: तो गणेश उत्सव की धूम के बीच बॉलीवुड के किंग खान भी बप्पा की भक्ति में रंगे नजर आए। शाहरुख खान मुंबई के मशहूर लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन किए। गणपति उत्सव के मौके पर लालबाग चौराहा के दरबार में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बॉलीवुड सितारे भी बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। शाहरुख खान भी परिवार के साथ इसी आस्था के साथ लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने बप्पा के सामने हाथ जोड़कर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। तो देखिए किस तरह से बॉलीवुड के खान, किंग खान जिन्हें कहा जाता है, शाहरुख खान हाथ जोड़े बप्पा के दरबार में खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा है लालबाग के राजा की, कि किस तरह से बप्पा के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख वहां पहुंचे हैं बप्पा के दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें सीधे लालबाग के राजा से। तो अपने पूरे परिवार के संग शाहरुख खान बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे।
1: बिल्कुल, देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लालबाग के राजा के दरबार में। जो आस्था है आप साफ देख सकते हैं कि अपार नजर आ रही है। शाहरुख खान भी मुंबई के मशहूर लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आप उन्हें देख सकते हैं और उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए। वहीं पर आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बप्पा के दर्शनों के लिए। तो लालबाग चौराहा जो कि मुंबई के काफ़ी प्रसिद्ध पंडालों में से एक है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। वहाँ पर आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी पहुँचते हैं और इसी कड़ी में बॉलीवुड के खान यानी कि किंग खान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया, यहाँ तक कि वो आरती में शामिल हुए।

ها؟

0: तो हर होर गणपति उत्सव की धूम है, शहर शहर से तस्वीरें आ रही हैं और शहर शहर सिर्फ एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का माहौल है, जरा रंग दिखाइए, आज गणेशोत्सव का नवा दिन है।
1: बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 5,500 से ज्यादा गणेश पंडालों ने अपना रजिस्ट्रेशन ब्रहन मुंबई महानगर पालिका में कराया है और हर जगह मुंबई महाराष्ट्र के हर गुली नुक्कड़ पर ठीक उसी तरीके की जयकारे चल रही है जैसा कुछ देर पहले हमने लालबाग के राजा के दरबार में देखा। फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूं उपनगर के भटवाड़ी इलाके में और किस तरीके से AI ने अत्याधुनिक तरीके से आज सभी का मन खुश कर रखा है, काम आसान कर दिया है और धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जा रही है, ये दिखाने की कोशिश भटवाड़ी के राजा के पंडाल से हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले गणपति बप्पा का दर्शन करें जो इस समय बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और गणपति बप्पा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि कागज के बनाए हुए गणपति बप्पा हैं, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का समर्थन लेकर के आज ये तीसरा या चौथा साल है गणपति बप्पा का यहाँ पे स्थापना की गई है, निर्माण किया गया है। यही वजह है कि आसपास के जो पुलिस स्टेशन है, साथ ही साथ आसपास के भव्य जो समाज के संस्था के लोग हैं, उन सभी ने बप्पा को जब कागज से बना करके यहाँ पर पर्यावरण के साथ विसर्जन के लिए लाया जा रहा है, इसकी बढ़ाई करते हुए इन्हें अवार्ड दिया है। अब थोड़ी सी तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये जो पंडाल है पूरी तरह से AI द्वारा जो भी सारे काम किए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर रखा हुआ है। फिर चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई सारे कामों की बखान हो, वो पोस्टर के जरिए यहाँ लिखी गई है, यहाँ तक कि बहुत ऐसी चीजें भी जो विज्ञान से रिलेटेड है वो यहाँ पे पोस्टर्स रखे गए हैं, जिसमें मिसाइल साफ तौर से बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पर रखा गया है। मेट्रो ट्रेन किस तरीके से धीरे धीरे मुंबई शहर और पूरे देश में फैल रहा है अत्याधुनिक तरीके से, वो चीजें यहाँ रखी गई है। और AI के का समर्थन लेते हुए बुद्धि किस तरह से बच्चों की बहुत ज्यादा काम कर रही है, शक्ति किस तरीके से आ रही है और कितना ज्यादा आसान हो गया है आज की तारीख में लोगों का काम करना, ये सारी चीजें AI का पूरा माहौल चलचित्र जो है वो भटवाड़ी के राजा में यहाँ बनाया गया है। और भी क्या खास चीजें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे भटवाड़ी के राजा की तरफ से पदाधिकारी है। क्या नाम है साहब आपका?
2: मेरा नाम नीलेश मेघुल है, इस साल मैं मंडल का कार्याध्यक्ष हूँ।
1: अच्छा, ये AI का पूरा आपने यहाँ पे चलचित्र बनाया हुआ है, क्या वजह है थोड़ा सा बताएं?
2: हम हर साल समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम लोग इस साल टेक्नोलॉजी के ऊपर गए हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर गए तो AI की थीम लेके हम लोग आगे चल रहे हैं इस साल।
1: अच्छा, और ये कागज के पप्पा आप 4 साल से ला रहे हैं, ये भी आपने सही कहा, क्या कागज के पप्पा का ही विसर्जन होता है, पर्यावरण क्या कुछ कहेंगे?
2: हाँ, ये 4 साल से जब से गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लाया तब से हम लोग ये सोच के चल रहे कि पर्यावरण पूर्वक मूर्ति हो, 4 साल से हम लोग कागज के मूर्ति ला रहे, विसर्जन भी कृत्रिम तालाब में, जो BMC का कृत्रिम तालाब बनता है उसमें ही होता है हमारा।
1: अच्छा, बहुत बड़े किसी झील या जो चौपाटी ऐसा जाना ऐसा नहीं, जो BMC का कृत्रिम तालाब है, मतलब इसे पर्यावरण को कोई
2: इशू नहीं।
1: आप क्या नाम है आपका, यहाँ पर आइए, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है प्रतीक जाधव। हम लोग पिछले, हमारा ये 58th ईयर चालू है, 58 ईयर से हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देने का कोशिश करते हैं। तो गोइंग विद द ट्रेंड्स, इस साल हमने जो AI जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वो करने का एक कोशिश किया है। कोशिश ऐसा है कि बहुत सारे मार्केट में या बहुत सारे सोसाइटी में इस AI के ऊपर बहुत सारे उन लोगों के मतभेद है, ऐसा मतलब AI अच्छा है, AI बुरा है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि AI को हम लोग जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एक लाइव प्रॉम्प्ट्स डाले हैं कि जो

0: बीएमसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, पुलिस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वैसे दो चार पॉइंट्स हमने दिखा है। साथ ही एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए, सोशल मैसेज का ध्यान रखते हुए, हमारा जो गणपति का जो आइडल है वो पूरा पेपर के पल्प से बना हुआ है
1: और
0: ये चौथा साल है और 58 सालों से हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज सोसाइटी को देते आ रहे हैं ताकि गणेशोत्सव से हम लोग लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे सके।
1: साहब थोड़ा सा प्लीज आप यहाँ पर आए, क्या नाम है, क्या परिचय आपका?
2: मैं सचिन सरमलकर, मैं अध्यक्ष हूँ अखिल बटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल।
1: ज्यादा सुंदर पप्पा यहाँ दिख रहे हैं और कागज के बनाए पर्यावरण समर्थन है। स्पेशली मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, बचपना आपने यहाँ निकाला बटवाड़ी में। गणेश उत्सव जब आता है तो क्या चलता है मन में, घर में किस तरीके का माहौल हो जाता है और आपके मन में क्या चलता है, थोड़ा सा प्लीज बताएं।
2: गणेश उत्सव बोले तो ये पूरा त्योहार का पूरा माहौल, हमारा इधर तो पूरा ये स्लम एरिया है, इसके लिए यहाँ हर घर में त्योहार रहता है, हर घर में, यानी ऐसे खुशियां आती कि ये साल में कभी आ रहा है, ऐसा सबका एक ये एक्साइटमेंट रहता है पूरा। और बाकी तो हम लोग यानी ज्यादा करके मोस्टली यही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंडल, अभी हमारा जो मूर्ति आपको प्रतीक जी ने बताया जी।
1: और घर में मेरे को लगता है उकड़ी का मोदक, गेट टुगेदर, खाना खिलाना, क्योंकि हर कोई इसी में खुश हो जाता है।
2: जी सर, जी हाँ, जी हाँ
1: जी। तो देखा आपने कुछ
3: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल इस बार बड़ी रचनात्मकता देखने को मिल रही है और बड़ी खूबसूरती से AI को ढाला गया है इस बार की थीम में। धर्मेंद्र आपके पास लौटेंगे, लेकिन अकोला से हमारे साथ धनंजय भी जुड़े हुए हैं। धनंजय, अकोला की अगर हम बात करें जहां आप मौजूद हैं, पहले तो गणपति बप्पा के दर्शन हमारे दर्शकों को करा दीजिए, क्योंकि आज नौवां दिन है, कल तो विसर्जन का दिन भी है, ऐसे में तैयारियां भी वहां पर खूब हो रही होंगी। धनंजय
4: बिल्कुल गीतिका जी, मैं फिलहाल हूँ अकोला के राधा किशन प्लॉट में रिद्धि सिद्धि बप्पा के इस पंडाल में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बप्पा का जो भव्य पंडाल है, बप्पा की भव्य मूर्ति है वो सजाई है और यहाँ पर जो है खासकर जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो चलचित्र यानी चल दृश्य दिख रहा है, ये जो है ये खाटू श्याम बाबा की जो जीवनी है उस पर ये पूरी तरीके से ये झांकी बनाई गई है। ये झांकी जिन्होंने बनाई वो मंडल के पंडाल के जो पदाधिकारी है पंकज बाचुका जी, वो हमारे साथ है, वो हमें बताएंगे कि ये खाटू श्याम की जीवनी किस तरह से बनाई है। थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए, चलते चलते अपन ये पूरा ये कर लेंगे।
5: खाटू बाबा ये बर्बरी जी के नाम से जाने जाते थे पहले, और ये घटोत्कच जी के पुत्र कहते हैं,
4: ये घटोत्कच
5: के पुत्र है बर्बरिक। तो उनको शिवजी ने एक वरदान दिया था तीन बाण का, कि वो तीन बाण अमोघ है, वो कभी भी कोई लक्ष्य नहीं चूक सकते और उनके पास लौट कर आते हैं। उनकी माता ने उसके बाद में उनसे एक वचन लिया कि वो सिर्फ हारे का ही सहारा बनेंगे। उसके बाद फिर जब ये महाभारत के युद्ध में जा रहे थे तो कृष्ण भगवान को ऐसा लगा कि वो कौरवों की तरफ से अगर युद्ध करेंगे तो पांडव हार जाएंगे, तो कृष्ण भगवान ने उनका परीक्षा ली और
4: कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेकर जो है उनका शीश मांगा। तो शीश मांगने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैं तो शीश दे दूंगा लेकिन आपका परिचय दे। तो कृष्ण भगवान जो है स्वयं उनके सामने जो है वो यहाँ पर अवतरे और इसको लेकर जो है उनकी एक खासियत यह है कि उन्होंने ये मांगा कि मैं जो जिस तरीके से युद्ध शुरू है मैं मेरी आंखों से देख लूं। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है खाटू श्याम बाबा का जो जो चिरक्षेद हुआ था उनका सिर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गणपति बाप्पा के सामने ये पूरी तरीके से खाटू श्याम जी की जो है वो यहाँ पर झांकी यहाँ पर बनाई है। गीतिका जी, ये बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पर बनाई है क्योंकि खाटू श्याम बाबा की महाराष्ट्र में इन दिनों जो है
3: खूबसूरत लग रही है धनंजय जी, और पंडाल बहुत सुंदर है। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी धनंजय जी, कि इस बार अकोला में जो नियम बनाया गया है कि 5 फीट से जो कम की प्रतिमाएं हैं उन्हीं का विसर्जन होगा और जो बड़े बड़े पंडाल हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन नहीं होगा। उन शोभा यात्रा निकलेगी और फिर एक साल के लिए उनको रखा जाएगा और एक साल के बाद ही उनका विसर्जन किया जाएगा, जो बड़ी मूर्तियां हैं। और विसर्जन जो है इस बार फ्राइडे को हो रहा है क्योंकि इस बार जो गणेशोत्सव है वो 12 दिन का है, तो उसके बारे में जरा बताइए।
6: मला विचारला का प्रश्न
3: जी धनंजय जी।
4: जी गीतिका जी, देखिए इसके साथ ही जो है सबसे अहम बात यही है कि इस वक्त जो है पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है और बारिश नहीं होने के चलते जो है बहुत से पंडालों में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वो प्रतिमा विसर्जित करने के लिए भक्तों में और खासकर प्रशासन के पास बड़ा ये जल संकट के चलते

0: पूरा संकट निर्माण हुआ है। तो प्रशासन ने आह्वान भी किया है, वो आह्वान के साथ जो है पंडाल के कार्यकर्ताओं ने जो जिनके पास बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की है, वो अब बहुत से पंडाल के लोग जो है इस पर विचार विनिमय कर रहे हैं और विचार भी कर कुछ पंडालों ने भी जाहिर कर दिया है कि हम जो है इस वक्त पानी के चलते, कम पानी के चलते, नदी या तालाब में पानी कम होने के चलते जो है मूर्ति इस साल बड़ी जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित नहीं करेंगे, ऐसा प्रशासन को उन्होंने कहा है। और साथ ही जो सार्वजनिक पंडाल के अध्यक्ष है एडवोकेट मोती सिंह मोहता, उनसे हमने कल बात की तो उन्होंने सभी पंडालों को पदाधिकारियों से ये बात की है, जिसके बाद जो है उनको अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलते नजर आ रहा है। यानी प्रशासन और सार्वजनिक विसर्जन पंडाल मंडल के जो अध्यक्ष है उन्हें अच्छी खासी यहाँ पर ये मिल रही है, ताकि आने वाला
1: जी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र के पास यहाँ पे सीधे चलते हैं। धर्मेंद्र, पिछले कई दिनों से आप हमें अलग अलग पंडालों के जो है दर्शन करवा रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्रिएटिविटी भी देखने को मिल रही है, बप्पा के दर्शन भी करने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे विसर्जन का जो दिन है वो करीब आ गया है, आप खुद एक मुंबई वासी हैं, तो जो मुंबईकर हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बप्पा को विदाई देने का भी समय नजदीक आ गया है।
2: देखिए, बेसब्री से इंतजार होता है इस गणेश उत्सव का, महापर्व कहा जाता है महाराष्ट्र में, स्पेशली देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई की बात अलग ही होती है। खास बात यह है कि लोग सुबह काम पर जाते हैं, शाम को काम से आते हैं, उसके बाद दो महीने पहले से ही बप्पा के लिए चंदा बटोरना, डेकोरेशन करना, इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ बप्पा कैसे दिखे, हमारा मंडल सबसे बेस्ट कैसे दिखे, यहां आने वाले श्रद्धालुओं को हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, उन्हें क्या सिखा सकते हैं, इन सब की खोज जानकारी पर सारे लोग अपना समय भी खर्च करते हैं, साथ ही साथ पूरे मन भाव से जुट जाते हैं। फाइनली अब धीरे धीरे वो दिन करीब आ रहा है कि बप्पा का विसर्जन हो जाएगा। हर साल 10 दिन का विसर्जन होता है, लेकिन इस बार साइत के हिसाब से 12वें दिन का विसर्जन है, इसलिए 2 दिन और मौका मिला है गणेश भक्तों को बप्पा के साथ रहने का। और जैसे जैसे विसर्जन का दिन करीब आ रहा है, थोड़े बहुत मायूसी लोग कह रहे उनके चेहरे पे देखी जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये भी है कि पप्पा जाएंगे नहीं तो अगले साल आएंगे कैसे, और कितनी ज्यादा मेहनत, कितना ज्यादा प्यार लोग पप्पा से करते हैं, उसका जीता जागता जो उदाहरण है यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। AI आज जिस तरीके से काम कर रहा है वो सारा चलचित्र यहाँ पर दिखाकर रखा गया है। लेकिन कुछ देर पहले मंडल के पदाधिकारी कुछ बता रहे थे जिन्हें सुनकर बहुत ही वाकई में अच्छा लगा। आपने बताया कि ये जो AI वगैरह है ये आपके ही मंडल के लोगों ने बनाया है, आपके ही लोगों ने सब करा है, मतलब कोई कारीगर या नहीं आया यहाँ पर?
3: हाँ, बेसिकली ये कैसा है कि हम लोग हर साल जो डेकोरेशन करते हैं, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के जो बहुत लोग है वैसे वो मिलके करते हैं। इस साल भी हमने क्या किया है, इस साल हमने जो डेकोरेशन का जो फ्रेम्स है या डेकोरेशन का जो मटेरियल यूज किया है वो हमने हमारे जो MS फ्रेम जो हमारे पास थे उसको हमने यूटिलाइज किया है। साथ ही ये मंडल का
1: बिल्कुल जो अलग ही यूटिलिटी इसमें दिख रही है और अलग ही क्रिएशन देखने को मिल रही है। AI के साथ जो मंडल है वो जुड़ गया है और देखिए किस तरह से पंडाल निकलकर सामने आया है। AI वाले बप्पा हमें देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे, और हमारा यकीन मानिए कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। तो देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बना करके हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपनी वीडियोज भी भेज रहे हैं, और इसी कड़ी में जो दर्शक हमें वीडियोज भेज रहे हैं उनमें से 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के हरदा से समर्थ टांक ने भेजी है। समर्थ ने बप्पा को रंग बिरंगी झालर और फूलों से सजाया है। लाल और पीले रंग के आसन पर विराजे बप्पा के सिर पर लाल और सफेद रंग की पगड़ी खूब फब रही है। छोटे से बप्पा को मूर्तियों के माला से श्रृंगार भी किया गया है। और वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें जो हमारे दर्शक ने ही हमें भेजी है, तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश के टीमगढ़ से दर्शिता त्रिपाठी ने हमें भेजी है। आप देख सकते हैं कि दर्शिता ने अपने बप्पा का फूलों की माला से विशेष श्रृंगार किया है। गेंदे के पीले फूलों से सजे बप्पा बहुत सुंदर लग रहे हैं। खास बात यह है कि बप्पा के केश पर गुड़हल का फूल लगाया गया है। गुड़वा और फूलों के बीच बप्पा के मनमोहक मूर्त सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
4: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एशियन गेम्स में जीत लो गोल्ड तस्वीरें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के नौवे दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार।
1: यूपी के कानपुर में बुड़वा मंगल उत्सव की धूम, हनुमान मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतार, विधि विधान से किए दर्शन पूजन।
4: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मानित।
1: एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला, सुबह 10:30 से मुकाबला।
4: चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के लिए सीएम ने किया नाश्ता, पहली से आठवीं क्लास बच्चों को मिलेगा इससे लाभ।
1: सेना के अजय और भीष्म होंगे और भी घातक, T-72 और T-90 टैंकों के लिए रक्षा मंत्रालय की बड़ी डील, 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी पावर सिस्टम खरीदने का समझौता।
4: कारगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, कन्याकुमारी से कारगिल की यात्रा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के केवड़िया में आज सिनेमा के सम्मान का भव्य समारोह होने जा रहा है। पहली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी पर नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के लिए केवड़िया में भव्य तैयारियां भी की गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केवड़िया में सितारों का जो पहुंचना है वो शुरू हो गया है और समारोह स्थल पर विशाल मंच भी तैयार कर दिया गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए थे। उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस समारोह में शामिल होने के लिए फिल्म जगत के तमाम दिग्गज लगातार केवड़िया पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग केवड़िया जाने के लिए वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इस समारोह की वजह से वडोदरा एयरपोर्ट पर ही कल से ही गहमा गहमी बड़ी हुई थी। तो देखिए 72वें नेशनल अवार्ड्स का आयोजन यहां पर हो रहा है, जिसके लिए बॉलीवुड जगत के जो तमाम बड़े एक्टर्स हैं, तमाम बड़े दिग्गज हैं, उनका लगातार यहां पर आना हो रहा है। आप देख सकते हैं कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए थे और इसके साथ ही तमाम मेहमान लगातार एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स को लेकर के बहुत लंबे समय से चर्चा थी और इसे लेकर के अब तमाम बड़े चेहरे इसमें शिरकत कर रहे हैं और गहमा गहमी एयरपोर्ट पे देखी जा रही है।
1: तो गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आज सितारों का मेला सजने वाला है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए यहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। समारोह के लिए कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए। जब कार्तिक आर्यन स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ जुट गई है। कार्तिक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की को करीब से देखा और सरदार पटेल को नमन भी किया। इस समारोह में शामिल होने के लिए कार्तिक खासा उत्साहित दिखाई दिए। इस समारोह में कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें केवड़िया से आप देख सकते हैं किस तरह से कार्तिक आर्यन जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां चल रहे हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन किया। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी पर कार्तिक आर्यन मौजूद हैं और 72वां नेशनल अवार्ड केवड़िया में इस बार हो रहा है।
0: तो देखिए सिनेमा के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान का मंच इस बार दिल्ली नहीं बल्कि गुजरात का एकता नगर बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साय में आज 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का भव्य समारोह होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर से चुने गए फिल्म कलाकारों और निर्देशकों को इस दौरान सम्मानित करने वाली हैं।
2: ये तस्वीरें गुजरात के एकता नगर की हैं, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आज सज रहा है भारतीय सिनेमा के सम्मान का सबसे बड़ा मंच। रोशनी से जगमगाता वेन्यू, विशाल पंडाल और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार पूरा परिसर। इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन दिल्ली से बाहर हो रहा है और यही इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता भी है। करीब 1000 मेहमानों के बैठने की क्षमता वाला बड़ा पंडाल तैयार है। वहीं वीआईपी मेहमानों के लिए अलग एयर कंडीशन डोम की व्यवस्था की गई है। मतलब साफ है समारोह सिर्फ सितारों से नहीं बल्कि इंतजामों के स्तर पर भी भव्य रहने वाला है। और जैसे जैसे घड़ी समारोह के शुरू होने की आ रही है, केवड़िया में बॉलीवुड से लेकर रीजनल सिनेमा तक के सितारों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। वडोदरा एयरपोर्ट पर फिल्मी सितारों की हलचल दिखाई दी। अभिनेता रणदीप हुड्डा, धनुष, दिग्गज एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे, जूरी मेंबर अक्षय कुमार परिजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश और कोरियोग्राफर कला मास्टर समारोह में शामिल होने पहुंचे। वहीं फिल्म मेकर जयराज राजशेखरन नायर और स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद समेत कई फिल्मी हस्तियां भी समारोह के लिए गुजरात पहुंची हुई हैं।
3: पहला नेशनल अवार्ड है तो दिल्ली में कैसा होता था मुझे नहीं पता, बट आई एम ग्लैड कि हम यहाँ पे आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द अवार्ड्स।
4: फिल्म्स विल बिकम मोर पॉपुलर एंड फिल्म इंडस्ट्री विल ग्रो अक्रॉस इंडिया, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव दैट फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग हेल्ड इन गुजरात एंड दैट टू इन सच ए वर्ल्ड फेमस प्लेस एकता नगर अंडर द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड यूनिक।
2: और इस वक्त जिस नाम पर खास नजर है वो है एक्टर कार्तिक आर्यन भी। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया जाना है, ऐसे में उनकी एंट्री भी समारोह की बड़ी हाईलाइट रहने वाली है।
5: First time I'm coming to this city. I'm very excited to see the Statue of Unity, and this is my third National Film Award. So I'm very, very happy to see.
6: I'm so happy. First time in Gujarat, National Award ceremony is here. I'm so, so happy, and everybody. The first time I'm coming here, and everybody told, "Ma'am, you go and see that place. That's a beautiful place." So we are very happy to hear. So we want to thanks. Our Prime Minister and NFDC, thank you so much.
7: This is the first time I am coming here. I'm very happy. This is the first time I am coming here. And we are expecting, yeah, we are excited because this is the first time happening away from Delhi. So we are expecting something more.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजेताओं को सम्मानित करेंगी। साल 2024 के लिए चुने गए भारतीय सिनेमा के कलाकारों और टेक्नीशियंस को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। इनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दिग्गज अभिनेता अनंत नाग का नाम भी शामिल है। यानी एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा के दिग्गज, और इनके बीच सजेगा 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच। इस समारोह में सिनेमा, सितारे और सम्मान, तीनों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। केवड़िया तैयार है, सितारे पहुंच चुके हैं, मंच सज चुका है। अब इंतजार है उस पल का जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की धरती पर भारतीय सिनेमा के सितारों को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। एशियन गेम्स के फाइनल में गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। जापान के निशन से कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10:30 वहां मुकाबला खेला जाएगा।
8: एशियन गेम्स में भारत को पहले गोल्ड की दरकार है और अब सभी की निगाहें हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी पर टिकी हैं। जापान के निशिस्म के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में अब से थोड़ी देर में सुबह 10:30 ये भारतीय टीम फाइनल मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी। टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से रौंदकर फाइनल में पहुंची है। वहीं श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। भारत ने 2023 में श्रीलंका को हराकर हांगझू एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। उम्मीद यही है कि भारत की बेटियां इस बार भी इतिहास दोहराएंगी और भारत को मौजूदा एशियन गेम्स का पहला गोल्ड दिलाएंगी। आंकड़ों की बात करें तो भारत का पलड़ा काफी मजबूत है। दोनों के बीच अब तक 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 26 और श्रीलंका ने 5 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 7 T20 मैच जीते हैं, लेकिन क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में गलती की गुंजाइश कतई नहीं, लिहाजा भारतीय टीम हर हाल में मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हालांकि इस महामुकाबले पर बारिश का साया बना हुआ है, अगर बारिश की वजह से खलल पड़ा तो नियमों के मुताबिक अपर रैंकिंग वाली टीम को गोल्ड दिया जाता है। इस लिहाज से भी भारतीय टीम गोल्ड की हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यह आयोजन भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया। इस महोत्सव की थीम थी हमारी विरासत हमारा भविष्य। महोत्सव के पहले दिन देश के प्रथम गांव माणा में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। अब जो भी पर्यटक बद्रीनाथ धाम और माणा गांव पहुंचेगा उसे दूर से ही ये तिरंगा दिखाई देगा। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। गढ़वाली लोकगीत, लोक नृत्य, पांडव नृत्य, छोलिया नाच और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने महोत्सव में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा महोत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। यहाँ हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊनी वस्त्र, जैविक उत्पाद, पारंपरिक आभूषण, स्थानीय मसाले, जड़ी बूटी उत्पाद, लकड़ी से बनी सामग्री और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया गया।
9: हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को नई पीढ़ी को सिखाने के लिए, उन तक हस्तांतरित करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का कल्चर है, उससे सभी लोग परिचित हों। वो एक समृद्ध कल्चर हमारा शुरू से रहा है, प्राचीन समय से, पहले समय से। और साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ के स्कूलों के, हमारे कॉलेजों के, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के बच्चे हैं, उन सभी को एक मंच मिलता है। यहाँ पर सेना के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रदर्शनी से हमारे सब नौजवान युवाओं को आधुनिक अत्याधुनिक जो उपकरण हैं, हथियार हैं, वो देखने को मिलते हैं, आकर्षण का केंद्र होता है। और वो देशभक्ति के लिए प्रेरित होते हैं, देशभक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अनेक स्टॉल लगते हैं जिसमें हमारी माताएँ बहनें अपने द्वारा बनाए हुए उत्पाद, हस्तशिल्प के जो भी उनके सामान है, उन सभी को विपणन के लिए, उसकी पहचान के लिए भी एक अवसर होता है।
0: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन को वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और हमारे पास लगातार दर्शक जो है वो अपने वीडियोस भेजते रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के मंडला से प्रतीक साहू ने भेजी है। यहाँ बप्पा का रंग बिरंगी झालर और फूलों से श्रृंगार किया गया है। भव्य आसन पर विराजे बप्पा के सिर पर सजा मुकुट बेहद प्यारा लग रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ही शाहजहापुर से ऋषभ यादव ने हमें भेजी है। आप देख सकते हैं बप्पा का भव्य श्रृंगार ऋषभ ने किया है। पंडाल के अंदर विराजमान बप्पा को भोग भी लगाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि बप्पा की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल भी हुए हैं।
1: और इंस्टा स्टोरी में बाप को उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अल्पना बुच की फनी इंस्टा स्टोरी।
10: पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या?
11: एक बार नहीं मानी?
10: हाँ, पति
11: और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। ये हैं ब्रांडेड पत्नियाँ आप, लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो?
10: हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ।
11: सही है, तो पति नहीं बोलते आई लव यू?
10: नहीं बोलते हो,
11: उनको आता ना होगा ना।
0: तो चलिए इसी के साथ शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
13: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: गजानन के पंडालों में भक्ति के बयार। गणेशोत्सव के 9वें दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित। एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस। फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना। क्वार्टर फाइनल में पहुंची वुमेन्स टेबल टेनिस टीम। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने छात्रों को दी सौगात। कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ। छात्रों के लिए सीएम ने किया नाश्ता। 1 से 8वीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। कारगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल। दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। कन्याकुमारी से कारगिल की यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की बात करेंगे जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन के प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसके बारे में नियम और शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत की महिमा ये है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं, उपासना करते हैं, तो जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का पालन करने से, साधना उपासना करने से इस लोक में भौतिक संपन्नता मिलती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी एकादशी के समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है।
इसीलिए इस व्रत को रखने से, पूजा उपासना करने से भगवान गणेश और श्री हरि यानी भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिल सकती है। अलग अलग एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है, जिस स्वरूप में उन्होंने दान में सारी सृष्टि ले ली थी। जिन लोगों को संतान का सुख चाहिए या जिनको जीवन में धन चाहिए, उनके लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी है। और सबसे मूल्यवान बात यही है कि जाने अनजाने अगर गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने अगर पाप हो गए हैं और आप परिवर्तनी एकादशी का पालन करते हैं, हृदय से क्षमा याचना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। परिवर्तनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हों, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब परिवर्तनी एकादशी की महिमा आपने जान ली, इस व्रत की विधि क्या है, तरीका क्या है। प्रातः काल 12 बजे के पहले कोशिश करें नहा करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की और गणपति गजानन की पूजा करें। श्री हरि को भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू और दूर्वा अर्पित करें।
पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और तब भगवान विष्णु के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी भी मंत्र का जप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अगर आप कर सकें तो परिवर्तनी एकादशी पर अन्न का सेवन ना करें, लिक्विड ग्रहण करें या फल ग्रहण करें तो अच्छा होगा। अगर आप बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, मजबूरी है, भोजन करना ही पड़ेगा, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। परिवर्तनी एकादशी के विशेष उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी के दो विशेष प्रयोगों के बारे में। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ ये उपाय करें और पति या पत्नी की उम्र के बराबर लड्डू या मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके बाद कम से कम 3 बार संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करिएगा। पति पत्नी एक साथ मिलकर के या ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। एक एक लड्डू पति पत्नी खा लेंगे और बाकी जो लड्डू का प्रसाद है वो लोगों में बांट देंगे।
अगर ये प्रयोग परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय किया जाए, उसके बाद प्रार्थना की जाए, तो संतान की प्राप्ति आसान होगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, पैसे रुपए की मुश्किल है, आर्थिक समस्या है, तो क्या उपाय करेंगे? परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय भगवान गणेश की पूजा करें, उनको एक मिट्टी का या धातु, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, किसी मेटल का चूहा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश को पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, कम से कम एक माला 108 बार या 3 माला या 11 माला मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा कि आपको धन मिले और आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। और जो चूहा आपने गणपति को अर्पित किया था, इसको अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने पूजा के स्थान पर सामान्यतः घी या तिल के तेल का ही दीपक जलाइएगा। सामान्य स्थितियों में पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक कभी ना जलाएं।
दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर से वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए ही है। जब भी आप हमें अपना वीडियो भेजें या फिर फोटो अगर भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर साथ में मेंशन कर दें। गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है और उसे हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं अपने वीडियोस भेज भी रहे हैं और हम GNT पर उसे दिखा भी रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं, ये हमारे दर्शकों द्वारा भेजी गई ही है। पहली तस्वीर हमें बिहार के छपरा से यशराज सिंह ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें परवेल से महेश पाटिल ने भेजी है। यहाँ बड़ी आकर्षक पंडाल में बप्पा को विराजमान किया गया है, तो वहीं बप्पा को शानदार पोशाक भी पहनाए गए हैं, साथ ही मनमोहक फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। बप्पा का आसन भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। फलों का भोग भी इस दौरान बप्पा को लगाया गया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

ना मुमा, एक बात बोले, माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना, कहना ही है तो बस यही कहना, मेरी माँ का क्या कहना है? अगर कहना ही है बस यही कहना, मेरी माँ का क्या कहना। तो माँ जगदम्बा, मात भवानी का प्रकट कैसे हुआ, जरा चर्चा सुनिए। नाम उमा, देवी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण करते। महिषो नाम राजेन्द्र चकार तप

0: जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म के बढ़ने से जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते, तो कभी कृष्ण बनकर के आते, तो कभी चामुंडा बनकर आते, तो कभी अम्बा बनकर के आते हैं। माँ के अनेक रूप,
1: अष्टे भोजामो बाली करुणा बरसाने वाली,
0: माता अष्टभुजाओं वाली करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी माँ अम्बा, महिषासुर मर्दिनी बनी, पर प्रकट कैसे हुई?
1: थे रंभ करंभ पुत्र धनु के, जो लोकों में बलशाली थे।
0: दो भाई थे रंभ करंभ, धनु के दोनों पुत्र बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है इंद्र को टेंशन हो जाता है। इंद्र को इसलिए टेंशन हो जाता है, कहीं हमारा सिंहासन ना हिल जाए। ऐसा होता ही है, अक्सर छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। बोलो सीताराम। छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। उनके दिमाग इसलिए खराब हो जाते, कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। इसलिए बड़े नेता हमेशा छोटे नेताओं के बार करते रहते हैं कि इनके बड़े कार्यक्रम होने ही ना पाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे यहां पर टेंशन नहीं चल रही, नीचे ऊपर भी टेंशन चल रही, देवताओं में इंद्र को टेंशन, कहीं हमारा सिंहासन ना कोई छुड़ा ले। तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ एक का नाम करम, दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करंभ का पैर पकड़ा, मार डाला। करंभ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई, उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भए, वरदान मांगो। रंभ बोला, महाराज हमारे कोई बचा ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए, जितने वरदान, आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं। अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता है जिनका नाम शंकर जी, शंकर जी ऐसे हैं जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। दोनों देवताओं में अलग है, ब्रह्मा जी वही देते जो कर्म होता है, शंकर जी क्या देते? शंकर जी कहते तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले महादेव, एक बाल्टी और ले। बोलो सीताराम। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चले जा, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे भोले बाबा की कृपा से मिलेगा। क्यों?
1: भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी।
0: भाग्य को मिटाने वाले, भाग्य की रेखाओं को ऊपर भी देने वाले श्री अनंत बलवंत हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप है, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए हैं। पार्वती जी ने पूछा, मुंह क्यों लटकाए? कहा दिमाग खराब है, क्या हो गया, कुटपिट के आए हो? कहा ब्रह्मा जी बोले, कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर दो, किसी और को दो काम। क्या बात, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम करें क्यों, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने पूछा, क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन तुम्हारे पति ही है। पार्वती जी बोले, हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझा, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले, जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले धट से बेटा दे देते। हमारा तो दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर लेते, कौन रखे। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव हैं, भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान, दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रम्भ ने प्रार्थना की, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा बलिदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, संतान नहीं है जो तो ठीक है, लोगाई है। भाई संतान होगी कहाँ जब दो लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेली हो क्या, तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे। रम बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। रम बोला क्यों, बोले जब लुगाई है नहीं संतान मांग रहे। एक आदमी हमें भी ऐसे ही मिला, गुजरात का आदमी, दांता का रहने वाला आदमी, बागेश्वर धाम पे फंस गया 2022 में। हमने कहा और बताओ कब से आ रहे, बोले 3 साल से आ रहा है बागेश्वर धाम। हम कहा हुआ है कुछ, बोले कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है हमारा। हम कहा दिमाग खराब मत करो, तमे केम छो, बोले नोट मचा मजा माचो, आनंद में नहीं है। क्या हुआ, अर्जी पूरी नहीं हो रही। हमने पूछा क्या अर्जी लगाई थी, बोले बेटा होने की अर्जी लगाई थी। हम कि बेटा हुआ, बोले बेटा तो ठीक है, विवाह नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बरे नकटा, जब शादी नहीं हुई तो बेटा की अर्जी क्यों लगाई। लेकिन गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। गुजरात का आदमी, दाता का रहने वाला आदमी, बोला हमने थोक में अर्जी लगा दी थी बेटा हो जाए, और बेटा तभी होगा जब विवाह होगा, तो विवाह की अलग से क्या लगानी है। बताओ ऐसे लोग, खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अंबा जी का ही था, वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि 24 घंटा और गुजारने हैं यहाँ। बोलो श्री राम जय राम। रम ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद, अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रम वापस आया, दृष्टवा चक्र

बाप वापस आया, रंभ रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महसी को देखा। महसी जानते हो, भैंस। भैंस को देखा रंभ ने, महसी को देखा।

इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महसी के ऊपर आसक्त हुआ। महाराज वर्णन आया है महसी के ऊपर आसक्त हुआ, और ऐसा होता है। खैर रंभ की गलती नहीं है, अक्सर लोग बुरा ना मानना, नेता और लुगाई दोनों मन के चुनते हैं। नेता और लुगाई, लुगाई मतलब वाइफ, नेता और वाइफ व्यक्ति हमेशा मन का चुनता है, पर ये चुनने के बाद किसी की नहीं सुनते। ईश्वर की कृपा है कि अभी हमें तो बजरंग बली बचाए हैं, हम तो तुम्हारा ही एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे हैं। खैर कई लोग तो इमरजेंसी केस वाले भी बैठे हैं, बोल नहीं रहे, चूंकि धर्म पत्नी साथ में है तो हंस इसलिए नहीं रहे कि कुछ लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, जो हंस रहे क्यों नहीं हंस रहे, नहीं तो डर लगा रहता। बोलो सीताराम, जय जय जय जय, बोलो सीताराम।

महसी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया और वह महसी गर्भवती हो गई। महसी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महसी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महसों ने आक्रमण कर दिया। ये महसी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महसी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महसी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महसी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी उसी में जाकर बैठी, तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर, दो लोग प्रकट भए, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भए। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ ब्रह्मा जी को टाइम ही कहते, फिर प्रकट हो। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोला, वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे हैं अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले, अब क्या है। पर इसने विचार किया, नारी तो अबला होती है, अबला नारी करेगी क्या। लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आचार्य चरण पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, हमारे दादा गुरु जी कहते थे, ना

0: कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी माँ है, माँ शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। बोलो सीताराम। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहां से। यहां तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया, विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोले, चार कदम चोर से, महाराज जी चार कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, लात मारने वाला घोड़ा, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहां पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ कर नहीं है, इंद्र का राज पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुर्सी। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया। हे इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर हम तो खबरदार हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मरे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया। हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा देवता भागने में बड़े माहिर है, जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते ही मिलते, देवता भागने में बड़े माहिर है। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर है। एक जन बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
6: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
5: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
5: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
11: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
12: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
12: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
14: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
16: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
5: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
5: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
5: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
21: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
22: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
21: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और उसे हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार जो दर्शक है वो अपने वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, ये हमारे दर्शकों द्वारा ही हमें भेजी गई हैं। पहली तस्वीर हमें यूपी के नोएडा से विवेकशील ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। वहीं बात अगर यहाँ पर दिख रही दूसरी तस्वीर की करें तो ये विदेश से हमें भेजी गई है, जो कि दुबई से ऋषभ नागपाल ने हमें भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ ऋषभ बप्पा को अपने घर लेकर आए। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है, और इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि देश हो या फिर विदेश, बप्पा के भक्तों का उत्साह एक ही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के 9वें दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित। एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना, टॉस जीतकर भारत की पहली बैटिंग। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इससे फायदा। करगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, कन्याकुमारी से करगिल की यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: केवड़िया में आज सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है समारोह। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना लगातार जारी, रणदीप हुड्डा, धनुष, पद्मिनी कोल्हापुरी समेत कई हस्तियां पहुंचेंगी गुजरात। जूरी सदस्य अक्षय कुमार परिजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश भी पहुंचे, कोरियोग्राफर मास्टर कला समारोह में लेंगे हिस्सा, फिल्म मेकर जयराज राजशेखरन नायर, स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद भी आए नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी विजेताओं का सम्मान, साल 2024 के लिए चुने गए कलाकारों और टेक्नीशियंस को मिलेगा सम्मान। एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। नेशनल अवार्ड से पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन, आदिवासी पारंपरिक नृत्य देखकर हुए भावुक। आदिवासी नृत्य ने खींचा कार्तिक आर्यन का ध्यान, नानी देवरूपण के होली और राठवा डांस के लिए आनंद, नर्मदा और छोटा उदयपुर की लोक संस्कृति की दिखी झलक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्तिक आर्यन ने किया सरदार पटेल को नमन, देश की एकता के प्रतीक को देखकर जताया डर। कार्तिक आर्यन ने व्यूइंग गैलरी से नर्मदा और सरदार सरोवर डैम का लिया दीदार, सतपुड़ा और विद्यांचल पर्वतमाला भी देखी। चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड को कार्तिक आर्यन ने बताया गर्व की बात, बोले पहली बार मुझे नेशनल अवार्ड, मेरे लिए सम्मान की बात। गणेश उत्सव के 9वें दिन भी लालबागचा राजा के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालु की कतार। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम, भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सवरिया सेठ के और दिव्य दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सावरिया सेठ का स्वरूप एक ही मूर्ति में किया गया है, दोनों के स्वरूप का अद्भुत समन्वय, भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी सुंदर झांकी। चंद्रपुर के श्री अष्टविनायक गणेश मंडल की ओर से साकार की गई ये भव्य झांकी बप्पा के साथ ही की गई से स्थापित। मान्यता है कि पूरी होती है यहाँ मांगी गई हर एक मनोकामना, भक्त लाल कपड़े में नारियल बांधकर उस पर मोर पंख लगा के दरबार में लगाते हैं अर्जी। मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है ये पंडाल। जंगल की थीम पे तैयार किया गया बप्पा का पंडाल, मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवर की प्रतिमाएं भी सजाई गई। पिछले 26 सालों से घाटकोपर के राजा पशुपतिनाथ थीम पर ही किए जाते हैं स्थापित, हर साल बप्पा का होता है बिल्कुल नया श्रृंगार। पंडाल में बप्पा को शिवलिंग पर विराजमान दिखाया गया, गजानन की प्रतिमा करीब 52 फीट ऊंची है। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शनों को भक्त पहुंच रहे हैं और पंडाल की सुंदरता को निहार रहे हैं। अकोला में पानी की कमी के चलते 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का नहीं किया जाएगा विसर्जन। प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से किया मूर्ति विसर्जन टालने का आह्वान, केवल छोटी मूर्तियों का ही होगा विसर्जन। कई गणेश मंडलों ने प्रशासन अपील को किया स्वीकार, बड़ी प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखने का लिया फैसला। घरेलू गणपति और छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड किए जा रहे हैं तैयार। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले बड़ी प्रतिमाओं के साथ निकाली जा रही है शोभा यात्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पेरुंथलावर कामराजर नाश्ता योजना के विस्तार का किया उद्घाटन, चेन्नई के गांधी ग्रामम में सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ कार्यक्रम। आयोजन में बच्चों के साथ नाश्ता करते नजर आए मुख्यमंत्री विजय, पंक्ति में बच्चों के साथ भोजन करते हुए किया उनके साथ सीधा संवाद। इस योजना के तहत अब कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त दिया जाएगा नाश्ता, इससे पहले केवल कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए उपलब्ध थी यह योजना। केरल के कासरगोड में पुलिस विभाग ने विस्फोटक का पता लगाने के बाद अपने 2 K9 डॉग्स को दी भावुक विदाई, बॉडी और कामी ने जिले की सुरक्षा में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। विदाई समारोह के दौरान दोनों डॉग्स को सम्मान में उड़ाई गई शॉल माला पहनाकर दी गई उन्हें शाबाशी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्टार्टअप आइडिया चैलेंज 2.0 के तहत एक दिवसीय बूट कैंप का हुआ आयोजन, युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मकसद। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 के तहत आयोजित किया गया यह कार्यक्रम बूट कैंप में विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों के 150 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और उभरते उद्यमियों ने लिया हिस्सा। करगिल की ओर बड़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। नेशनल वॉर मेमोरियल से कन्याकुमारी टू करगिल साइकिल अभियान का यह अंतिम चरण, राष्ट्रीय एकता के साथ युवाओं में फिटनेस के प्रति जोश जगाना है इसका उद्देश्य। रोहतक के किलोई गांव में जश्न, एशियाई खेलों में 60 किलो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी का इजहार। मध्य प्रदेश में वर्दी पहनकर रील बनाने पर पूरी तरीके से लगा प्रतिबंध, पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पे सरकारी या संवेदनशील जानकारी साझा करने और जान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर भी लगी रोक, पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी रोजगार कुंभ जारी, आज 3567 अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, सरकार का दावा, अब तक करीब 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है। जल्दी भारतीय एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल यात्री डीजी यात्रा का कर सकेंगे इस्तेमाल, अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं इसका ट्रायल। अंबाला में वामन द्वादशी मेले में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, ऐतिहासिक मेले में भगवान वामन के दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की संत से मुलाकात, पिजावर मठ के संत श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी से मिले अमित शाह ने लिया संत का आशीर्वाद। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक शाह ने किया आईसीयू और आधुनिक सीएसएसडी का उद्घाटन, एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में नई सुविधाओं की शुरुआत, क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी इससे मजबूती। अगरतला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिली नई मजबूती, इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को मिलेगा इससे बढ़ावा, मरीजों के इलाज और संक्रमण नियंत्रण में मिलेगी मदद। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा, फरवरी मार्च तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद। जोधपुर में आज भारत जापान वायुसेना के वीर गाजन युद्धाभ्यास का होगा समापन, 9 सितंबर से जोधपुर में चल रही थी दोनों देशों की एयर कॉम्बैट ड्रिल। 14 दिनों तक आसमान में दिखी भारत जापान की साझा ताकत, तेजस सुखोई 30 और राफेल ने भारत की ताकत दिखाई, जापान के F-2A फाइटर भी पहली बार भारतीय जमीन से ऑपरेट हुए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार।

इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों

0: को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को पूरी दुनिया को दिखाएंगे और हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस देखते रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें हैदराबाद से ठाकुर नरेश सिंह ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े अनोखे तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी हमें हमारे एक दर्शक ने ही भेजी है, गुजरात के वापी से कमल गाजर ने हमें ये वीडियो भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा की आराधना की जा रही है और खास बात यह है कि यहाँ बप्पा शिवजी के रूप में विराजमान है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु विधि विधान से बप्पा की आरती में जुटे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेश उत्सव के नौवे दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मानित। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी मेले की रौनक, दो दिन में करीब 9,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए एसी डोम। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इससे लाभ। करगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, कन्याकुमारी से करगिल की यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक अपने चरम पर है और सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग लालबाग के दरबार में देखने को मिल रहा है। लालबाग चौराजा मुंबई के सबसे चर्चित गणपति दरबारों में से एक है। आम भक्त हो या फिर बॉलीवुड के सितारे, हर कोई बप्पा के दरबार में यहाँ पर माथा टेकने जरूर पहुंचता है। लालबाग चौराजा के दरबार में इस बार भी बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख से लेकर रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और कई दूसरे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा भी लालबाग चौराजा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। दरअसल लालबाग के राजा से बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। लालबाग चौराजा के दरबार में हर कोई अपनी अपनी मनोकामना लेकर जरूर पहुंचता है और देखिए मान्यता है कि बप्पा के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है और यही कारण है कि चाहे आम लोग ले लीजिए या फिर सेलिब्रिटीज, यहाँ पर बप्पा के दरबार में माथा टेकना कभी नहीं भूलते हैं। वैसे तो लालबाग चौराजा के दरबार में हर आम और खास दर्शन के लिए पहुंचता है। सितारों का मजमा इस ऐतिहासिक पंडाल में जुटता है, लेकिन बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का लालबाग चौराजा से रिश्ता कुछ अलग ही है। तभी तो शाहरुख खान हर साल बप्पा के दर्शन के लिए लालबाग चौराजा के लिए जरूर पहुंचते हैं, वहां पर माथा टेकते हैं और बप्पा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इस साल शाहरुख अपनी पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के साथ लालबाग चौराजा के दरबार में पहुंचे।

0: बापा के दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर आदमी सिर झुकाए हाथ जोड़े दर्शन के लिए कतार में खड़ा है। फिर चाहे वो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ही क्यों ना हो। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने परिवार के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक लाल तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पूजा की। वो लालबागचा राजा की प्रतिमा के सामने बड़ी ही श्रद्धा और लीनता के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते दिखे। इसके बाद उन्होंने बापा के चरणों में अपना माथा टेका और बापा का आशीर्वाद लिया। शाहरुख ने मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा भी अर्पित की। शाहरुख के साथ उनकी पत्नी गौरी खान पीले रंग के सूट में और बेटी सुहाना खान हरे रंग के एथनिक आउटफिट में नजर आईं। दोनों ने बापा के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते हुए और उनके सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। मन्नत के राजा शाहरुख खान की बापा में गहरी आस्था है। वो हर साल मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। ये कोई पहली बार नहीं है। आस्था का यह टूट सिलसिला पिछले कई सालों से यूं ही चलता आ रहा है। साल 2023 में जब शाहरुख खान की फिल्म जवान ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी, तब वो अपने छोटे बेटे अबराम के साथ लालबागचा राजा का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। उस वक्त शाहरुख बेटे अबराम का हाथ थामे जब पंडाल में दाखिल हुए थे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया था। तब सफेद कैजुअल शर्ट में शाहरुख खान की सादगी भरा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा था। लालबागचा राजा के सामने खड़े होकर शाहरुख खान ने पूरी आस्था के साथ आंखें बंद कर प्रार्थना की थी। उन्होंने बापा के चरणों में नारियल और मिठाइयां अर्पित कर भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नन्हे अबराम को भी बापा का आशीर्वाद दिलवाया था। इसके बाद आया साल 2024, जब गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर शाहरुख ने अपनी इसी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर अपने बेटे अबराम के साथ विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए। पुजारी से तिलक लगवाया, बापा का पवित्र प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि 2025 में शाहरुख लालबाग के राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे। अब 2026 में उन्होंने एक बार फिर लालबागचा राजा के दर्शन कर अपनी इस फिल्म की कामयाबी की कामना भी की होगी, जो अगले साल रिलीज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बप्पा के दर्शन के साथ गणेश चतुर्थी मनाई और अपने सेलिब्रेशन की झलक भी शेयर की। सोनू सूद ने भी अपने परिवार के साथ गणपति आराधना की तस्वीरें शेयर की हैं। नाना पाटेकर और तुषार कपूर ने भी पूरे पारंपरिक अंदाज में गजानन की आराधना की। राजपाल यादव ने भी अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा बॉलीवुड यानी कि सलमान खान से लेकर गोविंदा, राजपाल यादव, अर्जुन बिजलानी और तुषार कपूर, सभी सितारों के घर गणपति उत्सव की रौनक इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है।

0: गणपति उत्सव के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई बाप्पा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। और जब बात बॉलीवुड के भाईजान की हो तो बाप्पा की भक्ति के साथ साथ फैंस का क्रेज भी देखने को मिलता है। सलमान खान भी गणपति बाप्पा की भक्ति में लीन नजर आए। वो मुंबई में अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। सलमान खान के आने की खबर मिलते ही फैंस की भीड़ जुट गई। हर कोई अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। सलमान ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। बाप्पा की भक्ति में गोविंदा का घर भी रंगा नजर आया। यहाँ बेहद खूबसूरत दरबार सजाया गया है। फूलों से सजे इस दरबार में बाप्पा की भव्य झलक ने हर किसी का ध्यान खींचा। गोविंदा ने अपने परिवार के साथ पूरे भक्ति भाव से गणपति पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया।
1: गणपति बाप्पा के शुभ अवसर पे प्रार्थना करता हूँ, शुभता प्रदान करे, रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, किसी प्रकार का क्लेश कष्ट बाधा ना आए। ये हमारे घर में प्रथा मम्मी की के आशीर्वाद से ये शुरू हुई थी। वर्षानुवर्ष में करता आया, अब यश कर रहे हैं और यश के लिए बहुत शुभेच्छा शुभता प्रदान करें, ऐसी पापा से प्रार्थना है। टीना के लिए बहुत ही अच्छा वर मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
0: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजपाल यादव के घर भी बाप्पा विराज चुके हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजा ये दरबार भक्ति में माहौल को और खास बना रहा है। राजपाल यादव ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बाप्पा की आरती की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बाप्पा के पधारने पर अर्जुन बिजलानी के घर भी भक्ति और उत्साह की सुंदर महफिल सजी। गणपति उत्सव के खास मौके पर टीवी जगत के कई सितारे उनके घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी बाप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। आरती के दौरान तो पूरा माहौल भक्तिमय

0: आरती के बाद भक्ति के इस खूबसूरत पल को सभी ने कैमरे में भी कैद किया। बापा की प्रतिमा के आगे सितारों ने जमकर फोटो शूट करवाया और इस खास मौके की यादें सजोई।
1: हर शुभ काम के पहले जो है गणेश पूजा की जाती है, उसका एक कारण है। तो हम तो हर साल, अब मुझे 23 साल हो गए खुद लाते हुए गणपति, और हर बार जब मैं कोई भी काम करता हूँ, इनफैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं मंगलवार के दिन ही करता हूँ, और हर सुबह मैं गणेश आरती जो है वो तो सुनता ही हूँ।
0: वहीं अभिनेता तुषार कपूर ने भी हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर बापा का स्वागत किया, विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की और सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
2: हर साल की तरह बापा आ गए, वही खास बात है, और थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। बस मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ, आप लोग आ गए हैं, हर साल की तरह शहर का माहौल बदल गया है, बारिश भी हो रही है, जो एक गर्मी का मौसम, गर्मी का महीना था, अगस्त का महीना, एक बूंद बारिश नहीं गिरी आज और कल में, गणपति पापा के आने से बारिश शुरू हो गई है, दैट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, जहाँ होनी चाहिए आई होप वहाँ भी हो रही हो, एंड यस यही खास बात है।
0: गणपति बापा के स्वागत का ये सिलसिला कहीं भव्य दरबार के साथ दिखा तो कहीं आरती और भक्ति के रंग में नजर आया। हर किसी ने बापा के चरणों में शीश झुकाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसी आस्था के साथ हर तरफ गूंजता रहा एक ही जयकारा, गणपति बापा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: लालबाग चौराहे राजा के दरबार में वैसे तो सेलिब्रिटीज का मजमा हमेशा ही जुटता है, लेकिन बॉलीवुड सितारों की आस्था कुछ अलग ही है। हर साल पूरा बॉलीवुड बप्पा के दर्शन के लिए लालबाग चौराहे राजा के दरबार में पहुंचता है, उनके दर्शन करता है और बप्पा का आशीर्वाद लेता है। इस साल भी तमाम सितारे बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए इस भव्य पंडाल में पहुंच रहे हैं।
4: शाहरुख से पहले एक्टर रणवीर सिंह भी लाल बाग चौराहे के दर्शन करने और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। रणवीर पारंपरिक सफेद कुर्ता और पजामा में नंगे पैर पंडाल में पहुंचे और अंदर जाते समय काफी खुश दिखे। इस दौरान उन्होंने पंडाल में मौजूद फैंस से भी हाथ मिलाया।

0: फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी से लेकर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेगनेंसी तक रणवीर सिंह के लिए ये साल बेहद खास गुजरा है। स्वाभाविक है कि इसके लिए रणवीर ने गणपति के सामने आभार जताया। पंडाल के अंदर भी एक्टर रणवीर सिंह प्रार्थना में ध्यान लगाते हुए फैंस का अभिवादन करते दिखे। आशीर्वाद लेने के बाद रणवीर अपनी कार की ओर बढ़े। जाते समय भी एक्टर ने अपने फैंस को बाय कहा और उनमें से कई लोगों से हाथ मिलाया। पापा के प्रति अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की आस्था भी किसी से छिपी नहीं है। वो हर साल अपने घर में पापा की स्थापना करती हैं। लेकिन इसके बाद वो हर साल लाल बागचा राजा का आशीर्वाद जरूर लेती हैं। शिल्पा इस बार भी छोटी बहन शमिता शेट्टी और परिवार के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने बापा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो गणपति जी के वाहन मूषक महाराज से बात करने के लिए भी थोड़ा समय मांगती दिख रही हैं। वीडियो में शिल्पा शेट्टी कहते हुए सुनाई दे रही है कि वो मूषक जी के कान में कुछ कहना चाहती हैं। हालांकि दर्शन के लिए भारी भीड़ होने के कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली। हालांकि लाल बागचा राजा के दर्शन के दौरान अभिनेत्री और उनकी बहन के पारंपरिक लुक ने ज्यादा चर्चा बटोरी, खासकर शिल्पा शेट्टी के झुमकों ने जो 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं।
1: तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनवाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है, उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल यहां पर तमिल समुदाय की मान्यता है कि यहां पर गणेश विवाह परंपरा दशकों पुरानी है और बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में नाइया गूंजने का रास्ता खोला है।

0: कुछ ऐसे वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक एक एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जीएनटी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं, और हमें यकीन है कि आपके घर भी गणपति पप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। आपको बता दें कि ये जो नंबर है ये कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर से वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए है। और जब भी आप अपना वीडियो हमें भेज रहे हैं या फिर फोटो हमें भेज रहे, तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर साथ में मेंशन कर दें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे, और हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे दो तस्वीरें देख सकते हैं, ये दोनों ही तस्वीरें हमारे दर्शकों द्वारा हमें भेजी गई हैं। तो पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के सिवनी से तेजस बघेल ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े अनोखे तरीके से बप्पा का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। पीछे विशेष तौर पर लाइटिंग भी दिख रही है। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल से दुर्गा सोनी ने हमें भेजी है। यहाँ बड़ी ही उत्साह के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ बप्पा के साथ साथ देवी माँ की भी आराधना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: क्योंकि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेश उत्सव के नौवे दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई में बप्पा की भक्ति में रंगे शाहरुख खान, सिंगर बी प्राक के साथ की गणपति के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित।
4: गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी मेले की रौनक, दो दिन में करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए एसी डोम। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहली से आठवीं क्लास की बच्चों को मिलेगा लाभ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: सच गई खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, स्वागत है आपका लंच टाइम में।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। स्थिति की खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर आज के बुलेटिन में दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में अच्छी से अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: गणेश उत्सव के नवे दिन भी लालबागचा राजा के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतार। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम, गणपति के साथ खाटू श्याम जी का चेहरा और सांवरिया सेठ के स्वरूप वाली प्रतिमा स्थापित। मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है ये पंडाल। केवड़िया में आज सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है समारोह। नेशनल अवार्ड से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन, आदिवासी पारंपरिक नृत्य देखकर हुए भावुक।
2: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पेरेंटलेवर कामराजर नाश्ता योजना के विस्तार का किया उद्घाटन, पंक्ति में बच्चों के साथ नाश्ता करते हुए नजर आए सीएम विजय। केरल के कासरगोड में पुलिस विभाग ने अपने 2 K9 डॉग्स को दी भावुक विदाई, बॉडी और कामी को सम्मान में उड़ाई गई शॉल, माला पहनाकर दी गई शाबाशी। बांदीपुरा में स्टार्टअप आइडिया चैलेंज 2.0 के तहत बूट कैंप आयोजित, विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों के 150 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और उभरते उद्यमियों ने लिया इसमें हिस्सा। मध्य प्रदेश में अब वर्दी पहन के रील बनाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा, पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। जल्दी भारतीय एयरपोर्ट्स पे इंटरनेशनल यात्री डिजी यात्रा का कर सकेंगे इस्तेमाल, अक्टूबर से शुरू हो सकता है इसका ट्रायल।
1: कारगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, कन्याकुमारी टू कारगिल साइकिल अभियान का यह अंतिम चरण। रोहतक के किलोई गांव में जश्न, एशियाई खेलों में 60 किलो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी का इजहार। एशियन गेम से भारत के लिए शानदार खबर, ऋषभ दास, धनुष, सुरेश, बेनेडिक्टन, रोहित और आकाश मणि ने 4x100 मीटर मेडली रिले के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से दी करारी शिकस्त। पुरुष हॉकी में आज श्रीलंका से टकराएगी भारतीय टीम, भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला।
2: रिलीज से पहले ही अल्लू अर्जुन की फिल्म राका ने रच दिया इतिहास, रिलीज से पहले रियल टाइम में सबसे अधिक लोगों के मोशन कैप्चर का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल, नागालैंड की फिल्म अंक को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री। करण जौहर ने एक नई फिल्म की घोषणा की, रॉ के संस्थापक आर्यन काव की जिंदगी और उनके काम पे होगी आधारित। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की नई फिल्म कॉमन आदमी का टीजर हुआ आउट, फिल्म में सीए देवेंद्र जैन की कहानी दिखाई जाएगी। ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज दुपहिया सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, सीजन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था।
1: Yeah. लंदन O2 एरिना लेवर कप के लिए तैयार, काले रंग के खास टेनिस कोर्ट से सजा एरिना। 25 से 27 सितंबर तक यूरोप और वर्ल्ड टीम में भिड़ंत। चीन ने हवा में उठाया 2 टन का भारी बोझ, पहली बार 2 टन क्षमता वाले टेथर्ड बलून का ट्रायल शुरू। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बिजली परियोजना में होगा इसका इस्तेमाल। टेलर स्विफ्ट को मिलेगा MTV का नया सम्मान, म्यूजिक वीडियो और विजुअल स्टोरी टेलिंग में योगदान के लिए सम्मान। न्यूयॉर्क हार्बर में उड़ती इलेक्ट्रॉनिक बोट बनी आकर्षण का केंद्र, वेसिफ की VS9 ने पानी से ऊपर उठकर भरी रफ्तार, हाइड्रोफाइल टेक्नोलॉजी से ड्रैग हुआ कम। लंदन में प्रिंस हैरी ने बच्चों से की खास मुलाकात, वेल चाइल्ड अवार्ड्स के विजेताओं और उनके परिवारों से मिले।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है,
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा इसका भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित।
1: एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल की आस, फाइनल में श्रीलंका से होगा सामना, टॉस जीतकर भारत की पहली बैटिंग।
2: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के 9वें दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु की कतार।
1: गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी मेले की रौनक, 2 दिन में करीब 9 लाख भक्तों ने दर्शन किए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए AC डोर।
2: करगिल की ओर बड़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई से हरी झंडी, कन्याकुमारी से करगिल की यात्रा।

0: तो लंच टाइम में सबसे पहले बात भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान की। अब से चंद घंटों बाद गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह किया जा रहा है। अब से पहले तक यह आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है, लेकिन इस बार ये सेरेमनी गुजरात के केवड़िया में यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होने जा रही है। इस समारोह के लिए केवड़िया में भव्य तैयारियां की गई। केवड़िया में सितारों का पहुंचना शुरू हो चुका है और समारोह स्थल पर विशाल मंच भी तैयार है। समारोह में शामिल होने के लिए कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए थे। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने जा रहा है। अब से चंद घंटों बाद राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत होगी। कार्तिक ही नहीं, फिल्म जगत के तमाम दिग्गजों का भी केवड़िया पहुंचना शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोग केवड़िया जाने के लिए वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इस समारोह की वजह से वडोदरा एयरपोर्ट पर भी गहमा गहमी बढ़ी हुई है।
1: की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तैयारियां पूर्णता की ओर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ के भारत की अलग अलग भाषा की जो फिल्में हैं इनके बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पे जो 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ते कई कलाकार को यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे केवड़िया में आज यहाँ पे गुलामी गौतम है, कार्तिक आर्यन है और भी कलाकार है जिनको अवार्ड मिलने वाले हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पंडाल बनाया गया है जहाँ पे 1000 जितने लोग बैठेंगे और ये जो जगह है जहीं से वहां से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कलाकार है उनको अवार्ड देंगे। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास रखा गया है। इससे पहले इस तरह के जो कार्यक्रम है ये दिल्ली में होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है और जो कलाकार है वो यहाँ पे आ चुके हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे होगा और इसकी तैयारियां अब पूर्णता की ओर है। नरेंद्र पेपरवाला।
0: तो गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास अवार्ड समारोह जो है यहाँ पर स्थल बनाया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए एक अलग एयर कंडीशन डोम यहाँ पर तैयार किया गया है। मेहमानों को किसी किस्म की समस्या ना हो इसके लिए डोम को पूरी तरीके से एयर कंडीशन भी बनाया गया है। जी हाँ, डोम में 1000 से ज्यादा मेहमानों के बैठने की क्षमता है। वेन्यू स्थल और प्रवेश द्वार को फूलों, दीयों और खास बैनरों से भी सजाया गया है। बिल्कुल, समारोह स्थल को अवार्ड जीतने वाली फिल्मों के पोस्टर से भी सजाया गया है और आज शाम को नर्मदा घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा। तो मेहमानों को गुजराती व्यंजन भी परोसे जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम बॉलीवुड और तमाम अभिनेता हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं 72वें नेशनल अवार्ड समारोह के लिए। रणदीप हुड्डा यहाँ पे नजर आ रहे हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ। इससे पहले कार्तिक आर्यन भी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर तमाम पर्यटन स्थलों का जायजा भी लिया था और कुछ ही देर बाद ये जो समारोह है इसका आयोजन होगा जिसमें तमाम बड़ी शख्सियत शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो गुजरात की केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आज सितारों का मेला सजने वाला है 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए। यहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। समारोह के लिए कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए थे। अब कार्तिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कार्तिक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को करीब से देखा और सरदार पटेल को नमन भी किया। इस समारोह में शामिल होने के लिए कार्तिक खासा उत्साहित दिखे। इस समारोह में कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट का अवार्ड भी दिया जाएगा। तो देखिए, कार्तिक आर्यन जो हैं वो केवड़िया पहुंच चुके हैं, वो कल ही केवड़िया पहुंच चुके थे और आज भी लगातार कलाकारों का, फिल्म जगत की तमाम हस्तियों का पहुंचना जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए कार्तिक आर्यन की, किस तरह से वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और अपने सभी फैंस का अभिनंदन स्वीकार किया। ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से आप देखिए कार्तिक आर्यन की।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े होकर। मुझे बहुत आई थिंक आई एम रियली रियली प्राउड कि जिस तरीके से ये सिंबल ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो ये इतनी बड़ी स्टैचू बनाई गई है. आई थिंक एवरीबडी शुड विटनेस दिस व्हाट वी हैव विटनेस्ड. एंड या आई एम ग्लैड कि यहाँ पर हमारा ये 72वां राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित हो रहा है और मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला है चंदू चैंपियन के लिए. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड मैं बहुत खुश हूँ. मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, क्योंकि जिस जर्नी में हम स्टार्ट किए थे चंदू चैंपियन को लेकर और एंड पूरी पैरालंपियंस के लिए जिस तरीके से ये फिल्म प्रोत्साहित करती है बहुत लोगों को, आई थिंक मैं बस थैंक कर सकता हूँ जूरी को और पूरे तमाम ऑडियंस को, इंडिया को, फॉर चूजिंग अस. एंड I think just a heartfelt thank you to all of you.
0: तो देखिए, सिनेमा के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान का मंच इस बार दिल्ली नहीं बल्कि गुजरात का एकता नगर बना है. स्टैचू ऑफ यूनिटी के साय में आज 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड का भव्य समारोह होने जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर से चुने गए फिल्म कलाकारों और निर्देशकों को इस दौरान सम्मानित करेंगे.
3: ये तस्वीरें गुजरात के एकता नगर की हैं, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आज सज रहा है भारतीय सिनेमा के सम्मान का सबसे बड़ा मंच. रोशनी से जगमगाता वेन्यू, विशाल पंडाल और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार पूरा परिसर. इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन दिल्ली से बाहर हो रहा है और यही इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता भी है. करीब 1000 मेहमानों के बैठने की क्षमता वाला बड़ा पंडाल तैयार है. वहीं वीआईपी मेहमानों के लिए अलग एयर कंडीशन डोम की व्यवस्था की गई है. मतलब साफ है, समारोह सिर्फ सितारों से नहीं बल्कि इंतजामों के स्तर पर भी भव्य रहने वाला है. और जैसे जैसे घड़ी समारोह की शुरू होने की आ रही है, केवड़िया में बॉलीवुड से लेकर रीजनल सिनेमा तक के सितारों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है. बड़ोदरा एयरपोर्ट पर फिल्मी सितारों की हलचल दिखाई दी. अभिनेता रणदीप हुड्डा, धनुष, दिग्गज एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे, जूरी मेंबर अक्षय कुमार परिजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश और कोरियोग्राफर कला मास्टर समारोह में शामिल होने पहुंचे. वहीं फिल्म मेकर जयराज राजशेखरन नायर और स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद समेत कई फिल्मी हस्तियां भी समारोह के लिए गुजरात पहुंची हुई हैं.
4: पहला नेशनल अवार्ड है तो दिल्ली में कैसा होता था मुझे नहीं पता, बट आई एम ग्लैड कि हम यहाँ पे आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द अवार्ड.
5: फिल्म्स विल बिकम मोर पॉपुलर एंड फिल्म इंडस्ट्री विल ग्रो अक्रॉस इंडिया. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव दैट फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग हेल्ड इन गुजरात एंड दैट टू इन सच ए world famous place Ekta Nagar under the statue of Sardar Vallabhbhai Patel and unique.
3: और इस वक्त जिस नाम पर खास नजर है वो है एक्टर कार्तिक आर्यन भी. कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया जाना है. ऐसे में उनकी एंट्री भी समारोह की बड़ी हाईलाइट रहने वाली है.
2: मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला है चंदू चैंपियन के लिए. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड मैं बहुत खुश हूँ. मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, क्योंकि जिस जर्नी में हम स्टार्ट किए थे चंदू चैंपियन को लेकर और एंड पूरी पैरालंपियंस के लिए जिस तरीके से ये फिल्म प्रोत्साहित करती है बहुत लोगों को, मैं बस थैंक कर सकता हूँ जूरी को और पूरे तमाम ऑडियंस को, इंडिया को.
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजेताओं को सम्मानित करेंगी. साल 2024 के लिए चुने गए भारतीय सिनेमा के कलाकारों और टेक्नीशियंस को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा. इनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दिग्गज अभिनेता अनंत नाग का नाम भी शामिल है.
6: I'm so happy. First time in Gujarat, national award ceremony is here. I'm so so happy, and everybody. The first time I'm coming here, and everybody told, "Ma'am, you go and see that place. That's a beautiful place." So we are very happy to hear. So we want to thanks our Prime Minister and NFDC. Thank you so much.
7: This is the first time I'm coming here. I'm very happy. This is the first time I'm coming here, and we are expecting. Yeah, we are excited because this is the first time happening away from Delhi. So we are all expecting something more.
3: एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार स्टैचू ऑफ यूनिटी दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा के दिग्गज और इनके बीच सजेगा 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच। इस समारोह में सिनेमा, सितारे और सम्मान तीनों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। केवड़िया तैयार है, सितारे पहुंच चुके हैं, मंच सज चुका है। अब इंतजार है उस पल का जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की धरती पर भारतीय सिनेमा के सितारों को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान। अहमदाबाद से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो अब से चंद घंटों के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन केवड़िया में होगा, जहां खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को अवार्ड देंगे। विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई को की जा चुकी है। ये अवार्ड 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए जाएंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को उनकी फिल्म ब्रह्मा युगम को संयुक्त रूप से दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम को उनकी फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिला है।
8: बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए श्रीकांत को चुना गया है। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म आर्टिकल 370 को मिला है।
0: तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड पीपलान 3 अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म को मिला है। राम नामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिलेगा।
8: अमरन फिल्म के लिए राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा, जबकि रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो निर्देशक सूरज कुमार को उनकी फिल्म पीपलान 3 द टेल ऑफ इको फेमिनिज्म के लिए 72वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म है।
9: मुझे यह बहुत खुशी है कि हमारी इस फिल्म को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। यह फिल्म बेटियों के सम्मान और प्रकृति की देखभाल का संदेश देती है। इस सम्मान के लिए मैं अपनी प्रोड्यूसर डॉक्टर गरिमा सिंह और जॉनसन सूरज फिल्म्स इंटरनेशनल की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत की राष्ट्रपति जी के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है।
0: और दिग्गज एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अनंत नाग कन्नड़ सिनेमा के केवल दूसरे अभिनेता हैं। इससे पहले कन्नड़ एक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। अनंत नाग को उनके अभिनय के लिए 5 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले हैं। अनंत नाग ने अपने 50 साल के लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
8: इनमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा की फिल्में शामिल हैं। अनंत नाग ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ फिल्म संकल्प से की थी।
0: तो श्याम बेनेगल की प्रसिद्ध फिल्म अंकुर से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में पत्रकार आनंद इंगलांगी की भूमिका निभाई थी।
8: दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। सिनेमा के साथ साथ अनंत नाग राजनीति में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे।
0: वे बेंगलुरु के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
8: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात गणपति उत्सव की कर लेते हैं।

0: नगरी मुंबई, जहां लालबाग चौराहे के दरबार से लेकर अंधेरी चौराहा तक हर दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है तो कहीं बप्पा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। फूलों से सजे भव्य पंडाल, बप्पा के मनमोहक प्रतिमाएं और दर्शन के लिए लगे श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। मुंबई में हर तरफ गणपति बप्पा की भक्ति का रंग नजर आ रहा है। और ये जो आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी उसी आस्था और भक्ति को बयां कर रही हैं। मुंबई में गणेश उत्सव सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और उत्साह का ऐसा संगम है, जहां हर रास्ता बप्पा के दरबार तक पहुंचता हुआ नजर आता है। और मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिलता है। हर पंडाल में आपको लेके चलेंगे और बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूपों के दर्शन भी हम कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेके चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में, जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है।
1: मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। पूरे प्रदेश में उल्लास छाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर दिन बप्पा के चरणों में नतमस्तक होने भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बप्पा के इस दरबार की बड़ी मान्यता है। यहाँ हर आम और खास बप्पा से आशीर्वाद लेने पहुंचता है। शाहरुख खान भी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के मशहूर लालबाग चौराहे के दरबार में पहुंचे और उन्होंने भी गणपति बप्पा के दर्शन किए। देखिए किस तरह से हाथ जोड़कर शाहरुख खान बप्पा के दरबार में खड़े हैं। पूरा परिवार उनके साथ है। गौरी खान उनके साथ गई थी, उनकी बेटी भी उनके साथ गई थी। तो पूरे परिवार के साथ शाहरुख खान ने, बॉलीवुड के खान ने लालबाग चौराहे के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आरती में वो शामिल हुए। और ये तस्वीरें मुंबई के लालबाग चौराहे की।
0: तो चलिए धनंजय साहब भी हमारे साथ अकोला से जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। यहाँ पे धनंजय, सुबह से ही आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं मुझे बताएं, क्या गणेश पंडाल में जो भगवान गणपति की प्रतिमा है उसके दर्शन आप हमारे दर्शकों को करवा पाएंगे?
2: जी बिल्कुल, मैं फिलहाल अकोला के जो है विप्र युवा वाहिनी जो गणपति पंडाल की ये भव्य जो मूर्ति है वो प्रतिमाएं है, इसके दर्शन अपने जीएनटी के गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों के लिए है, क्योंकि ये भव्य पंडाल जो है एक अपने आप में अलग हुआ है। क्योंकि अकोला में जिस तरीके से दिनों दिन धूप बढ़ती जा रही है, जंगल कम हो रहे हैं, गांव कम होकर शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, बस उसी के तर्ज पर जो है ये बप्पा का ये भव्य पंडाल जो है एक जंगल के रूप में यहाँ पर जो है साकारा गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो पंडाल है, ये पंडाल जो है एक जंगल की ओर, जंगल कैसा होता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल जहां पर है ना, वहां पर इतना ठंडा माहौल है क्योंकि हम पूरे पेड़ों के बीच में है और बाहर गए तो हम पसीना तर हो रहे हैं। देखिए जंगलों में जिस तरीके से यहाँ पर बंदर है, खरगोश है, जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर हर तरीके का झरना है, मानो हर तरीके के जो प्राणी है वो यहाँ पर बताए गए हैं। वो इसीलिए कि फिलहाल जो है जंगलों की कमी है और जंगलों की कमी होने के कारण जो है बढ़ती धूप और पर्यावरण, और जिस तरीके से इस साल जो है बारिश कम हुई है, तो बारिश कम होने के चलते जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। हमारे साथ पदाधिकारी है इस पंडाल के, गोपाल शर्मा, क्या कहेंगे इस पंडाल को बनाने के पीछे, ये झांकी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है?
3: सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको गणपति बप्पा मोरिया, इतना ही कहूंगा कि जैसे आपको आपने बताया इस वर्ष बारिश कम हुई है और हम चाहते हैं, हमने ये जो नकली थीम रखी है, जैसे हम इसको नकली बोला जाएगा, लेकिन जब लोग यहाँ पे आते हैं, भक्त यहाँ पे आते हैं, बप्पा के दर्शन करते हैं और इस पूरी गुफा का आनंद लेते हैं, इस पूरी गुफा का आनंद लेते हैं और बहुत सारा जब अंदर आकर जब वो देखते हैं कि ये इतना हरा भरा चीज है, उनका आनंद होता है। वो बोलते हैं हमें बाहर जाकर के, भैया आपने बहुत सुंदर बनाया, तो हमसे हाथ जोड़ के बस एक ही निवेदन करते हैं कि जैसा आपको ये नकली भी सुंदर लग रहा है, तो सोचो अगर हमारा अकोला ऐसा ही, अगर ओरिजिनल में अगर हम सभी मिलकर अगर पेड़ लगाएंगे और झाड़ लगाएंगे, हर जगह हरियाली होगी, क्योंकि आपको पता है हम वर्ल्ड में अकोला में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितना आप अपने घर को, अपने घर के आसपास को, पूरे वातावरण को हरा कर सकते हैं, बस इसीलिए यहाँ पर आने वालों को हम एक ही संदेश दे रहे हैं कि सोचिए आपको नकली में इतना आनंद आ रहा है, हमने जो छोटी
2: असली में कितना है,
3: असली में कितना आएगा,
2: असली में कितना आएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरीके की ये बप्पा की मूर्ति है और कहां उत्साह कितना बड़ा है?
4: एक्चुअली हमारा ये 10वां वर्ष है और हम हर साल अकोला वासियों के लिए

0: इस वर्ष अकोला में वर्षा की जो मात्रा थी वो बहुत ही कम थी। अभी तक भी वर्षा जिस प्रमाण से हमको चाहिए उस प्रमाण से हुई नहीं है, इसलिए
1: तो जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है हर भक्त का यही कहना है कि जो बढ़ती धूप के कारण पर्यावरण में जिस तरीके से बढ़ता तापमान को देखकर जो है हम जो है जंगल तोड़कर जो है गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं, शहर में जो है कंक्रीटीकरण हो रहा है, मानो इससे जो है पेड़ कट रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है हम आज बढ़ती धूप और पर्यावरण को जो है
2: जी धनंजय जी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बप्पा का ये पंडाल बेहद खूबसूरत बनाया गया है। गणपति बप्पा मोरया, आपको भी और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गणेशोत्सव अब समापन की ओर है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडालों में विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई ऐसे गणपति पंडाल हैं जो अपनी अनोखी थीम और अनोखी गणेश प्रतिमाओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चाहे वो मुंबई के परेल इलाके में बप्पा की पंचमुखी प्रतिमा हो या फिर अमरावती में विघ्नहर्ता की नवग्रह मूर्ति हो, लोग इन अनोखी प्रतिमाओं को खासा पसंद कर रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक खूबसूरत भव्य और अनोखी प्रतिमाएं जो देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह लें। मुंबई से लेकर अमरावती तक ऐसी ही अनोखी गणेश प्रतिमाओं की भरमार है जो गणेशोत्सव के दौरान इन दिनों गणपति पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। ये तस्वीर मुंबई के परेल इलाके के विद्यार्थी सेवा मंडल के गणपति पंडाल की है जहां बप्पा भक्तों को पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के परेल इलाके में विद्यार्थी सेवा मंडल में और यहां के गणेश जी के दरबार में आप देखिए किस तरीके से उनकी एक विशाल प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बेहद ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और जब इनका आगमन हुआ था तो एक बड़ी संख्या में आसपास के जितने भी लोग हैं सेवादार हैं और जो भी गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा मानते हैं उन्हें प्यार करते हैं वो लोग मौजूद हो गए थे। एक भव्य सीरत भव्य सूरत बहुत ही ज्यादा विशाल का इस समय गणपति बप्पा यहाँ पर देखे जा रहे हैं।
0: विद्यार्थी सेवा मंडल 68 सालों से ऐसी ही अनोखी गणेश प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अपनी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए इस साल भी मंडल ने बप्पा की 33 फीट ऊंची विशाल मूर्ति तैयार कराई और इसे पंचमुखी हनुमान के रूप में पेश किया जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि बप्पा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजाना आ रहे हैं।
2: जो कि एक कथा है प्रभु श्री राम का रामायण में पंचमुखी हनुमान रूप एक कभी लिया था एम भक्तों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए इस साल हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट यानी पंचमुखी हनुमान का करने की एक कोशिश की थी जो हम लोग की सफल हो गई है।
0: गौरीपुत्र गणेश की ऐसी ही दो अनोखी प्रतिमाएं अमरावती के दो गणपति पंडालों में देखने को मिली है। बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव मंडल ने जहां अंजीर और मखाने से 7 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा तैयार की है तो वहीं विलासनगर के गणेश उत्सव मंडल ने तो सुपारी और पूजा सामग्री से ही नवग्रह की अनोखी प्रतिमा बनाई है। दरअसल लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मकसद से ही दोनों मंडलों ने यह अनोखा प्रयोग किया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
3: इस साल हमने नवग्रह जैसे गणपति जो लाल सुपारी है पूजा सामग्री में लाल सुपारी को गणपति का दर्जा दिया गया है और गणेश जी माना जाता है पूजा में तो वही सुपारी लाल सुपारी को मिलकर और नवग्रह की पूरी पूजा सामग्री को मिलकर हमने यह मूर्ति स्थापित की है।
4: कितनी सुपारी लगी क्या लगाई?
3: इस मूर्ति में 21 किलो सुपारी लगी हुई है।
5: फिलहाल है बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में जहां पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। पिछले वक्त इन्होंने खारक से बनी बप्पा की प्रतिमा बनाई थी लेकिन इस वक्त जो है अंजीर जो अमूमन जो है ड्राई फ्रूट में गिना जाता है वो उस ड्राई फ्रूट से ये बप्पा की सुंदर 7 फीट की मूर्ति जो बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे हैं और साथ ही जो बप्पा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है।
6: मंडल की परंपरा है कि एक निसर्ग के साथ चल के इको फ्रेंडली या पर्यावरण पूरक वाला संदेश दे के इस मूर्ति को सजाया जाए ताकि पीओपी का जो अतिरिक्त चल रहा है उससे परे कुछ चीजें करे और एक इको फ्रेंडली वाला मैसेज सब लोगों को दे गणपति उत्सव के माध्यम से।
0: गणेशोत्सव के जरिए पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था को प्रकृति से जोड़ता है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण बनाने का संदेश भी देता है। यही वजह है कि अब ज्यादातर गणपति पंडाल इको फ्रेंडली मूर्तियां बनवाना पसंद कर रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
7: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि आपके घर भी गणपति पप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर है 7303409922। आपको बता दें कि ये जो नंबर है ये कॉल करने के लिए नहीं है, सिर्फ वीडियोस या फिर तस्वीरें भेजने के लिए है। और साथ ही जब भी आप अपना वीडियो बना करके या फिर फोटो हमें भेज रहे हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर मेंशन कर दें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर बनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा से मीनाक्षी जायसवाल ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़े ही अनोखे तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पंढरपुर से राजश्री सिद्धांत ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ बप्पा के साथ साथ उनके माता पिता यानी शिव पार्वती की भी आराधना हो रही है। बेहद सुंदर रंगोली बनाई गई है। बप्पा की प्रतिमा के पास जो श्रृंगार किया गया है वो भी बेहद मनमोहक है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणपति बप्पा की 25 तस्वीरें।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: सास बहु और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के नवे दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार।
5: मुंबई में बप्पा की भक्ति में रंगे शाहरुख खान, सिंगर बी प्राक के साथ किए गणपति के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की।
4: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मानित।
5: गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवे मेले की रौनक, दो दिन में करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए एसी डोम।
4: चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इससे लाभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गणेश उत्सव का आज नौवा दिन है। देश भर के गणपति पंडालों में भक्तिभाव से गजानन की पूजा अर्चना चल रही है। वहीं मुंबई में लालबाग चौराहे के पंडाल में भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इस बीच लालबाग चौराहे की भव्य आरती भी की गई, परंपरा के अनुसार उनका श्रृंगार भी किया गया। 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान हर दिन लालबाग चौराहे के पंडाल में आने वाले लोगों की श्रद्धा देखते ही बनती है।
1: लालबाग चौराहे के दरबार में हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। इसी कड़ी में एक्टर शाहरुख खान के साथ पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान ने भी लालबाग चौराहे के पंडाल में दर्शन किए, जहां उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया और लालबाग चौराहे की आरती में भी शामिल हुए।
0: मुंबई के लालबाग चौराहे के दर्शन के बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान गणपति दर्शन के लिए टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे, जहां शाहरुख खान ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ नजर आए।
1: मुंबई के अंधेरी में गणेशोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। इस बार अंधेरी के राजा को अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर पंडाल इसका बनाया गया है। साथ ही पंडाल को भव्य तरीके से सजाया भी गया है, जिसे देखने के लिए सुबह से बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और बप्पा के दर्शन भी कर रहे हैं।
0: अब आपको मुंबई के गिरगांव के महाराजा के दरबार में लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के श्रीनाथ देव दर्शन दे रहे हैं। यहां गणपति बप्पा की करीब 33 फीट ऊंची प्रतिमा है और इस समय वो गिरगांव की शान बने हुए हैं। आपको बता दें कि गिरगांव चौपाटी पर ही लालबाग के राजा की तरह तमाम बड़ी और ऊंची प्रतिमाएं विसर्जित की जाती है। इस बार ये मंडल अपना 52वां साल मना रहा है। इस बार बच्चे के आकर्षित करने के लिए पानी पर पुल वाली थीम रखी गई है। बच्चे यहाँ पर आकर खूब एंजॉय भी कर रहे हैं।
1: मुंबई के घाटकोपर के राजा का पंडाल इस साल अपनी अनोखी और सांस्कृतिक थीम के कारण विशेष रूप से चर्चा में है। इस साल पंडाल को नेपाल के ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर हूबहू तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुंबई के गणेशोत्सव में नेपाल के धार्मिक स्थल की ये झलक भारत और नेपाल के सांस्कृतिक व धार्मिक जुड़ाव को भी बेहद खूबसूरती से दर्शाती है।
0: मुंबई में भटवाड़ी के राजा के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। पंडाल में तकनीक और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। AI थीम के जरिए गणपति उत्सव को आधुनिक तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई है, जो श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: महाराष्ट्र के चंद्रपुर का एक बेहद अद्भुत और अनोखा उत्सव है। यहाँ भगवान गणेश को माँ दुर्गा के रूप में साक्षात महिषासुर मर्दिनी के अवतार में दिखाया गया है। ये दिव्य झांकी और दर्शन भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं और समाज से बुराई को मिटाने का एक सशक्त संदेश भी दे रहे हैं। बप्पा की प्रतिमा को पारंपरिक रूप से सजाने के बजाय माँ दुर्गा के रूप में तैयार किया गया है, जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए राक्षसों का संहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेश उत्सव के दौरान बप्पा के अनोखे स्वरूप श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। चंद्रपुर के बालाजी वार्ड में इस बार गणेश मंडल ने सुग्रीव की गुफा की ऐसी भव्य झांकी तैयार की है, जो आस्था के साथ साथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस गुफा में भगवान राम के स्वरूप में गणेश जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है और बप्पा के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को अपने चरण धोकर ही गुफा में प्रवेश करना पड़ता है।
1: तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फिर से गणपति उत्सव के दौरान भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहां बप्पा के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि एक ही मूर्ति में खाटू श्याम जी के चेहरे और सावरिया सेठ के स्वरूप का अद्भुत समन्वय किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं।
0: महाराष्ट्र के जालना में गणेशोत्सव के दौरान जुना जालना क्षेत्र के प्रसिद्ध चमनचा राजा गणपति मंडल में इस साल राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का एक बेहद भव्य और आकर्षक जीवंत दृश्य तैयार किया गया है। इस अनूठे पंडाल और झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ के भिलाई में करीब 70 साल पुराने प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु शैली के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। हर वर्ष गणेश उत्सव के दौरान आयोजित होने वाले इस पावन प्रसंग में विघ्नहर्ता का विवाह दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार पूरे विधि विधान से किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए 31 किलो अंजीर और मखाने से 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है।
1: अमरावती में गणपति उत्सव के दौरान बप्पा के दरबार से इस बार आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। यहाँ एक पीरा गणेश उत्सव मंडल ने छोटी और पर्यावरण पूरक गणेश प्रतिमा स्थापित की है, लेकिन इस पंडाल की खासियत है इसका संदेश। जहाँ मराठी शाला बचाओ अभियान के जरिए मातृभाषा और मराठी माध्यम की शिक्षा को बचाने की अपील की जा रही है।
0: सूरत में समंदर के बीच टापू पर भगवान गजानन विराजमान हुए। नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं। मंदिर तक जाने का बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता भी। लगभग 30 साल पहले यहाँ पे समुद्र के बीच पेड़ के पास लकड़ी की मूर्ति मिली थी। विसर्जन के बाद भी मूर्ति के बार बार वही प्रकट होने की मान्यता है। स्थानीय मछुआरे समुद्र में जाने से पहले यहाँ पर पूजा करते हैं।
1: तेलंगाना के पलवंचा शहर में गणेश चतुर्थी के दौरान दो अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बप्पा को सजाया गया, तो वहीं दूसरे पंडाल में भी 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने ताजे नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की।
0: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और विधि विधान से आरती में वो शामिल भी हुए। गणपति बप्पा की आरती कर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर गणपति मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया।
1: कोटा की रेलवे कॉलोनी में गणपति का अनोखा स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बालाजी नवयुवक मंडल ने 9 फीट लंबे विशाल मूषक पर 7 फीट ऊंचे गणपति की स्थापना की है। मंडल पिछले 10 वर्षों से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मना रहा है।
0: अब आपको राजकोट के एक ऐसे गणेश पंडाल में लिए चलते हैं जहां भक्ति और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस पंडाल में दो रोबोट एक्टिव हैं, एक बप्पा की आरती करता है, दूसरा घंटी बजाता है। ये रोबोटिक आरती यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेशन पर काम करता है और खास बात यह है कि इसे राजकोट में ही असेंबल किया गया है। स्पीडवेल चौक का राजा पंडाल को इस साल व्हाइट हेवन थीम पर सजाया गया है।
1: अब आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या में गणेशोत्सव की खास तस्वीरें। अयोध्या नगरी में बने गणपति पंडाल यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में इस वर्ष गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां 150 से अधिक पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहां के कुर्मी टोला, बड़ा रमना और अवधपुरी वार्ड समेत पूरे शहर में आकर्षक पंडाल, रंग बिरंगी लाइट्स और स्वागत द्वार सजाए गए हैं। यहाँ के पंडालों में गणपति बप्पा मोरिया के साथ साथ जय श्री राम की भी गूंज है।
0: पुणे में बप्पा को भव्य विदाई दी गई। अमूमन पुणे में लोग 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन के लिए बप्पा को घर लाते हैं। 7वें दिन का विसर्जन भी बेहद खास होता है, क्योंकि सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता अब अपने धाम वापस लौट रहे होते हैं। बप्पा की विदाई में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए, जहां लोग डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए।
1: और चलिए आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा की विदाई की तस्वीरें। महाराष्ट्र के बीड के लिंबाड़ गणेश में मयूरेश्वर गणपति को शाही अंदाज में विदाई दी गई। बीड तहसील के लिम्बा गणेश गांव में 225 वर्षों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ निभाई गई। यहां सरकारवाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति की विदाई शाही ठाट बाट के साथ संपन्न हुई। इस भव्य जुलूस में आसपास के 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लेकर समा बांध दिया।
0: गणपति को भावभीनी विदाई बिहार के मधेपुरा जिले में भी दी गई। मधेपुरा के मुरलीगंज में 5 दिन पूजा अर्चना के बाद भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और नदी में विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा को विदाई दी गई।
1: गुजरात के गोधरा में भी 6 दिनों की पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विघ्नहर्ता श्री गणेश को विदाई दी। गोधरा शहर में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 1000 से अधिक प्रतिमाओं को रामसागर तालाब और कनेलाव में भावपूर्ण विदाई दी गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और लोगों ने बारिश में बप्पा का आशीर्वाद पाकर डीजे की धुन पर नाचते गाते बप्पा की यात्रा का आनंद लिया। इस भव्य शोभा यात्रा में 80 से अधिक गणेश मंडल डीजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग शामिल हुए।
0: और देखिए अंत में अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बप्पा की विदाई की तस्वीरें। यहाँ पर सिद्धिविनायक गणेश मंदिर प्रबंधन समिति ने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पारंपरिक गणेश विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गणपत राय स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। ये जुलूस कई इलाकों से होते हुए हब्बा कदर के सोमायार शिव मंदिर की ओर गई और फिर हरार से होते हुए श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर लौटा और अंत में श्री गणेश घाट पर गणपति को विदाई दी गई।
1: तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी JNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अरुण कपाले, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्ति भाव से बप्पा की आराधना कर रहे हैं। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से अंशुल गुप्ता ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या उनका आसन, श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से इसे सजाया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेश उत्सव के दौरान भक्तों को बप्पा की अलग अलग और अनोखे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ के बालाजी वार्ड में श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की अनोखी झांकी तैयार की है। इस गुफा में भगवान राम के रूप में गणेश जी की 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है, और खास बात यह है कि गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को अपने पैर धोकर ही अंदर जाना पड़ता है।
7: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये अनोखा गणेश पंडाल भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की थीम पर भव्य झांकी तैयार की है, लिहाजा बाहर से ये गणेश पंडाल सुग्रीव गुफा के जैसा दिखाई देता है, लेकिन गुफा के भीतर प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलग अद्भुत एहसास होता है। आयोजकों का मानना है कि रिद्धि सिद्धि के दाता के दर्शन से पहले तन और मन दोनों का शुद्ध होना जरूरी है, लिहाजा सुग्रीव गुफा पंडाल में भक्तों को पैर धोने के बाद ही प्रवेश मिलता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों को भगवान श्री राम के रूप में गजानन के दर्शन होते हैं। करीब 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, चार भुजाएं और हाथ में धनुष, गणेश जी का ये राम रूपी स्वरूप भक्तों को खूब भा रहा है, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्त यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं।
8: और इस साल हमारा 55वां साल है, और ये प्रथा जो है पूरा 55 सालों से लेके आते हैं, और इस साल हमारा जो रूप है वो सुग्रीव का जो गुफा है उसमें हमने राम का जो वनवास के टाइम का जो सुग्रीव के साथ मिलन हुआ था वो टाइम का हमने यहाँ पे मतलब दिखा है पूरा। और उसके बाद में हमारे जो वार्ड का जो पूरा इतने सालों से जो प्रथा है आज सब हम मिलके एक भाईचारे के साथ में सब कर रहे हैं।
7: श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल पिछले 55 सालों से अलग अलग धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गणेश पंडाल की स्थापना करता आ रहा है। इस बार सुग्रीव गुफा थीम पर बेस्ड इस पंडाल को तैयार करने में करीब 3 महीने का समय लगा। श्री राम के जीवन काल से जुड़ी ये भव्य झांकी गणेश भक्तों को लुभा रही है, और बड़ी संख्या में भक्त श्री राम रूपी गणेश जी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तेलंगाना में भी गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ नोटों से बप्पा के 2 पंडाल तैयार किए गए हैं। इन पंडालों को 3 करोड़ की करेंसी से सजाया गया है। वहीं वारंगल में भक्तों को बप्पा के अनोखे रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ बप्पा न्यायमूर्ति के रूप में विराजमान है। आप भी कीजिए बप्पा के अद्भुत और अनूठे रूपों के दर्शन।

0: रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के दाता के इस रूप को जो भी निहारता है बस देखता ही रह जाता है। बप्पा का सुंदर दरबार नोटों से सजाया गया है। ये तस्वीरें तेलंगाना के पालवंचा की हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त बप्पा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। बेशक करेंसी से सजा ये पंडाल बेहद खूबसूरत है। खास बात यह है कि यहाँ एक नहीं दो दो ऐसे पंडाल हैं जिन्हें करेंसी की थीम पर सजाया गया है। लेकिन इन पंडालों को सजाने के लिए कितनी रकम जुटाई गई है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बप्पा के सुंदर पंडाल सजाने के लिए भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया है। बापूजी नगर में स्थापित किए गए पंडाल की सजावट पर करीब 1,40,00,000 रुपए के नोट लगाए गए हैं, जबकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंडाल ने गणेश प्रतिमा को करीब 1.5 करोड़ रुपए के करेंसी नोटों से सजाया है। दोनों पंडालों की रकम को जोड़ लें तो बप्पा के पंडाल को सजाने के लिए कुल 2,90,00,000 के करेंसी नोट प्रयोग किए गए, जिनमें 10 और 20 रुपए के नोट से लेकर 50, 200 और 500 रुपए तक के नोट मौजूद हैं। इनमें बप्पा की प्रतिमा को पहनाए गए नोटों के हार के साथ ही छत और पंडाल की दीवारों को भी नोटों की लड़ियों और झालरों से सजाया गया है। ये तेलंगाना के ही वारंगल की तस्वीरें हैं, जहां मंगल मूर्ति को न्यायाधीश के रूप में दिखाया गया है। वेदा गणपति यूथ एसोसिएशन ने इस गणपति पंडाल को सुप्रीम कोर्ट की थीम पर सजाया है। पंडाल के अंदर का नजारा किसी कोर्ट रूम जैसा दिखाई देता है, जहां भक्तों को जज के रूप में बप्पा के दर्शन होते हैं। यहां वकील भी मौजूद हैं और बाकायदा कटघरा भी बनाया गया है और न्यायमूर्ति के रूप में बप्पा कोर्ट की कार्रवाई का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है ये गणेश पंडाल उचित न्याय का महत्व और संदेश दे रहा है, क्योंकि भगवान गणेश सभी के लिए न्याय और निर्णय के सर्वोच्च प्रतीक हैं। इसी सोच के साथ इस बार पंडाल की इस खास थीम को चुना गया है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन को पहुँच रहे हैं और धर्म आस्था और न्याय का अद्भुत संगम देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यह आयोजन भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया। इस महोत्सव की थीम थी हमारी विरासत हमारा भविष्य। महोत्सव के पहले दिन देश के प्रथम गांव माड़ा में सबसे ऊंचा तिरंगा सबसे पहले फहराया गया। अब जो भी पर्यटक बद्रीनाथ धाम और माड़ा गांव पहुंचेगा, उसे दूर से ही तिरंगा जरूर दिखाई देगा। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। गढ़वाली लोक नृत्य, पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने महोत्सव में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा महोत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। यहाँ पर हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊनी वस्त्र, जैविक उत्पाद, पारंपरिक आभूषण, स्थानीय मसाले, जड़ी बूटी उत्पाद, लकड़ी से बनी सामग्री और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया गया। चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
2: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के नौवे दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई में बप्पा की भक्ति में रंगे शाहरुख खान, सिंगर बीपरा के साथ किए गणपति के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी मेले की रौनक, दो दिन में करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए एसी डोम। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इससे लाभ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: गणेश उत्सव के नवे दिन भी लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम, भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के भी हो रहे हैं दिव्य दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सावरिया सेठ का स्वरूप एक ही मूर्ति में किया गया है, दोनों के स्वरूपों का अद्भुत समन्वय, भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी सुंदर झांकी। चंद्रपुर के श्री अष्टविनायक गणेश मंडल की ओर से साकार की गई है भव्य झांकी, बप्पा के साथ ही की गई है स्थापित। मान्यता है कि पूरी होती है यहां मांगी गई मनोकामना, भक्त लाल कपड़े में नारियल बांधकर उस पर मोर पंख लगाकर दरबार में लगाते हैं अर्जी। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान दिख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल, भटवाड़ी का राजा के दरबार में एआई थीम पर तैयार किया गया है भव्य पंडाल। आशा के साथ तकनीकी मदद से गणपति के दरबार की सुंदर सजावट, एआई से मिल रही है सफलता और देश विकास में एआई के योगदान पर प्रकाश डालती थीम पर फोकस। एलईडी के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है एआई की कहानी, भक्तों के बीच भटवाड़ी का राजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पूरी तरह कागज के बनाए गए हैं इको फ्रेंडली भटवाड़ी का राजा के गणपति, इस बार पास के ही बीएमसी कृत्रिम तालाब में किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। इस साल अपना 98वां साल मना रहा है ये मंडल, बप्पा के दर्शन और देश के विकास की कहानी देखने दूर दूर से आ रहे हैं यहां भक्त। अनोखे गणपति पंडालों की लिस्ट में अमरावती का एक वीरा गणेश पंडाल भी है शामिल, भक्ति के साथ पढ़ाई के महत्व पर है फोकस। पंडाल में पारंपरिक मराठी स्कूल का दृश्य किया गया है तैयार, बच्चों की कक्षा में पढ़ते हुए बनाई गई है भव्य झांकियां। इस वर्ष पर्यावरण के अनुकूल छोटी गणेश प्रतिमा की गई है स्थापित, प्रकृति के संरक्षण का सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश। कोटा की रेलवे कॉलोनी में अनोखा गणेश उत्सव, 9 फीट के मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति। करीब 10 वर्षों से बालाजी नवयुवक मंडल की ओर से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर मनाया जा रहा है गणेश उत्सव, गणपति दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अकोला में पानी की कमी के चलते 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का नहीं किया जाएगा विसर्जन। प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से किया मूर्ति विसर्जन टालने का आह्वान, केवल छोटी मूर्तियों का ही होगा विसर्जन। कई गणेश मंडल ने प्रशासन अपील को किया स्वीकार, बड़ी प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखने का फैसला लिया। घरेलू गणपति और छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड किए जा रहे हैं तैयार। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले बड़ी प्रतिमाओं के साथ निकाली जा रही है शोभा यात्रा। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में लगे भादरवी मेले में आ रहे भक्तों के लिए पहली बार लगाया गया एसी डोम, 600 से 700 लोग एक साथ कर सकते हैं यहां आराम। मेले के पहले दो दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। 26 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में करीब 40 लाख से ज्यादा भक्तों के अंबाजी पहुंचने की उम्मीद। संगम नगरी प्रयागराज में पितृपक्ष की तैयारियां तेज, हिंदू धर्म में यह समय अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। इस अवसर पर पिंडदान करने गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। 26 सितंबर से हो रही है पितृपक्ष की शुरुआत, 10 अक्टूबर को समापन। इस बार प्रयागराज में ऑनलाइन पिंडदान की भी व्यवस्था, जो लोग देश विदेश या किसी कारणवश अपने पुरखों का पिंडदान करने नहीं आ सकते उनके लिए सुविधा उपलब्ध। केवड़िया में आज सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड का मंच, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है समारोह। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी, रणदीप हुड्डा, धनुष, पद्मिनी कोल्हापुरे समेत कई हस्तियां पहुंची गुजरात। जूरी सदस्य अक्षय कुमार परीजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश भी पहुंचे, कोरियोग्राफर मास्टर कला समारोह में लेंगे हिस्सा, फिल्म मेकर जयराज राजशेखरन नायर, स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद भी आए नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी विजेताओं का सम्मान, 2024 के लिए चुने गए कलाकारों और टेक्नीशियंस को मिलेगा इससे सम्मान। एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेशनल अवार्ड से पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन, आदिवासी पारंपरिक नृत्य देखकर हुए भावुक। आदिवासी नृत्य ने खींचा कार्तिक आर्यन का ध्यान, नानी देवरूपण के होली और राठवा डांस का लिया आनंद, नर्मदा और छोटा उदयपुर की लोक संस्कृति की दिखी झलक। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर कार्तिक आर्यन ने किया सरदार पटेल को नमन, देश की एकता के प्रतीक को देखकर जताया गर्व। कार्तिक आर्यन ने व्यूइंग गैलरी से नर्मदा और सरदार सरोवर डैम का लिया किया दीदार, सतपुड़ा और विध्यांचल पर्वतमाला भी देखी। चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड को कार्तिक आर्यन ने बताया गर्व की बात, बोले पहली बार मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पेरूथलैवर कामराजर नाश्ता योजना के विस्तार का किया उद्घाटन, चेन्नई के गांधी ग्रामम सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ एक कार्यक्रम। आयोजन में बच्चों के साथ नाश्ता करते नजर आए सीएम विजय, पंक्ति में बच्चों के साथ भोजन करते हुए किया सीधा संवाद। इस योजना के तहत अब कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त में दिया जाएगा नाश्ता, इससे पहले केवल कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए उपलब्ध थी ये योजना। केरल के कासरगोड में पुलिस विभाग ने विस्फोटक का पता लगाने वाले अपने 2 K9 डॉग्स को दी भावुक विदाई, बॉडी और कामी ने जिले की सुरक्षा में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। विदाई समारोह के दौरान दोनों डॉग्स को सम्मान में उड़ाई गई शॉल माला पहनाकर दी गई शाबाशी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्टार्टअप आइडिया चैलेंज 2.0 के तहत एक दिवसीय बूट कैंप का आयोजन, युवाओं ने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मकसद। जेएनके स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 के तहत आयोजित किया गया एक कार्यक्रम बूट कैंप में विभिन्न कॉलेजेस और संस्थानों के 150 से अधिक छात्र शिक्षाओं उभरते उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कारगिल की ओर बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल, दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। नेशनल वॉर मेमोरियल से कन्याकुमारी टू कारगिल साइकिल अभियान का ये अंतिम चरण, राष्ट्रीय एकता के साथ युवाओं में फिटनेस के प्रति जोश जगाना इसका उद्देश्य। रोहतक के किलोई गांव में जश्न, एशियाई खेलों में 60 किलो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सोचिका के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी का इजहार। मध्य प्रदेश में अब वर्दी पहनकर रील बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई गाइडलाइन। चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर सरकारी या संवेदनशील जानकारी साझा करने और जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर भी रोक, पैनल ना करने पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में योगी रोजगार कुंभ जारी, मुख्यमंत्री योगी ने आज 3,567 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। यूपी में रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, सरकार का दावा अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। जल्दी भारतीय एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्री डिजी यात्रा का कर सकेंगे इस्तेमाल, अक्टूबर से शुरू होने की हो सकते हैं ट्रायल। अंबाला में वामन द्वादशी मेले में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, ऐतिहासिक मेले में भगवान वामन के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने की संत से मुलाकात, पिजावर मठ के संत श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी से मिले, अमित शाह ने लिया संत का आशीर्वाद। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने किया आईसीयू और आधुनिक सीएसएसडी का उद्घाटन, एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में नई सुविधा की शुरुआत, क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी इससे मजबूती। अगरतला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिली नई मजबूती, इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा, मरीजों के इलाज और संक्रमण नियंत्रण में मिलेगी इससे मदद। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मल्टी लेवल पार्किंग का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा। जोधपुर में आज भारत जापान वायुसेना के वीर गार्जन युद्धाभ्यास का समापन, 9 सितंबर से जोधपुर में चल रही थी दोनों देशों की एयर कॉम्बैट ड्रिल। 14 दिनों तक आसमान में दिखी भारत जापान की साझा ताकत, तेजस, सुखोई 30 और राफेल ने भारत की ताकत दिखाई, जापान के F-2A फाइटर भी पहली बार भारतीय जमीन से ऑपरेट हुए। भारत जापान ने युद्ध जैसे हालात में परखी हवाई क्षमताएं, एयर स्ट्राइक और अलग अलग ऑपरेशनल मिशन का अभ्यास। भारत के स्वदेशी फाइटर और एरोस्पेस क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, आसमान में एयर स्ट्राइक से लेकर कॉम्बैट ड्रिल तक शानदार प्रदर्शन। रियलिस्टिक कॉम्बैट जैसे हालात में तारीखों तैयारियों को भी परखा गया, दोनों देशों के एयर वॉरियर्स ने ऑपरेशनल रणनीति पर भी किया काम। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर, भारतीय टीम ने 4x100 मीटर मिडले रैले के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ऋषभदास, धनुष, सुरेश, बेनेडिक्टन, रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में 3:40.41 सेकंड का समय लेकर हासिल किया सातवां, फाइनल में मारी एंट्री। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से दी करारी शिकस्त। पुरुष हॉकी में आज श्रीलंका से टकराएगी भारतीय टीम, भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों के बीच अब तक कुल 13 हॉकी मुकाबले खेले गए हैं, सभी 13 मैचों में भारतीय टीम ने दर्ज की है जीत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में होगी रिश्तों की परीक्षा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति बप्पा पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोज भेज रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें यूपी के नोएडा से विवेक शील ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें विदेश से आई है, जो कि दुबई के ऋषभ नागपाल ने हमें भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ ऋषभ बप्पा को अपने घर लाए। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि देश हो या विदेश, बप्पा के भक्तों का उत्साह है एक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: गजानन के पंडाल में भक्ति की बयार, गणेशोत्सव के 9वें दिन बप्पा का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई में बप्पा की भक्ति में रंगे शाहरुख खान, सिंगर बीपरा के साथ किए गणपति के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मानित। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी मेले की रौनक, 2 दिन में करीब 9 लाख भक्तों ने दर्शन किए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए एसी डोम। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम विजय ने छात्रों को दी सौगात, कामराज ब्रेकफास्ट योजना का किया शुभारंभ, छात्रों के साथ सीएम ने किया नाश्ता, पहले से 8वीं क्लास के बच्चों को मिलेगा इससे लाभ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
9: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
10: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए, आरंभ भी करेगी गणपति बप्पा की आरती, डिंपल को लगेगा झटका, अरमान और अभीरा गणपति से मांगेंगे बेटी के लिए सद्बुद्धि, लेकिन बेटी मचाएगी बवाल।

और साथ ही करेंगे मुलाकात प्रतीक्षा से, जो सास बहू और बेटियां को लेकर जाएगी पंडाल और कराएगी पंडाल की सैर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और

0: सीरियल आरंभी में हुआ बाप्पा का आगमन, जहां पूरी टंडन फैमिली ने ढोल ताशों के साथ किया गणपति का स्वागत। लेकिन घर में हुई सजावट को देख डिंपल घबरा गई, क्योंकि इसके पीछे छिपा है अतीत का राज और सब किया है ध्रुव ने। आखिर क्या है ध्रुव का मास्टर प्लान, देखना दिलचस्प होगा।
1: परिवार में गणपति बाप्पा का आगमन।

टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव और इस खास मौके पर टंडन परिवार अपने घर लेकर आया है गणू बापा। सभी लोग मन से कर रहे हैं बापा की आरती और देखिए ढोल ताशों के साथ हुआ बापा का आगमन।

लेकिन इन खुशियों में ट्विस्ट का ब्रेक तब लग गया जब डिंपल ने अपना आपा खो दिया। असल में गेंदे के ये फूल देखकर और डेकोरेशन देखकर डिंपल को अपना अतीत याद आ गया और देखिए कैसे उसका हाल बेहाल हो गया है। वो ये डेकोरेशन देखकर गेंदे के फूल देखकर घबरा गई है

0: गणपति बप्पा
1: मंगल मूर्ति।
2: क्या है ये सब? ये क्या है ये डेकोरेशन? ये गेंदे के फूल मेरे घर में कैसे आए? कैसे आए?
3: कैसे हुआ ये सब?
2: कैसे हुआ मैं पूछ रही हूँ, कैसे हुआ ये सब? ये किसने, किससे पूछ के किया? किसने किया ये सब? किसने किया?
4: नहीं,
2: नहीं, नहीं,
4: क्या हुआ?
2: ये सब कुछ वैसा
3: ही
2: गणपति की मूर्ति देखे वो ना गणपति के ऊपर मत सपना करना। सुना नहीं आपने? सुनी नहीं मेरी बात? मेरी बात सुनी नहीं आपने? मेरी बात सुनी नहीं
3: आपने?
5: गणेशोत्सव से और इस डेकोरेशन से डिंपल का कोई अतीत जुड़ा है जिसे सुनील भी जानता है और जानते हैं ध्रुव और उनकी दादी, क्योंकि ये सारा किया धरा ध्रुव का ही तो है ताकि डिंपल सच बोल दे और अतीत के पन्ने खुले और असली सच सामने आए। तभी तो देखिए कैसे दादी सच पूछने की और जानने की कोशिश कर रही है।
6: ऐसे क्यों फड़फड़ा रही है जैसे जल भी मछली फड़फड़ाती है? ये सब देख के इनको कुछ याद आ गया है क्या?
3: तमाशा नहीं चाहिए। I'm sorry, इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मैं ले जाता
5: हूँ। लेकिन सुनील बहाना बनाकर डिंपल को वहाँ से भेज देता है। लेकिन ध्रुव और दादी का प्लान तो एकदम सॉलिड है। इस गणेशोत्सव अतीत का सच सामने आकर ही रहेगा कि आखिरकार डिंपल ने क्या खेल खेला था। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग एक एक कर बापा की आरती कर रहे हैं। ऐसे में डिंपल भी इस आरती में शामिल हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ देखने को जाहिर है।

0: से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल तू ही रे दिल में जल्द होने वाला है बड़ा खुलासा, जहां वृंदा के सामने आएगा स्वाति के पति का सच। जी हां, जब वृंदा को पता चलेगा उसका पति संजू ही स्वाति का भी पति है, ऐसे में वृंदा क्या कदम उठाती है देखना दिलचस्प होगा।

जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज सरिता बहुत खुश है और तो और उनकी खुशी में चार चांद तब लग गए जब उन्होंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है और सरिता को बारिश बहुत पसंद है। तभी तो देखिए कैसे वो बारिश की बूंद संग खेल रही है और उसका साथ देने के लिए वहाँ पहुँच जाती है स्वाति यानी कि उनकी बहू रानी और देखिए कैसे सास और बहू दोनों मिलकर बारिश की बूंदों संग खेल रही हैं और कर रही हैं मस्ती।

कई सास बहू का सहेली आना तो चल ही रहा था कि तभी वहाँ पहुँच गई अम्मू यानी कि वृंदा, और देखिए कैसे दोनों को बारिश के साथ खेलते देख वो भी खुश हो जाती है। और ऐसे में सरिता और स्वाति दोनों उसे भी बारिश की बूंद संग खेलने के लिए बुला लेती हैं, और देखिए कैसे तीनों एक दूसरे के साथ शुरू कर देती है पानी संग अटखेलियां।

0: भाई वाकई स्वाति और वृंदा के रूप में सरिता को बहुत अच्छी दोस्त मिली है, लेकिन आज वृंदा थोड़ी सी परेशान है। इसलिए देखिए कैसे वो स्वाति के साथ उसके घर जाने की गुजारिश करती है। ये सुनते के साथ ही सरिता का दिल बैठ जाता है और वो मना करने लगती है, लेकिन वृंदा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इसी बीच आ जाते हैं दादू, जो दे देते हैं अल्टीमेटम दोनों को रुकने के।
1: अरे गणपति बप्पा की आरती करते हैं उसके बाद
2: दादू
1: की मम्मा कौन होती है।
0: भाई स्वाति की परेशानी को दूर करने के लिए दादू ने माधवी को कॉल लगा दिया और अपनी तरफ से उन्हें न्योता भी भेज दिया क्योंकि इनके घर गणपति बप्पा जो आए हैं। इतना ही नहीं, वो तो स्वाति के सामने माधवी पर नाराज भी होने लगते हैं। ये देख स्वाति डर भी जाती है कि कहीं उसकी माँ ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, लेकिन असल में दादू तो मजाक कर रहे थे। और देखिए कैसे मजाक करते हुए वो निकल भी जाते हैं और वृंदा वो तो बहुत खुश है, इसीलिए स्वाति के रुकने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है जीतू, जो बहाना कर वृंदा को उस कमरे से गेस्ट रूम में जाने के लिए कह देता है।
3: बेसिकली अम्मू को मैं उस सरिता जी के कमरे से बाहर ले जाता हूँ कीटाणुनाशक डालने के बहाने से, और उन्हें दूसरे स्टोर रूम में गेस्ट रूम जो बोला जा रहा है उसमें मैं उन्हें शिफ्ट करता हूँ। और साइड में मुझे टेंशन ये भी है बिकॉज सामने आरती हो रही, संजय जी भी है, तो मैं कैसे तो करके उनको छुपा के ले जा रहा हूँ। एंड देन नींबू पानी ले आता हूँ मैं उस बहाने, ताकि उसमें नींद की दवाइयाँ मिलाई हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी भी हालत में इन दोनों का आमना सामना नहीं होने दे सकता हूँ।
0: वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार तैयार होकर पहुंच गया है बप्पा की आरती उतारने। जरा देखिए कैसे संजू, स्वाति और सरिता तीनों बप्पा की आरती उतार रहे हैं और उनके साथ पूरा परिवार भी शामिल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नहीं है और वो है वृंदा।

there's a lot of burden on my shoulders. एक साइड अम्मू ये समझ रही है कि संजोग ही संजू है, ये भी मुझे पता है. एक साइड मुझे ये भी पता है कि संजय की वाइफ ही वृंदा है जो अम्मू है, और मुझे किसी भी हालत में सच बाहर नहीं आने देना. सो स्वाति, संजय, संजोग, सरिता एंड दी एंटायर फैमिली, सबसे मैं झूठ छुपा रहा हूँ सो दैट कि परिवार की हालत ख़राब ना हो. फेस्टिव सीजन है, सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैपनिंग इन द सीन.

यहाँ सभी मिलकर गणपति का आशीर्वाद ले रहे हैं तो वहाँ कमरे में कैद हो गई है वृंदा और बाहर निकलने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसे क्या पता कि जीतू ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। खैर पूरे परिवार की आरती हो जाती है और तभी पूरे परिवार को सरप्राइज मिलता है, वो भी संजोग से। जरा देखिए कैसे ढोल बजाते हुए संजोग की एंट्री हो जाती है, सभी नाचने गाने लगते हैं और हो जाते हैं बेहद खुश।

0: संजोग जी की एंट्री होती है, दे आर सर्चिंग फॉर अम्मू, मैं अभी भी उन्हें झूठी बोल रहा हूँ कि यार थक गई होगी शायद, बेचारी सो गई है. तो ओवरऑल दिस इज व्हाट द सीन इज, एंड आगे बढ़ते बढ़ते देखते कैसे होता है क्या होता है.
1: खैर संजोग आया तो है, साथ में सभी के लिए तोहफा भी लाया है, और देखिए कैसे उसने सभी को तोहफा भी बांट दिया. लेकिन जैसे ही बारी आई अम्मू की, तो संजोग ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे अम्मू दिखाई जो नहीं दे रही. ऐसे में जीतू बहाना कर देता है और पूरा परिवार फिर से नाच गाने में शामिल हो जाता है. लेकिन तभी संजोग स्वाति को वहाँ से लेकर चला जाता है, यानी फिर से अम्मू इन दोनों को साथ में देखेगी और फिर से हो जाएगी गलतफहमी का शिकार.
2: बड़ा कहता है आंख बंद करके भी अपने अपने बीवी को पहचान लेंगे, अब पहचान के दिखाओ तो माने.
3: संजू,
4: स्वाति,
3: संजू इधर इधर देखो इधर.
4: स्वाति पकड़ी.
5: तुम्हें क्या लगा अपनी बीवी को नहीं पहचान पाऊंगा?
3: मिस्टर संजय पटेल उर्फ संजू उर्फ मेरे होने वाले पति, आपने मेरा हाथ नहीं अम्मू का हाथ पकड़ा था, अम्मू का हाथ.
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
6: इसका मतलब संजय जी जिनसे मेरी शादी हुई और स्वाति दीदी के मंगेतर संजू जी एक ही.
7: सीरियल इश्क जुनूनी में एक तरफ जहां गणपति विसर्जन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशानी को गुरु की तलाश है. ऐसे में ईशानी को गुरु बेहोशी की हालत में मिलता है. आखिर कैसे बेहोश हुआ गुरु और कैसे की ईशानी ने गुरु की मदद, चलिए देखते हैं.
8: ईशानी का जुनून.

0: घायल गुरु की रक्षक बनी ईशानी।
1: तेरे चरणों में जो शीश रखता है वो है फिकर उसको किसकी रे मोरिया।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जब से रूहानी गुरु की जिंदगी से गई है उसका हाल बेहाल हो चुका है। हर वक्त वो बस रूहानी के ख्यालों में ही डूबा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशानी का दिल गुरु के लिए धड़कता है। भाई धड़के भी क्यों ना, क्योंकि ईशानी के अंदर रूहानी का दिल जो है, ऐसे में देखिए कैसे वो सड़क पर नंगे पैर दौड़ रही है अपने गुरु को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हो रहा है गणपति बप्पा का विसर्जन, सभी लोग नाच गा रहे हैं, तभी वहाँ पर ईशानी को गुरु बेहोश हालत में दिखता है और देखिए कैसे वो गुरु की ये हालत देखकर हो गई है काफी परेशान। ईशानी का दिल तो बस यही चाहता है कि गुरु सही सलामत रहे, तभी तो वो बापा से प्रार्थना भी कर रही है।
2: एक्सपीरियंस भी है, मैंने पहले भी बाहर शूट किया है बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक में जा रही है वो गुरु को ढूंढते हुए कि कहाँ चला गया, ही इज़ अ बिट ड्रंक और वो नाराज है चीज़ों को लेके, जो भी सिचुएशंस उसको अभी चीज़ें पता चली उन चीज़ों को लेके। तो जो ईशानी है वो उसके लिए कंसर्न है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो कि टक्कर लग जाए किसी भी चीज़ के लिए। तो वो बिल्कुल अपने होश आवाज सब होके बिना चप्पल के धूप में भाग रही है रोड पे और बीच में गणपति जी का विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही है, वो भी मिलती है, उनसे आशीर्वाद लेती है, पप्पा से बोलती है कि पप्पा आशीर्वाद दें और गुरु की रक्षा करें। तो ऐसे ही धूप में मुझे उसके लिए भागना पड़ा चप्पल वप्पल उतार के, काफ़ी गर्म था बट ठीक है, करना पड़ता है सीन के लिए। गिरी भी, हाथ में थोड़ा सा लाल भी हो गया था बट ठीक है, अभी वो भी ठीक हो गया।
0: सही समय पर ईशानी को गुरु मिल भी जाते हैं और देखिए कैसे वो बेहोश गुरु को इस ठेले पर लिटाकर डॉक्टर के पास ले जा रही है। ईशानी काफी घबराई हुई है, वो तो चाहती है कि गुरु को कुछ भी ना हो। ऐसे में आसपास के लोग भी ईशानी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं।
2: अपने माँ बाप की और बहुत ही नाजो से, बहुत ही पैम्पर होके पली बड़ी है और उसकी मॉम तो उसे जमीन में पैर भी नहीं रखने देती, चप्पल पहन के घूमती है पूरे घर में। और जब हमने इंट्रोडक्शन किया था ईशानी का तो उसकी जो मेड है जो हमेशा उसका ध्यान रखती है, वो चप्पल ला के रखती है कि मैम आप नंगे पाँव नहीं घूमेगी घर के अंदर भी। और कट्टू अभी जो ईशानी है, क्योंकि उसके अंदर एक रूहानी का दिल है तो वो एक जुनून जो इश्क है जो जज्बा है कि नहीं गुरु के लिए मैं कुछ भी करूँगी, गुरु को मैं ठीक करूँगी, सब ठीक कर दूँगी, तो वो उससे वो चीज़ें करवा रहा है जो वो ईशानी कभी खुद नहीं करती या उसको कभी अलाउ नहीं होता वो चीज़ करने के लिए। तो वही जुनून, वही इश्क, वही पागलपन, वही जो रहता है रूहानियत जो भी है ईशानी के अंदर आ गई है और उस वजह से ये वो सब ऐसी चीज़ें कर रही है जो ईशानी नहीं करती पर्सनली।
0: तो भाई ईशानी गुरु की रक्षक बनकर पहुंच गई है, अब देखना होगा कैसे धीरे धीरे गुरु और ईशानी एक दूसरे से मिलते हैं और होती है नए रिश्ते की शुरुआत। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल लक्ष्मी निवास में भूमिका के प्यार में राज बावला हो चुका है। भूमिका के प्यार में राज इस कदर सनकी हो चुका है कि उसे भूमिका की मौत के बाद भी हर जगह सिर्फ भूमिका ही नजर आ रही है। ऐसे में आगे क्या होता है चलिए देखते हैं।
4: बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है।
5: लौट आई राज की भूमिका।
4: है जरूरी ये सवाल
5: भूमिका के लिए राज की दीवानगी
4: की खुशी
5: इस प्यार को क्या नाम दे।
4: ZTV
5: के सीरियल लक्ष्मी निवास में भूमिका को राज का सच पता चल गया है। ऐसे में राज से आजादी पाने के लिए भूमिका ने अपनी जिंदगी को दांव लगाने का आखिरी फैसला चुना है। जरा देखिए कैसे भूमिका ने राज के सामने ही पानी में कूदकर अपनी जान दे दी और राज फूट फूट कर रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि वो भूमिका से पागलों की तरह प्यार जो करता है।
6: भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे।
7: मेरी कसम भूमि, मेरे प्यार की कसम भूमि,
8: मैंने बहुत प्यार किया राजा से और शायद अब भी करती हूँ। इस प्यार की कीमत मेरी आजादी नहीं हो सकती।
7: भूमि,

भाई राज का ये प्यार तो भूमिका के लिए सजा बन गया था, इसीलिए भूमिका ने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। लेकिन अब राज उसे भूमिका हर तरफ नजर आ रही है। जरा देखिए कैसे घर में जब भी वो भूमिका को देखता उसके करीब जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करता।

0: इतना ही नहीं, उसे घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ भूमिका ही दिखाई दे रही है। तभी तो भूमिका की परछाई के पीछे पीछे वो कमरे तक में पहुंच गया और तो और अपनी भूमिका को इस तरह बैठा देख वो हो गया खुश और करने लगा उससे प्यार का वादा।
1: मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए बहुत खुश हूं मैं। उसे प्रॉमिस करूं आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, किसी के कहने से नहीं जाओगे। उसे प्रॉमिस करूं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूं मैं।
0: भाई राज ने तो भूमिका से माफी भी मांग ली और ये भी बता दिया कि वो उसे कितना प्यार करता है, पर राज को ये नहीं पता कि भूमिका उसके आमने सामने है ही नहीं, वो तो सिर्फ उसकी परछाई देख रहा है। तभी तो जैसे ही वो भूमिका की गोद में सर रखता, वो भूमिका की गोद नहीं बल्कि तकिया है। खैर धीरे धीरे राज के प्यार का पागलपन बढ़ जाएगा। देखना होगा क्या राज को इस बात का एहसास होगा कि उसने किस कदर भूमिका को तकलीफ दी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में सीरियल वसुधा में करिश्मा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रतीक्षा राय भी पहुंची मुंबई के गणपति पंडाल में और उन्होंने सास बहू और बेटियां की टीम संग किया एक भक्ति भरा डे आउट।

0: सास बहू और बेटियां, देश भर में कई जगहों पर मनाया जा रहा है गणेश उत्सव का त्योहार। और ये त्योहार बड़े ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आज आप सबकी प्यारी प्रतीक्षा राय पहुंच गई है गणपति पंडाल लेने पापा का आशीर्वाद। और ऐसे में आज सास बहू और बेटियां बन गया है इनका हम सफर। ऐसे में आज प्रतीक्षा हमारे साथ पहुंची है साई स्टार हैथवे मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए, जिसका थीम इस बार बेहद ही अनोखा है। भाई, नेचर और एनिमल्स को ध्यान रखते हुए ये पूरा पंडाल सजाया गया है, जहाँ पर हर एक छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। और देखिए कैसे इस भव्य पंडाल में बाप्पा को विराजा भी गया। भाई, प्रतीक्षा टीवी की एक संस्कारी बेटी है जो शिव जी और बाप्पा में बहुत मानती है। ऐसे में आज यहाँ आकर वो भक्तिमय हो गई और उन्होंने इस पंडाल में शिव जी और गणपति बाप्पा से अपने दिल की सभी मनोकामनाओं को माना। भाई, प्रतीक्षा तो दंग और हैरान रह गई। जिस तरीके की साज सजावट बाप्पा के दरबार में की गई, वो उनके लिए काफी अद्भुत थी। ऐसे में आपको बिना किसी देर के ले चलते हैं प्रतीक्षा के साथ बाप्पा के दर्शन करवाने के लिए, जहाँ पर बाप्पा के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत शिव जी भी विराजमान है। तो आइए आज हम प्रतीक्षा के साथ करेंगे इस पंडाल की सैर।
1: हाय, मैं आप सबकी प्रतीक्षा और आपके फेवरेट शो में आई हूँ मैं, सास बहू और बेटिया में। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पंडाल में आई हुई हूँ, जिन्होंने नेचर का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग है, जिसके ऊपर इतना प्यारा सा पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है कि वाटरफॉल हो रहा है। और द कॉन्सेप्ट इज सो ब्यूटीफुल, प्राचीन मंदिर वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप ऊपर देखेंगे, हरियाली ही हरियाली है, बहुत ही सुंदर है। उसके अलावा इन्होंने पानी भी वेस्ट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे, एक प्रॉपर सा पॉइंट बनाया हुआ है जो शायद रिवर्स आ रहा है, और कितना ही खूबसूरत है। और जब आप यहाँ पे एंट्री ही करेंगे तो आपको एक बहुत ही विशाली कहूँगी, एक शंकर भगवान का बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देगा, जहाँ पे हमारे हाथी जी हैं, नंदी जी हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं। और मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, आपको तो पता ही होगा। तो दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम। और थैंक यू सास बहू और बेटिया, मुझे यहाँ के फेवरेट जगह पर लाई है, जो हमारे हाथवे साई स्टार की तरफ से ये सार्वजनिक पंडाल बनाया गया है। और दिस इज जस्ट माय टाइप, बिकॉज मैं नेचर को बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे इन सब पे फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे, और मुझे एनिमल्स से तो आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम। और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, जब आप अंदर जाएंगे तो जब हम बचपन में गणपति देखा करते थे तो वहाँ पे एक फिल्म चलती थी जिसमें पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आता था और वहाँ पे सारी एक मैसेज दिया करते थे। तो उन्होंने सेम वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट रखा है, जिसने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया है। और उसके अलावा बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत आप देखोगे तो पुराने स्ट्रक्चर टाइप्स के हैं, नॉट सो टिपिकल न्यू टाइप्स का। जितने भी हमारे जो भारत की पहचान होती है, पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स वो है। और मैं क्या कहूँ, ये लाइक दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि आई एम स्पीचलेस। मैंने जो इमेजिन किया था ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जी। गणेश उत्सव तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ का, लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे मेरा होम टाउन यूपी है, तो वहाँ के लोग अक्सर मुझे गणेश उत्सव के बारे में पूछते भी हैं कि यहाँ पे कैसा होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा लाइन लगाया करती थी, और हम अपने एरिया के एक भी गणपति को छोड़ा नहीं करते थे। इतना दूर तो आ नहीं पाती थी, बट हम घंटों लाइन में होते थे सिर्फ वो एक मैसेज देखने के लिए जो फिल्म लगाया करती थी। आजकल तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अगर देखा जाए वो फिल्मों का कॉन्सेप्ट, जो एक छोटे छोटे मैसेजेस होते थे। फाइनली यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे कांदिवली ईस्ट में है। तो आप देख सकते हैं क्या बाहुबली वाला वाइब दे रहा है ये शिवलिंग को देखते ही मुझे तो कुछ सा होने लगता है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। अगर आप देखेंगे तो ये शिवलिंग है और नाग देवता है वहाँ पे विराजमान, और ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है। जहाँ तक ये बता दूँ, ये सब कुछ इको फ्रेंडली है, इन्होंने सब कुछ इको फ्रेंडली यूज़ किया है। पॉइंट देखिए, वाइब देखिए, और इमेजिन कीजिए यहाँ पे बारिश हो जाए। ओहो, इट्स सो प्रिटी। इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है, इन्होंने ये आर्टिफिशियल यूज़ किया है ताकि पेड़ों को ना काटना पड़े। एंड सी द वाइब, वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक आई एम ऑन सेट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं सेट पे आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके अवार्ड्स भी हैं और दे डिजर्व इट। एंड सी द, देखिए अगर आप देखते होंगे तो हर जगह एक अलग ही वाइब होती है ये, कि हम शायद ये बरगद का पेड़ है जिसे हम बैनियन ट्री कहते हैं, इंग्लिश में, जिसकी हिंदू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। वट सावित्री के दिन भी लोग इनके अराउंड ये धागे बांधते हैं और इनकी पूजा की जाती है। और शायद हमारा, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद हमारा नेशनल जो पेड़ है वो बैनियन ट्री ही है, बरगद ही है, जितना मुझे नॉलेज है। और आप देख सकते हैं उन्होंने हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। शिव जी का डमरू है, उनका त्रिशूल है, समय है इतना खूबसूरत सा, और बिना नेचर को हर्ट किए उन्होंने प्रॉपर सो डेकोरेट किया है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। मंत्रा सुनिए, एक अलग ही वाइब्रेशन हो रहा है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ डिटेलिंग की तरफ लेकर जाऊंगी। आइए, ये देखिए, ये छोटी छोटी डिटेलिंग है। इन्होंने बर्ड्स का ख्याल रखा हुआ है कि हमारी बर्ड्स का घोंसला है जहाँ पे वो स्टे कर सकती है, रह सकती हैं। लुक एट देम, इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है। हम अक्सर जानवरों को भूल जाते हैं फंक्शंस में। इट्स नॉट समथिंग गैस, बट हम जिस हिसाब से मैंने देखा है कि आजकल गणेशोत्सव का कुछ अलग ही सीन हो गया है। लोग बॉलीवुड बजाते हैं और डांस करते हैं, विच आई डीपली फील वियर्ड। एक टाइम मेरा भी था जब मैं करती थी, जब मुझे सेंस नहीं था, बट जैसे जैसे मैच्योरिटी मुझे समझ में आया कि वी आर द वन हु मेक फन ऑफ आर ओन कल्चर, वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। और हम ना एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, ना हम बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, ना ही हम ईश्वर का ख्याल रखते हैं। हम ऐसे गाने बजाते हैं, ऐसे डांस करते हैं, विच इज़ रियली रियली डिसरेस्पेक्टफुल। तो अगर आप इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। द मंत्राज, अगर आपको समझ में आ रहा है, इतना काम मंत्रा है। नेचर, उन्होंने इस बार एक मैसेज भेजा है कि वी कैन सेलिब्रेट आर फेस्टिवल, यू नो, जिसमें हम अपने एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करें ताकि उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आई गेस दे आर द प्योरेस्ट सोल जो भगवान को अपने वाइब्रेशन से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो भगवान उनकी जल्दी सुनता है। अगर आप उनको खुश रखेंगे तो वो सीधा हमारे भोलेनाथ के पास पहुंचेगा, हमारे बप्पा के पास पहुंचेगा। बर्ड्स की आवाज़ें, अगर आप अपने पक्षियों का और नेचर का ख्याल रखोगे तो महादेव स्वयं आ जाएंगे आपके पास। देखिए, हम महादेव के पास पहुंच चुके हैं। सो आज देखा आपने कि क्या मैजिक होता है नेचर में, और आज महादेव के फेस पे जो पीस दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो इफ आई कैन नोटिस इट बिकॉज आई लव नेचर और समथिंग, तो मुझे बहुत ही डीपली कनेक्ट हो रहा है कि जिसका भी कॉन्सेप्ट है, सल्यूट टू देम। आप देख सकते हैं हम फाइनली महादेव के पास आ गए हैं, जो गणपति बप्पा के भी बप्पा हैं। और इतना सुंदर मूर्ति है ये, इतना पीस है इनके चेहरे पे। इट इज़ नॉट टू मच, नॉट टू लेस, परफेक्टली परफेक्ट है, एंड आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। तो थोड़ा सा महादेव की आराधना कर लिया जाए।

अब हमने पिताश्री से तो मिल लिया, अब उनके बेटे श्री से मिल लेते हैं। तो चलिए पप्पा के भी दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। ओके, तो अभी सेकंड पहले आपको महादेव के दर्शन हुए और अब आपके दर्शन होंगे बप्पा से। यूजुअली बप्पा है जो महादेव और गौरी जी को यू नो बाहर रखवाली करते थे, जितनी हमने कहानियां सुनी थी। और आज महादेव द्वार पर खड़े हैं और अब हम अपने उनके बच्चे से मिलने जा रहे हैं।

0: अब हमने तो महादेव के दर्शन कर लिए, अब बारी है हमारी बहुत ही लाडली स्वीट हार्ट बप्पा की। तो बप्पा को मोस्टली अगर आप देखते हैं मुंबई कर्स एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करते हैं, बिकॉज उनको बाल गणेश भी कहा जाता है और वी कंसिडर हिम लाइक अ फ्रेंड। बप्पा इज द ओनली गॉड इन हिंदू कल्चर्स जिसे हम एज अ फ्रेंड, एज अ भाई या एज अ यू नो फादर फिगर देख सकते हैं। तो हाँ, हमारे मुंबई में नॉर्मली आप कहीं भी किसी पंडाल में देखोगे तो दो बप्पा होते हैं, बाल गणेश होते हैं और एक बड़े वाले बप्पा होते हैं। तो यहाँ पे है हमारे छोटे से बाल गणेश और ये है हमारे विशाल काय बप्पा, जो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितने ही विशाल होंगे। और इनकी तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, कुबेर जी वाली कहानियाँ सुनी है, बप्पा की तो अनगिनत ही कहानियाँ हैं। और कहा जाता है कि अगर बच्चों से जिद करवा दो तो पापा को तो बात सुननी ही पड़ती है, तो अगर आपको कोई मन्नत पूरी करनी है तो आप बप्पा से कह दीजिए, तो महादेव को तो सुननी ही पड़ेगी। तो मैंने बप्पा को कह दिया प्लीज़ अपने पापा से भी कह दे कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी कर दे। तो ये हमारे प्यारे से बाल गणेश कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप इनका दो स्वरूप देख सकते हैं, एक छोटो से गन्नू जैसे हम एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं और एक विशाल काय विघ्नहर्ता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लिटरली विघ्नहर्ता ही दिखते हैं जी। मैंने तो कोई भी पंडाल छोड़ा नहीं अपने एरिया में, मैं लाइन में लग लग के देखा करती थी। और पहले तो इसे आप देखेंगे एक मैसेज, बहुत टाइम के बाद मैं कॉन्सेप्ट देख रही हूँ यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट भी है। और ये भी कहा जाता है कि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले बप्पा का ही नाम लिया जाता है, और यहाँ तक कि कहा भी जाता है कि चलो शुभारंभ करते हैं या श्री गणेशाय करते हैं, तो बिना गणेश जी का नाम लिए कोई भी पूजा शुरू नहीं होती, उसे अधूरी मानी जाती है। तो ये बप्पा का चमत्कार है और वी आर सो लकी कि आज हम यहाँ बप्पा के दर्शन करने आए हैं। और इतना मतलब बचपन ऐसा था मैं बता नहीं सकती थी, मैं इतना चल चल के मम्मा के साथ लाइन लगाया करती थी और घंटों लाइन लगती थी, क्योंकि बप्पा का क्रेज़ आज से नहीं है। आई डोंट नो, वो लोकमान्य तिलक जी के टाइम से ये सार्वजनिक गणपति बिठाया जाने लगा, पहले घर घर बप्पा आया करते थे, फिर आपको तो कहानी पता ही होगी कि कैसे लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक यानी बड़ा गणपति लाना स्टार्ट किया। और समवेयर हमें बप्पा ने ही आज़ादी दिलवाई अगर कहा जाएगा तो, बिकॉज वहाँ से हम इकट्ठा होने लगे और अपनी क्रांति आई देश पे। इन अ सेम वे हम एक दूसरे से मिलते हैं, बप्पा घर घर आते हैं, हम इसी बहाने अपने कितने पुराने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं। तो बप्पा मतलब फेस्टिवल, बप्पा मतलब इश्क, बप्पा मतलब फन, बप्पा बोल मतलब आई कैंट एक्सप्लेन, क्योंकि बीइंग अ मुंबई कर आई अंडरस्टैंड दैट क्रेज जो शायद बाहर के लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, जो बेसिकली मुंबई से हैं या जो ये चीज़ें देखते हैं उनके लिए ये एक यू नो एक प्रतीक्षा का हो जाता है कि भाई बप्पा आ जाते ही हैं, कि हम सोचते हैं कब आएंगे नेक्स्ट ईयर। और काफ़ी लोग तो रो रो के भी बप्पा को विदा करते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम, आई गेट ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत पूजा नहीं करती हूँ बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी होती है पूजा, मतलब अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं वैसे बहुत कट्टर नहीं हूँ, मैं सुबह एक बार पूजा कर लूँगी, उस टाइप की नहीं हूँ। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स कि पापा मुझे अपने पास उस समय बुला रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और मैं इनकी तरफ जा रही हूँ और चीज़ें अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो आई रियली होप कि आप एक बार यहाँ पर आएँ और प्रकृति की इम्पोर्टेंस देखें, आप यहाँ पे एनिमल्स की इम्पोर्टेंस देखें और समझें कि हमने कितना डैमेज किया है और हमें कैसे इनको कंट्रोल अब हम कर सकते हैं। बिल्डिंग्स बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने घर के बाहर जैसे इन्होंने बनाया है छोटे छोटे घोंसले बना सकते हैं, जो कि मेरे घर के बाहर है, मैंने बना रखा है। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अब लोग कहेंगे प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ डेवलपमेंट भी है, अब उनके पास वो चीज़ रही नहीं जो हमने छोड़ा नहीं है कुछ, तो हम उनके लिए इतना कर सकते हैं कि खाना पानी और छोटा सा घोंसला बना के दे सके। वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, ना किसी को काटते हैं ना कूटते हैं कि हम कंप्लेन करें, वो आराम से स्टे करेंगे, उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन होता नहीं है। तो शायद इन्होंने भी यही मैसेज देने की कोशिश की है जितना मैं समझ पा रही हूँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस बिकॉज कहीं तो किसी ने तो सोचा उनके बारे में जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये बहुत ही खूबसूरत है एंड मैं आपकी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये फील करने का मौका दिया, थैंक यू सो मच।
1: बेहद ही खूबसूरत तरीके से बाप्पा और शिवजी दोनों के ही दर्शन हो गए। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे, जिन्होंने इस पूरे पंडाल को सजाया है, और आखिर क्या कुछ है पंडाल की खासियत।
2: सो प्रतीक्षा हमारे साथ है, और प्रतीक्षा इतने सुंदर से पंडाल का दर्शन हमने किया। सो अनिकेत हमारे साथ है, जो कि इन्होंने पूरी जो व्यवस्था है वो बनाई हुई है, यहाँ पर इतने अच्छे से थीम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कुछ सवाल पूछे जाए इनसे।
3: जी आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं बेसिकली आई एम एनिमल लवर और मैं नेचर लवर भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही स्पीचलेस था और मैं आधी बहुत ओवरवेल्म हो गई। तो ये आइडिया कैसे आया, और दिस इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू कि आपने, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो लोग एनिमल्स को इग्नोर कर देते हैं, नेचर को इग्नोर कर देते हैं, आपने इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग रखी है। फॉर एग्जाम्पल आई नोटिस जो एनिमल्स का घर है, बर्ड्स हैं, और आपने वो सुंदर सा यू नो पानी ना वेस्ट हो वैसा कुछ बनाया हुआ है, नेचर को भी ख्याल में रखा है। तो ये हाउ, मतलब कैसे इसको पॉसिबल किया आपने, कैसे दिमाग में आया?
4: देखिए लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग कुछ ना कुछ एक सोशल टॉपिक हो गया, मंदिर की स्थापना हो गई, जो लोग दूर तक दर्शन करने नहीं जा पाते, या फिर मतलब कुछ लोग होते कि जो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जाना चाहते तो भी नहीं जा पाते। तो इस साल हमने एक एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा एक थीम बेस्ड एक सेट बनाया, जिसमें एक पुराणोक्त शिव मंदिर बनाया कि लोगों को शिव भगवान का एक दर्शन मिले, और हर चीज़ मतलब एक जंगल में आए वो, जैसे पर्यावरण को हमें कैसे किस एंगल से देखना चाहिए आज के समय में, बच्चों को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिखाना है। और एक 7 से 8 मिनट का एक चलचित्र होता है, जिसमें हम लोग हर साल एक सोशल मैसेज देते हैं, भले वो ड्रग्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, वॉर हो, अपने देश में क्या फ़िलहाल सिचुएशन चल रहा है। तो इस साल हमने एक एनवायरनमेंट बेस्ड, मतलब झाड़ों को हमें कैसे बचाना है, पेड़ों को नहीं काटना है, और इन सारी चीज़ों से बच्चों बड़ों को कैसे सीख देनी है, हम ये सारी चीज़ें करते हैं।
3: देखिए इनके बदौलत आज हम गणेशोत्सव के साथ साथ पर्यावरण को कैसे बचाए इसका भी एक मैसेज ले रहे हैं। और देखा जाए तो ये चलचित्र का कॉन्सेप्ट था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, तो आपने मुझे एक बचपन की यादें दिला दी। दैट्स यू नो आई एम सो स्पीचलेस एंड हैप्पी। ये कब से चल रहा है चलचित्र वाला?
4: लास्ट 25 ईयर्स से ही चल रहा है, हर साल एक नया सोशल टॉपिक लेके उसको चलचित्र में हम लोग, हमारी टीम है, मतलब टीम इतने अच्छे तरीके से काम करती है कि हर एक को प्रिसाइजली, मतलब हर टॉपिक को, जैसे अंदर एनवायरनमेंट को लेके अपने देश के ऊपर भी एक टॉपिक लिया जाता है कि करंटली हमारे देश का स्टेटस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इस साल से हमारी गणेश की मूर्ति पेपर की है, लकड़े की मूर्ति है, मतलब इस साल से हमने वो, हर साल अभी हमें पर्यावरण का ख्याल रखते हुए कि हमारी मूर्ति पेपर की ही रहेगी, और पिछले साल से जो सामने पानी दिख रहा है आपका छोटा सा तालाब, उसी में हम लोग विसर्जन करते हैं गणपति का।
3: जी मैं कहना चाहूँगी ऐसा कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए, हमारे जेनजी से भी ये मैं एक एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम पूजा पाठ के साथ साथ अपने नेचर का भी ख्याल रख सकते हैं, और बिना किसी चीज़ को वेस्ट किए हम अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। एंड मुझे तो बहुत ही गूज़बम्स आ गए, और मैंने भी एक लेसन लिया यहाँ पर आकर कि मैं भक्ति के साथ साथ शिव भगवान के, बापा के इस वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया।
1: अब वक्त हो चला है प्रतीक्षा को अलविदा कहने का। उम्मीद करते हैं कि जरूर उनसे जल्द मुलाकात होगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: रुख करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का, जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज।
1: एक औरत होते हुए, एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ होते हुए भी मैं अपनी कंपनी को कितनी ऊंचाई पर लेकर।
2: पेश है बॉलीवुड OTT और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बहुत जल्द शुरू होने वाला है सयोनी का सफर। जी हाँ, स्टार प्लस का आने वाला शो, जिसमें देखने को मिलेगी परिवार की हर जिम्मेदारी निभाकर भी कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाएगी, जो कि शुरू हो रहा है 23 सितंबर से।
3: सयोनी 23 सितंबर से शाम 7:30।
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की?
5: ये कॉलेज खरीद लिया है क्या आपने?
2: देख लीजिए बरेली के बच्चन की ये झलक, जहां संगम को बचाते बचाते क्या खतरे में पड़ जाएगी अजब सिंह की जान।
6: अब अगर तुमने कुछ भी किया तो हम भूल जाएंगे तुम बहुरिया के भाई हो।
7: भैया
2: बनने वाली है फिर एक बार कृष्णा कौल और मुग्धा चापेकर की जोड़ी, जो नजर आएंगे नए रोमांटिकल वर्टिकल सीरीज में।

हस्तिनापुर के वीर में बहुत जल्द होने वाली है कर्ण के किरदार की एंट्री। भाईजन भाएंगे व्यंकटेश पांडे, जो इसके पहले भी कई सारे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं।

बन गई है राजकुमार राव और प्रतिभा रांटा की जोड़ी, जो आने वाली करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म जो कि हॉरर फैंटेसी होगी, जिसका नाम होगा विश्वकन्या, जो इसमें नजर आएंगे।

0: पृथ्वीराज, सुकुमारन, दिनेश लाल यादव जो पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ, इसके अलावा मधु शाह, बिंदु दारा सिंह, आकांक्षा चौधरी, अनंत अंबानी भी नजर आए।
1: पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे।
2: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है गणेशोत्सव, जहां पूरी फैमिली ने मिलकर की गणपति आरती। लेकिन खुशी के इस माहौल में ब्रेक तब लगा जब मायारा ने उठाई कबीर संग शादी की बात। ऐसे में अभिरा अरमान ने कैसे किया रिएक्ट, चलिए देखते हैं।

के रंग में पड़ा ट्विस्ट का भंग। प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। बाप्पा घर आए हैं और ऐसे में सभी लोग दिल से बाप्पा की सेवा कर रहे हैं। आज तो सभी लोग सजे धजे हैं, त्योहार के रंग में रंग गए हैं। जहां लेडीज गैंग ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रही हैं, तो वही घर के जेंट्स भी कम नहीं, कुर्ता पहनकर पगड़ी बांधकर सभी तैयार हैं गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए। और देखिए कैसे सभी कर रहे हैं बाप्पा की आरती और खुशी खुशी बाप्पा की सेवा में लगे हुए हैं।

ये हमें सबको ना नववारी साड़ी दी है, मेरी पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और टिपिकल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी सी, मंगलसूत्र भी वैसा ही है हमारा और ये आई थिंक मणिमाला बोलते हैं इसे महाराष्ट्रियन, ये कान के नथ इनकी स्पेशलिटी होती है, मेरी लाइट कट रही है, नथ होती है स्पेशलिटी बिंदी उनकी, तो मैंने हेयर स्टाइल भी थोड़ा वैसे ही किया है और इयररिंग्स और गजरा और ये भी जो बालों में लगाते हैं और हरी चूड़ियाँ।

अरमान और अभीरा बाप्पा की आरती जरूर कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि सारे विघ्न बाप्पा हर लें, क्योंकि उन्हें मायरा की चिंता सता रही है। तभी तो ये चिंता इन दोनों के चेहरे पर साफ देखने को जाहिर है।

0: भाई त्योहार में अभिरा अरमान से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन बाकी घर वाले उसे रोक देते हैं और बात पूरी नहीं हो पाती।
1: तुम लोगों को त्योहार का ये सीरियस बातें करनी है?
2: अगर गणपति पापा बोर हो गए तो उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, बातें तो बाद में भी हो जाएगी।
1: हमें आज सिर्फ गणपति जी को एंटरटेन कर

ऐसे में अरमान भी टेंशन में है, लेकिन उसका सहारा अभीरा बनी हुई है। इससे पहले भी देखिए कैसे अरमान और अभीरा अपनी बिटिया रानी मायरा को तैयार कर रहे होते हैं। अरमान भी हो गए हैं थोड़े इमोशनल। इसी के साथ जब मायरा चली जाती है तब अभीरा अरमान से कहती है कि उन्हें कबीर को लेकर मायरा को एक मौका जरूर देना चाहिए, और ये बात दूर खड़ी विद्या सुनती है और खुश हो जाती है।

0: कि हम उसके और कबीर की रिलेशनशिप को एक मौका देने के लिए तैयार हैं।
1: और अभीरा ने तो सोचा था कि मायरा और कबीर के रिश्ते को ये एक मौका देंगे, लेकिन इस त्योहार के रंग में भंग तो तब पड़ गया जब मायरा ने सभी घर वालों के सामने ये कह दिया कि वो कबीर से शादी करना चाहती है। जिस बात को लेकर अरमान और अभीरा दोनों ही मायरा पर भड़क गए। भाई उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अपनी जिद पर अड़ी है, उसे बस कबीर से शादी कर अपना घर बसाना है। ऐसे में वो अरमान और अभीरा की एक सुनने को तैयार नहीं। दोनों उसे डांट फटकार कर समझा रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है।
2: जिसने पढ़ाई के समय ही जॉब नहीं किया और अपने सात दिन पुरानी कार से शादी कर जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। अब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो तो 5 मिनट ऑर्डर लेट आ जाता है तो आपका फूड ऑफ हो जाता है, आप सब्र करोगे? अच्छा ये
3: मुझे लगा था आपके पास अभी तजुर्बा नहीं, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी के पास तो दिमाग ही नहीं है। पर आप ऐसे में हमेशा के लिए उसके घर जाके उसके साथ रहना चाहते हो। शादी के बाद पति और ससुराल की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है मेरे बच्चे, ऐसे में आप करियर और पढ़ाई कैसे मैनेज कर लोगे? पर आप बार बार मेरा और मामा का एग्जाम्पल दे रहे हो ना कि हम साथ हैं, खुश हैं। हम खुश नहीं भी थे, मैंने और मामा ने अपने रिलेशनशिप में हद से ज्यादा स्ट्रगल देखी और ये आपने भी देखा है, पर वो तो तब जब हम आपसे बड़े थे। और आप कह रहे हो कि 18 साल की एज में आप और वो खटिया लड़का शादी निभा लोगे, तो बाय गॉड आप दोनों से बेवकूफ बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे।
4: ड्रामा तो बहुत टाइम से चल रहा है हमारे यहाँ पर और हम सब बहुत शौक हैं मायरा को देखकर, और हम सारे परिवार वाले बोल रहे हैं इतनी छोटी क्यों दी पहले तो, और ऊपर से बहुत छोटी है वो भी, 18 साल की है, और वो कह रही है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो हम सब हैरान हैं कि ये इतनी सी बच्ची है हमारी और अभी से उसे शादी करनी है, अभी तो पूरा करियर पड़ा है उसके सामने, आगे क्या करेगी कैसे करेगी। और वो बहुत एडमिंट है, नहीं नहीं मुझे तो शादी करनी है, और मेरे विचारों को आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि गलत है, क्योंकि वो एज में है कि उसे सब सही लग रहा है, और हम जो एज में हैं हमें लगता है वो गलत है। तो वो जनरेशन का वो चल रहा है, और अरमान तो बहुत गुस्सा है। अरमान को तो वो बार बार वो छोटी सी मायरा याद आ रही है, हमें मायरा याद आ रही है छोटी सी, कि वो तो हमारी सारी बातें मानती थी, और अब कबीर के आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा।
1: तो भाई इन सब तमाशों के बाद अब मायरा क्या फैसला लेगी और इस फैसले को अरमान अभीरा किस तरह से हैंडल करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी और तमाशे और ज्यादा होंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल वसुधा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सारिका अपने कपड़े जलाने में लगी है और इसके पीछे लाजवंती और बिरजू को बेइज्जत करने की प्लानिंग है। आखिर क्या है ये सारा माजरा, चलिए देखते हैं।
1: कपड़ों को लेकर सारिका ने मचाया हंगामा। बढ़ी वसुधा की परेशानी। लाजवंती और बिरजू की बेइज्जती।

0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में सारिका को तो बस मौका चाहिए लाजवंती और बिरजू को सबक सिखाने का। ऐसे में आज उसे मौका मिल ही गया है, क्योंकि आज बिरजू और लाजवंती ने जाने अनजाने उसके और उसके पति मयूर के कपड़े जो पहन लिए। और देखिए कैसे ये देखते ही सारिका का गुस्सा बौखला गया और सारिका बिरजू को घसीटते हुए सभी के सामने ले आई। और देखिए कैसे सभी के सामने उन्हें चोर चोर कहकर बेइज्जती कर रही है। भाई सारिका तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, वो तो बार बार लगातार बिरजू और लाजवंती को नीचा दिखा रही है। और दूर खड़ी वसुधा ये सब देखकर परेशान हो रही है, क्योंकि चाहकर भी वो बीच में आ नहीं सकती। हालांकि लाजवंती सारिका को करारा जवाब देती है, लेकिन सारिका भी कम नहीं, वो भी उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। चंद्रिका ने भी सारिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन आज तो सारिका रुकने से रही। सारिका ने ना सिर्फ बोलकर बल्कि उनके सामने अपनी हरकतों से जता दिया कि वो उसके लिए पैर की जूती है।
1: असल में जिस दिन इन लोगों ने हमारा हाथ चुराया था ना, तभी मारे को हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन कोई ना, अभी भी देर ना हुई है, अब हिसाब बराबर होगा। उतार मयूर जी का कोट, उतार उतार। और थारे को अलग से न्योता देना पड़ेगा। मारी साड़ी निकाले से ची ची ची ची ची ची। हमारे कपड़े ने थारे गंदे हाथ लग गए, अब इन कपड़ों की इस घर में कोई जगह नहीं।
2: सारिका एक्चुअली अपने कपड़े से लेके बहुत पजेसिव है, उसे ज्वेलरी चाहिए, उसे बहुत अच्छे अच्छे ऊँचे ऊँचे कपड़े चाहिए। और जब ये बाहर के लोग कोई आते हैं और वो कपड़े उसके पहन लेते हैं, मतलब उनको ऐसे दिखते हैं, तो वो अपने फीलिंग्स में चले जाते हैं और वो उतार के पहन लेते हैं। नॉर्मली भी अगर कोई किसी की भी एक चीज़ों को हाथ लगाए या उसे पहन ले, तो वो चीज़ एक्चुअली उन्हें नहीं पसंद आती है। तो बस वही होता है सारिका का। और एक तो वो इतनी पजेसिव है, तो वो जब देखती है कि मेरी साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, मयूर जी का कोट पहना हुआ है, तो उसकी हट जाती है। और जब सारिका की हट्टी है, तो आपने देखा ही है कि क्या क्या होता है, तो वही कांड हो रहा है। फिर वो बहुत चिढ़ जाती है, उन्हें खींच के लेके आती है सबके सामने। और अभी एक तो वो जो छोटे लोग रहते हैं उनको कभी ऐसे ठीक से उनके साथ पेश नहीं आती है, और बदतमीजी से ही वो उनसे पेश आती है, तो वो उनका कोट वगैरह उतार के वो साड़ी भी लेती है और वो जला देती है सारिका। तो बस यही सीक्वेंस चल रहा है।
0: भाई सारिका को रोकने की तो वसुधा की भी हिम्मत नहीं, और तो और सारिका ने उन कपड़ों में आग तक लगा दी, ये जताने के लिए कि वो उन कपड़ों को छू तक नहीं सकती। खैर बिरजू और लाजवंती दोनों को आज घनी बेइज्जती महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, सारिका तो जाते जाते चेतावनी भी देकर जा रही है।
1: अगली बार अगर तुम्हारे किसी भी चीज में हाथ लगाने की कोशिश की या सोचा भी ना, तो इस आग में याद कर लेना, जिसमें थारी जो छोटी सी बची कुछ इज्जत है वो भूख भूख करके जल चुकी है।
2: ऑब्वियसली सारिका कुछ ना कुछ तो कांड हमेशा करती है, वो जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा सारिका को।
0: फिलहाल फूल ने आकर अपने मम्मी पापा को संभाल लिया और वहाँ से लेकर चली गई, और बेचारी वसुधा ये सब चुपचाप देख ही रही है। देखना होगा कि कैसे वसुधा लाजवंती और बिरजू को समझाएगी, और कैसे ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर लाजवंती और बिरजू चंद्रिका से इतना क्यों चिढ़ते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज बहू और बेटियां के रिपोर्टर पहुंचे इस सीरियल के सेट पर, जहां उन्हें मिली ये मजेदार खबर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस सीरियल के सेट पर और दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर।
4: ना
0: अजीत और सौम्या का इमोशनल कनेक्शन। दूर हुई सौम्या की गलत फहमी।
4: तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रूह।
0: क्या जुड़ेंगे जीत और सौम्या के दिल।
4: तेरे हवाले कर दिया।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर तेरा में जीत का जन्मदिन है। ऐसे में सौम्या जीत को जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे वो हैप्पी बर्थडे का कार्ड लेकर पहुंच गई है जीत के पास उसे बर्थडे विश करने। लेकिन जीत उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो देखिए कैसे वो सौम्या का हाथ पकड़ कर लेकर आ जाता है छत पर और उस कार्ड को जलाने लगता है। ये देख सौम्या हैरान भी हो रही है। लेकिन जीत सौम्या के सामने अपना दर्द बयां करता है कि आखिर उसे क्यों अपना बर्थडे पसंद नहीं है।
5: तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं जूलिया कि नाजायज बच्चों को हैप्पी बर्थडे ऐसे विश नहीं किया करते हैं। कुछ ही होता मैं बताता हूँ कैसे विश करते हैं। ए प्रयागराज का नाजायज पक्का है तेरा। गिफ्ट के ऊपर सरनेम चाहिए क्या? ये सब सुना मैंने अपने हर जन्मदिन पर खाने खा खा के पढ़ा हो उसी की आदत है मुझे। और आज तेरे राज तुमने भी तो मुझे सुना दिया था ना बात कुछ वही ठीक था वही ठीक। अब ऐसे ही मुझे हैप्पी बर्थडे बोलोगी तो मेरा दिमाग कंफ्यूजन में निर्मला जाएगा। इसीलिए मुझे किसी से विश करवाना पसंद नहीं है ना ही किसी को विश करना पसंद है। ओनली सेल्फ सर्विस आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर जीत। जाओ जूनियर प्लीज जाओ अभी देखो तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना उसकी सुतली में आग लगी जाएगी और शोर सुन के मेरा बाप भी भागा चलाएगा आग भी डालते।
0: भाई जीत ने तो सौम्या को आदेश दे दिया जाने का और सौम्या जाने भी लगती है कि तभी जीत अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर मल्होत्रा से बात करने लगता है। ये सुनकर सौम्या हैरान रह जाती है। उसे डर है कि कहीं जीत अपनी बेइज्जती का बदला सौम्या के पापा से ना ले ले। और तो और अगले ही दिन सौम्या जीत से बात भी करना चाहती है लेकिन जीत के कानों में हेडफोन लगा हुआ है जिसके चलते जीत सुन नहीं पाता। और सौम्या पूरी कोशिश करती है जानने की कि आखिर जीत ने डॉक्टर मल्होत्रा से मुलाकात क्यों की। भाई जैसे ही सौम्या ने अपने मम्मी और पापा की बातें सुनी सौम्या को एहसास हो गया कि वो जीत को कितना गलत समझती थी। इतना ही नहीं उसे तो ये भी एहसास हो गया कि जीत ने ही उसके पापा का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होने से बचा लिया है। ऐसे में वो चाहती है कि जीत ये सारी बातें उसके पापा को बताए लेकिन जीत ऐसा करने से मना कर देता है। बस फिर क्या सौम्या को पूरा एहसास हो गया है कि जीत कितना अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं वो तो उसका बर्थडे भी मनाना चाहती है। इसलिए देखिए कैसे जीत को सरप्राइज देने के लिए उसने रिदान को बुला लिया है क्योंकि रिदान ही है जो जीत को मना सकता है। ऐसे में रिदान अपनी बाइक लेकर जीत को अपना टशन दिखा रहा है तो वहीं सौम्या छिप छिप कर देख रही है और सोच रही है कि रिदान के कहने पर जीत मान ही जाएगा।
6: मैं और मेरी बेबी सिंगल है और नॉट रेडी टू मिंगल है।
7: इसको तो मनाना पड़ेगा वरना सुमो का प्लान खराब हो जाएगा।
8: रिदान उकसाओ।
9: कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि मेरा बाबा तुम्हारी बेबी को स्पीड में हरा देगा?
8: अब मनेगा सर का हैप्पी वाला बर्थडे। बर्थडे केक तो मैं लाई हूँ बस सर को पसंद आ जाए।
6: सौम्या सब लोग आ गए हैं।
0: खैर रिदान के आगे तो जीत हार ही जाएगा और अपना बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ चला भी जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सौम्या चाहती है कि जीत के चेहरे पर खुशी तभी आएगी जब उसके असली पापा उसे बर्थडे विश करेंगे। लेकिन वो भी कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगा। देखना होगा क्या उस ट्विस्ट के जरिए जीत और सौम्या के रिश्ते में दरार पड़ेगी या फिर दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ेंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
10: जैसा तुमने प्लान किया था वैसा सब हो गया सुमो।
8: जीत सर का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, हमको पता भी नहीं चला। एक बार संजीव अंकल उन्हें हैप्पी बर्थडे कह देते तो जीत सर की खुशी में चार चांद लग जाते।
10: संजीव सक्सेना ने मुझे बर्थडे विश किया है।
11: हाँ सुमो,
10: जीत को पापा के फोन से मैंने मैसेज किया था। मैंने सोचा कि मैं पापा से बात करूं पर कर नहीं पाया। माँ पापा से और पापा जीत से भड़कना चाहे तो मैंने खुद ही कर दिया।
8: रिदान ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उनका जन्मदिन परफेक्ट मनाना था।
3: टैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको लिए चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
12: अजय देवगन बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं जंगल एडवेंचर फिल्म जिसका नाम पहले रेंजर लेकिन अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है जान। भाई आपको बता दे इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अजय देवगन के साथ तमन्ना भाटिया और इसी के साथ साथ होंगे संजय दत्त भी और इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जगन शक्ति।
13: सुहानी कैंपस में तुम्हें कई कंपनियों के ऑफर मिले होंगे ना, फिर ये नल्ली कंपनी क्यों जॉइन की तुमने?
12: देख लीजिए प्रेम कीटाणु का ये ट्रेलर जिसमें वीर बहारिया अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद की धमाकेदार कॉमेडी देखने को मिल रही है।
14: याद है तुम्हें मैं दो बैक बेंचेस के बारे में बता रहा था, अरे यही तो है वो नकलची डुओ।
15: क्या अजीब बंदा यार,
16: ये मेरे रडार में है भाई।
17: छोड़ने तू जाता है और लेने वो
18: जीत जीत जीत रंजीत से रॉयल
19: हर बात पे जीत रंजीत जीत
20: प्यार करते हैं उससे।
21: डैड आपको ऐसी गरी लेते हैं,
22: देखो एक्टिविटी स्लीप हार्ट रेट
23: हेल्थ का ध्यान रखना है डैड।
24: ये तो आते ही दामाद बन गया भाई।
25: यार वो रंजीत ऑफिस में पूरा दिन तो रहता ही है, अभी रात में भी साथ में।
12: अल्लू अर्जुन और एटली की आने वाली फिल्म राका को मिल गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट पीपल मोशन कैप्चर्ड इन रियल टाइम के लिए। 37 परफॉर्मर्स ने एक साथ इस मोशन के लिए काम किया था बिना किसी ग्राफिक्स के इस्तेमाल किए। क्रांति प्रकाश झा पहुंच गए हैं बिहार। भाई इन दिनों बिहार में बाढ़ आई थी जिसके लिए द ब्लाइंड टोली रिलीफ कैंप में वो शिरकत करते हुए नजर आए, साथ ही साथ बाढ़ पीड़ित फैमिली से भी उन्होंने की मुलाकात।

0: देख लीजिए फुल हाउस विद रोहित शर्मा का ये प्रोमो, जहां हो रहे हैं ढेर सारे हंगामे।
1: मैं सभी मम्मी पापा से कहना चाहूंगा, आपके बेटे का जो दोस्त आपके सामने सबसे ज्यादा शरीफ बनता है ना, उसी ने आपके बेटे को बिगाड़ा है। हाँ,
0: बहुत जल्द आने वाली है टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म, जिसे डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा। वही इसका रैप अप हो गया है, हालांकि फिल्म का टाइटल अब तक रिलीज नहीं हुआ है।

0: नजर डालते हैं 108 बेस हॉस्पिटल उरी के इस नए प्रोमो पर, जहां अनिरुद्ध की बातें सुनकर क्या होगा नैना का फैसला।
1: अब हमारे बीच प्यार नहीं रहा तो क्या हुआ, फिर से दोस्त तो बन सकते हैं ना?
2: सैम, अजय भैया, ये शादी,
1: ये तो अच्छी बात है ना, शादी तो तुम करना चाहती हो, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। समीर बहुत अच्छा लड़का है। I'm sorry नैना, तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर पाया।
0: बहुत जल्द आने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन, जिसमें है ठुमक ठुमक गाना। आइए डालते हैं इनके बिहाइंड द सीन नजारों पर एक झलक। आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जेएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शक यानी आपके घर भी गणपति पप्पा जरूर पधारे होंगे। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप भी जेएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे के जानन का वीडियो बनाकर हमें भेज रहे, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ, 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए ही है। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो हमें भेज रहे हो तो याद रखिए साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गाँव या फिर कस्बे का नाम जरूर साथ में मैंशन कर दें। गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर धारी गजानन का वीडियो बनाना है और उसे हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। इस वक्त आप दो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से स्नेहा सिंह ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, इसे भी हमारे एक दर्शक ने ही हमें भेजा है। यूपी के सीतापुर से आयुषी ने ये वीडियो हमें भेजा है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या फिर उनका आसन, श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से इसे सजाया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट। गजानन के पंडालों में भक्ति के बयार, अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश, जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का, 11 तोले के सोने का मुकुट। युद्ध अभ्यास 2026 के बीच अमेरिकी सैनिकों का सांस्कृतिक सफर, बीकानेर के जूनागढ़ किले पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान, भारत की सांस्कृतिक विरासत का किया दीदार। पहली बार भारत में गरजेंगे 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, जोधपुर में तिरंग शक्ति एक्सरसाइज 2026 का बनेंगे हिस्सा, 40 देशों के एयरफोर्स लेंगे हिस्सा। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगी सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की शानदार खबर के साथ। तो आपको बता दें कि जापान में चल रहे एशियन गेम से भारत के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। महिला क्रिकेट फाइनल में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 147 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। कुरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और कुल 69 रन ही बना सकी और मुकाबले को बड़े अंतर से गवा बैठी। मेडल की संख्या की अगर हम बात करें तो भारत के पास अब कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी और शानदार खबर जो इस वक्त सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया है। तो देखिए, भारत ने ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है और इसके साथ ही
4: ये अकेली नहीं, सभी का लक्ष्य ऊंचा कर रही है, शान बढ़ा रही है, भारत में झंडा फहराए रही है, भारत माँ की बिटिया, बड़ा गर्व होता है मेरे को, वंदे मातरम और भारत माता की जय, ऐसे ही शान से तिरंगा फहराती रहे और मेरी आत्माएं आशीर्वाद देती हैं, सारी बेटियों को आशीर्वाद देती हैं हृदय से।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर से पटकने देके जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से दी करारी शिकस्त, 16वें ओवर में ही पूरी टीम महज 69 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल स्कोर, स्मृति मंदाना ने कोहली 79 रनों की पारी, श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 11,000 रन। शेफाली वर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल, 48 रनों की शानदार पारी खेली, पावर प्ले में छटके श्रीलंका के 2 विकेट। T20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत, इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर आई सामने, भारतीय टीम ने 4:100 मीटर मेडली रिले के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ऋषभ दास, धनुष सुरेश, बेनेडिक्ट रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में 3:40 का समय लेकर हासिल किया सातवां फाइनल में मारी एंट्री। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से दिखा राज। पुरुष हॉकी में आज श्रीलंका से टकराएगी भारतीय टीम, भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों के बीच अब तक कुल 13 हॉकी मुकाबले खेले गए हैं और सभी 13 मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। गणेश उत्सव के 9वें दिन भी लालबागचा राजा के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरीजा राजा के दरबार में दिखी अयोध्या की भव्यता, इस वर्ष राम मंदिर पर आधारित है पंडाल की थीम। पंडाल में प्रवेश करते ही अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता के होते हैं दर्शन, राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में विराजमान है गणपति बप्पा। इस पंडाल के निर्माण के लिए खास तौर पर अयोध्या गई थी आयोजकों की टीम, राम मंदिर की हर बारीकी और भव्यता को पंडाल में दिखाने के लिए किया अध्ययन। अंधेरीजा राजा पंडाल में स्थापित गणपति प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा, दूर दूर से देखने आ रहे भक्त। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान दिख रहे अलग अलग थीम के पंडाल, भटवाड़ी का राजा के दरबार में एआई थीम पे तैयार किया गया है भव्य पंडाल। आस्था के साथ तकनीक की मदद से गणपति के दरबार की सुंदर सजावट, एआई से मिल रही सफलता और देश विकास में एआई के योगदान पर प्रकाश डालती थीम पर फोकस। एलईडी के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है एआई की कहानी, भक्तों के बीच भटवाड़ी का राजा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पूरी तरह कागज से बनाए गए हैं इको फ्रेंडली भट्टावाड़ी के राजा के गणपति, इस बार पास की ही बीएमसी कृत्रिम तालाब में किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। इस साल अपना 58वां साल मना रहा है ये मंडल, बप्पा के दर्शन और देश के विकास की कहानी देखने दूर दूर से आ रहे हैं। जालना में 65 किलो चांदी के गणपति बप्पा की मूर्ति बनी विशेष आकर्षण का केंद्र, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। गणपति बप्पा को पहनाया गया 11 तोले के सोने का मुकुट, मान के पहले गणपति के तौर पे मशहूर इस पंडाल का ये 79वां साल। बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी बनी आकर्षण का केंद्र, पिछले करीब 17 वर्षों से मंडल की ओर से की जा रही है 65 किलो की चांदी की स्थापना। जालना में 25 फीट ऊंची भव्य गणेश मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, बप्पा के अलग अलग स्वरूपों ने जीता भक्तों का दिल। जालना के बड़ी सड़क इलाके में अलग अलग पंडालों में विराजमान गजानन के अनेक स्वरूप देखने को मिले, पूरे परिसर में गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया का जय। चंद्रपुर में किसान के रूप में बप्पा के दर्शन, खेत में हल चलाते हुए बप्पा की प्रतिमा ने खींचा सभी का ध्यान। किसानों को समर्पित है ये सुंदर झांकी, बप्पा से किसानों के दुख हरने और अच्छी फसल की कामना। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम, भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के हो रहे दिव्य दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सावरिया सेठ का स्वरूप एक ही मूर्ति में किया गया है, दोनों के स्वरूपों का अद्भुत समन्वय, भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी सुंदर झांकी। चंद्रपुर के श्री अष्ट विनायक गणेश मंडल की ओर से साकार की गई भव्य झांकी, बप्पा के साथ ही इसे किया गया है स्थापित। अनोखे गणपति पंडालों की लिस्ट में अमरावती का एक वीरा गणेश पंडाल भी शामिल है, भक्तों के साथ पढ़ाई के महत्व पर फोकस है पंडाल की थीम। पंडाल में पारंपरिक मराठी स्कूल का दृश्य तैयार किया गया है, बच्चों की कक्षा में पढ़ते हुए बनाए गए हैं भव्य झांकी। इस वर्ष पर्यावरण के अनुकूल छोटी गणेश प्रतिमा की गई है स्थापित, प्रकृति के संरक्षण का सामाजिक संदेश देने की भी की जा रही है कोशिश। कोटा के रेलवे कॉलोनी में दिखा अनोखा गणेश उत्सव, 9 फीट के मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति। करीब 10 वर्षों से बालाजी नवयुवक मंडल की ओर से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर मनाया जा रहा है गणेश उत्सव, गणपति दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल में अनोखी थीम खींच रही है भक्तों का ध्यान, घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण की तर्ज पर तैयार की गई है झांकी। पंडाल के अंदर बनाए गए हैं सुंदर गुफा और जंगली जानवरों के कई जीवंत स्टैचू, झांकी के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश। आस्था के साथ भविष्य के लिए भी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रेरित, रोज हजारों लोग कर रहे हैं बप्पा के अनोखे दरबार का दीदार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है।

0: सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है। ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है और उसे हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के रायगढ़ से केशव वर्मा ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट या फिर लाइटिंग, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का यहाँ पे श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के मंडला से प्रतीक साहू ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या फिर उनका आसन, श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से इसे सजाया भी है और इस पे लाइटिंग खास तौर पर काफी ज्यादा मनमोहक लग रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट। गजानन के पंडालों में भक्ति के बयार, अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश, जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का, 11 तोले के सोने का मुकुट। युद्ध अभ्यास 2026 के बीच अमेरिकी सैनिकों का सांस्कृतिक सफर, बीकानेर के जूनागढ़ के लिए पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान, भारत की सांस्कृतिक विरासत का किया दीदार। पहली बार भारत में गरजेंगे 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, जोधपुर में तिरंग शक्ति एक्सरसाइज 2026 का बनेंगे हिस्सा, 40 देशों की एयरफोर्स लेंगे हिस्सा। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को करेंगे सम्मान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। पुराणों में लिखा है कि देव माता अतिथि ने घोर तप किया था, तब कहीं जाकर उन्हें श्री हरि से वरदान मिला था। देवताओं के उद्धार के लिए श्री हरि ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। कथा है कि श्री हरि ने वामन अवतार लिया था, जिसे उनके भक्त भगवान वामन के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री हरि के अवतार के और क्या रहस्य हैं और क्या है उनकी महिमा, यही तो हम आपको बताने के लिए आए हैं।

0: जब देवताओं से छिन गया उनका स्थान। तब श्रीहरि ने वामन अवतार के लिए धरती पर किया प्रस्थान। आखिर श्रीहरि को क्यों लेना पड़ा वामन अवतार? श्रीहरि ने दिया काम क्रोध और लोभ से मुक्त जीवन का सार। जिन्होंने राजा बलि के अहंकार को तीन पगों में समेट दिया। धर्म ग्रंथ कहते हैं जब राक्षसों से हारने लगे थे देवगण, तब देवों के लिए जागे सृष्टि के पालनहार। बड़ी ही उत्तम है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि इसी शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के दिव्य मुहूर्त में श्रीहरि के दिव्य स्वरूप भगवान वामन का अवतार हुआ था।
1: कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान श्रीहरि का एक तो इतने अवतार हुए हैं इस संसार में विभिन्न रूप में भगवान राम का, कृष्ण का, वामन का, इसी दशा अवतार के स्वरूप में इनकी महिमा अन्य अन्य शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णित है जिसका कोई अंत नहीं है।
0: मान्यता है कि जगत पिता जगदीश्वर भगवान विष्णु ने देवों की सहायता के लिए लिया था वामन अवतार, इसलिए ये दिन भगवान वामन के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

0: चलिए आपको स्थिति की महिमा बताते हैं और जानते हैं कि भगवान वामन के पूजन से क्या लाभ होते हैं। मान्यता है कि श्रीहरि का वामन अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। इस दिन भगवान वामन की पूजा करने से श्रीहरि की कृपा मिलती है, व्यक्ति को विनम्रता, त्याग और सत्यनिष्ठा की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस तिथि पर विधि विधान से व्रत पूजन करते हैं, इससे उन्हें ज्ञात अज्ञात पाप कर्मों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
1: जिस भी रूप में, शालिग्राम रूप में भी उनकी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वामन स्वरूप या भगवान विष्णु की आराधना करने से आपका खोया हुआ साम्राज्य, आपकी खोई हुई मान प्रतिष्ठा, धन वैभव सभी प्राप्त होते हैं।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्रीहरि के पांचवें अवतार थे भगवान वामन, जो राजा बलि को धर्म का पाठ पढ़ाने आए थे। देवताओं से छिन चुकी उनके ख्याति को लौटाने आए थे और संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार जमा चुके राजा बलि को पार ब्रह्म परमेश्वर रूपी शक्ति से परिचित करवाने आए थे। कथा है कि वामन देव ने तीन पगों में ब्रह्मांड को नाप लिया था, जो ये दर्शाता है कि प्रभु के पास सभी समस्याओं का समाधान है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, वो जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक दोषों से बचा रहता है। भागवत पुराण में विवरण है कि वामन देव का स्वरूप उदारता और न्याय का प्रतीक है। अगर भक्त अपना अहंकार प्रभु को समर्पित करता है, तो इससे उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि स्थिति के पूजन से भक्तों को कौन से लाभ मिल सकते हैं। ये पर्व हमें अपने अहंकार को त्यागने की सीख देता है। श्रीहरि की कृपा से राजा बलि अहंकार को त्याग कर विनम्र बने थे। इससे हमें अभिमान को दूर करने की शक्ति मिलती है। वामन अवतार विनम्रता और त्याग का प्रतीक है। इस दिन की पूजा और कथा से भक्त में इन गुणों का विकास होता है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। राजा बलि की कथा हमें वचन के प्रति अडिग रहने की शिक्षा देती है। भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, चाहे जो हो जाए, अगर वचन दिया है तो पालन करना ही है। इस दिन की उपासना से ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति के ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है, जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। वामन स्वरूप की आराधना करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: देखिए, कामनाएं तो वही होती है कि मुख्य रूप से तमाम तरह के जो व्यवहारिक जीवन के संकट है, आर्थिक, मान सम्मान, संतान, पुत्र, धन, इन सब की कामना के लिए ही लोग जाते हैं। विशेषकर संतान और प्रतिष्ठा की कामना के लिए भगवान श्रीहरि का पूजन अर्चन किया जाता है।
0: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि जो भक्त भगवान वामन के जन्मोत्सव पर उपवास करके वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित करके पंचोपचार पूजन करता है, वामन भगवान उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से उसी क्षण मुक्ति दिलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के अहंकार और क्रोध से मुक्ति दिलाई थी। आगे हम आपको वामन अवतार की वो कथा बताने वाले हैं, जिसे वामन द्वादशी के दिन कहने, सुनने और सुनाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि ऋषि कश्यप सप्त ऋषि थे। उन्हें देवताओं, दैत्यों और असुरों का पिता माना गया है और माता अदिति को सभी देवताओं, आदित्य और ब्रह्मांड की माता माना गया है। आखिर क्यों लेना पड़ा था श्री हरि को वामन रूप में अवतार? देवराज इंद्र क्यों थे परेशान और माता अदिति ने क्यों मांगा था श्री हरि से ऐसा वरदान? क्या है श्री हरि के इस पूरे अवतार की कहानी? आइए आपको बताते हैं।

हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब जब धरा पर अधर्म का प्रभाव बढ़ा तब तब श्रीहरि ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया।

0: माना जाता है कि श्रीहरि के पांचवें अवतार हैं भगवान वामन। श्रीहरि की लीलाएं अनंत हैं और इन्हीं लीलाओं के दर्शन वामन अवतार में भी देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब श्रीहरि के वामन अवतार का हुआ आगमन, तब राजा बलि के अभिमान और अधर्म का हुआ दमन। धर्मग्रंथ कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। कथा है कि उनके जन्म के समय ब्रह्मांड में आनंद छा गया। महर्षि कश्यप ने उनका उपनयन संस्कार किया। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत किया, जिसमें देवताओं ने उन्हें विभिन्न वस्तुएं प्रदान की। अगस्त्य ने मृगचर्म की खाल दी, महर्षि मरीचि ने पलाश दंड दिया, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्योदय ने छत्र दिया, महर्षि भृगु ने खड़ाऊं, गुरुदेव ने जनेऊ और कमंडल प्रदान किया, माता दीदी ने कोपिन, माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं जिसके कारण श्रीहरि को लेना पड़ा वामन अवतार। कथा कहती है, जब देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य हारने लगे और इंद्र के प्रहार से दैत्य नरेश राजा बलि मूर्छित हो गए, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि और दूसरे असुरों को भी जीवित कर दिया। फिर दैत्य गुरु के मार्गदर्शन में यज्ञ और तप करके दैत्य अपार बलशाली हो गए। कथा है कि दैत्यों का राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति से घबराकर सभी देवता पहुंचे तब भगवान विष्णु के पास। फिर श्रीहरि ने इंद्र को सहायता का आश्वासन दिया और माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद द्वादशी तिथि को वामन रूप में जन्म लिया।
1: वामन अवतार लिया और 100वें यज्ञ में उपस्थित होकर बलि से उन्होंने जब दान मांगा तो बलि ने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा खाली मुझे 3 पैर मैं चलूंगा, उसमें जितनी भूमि आ जाए आप मुझे प्रदान कर दीजिए। तो पहला उसमें उन्होंने पृथ्वी पे रखा तो पूरी पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आ गई। दूसरा उन्होंने आकाश मार्ग पे पैर रखा तो पूरा देवलोक आकाश लोक आ गया। फिर जो कुछ बचा नहीं तब उन्होंने कहा कि अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, तो बलि अपना सिर उनके आगे कर देता है और जब भगवान उसके सिर पे पैर रखते हैं तो उसकी इस भाव को देख के, इस श्रद्धा को देख के वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि भाई तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आपकी कृपा चाहिए। तो उन्होंने इसको पाताल लोक का पूरा साम्राज्य बलि को दे दिया और वहाँ पे द्वारपाल के रूप में अपनी उपस्थिति वो सदा बनाए रखते हैं।
0: कथा है किसी बीच राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान पर अपना 100वां और सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, जिसका आयोजन महर्षि शुक्राचार्य कर रहे थे। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर बलि तीनों लोकों के स्वामी बन जाते और उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाता। कथा है उसी समय भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि से उन्होंने कहा राजा मुझे दान दीजिए। बलि ने कहा मांग लीजिए जो आपका मन करे। वामन ने कहा 3 पग मुझे आपसे धरते चाहिए। दैत्य गुरु भगवान की महिमा जान गए, उन्होंने बलि को दान का संकल्प लेने से मना कर दिया। तब बलि ने कहा कि अगर ये भगवान है तो भी मैं इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। बलि ने संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप से एक पग में बलि का राज्य नाप लिया, एक पैर से स्वर्ग का राज नाप लिया। बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने उसके ऊपर पग धरा, राजा बलि पाताल में चले गए। भगवान ने बलि को पाताल का राजा बना दिया। बलि के वचन पालन से प्रसन्न हो श्रीहरि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। ऐसे में भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल भी बनना पड़ा था। मान्यता है कि राजा बलि को अमरता का वरदान प्राप्त है और वो आज भी श्रीहरि की छत्र छाया में पाताल लोक के राजा हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार हमें विनम्रता, त्याग, वचनबद्धता और ईश्वर की सर्वव्यापकता का पाठ पढ़ाता है। ये अवतार दर्शाता है कि जब भी धन पर संकट आता है और भक्त पुकारते हैं, तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। देव माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ये रूप धारण किया। तो देखा आपने कितनी दिव्य है श्रीहरि के वामन अवतार की कथा। आगे हम आपको भगवान वामन जन्मोत्सव पर पूजा उपासना की विधि बताने वाले हैं। बनी रही हमारे साथ।
2: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि भगवान वामन के जन्मोत्सव की तिथि पर जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा और भक्ति से वामन भगवान की उपासना करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं श्रीहरि। लेकिन इसके लिए कैसे करें भगवान वामन की उपासना, आइए आपको बताते हैं।
0: एक उपासना से प्रसन्न हो जाएंगे वामन भगवान। वामन द्वादशी पर देंगे मनचाहा वरदान। श्रद्धा और प्रेम से करें श्रीहरि के मंत्रों का जाप। मिट जाएगा अहंकार, पाप और संताप। भगवान विष्णु को लीलाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी लीलाएं श्रीहरि ने की हैं, उतनी किसी भी देव ने नहीं की। वामन अवतार भी भगवान विष्णु की दिव्य लीला का ही अंग था, इसलिए भगवान वामन के जन्मोत्सव में की गई पूजा का प्रताप बहुत ही दिव्य परिणामों वाला माना गया है।
1: 16 प्रकार से भी पूजन किया जा सकता है, 5 प्रकार से भी पूजन किया जा सकता है। जो प्रचलित है, माला, फूल, द्रव्य, सुगंध, धूप, दीप, भोग, वस्त्र, आसन, इन सब का जो क्रम है उसी से इनका पूजन कीजिए। और नहीं तो सिर्फ हरि नाम का, श्रीमन नारायण नारायण इस मंत्र का भजन भी कर सकते हैं, गायन भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। इससे सारी पूजाएं पूर्ण हो जाती हैं।
0: ये पूजा विधि हमें सिखाती है कि प्रभु छोटे से छोटे रूप में भी उपस्थित हैं और वे केवल हमारे भाव के भूखे हैं। जब हम प्रेम भक्ति के साथ वामन देव का पूजन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हम आंतरिक अंधकार को मिटाते हैं और स्वयं के भीतर छिपे हुए दिव्य प्रकाश को जागृत कर रहे होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन कैसे करें भगवान वामन की उपासना। वामन द्वादशी के दिन सुबह उठकर श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। स्नान करके श्रीहरि के वामन स्वरूप का चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद वामन देव को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और फल अर्पित करना चाहिए। फिर श्रीहरि के मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। वामन द्वादशी के दिन व्रत रखकर वामन अवतार की कथा कहने, सुनने या सुनाने से प्रसन्न होते हैं भगवान वामन। इस दिन चावल, दही और अन्य सफेद वस्तुओं के दान का महत्व बहुत ज्यादा होता है।
1: संभव हो तो सुवर्ण, रजत, इन सबके संग ब्राह्मण को दान करें, पूजन करें और चौमुख दीप जला के भगवान विष्णु की आराधना करने से आपका खोया हुआ वैभव, धन, प्रतिष्ठा सब आपको पुनः प्राप्त हो जाती।
0: ये कथा दान के महत्व को भी उजागर करती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि दान सोच समझकर और पात्रता को देखकर करना चाहिए, नहीं तो आपका सर्वस्व समाप्त हो सकता है। तो कल आप भी भगवान वामन का जन्मोत्सव भक्ति भाव के संग मनाएं, जिससे श्रीहरि की कृपा से आपके संकटों का नाश हो और घर परिवार में समृद्धि का वास हो।
2: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना ही कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बना करके हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक है अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों ही हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। पहली तस्वीर हमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा से मीनाक्षी जायसवाल ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना यहाँ पर हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़े ही अनोखे तरीके से बप्पा का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पंढरपुर से सामने आई है, जो कि राष्ट्रीय सिद्धांत हमें भेजे है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। और खास बात देखिए यहाँ पर यह है कि यहाँ बप्पा के साथ साथ उनके माता पिता यानी शिव और पार्वती जी की भी आराधना हो रही है। बप्पा की प्रतिमा के पास जो श्रृंगार किया गया है वो बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहाँ हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह।

0: जैसे वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं, वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित, मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या मंगल की वजह से व्यक्ति जीवन में मुकदमे में फंसता है? क्या राहु की वजह से जीवन में झूठे आरोप लगते हैं? क्या है मुकदमे में फंसने के कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
9: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
3: एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, विमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देश भर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का 11 तोले का सोने का मुकुट। युद्धाभ्यास 2026 के बीच अमेरिकी सैनिकों का सांस्कृतिक सफर, बीकानेर के जूनागढ़ किले पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान, भारत की सांस्कृतिक विरासत का दीदार किया। पहली बार भारत में गर्जेंगे 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी स्टेल्स फाइटर जेट F-35। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2026 का बनेंगे हिस्सा, 40 देशों की एयरफोर्स लेंगी हिस्सा। गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कलाकारों को सम्मानित करेंगी।

अब की बरस कम बरसे बारिश को तरसे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और ये बात होगी मानसूनी सीजन की। लेकिन इस बार मानसून मौन ज्यादा नजर आया है, ये अल नीनो की वजह से हो रहा है और अब तक सूखे के भी आसार हैं। ग्लोबल फूड सप्लाई पर पहले से ही चेतावनी आ चुकी है और मानसून पर छाया सुपर अल नीनो का साया। विदा हो रही मानसूनी टोली, रहेगी सूखी झोली। प्रकृति का संकट आज, क्या कल बिगड़ेगा खेती का काज? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे। मौसम और पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहेंगे।

तो इस बार अनुमान से भी कम मॉनसून की बारिश हुई है। अब मॉनसून का आखिरी दौर है तो देश में अब तक सामान्य से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है और पिछले 17 साल में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। साल 2009 में सामान्य से 18.3% कम बारिश रही है। 1 जून से 21 सितंबर के बीच में 703 mm बारिश हुई है। वहीं अमूमन 1 जून से 21 सितंबर के बीच 827 mm बारिश होती है। आंध्र प्रदेश में 40% तो पंजाब में 39% कम बदराबर से हैं और ये ऐसे राज्य हैं जो देश का पेट भरते हैं। पर इस महीने मानसूनी सीजन खत्म हो रहा है, कई इलाकों में बारिश का अनुमान है, लेकिन अब इतनी बारिश की संभावना नहीं है कि बारिश की कमी पूरी हो सके। उत्तर पश्चिम हिस्से में तेजी से मानसून खिसक रहा है। मौसम विभाग, मौसम एजेंसियों ने भी कम बारिश का अनुमान जताया है और पिछला अल नीनो साल 2023-24 में था जो कि इतिहास का पांचवा सबसे शक्तिशाली अल नीनो में एक शामिल रहा था। तब साल 2024 में वैश्विक तापमान में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अभी मानसून कमजोर है जिसका संकट अल नीनो अन्न और जल पर भी देखने को मिल सकता है। तो आशंका यह है कि अगले बरस तक अल नीनो का साया यूं ही बना रहेगा, भारत समेत दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अभी से ही तैयारी करनी होगी।

0: इस साल बादल कम बरसे हैं। अब हम आपको राज्य के हिसाब से जरा स्थिति भी समझा देते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कहां पर कितनी बारिश हुई है उस पर नजर डालें। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, 40% कम बारिश वहां पर हुई है। पंजाब जिसका आंकड़ा बताया 39% कम बारिश वहां हुई है। बिहार 37% कम बारिश, कर्नाटक 31% कम, केरल 28% कम बारिश यहां पर हुई है, हरियाणा में 23% कम बारिश हुई है, राजस्थान की बात करें तो 21%, महाराष्ट्र 17%, उत्तर प्रदेश 5% और छत्तीसगढ़ में भी 5% कम। और यह आंकड़ा देश पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि कम बारिश जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि अब खाद्य संकट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कम बारिश होना मतलब कि धरती सूखी रही है, इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ा है, और जाहिर सी बात है कि इसका असर आने वाले बाकी सीजन्स पर भी देखने को मिल सकता है। तो राज्यवार सबसे कम बारिश अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में हुई है, जहां पर 40% कम बारिश हुई, और उसके बाद नंबर आता है पंजाब का 39%। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब देखिए इसका असर गणेशोत्सव पर भी देखने को मिल रहा है। 25 सितंबर को गणपति विसर्जन होना है, लेकिन विदर्भ के अकोला की अगर हम बात करें तो इस बार गणपति विसर्जन के सामने एक अलग तरह की चुनौती खड़ी हो गई है, और ये भी मानसूनी बारिश की वजह से है, कम बारिश की वजह से है। अकोला में इस साल अब तक सामान्य बारिश की तुलना में सिर्फ 64% बारिश दर्ज की गई है, यानी कि 36% कम बारिश हुई है। करीब 50 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से नदियां, तालाब, जलाशयों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। तो ऐसे में अब प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से भी अपील की है कि कम पानी वाली नदियों और घाटों में 15 से 20 फीट और उससे अधिक ऊंची प्रतिमाओं का विसर्जन न करें। कई गणेश मंडलों ने प्रशासन की इस अपील को स्वीकार करते हुए बड़ी प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखने का फैसला किया है।
1: इस साल आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी बारिश की बहुत कमी है, सभी जगह में नदी नालों में पानी बहुत ही कम होने की वजह से, नदियों में पानी न होने की वजह से गणपति विसर्जन होना बहुत मुश्किल होने की वजह से हम ये सोच रहे हैं आपसे आपस में पंडाल मिलजुल के, जो आसपास के पंडाल है अपने एरिया अकोला में, वो पंडाल में हम उनकी मूर्ति ला के ये मूर्ति उनको दे के अगले साल हम इसी मूर्ति को फिर से स्थापित कर सके, ऐसी कुछ योजनाओं पर हम सभी मंडल के चर्चा विमर्श चल रहा है, ताकि मूर्तियों का विसर्जन अच्छे से ना हो सकने की वजह से ये सब चीजें करना पड़ सकता है।
0: महीने की ही हम बात कर लेते हैं, मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन बद्रा 15% कम बरसे हैं, यह आंकड़ा कम नहीं है, लिहाजा इसका असर अब आगे अन्न और जल पर भी दिख सकता है। उधर महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में फसलें खराब हुई हैं, सरकार ने सूखे की स्थिति और राहत उपायों को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई है। शनिवार से पहले सूखे को लेकर पहली अधिसूचना जारी की जाएगी और इसमें किन किन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है और वहां पर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसी को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। फडणवीस ने यह भी बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में फसलों पर कम बारिश का असर पड़ा है, जैसे मक्का कपास दोनों फसलों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है, नुकसान क्योंकि बहुत ज्यादा किसानों को हुआ है इन इलाकों में। जबकि अगर कोंकण की बात की जाए तो वहां पर धान की फसल पर असर देखने को मिल रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
2: राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळामध्ये सविस्तर चर्चा झाली। दुष्काळाच्या काय काय उपाययोजना करायच्या, एकूण परिस्थिती काय आहे या संदर्भातलं विश्लेषण करण्यात आलं। यामध्ये गेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांप्रमाणे आता जवळपास जो प्राथमिक डेटा आहे तो सगळा कलेक्ट करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्या आधारावर दुष्काळाच्या संदर्भातली पहिली आपली जी अधिसूचना आहे ही शनिवारपूर्वी आम्ही काढणार आहोत।
0: तो देश में इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से 15% कम रही है और यह आंकड़ा पिछले 17 सालों में सबसे कम रहा है। इससे पहले साल 2009 में बारिश में 18.3% कमी दर्ज की गई थी। इस साल बारिश की कमी का मुख्य कारण सीधे तौर पर अलनीनो को ही माना जा रहा है। 1 जून से 21 सितंबर तक की अगर बात की जाए तो बारिश का आंकड़ा काफी कम रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। डॉक्टर गुरफान बेग हमारे साथ इस वक्त हैं सफर से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा, वेदर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आनंद आरा जी एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, कोई उम्मीद बची है या नहीं डॉक्टर गुरुदत्त जी, आपसे जानना चाहूंगी। हालांकि सितंबर है और मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन कोई उम्मीद बची है या नहीं, पहले उम्मीद जगा दीजिए थोड़ी।
3: देखिए, अगर आपकी जो आंकड़े दिखाए गए, जो मुख्य राज्य हैं जिनमें बहुत स्थिति गंभीर है, जो खेती को ज्यादा, इस साल एक दुर्भाग्य की बात है कि मेघालय जैसे राज्य में बहुत कम वर्षा हुई है। अभी एक मानसून का सिस्टम अगर देखेंगे तो बंगाल खाड़ी में बना हुआ है और ये सिस्टम थोड़ा बहुत क्षतिपूर्ति कर देगा उड़ीसा और बंगाल, यहाँ सभी क्षेत्रों से लेके विदर्भ विदर्भ तक और मध्य प्रदेश का कुछ पूर्वी एरिया है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे वर्षा मिलेगी। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति अब नहीं है, चूंकि ये सिस्टम अंतिम सिस्टम है, अब कोई सिस्टम आने वाला नहीं है। 30 सितंबर मानसून की विदाई है और विदाई चूंकि शुरू हो चुकी है राजस्थान से, हरियाणा से, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात है, तो अब धीरे धीरे एक दो दिन में पश्चिम मध्य प्रदेश का एरिया भी इसमें होगा। और चूंकि ये जो सिस्टम की विंड हवाएं आती है तो इस सिस्टम को क्या देंगी, अगर ये मानसून की विदाई नहीं होती इन राज्यों से और विंड नहीं आई होती तो ये सिस्टम आगे बढ़ के कुछ हमको पानी दे सकता था, लेकिन ये चूंकि विदाई की विंड आ रही है और उसको रोकेगी, क्योंकि अब -15% है। लेकिन -15% जो है वो नॉर्मल में मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको भरपूर पानी मिल गया। आधे राज्यों में तो बहुत स्थिति गंभीर है, कहीं 40%, कहीं 35%। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, रबी की फसल में चूंकि सुपर अलनीनो है, बहुत ज्यादा है अलनीनो का प्रभाव, तापमान बढ़ेगा। दूसरी बात, जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन नहीं है आगे रबी की फसलों में, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो वर्षा के पानी पर निर्भर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई पानी आगे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बची है, और खासकर ये अलनीनो जो है ये करीब फरवरी तक प्रभाव डालता है। लेकिन जरूर है कि इस अलनीनो से इस बार ऐसा हुआ कि कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हुई। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 10 जिले छोड़ दें तो सभी जगह सामान्य वर्षा, -6% चल रहा है, और वही मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो एकदम पिछड़ गया है पानी में। तो इस साल अलनीनो के प्रभाव के कारण कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हुई, कहीं बहुत कम वर्षा हुई, और खासकर आपने जून में देखा होगा कि वर्षा ना के तौर कोई तो किसान अपनी फसल नहीं बो पाए। अब जब पानी गिरा तो उनके पास फसल थी ही नहीं उसके लिए, तो काफी किसानों को मार है, पानी उनके पास नहीं है, जलाशय में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। रबी की फसल में जिनके पास पानी होगा, अगर पर्याप्त बिजली मिलेगी तो वो जिंदा रह सकेंगे फसल, लेकिन जिन किसानों के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है उनकी स्थिति गंभीर होगी। बिजली का क्या होगा ये बहुत सोचने की विषय की बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है नमी की, जमीन में कितनी नमी है तो हमको सपोर्ट करेगी, तो नमी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती आने वाले रबी की फसलों के दिनों में। तो स्थिति तो गंभीर रहेगी, किसी तरह से हमको 6-8 महीने अलनीनो को झेलना और काटना है, क्योंकि भारत में परिस्थितियां अलग है, हम संकट से निकट जाएंगे ये निश्चित है।
0: ठीक है, उम्मीद आप जगा रहे हैं कि संकट से हम बच जाएंगे, लेकिन देखिए आंध्र प्रदेश 40% कम, पंजाब दूसरे नंबर पर 39% कम, और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनको कहा जाता है धान का कटोरा है दोनों राज्य, लेकिन यहां पर असर सीधा खेती किसानी पर पड़ा है, इस पर बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर गुफरान आपके पास आना चाहूंगी, यहीं से अगर हम स्थिति को आगे बढ़ाएं, देखिए इसको लेकर चर्चा हमने बहुत बार की है अलनीनो का असर, अगर आपको याद हो तो शुरुआत से ही, जब से मानसून आया भी नहीं था उससे पहले से हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि कितना असर होगा, कहां कहां किस किस राज्यों में होगा, और आप सभी लोग यही बता रहे थे कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं बहुत कम होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वो फिर भी बच गया, वहां पर ठीक ठाक है, लेकिन हमारे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर 40% से लेकर 5% कम बारिश हुई। सर सीधा सा सवाल, इसका असर क्या आने वाले सीजन पर भी देखने को मिलेगा क्या?
4: ये ये काफी एक गंभीर सी स्थिति बन गई। आपको मैं बताऊं, हम जब पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा करी थी तो हमने इसको बोला था सुपर एलनीनो, और सुपर एलनीनो का नॉर्मली ये हो जाता है कि 2 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्सिमम गर्म होता है और उसको ही हम सुपर एलनीनो बोल देते हैं। लेकिन अभी खुद जाने का नाम नहीं ले रहा है और गर्मी अभी मतलब डिसेंडिंग शुरू नहीं हुई है टेम्परेचर की, अभी 3.07 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है वार्मिंग ऑफ द, और ये मेरे ख्याल से पिछले सेंचुरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा वार्मिंग हो रहा है, और इसके बाद में न्यूट्रल कंडीशंस आने का कोई नाम नहीं है अभी तक, यानी कि अभी तक जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वही चल रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रही, इनफैक्ट इस सेंचुरी का पहला लानीना हमने पहले देख लिया, 2019 से 2022 तक चला, 3 साल तक, जो कि कभी नहीं हुआ था इस सेंचुरी में, वो एक बार हो गया, लानीना तो हो गया। लेकिन अभी जो खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये एल नीनो इतना खिंच गया, जो कि नॉर्मली 12 से 15 महीने के आसपास होता है, लेकिन अगर इतना खिंच गया तो इसके बहुत कैटास्ट्रॉफिक परिणाम होंगे, जो हमको बहुत सारी चीजें जो अभी विदित भी नहीं है, जो इस टाइप की चीजें होंगी, वो बड़ा काफी बड़ा खतरा लग रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 12 से 15% काफी होता है, इनफैक्ट जो प्रेडिक्शन हुआ था वो हुआ था 94% रेनफॉल का, यानी कि 5 to 6% का, लेकिन वो खुद ही 12 से 15 चल गया। अभी ये जो सिस्टम डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल के अंदर, उससे लग रहा था कि मानसून कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा, लेकिन वो वीक पड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये 15 के आसपास रुकेगा, और जब ये वाली सिचुएशन होगी उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो मिलना चाहता हूं। जैसा आपने खुद बताया कि पंजाब और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा डिफिशिएंट है, मैं पंजाब के बारे में बात करना चाहूंगा। पंजाब के अंदर किसान जो है ये वेट करते रहे कि हम कब जो है हमारी पैडी लगाएंगे, बारिश होगी कभी लगाएंगे पैडी होगी, और फाइनली उन्होंने जो भी कुछ है, कम बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पैडी लगा दी। अब वो कितनी पैडी लगी है, कितना क्रॉप होगा चावल का, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन ये मेरा जो अनुमान है वो ये है कि ये पेडी की जो फसल है, बहुत पंजाब की डिफिसिट रेनफॉल होने से बहुत वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। अब कैसे प्रभावित होगी उसको देना देखना है।
0: सर, इसका
4: जहां
0: बड़ा
4: तक
0: कारण ये भी है ना कि जमीन के अंदर पानी भी नहीं है, मॉइस्चर बहुत कम है, नमी की भी कमी है, कहाँ से
4: या
0: आएगा पानी?
4: और यही कारण है कि मतलब ये धान की जो फसल है उसके लिए हमको पानी भरा हुआ चाहिए पूरा, और यही रीजन था कि पहले, बहुत पहले, यानी अप्रैल मई के अंदर पहले इसकी सोइंग हो जाया करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009-10 के बाद, 10 से ये इसको आगे खिसकाया, इसकी वजह से कि बारिश हो जाएगी और बारिश के अंदर धान की फसल बोने में अच्छा रहेगा। लेकिन अब वो सिचुएशन वो हो ही नहीं रही है। तो एक तो ये है कि बारिश नहीं होने से जो वाटर रिसोर्स है, ऑलरेडी जो वाटर टेबल है उसका यूज होगा, क्योंकि धान तो होना है, किसान यूज करेंगे तो कितना तक कर सकते हैं, कितना पानी का डिफिसिट रहेगा इतना धान के अंदर, ये सब चीजें जो है खतरा सा पूरी तरह से मंडरा रहा है।
0: चलिए डॉक्टर सुशील, अब आपके पास आना चाहूंगी, आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं। सर, जल्दी से मैं आंकड़ा पढ़ देती हूँ। आंध्र प्रदेश 40% कम बारिश हुई है, पंजाब में 39, बिहार में 37, कर्नाटक में 31, केरल में 28, हरियाणा में 23, राजस्थान में 21, महाराष्ट्र में 17, उत्तर प्रदेश में 5 और छत्तीसगढ़ में 5% कम बारिश हुई है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। कितना गहरा संकट आगे आने वाले समय में हो सकता है, फूड संकट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है आने वाले समय में?
5: बिल्कुल, खाद्य संकट के अलावा जो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो भारत एक एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी है, तो सीधे सीधे एक तरफ मेरी आपकी थाली में भोजन कम आने वाला है, दूसरे सीधे सीधे प्रभावित होने वाला है, और उनकी जब इकोनॉमी भी प्रभावित होगी और साथ में हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है, और उसके अलावा जो अनेक अनेक जो संकट हम और आप लोग उससे जुड़े हुए देखेंगे, तो आगे आने वाले समय में निश्चित ही बहुत परेशानी वाला समय होने वाला है। और ये परेशानी एक प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है, ये होनी थी, लगातार इस पे अलग अलग फोरम पर ये आशंका जताई जा रही थी कि भाई जिस जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन का दौर है, अर्थात जब क्लाइमेट चेंज के दौर में हम और आप लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कि कुछ भी चीजें अब प्रिडिक्टेबल नहीं रह गई हैं। मतलब हम और आप अगर प्रिडिक्ट करके चलेंगे तो वैसा नहीं हो रहा है, हम और आप लोगों ने कई बार इस बात पे चर्चा भी की। मिसाल के रूप में मैं मुख्य रूप से बुंदेलखंड से वैसे जुड़ा हुआ हूँ, और बुंदेलखंड में इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई, आपको भी पता चला होगा, आपने अपनी आंकड़ों में भी देखा होगा। और ये जो सुपर अलिनो हुआ और जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सुपर अलिनो भी कह सकते हैं हम, इसकी वजह से कई कई भारत के हिस्सों में एक ही समय में अलग अलग मौसम के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। कहीं जहां पर बारिश कम होती थी वहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखी गई, और जहां पर खूब बारिश होती रही है जैसे पंजाब का आपने जिक्र किया तो या बिहार का किया, तो वहां पर देखिए रिलेटिवली कम बारिश हुई। तो अब ऐसी परिस्थितियों के लिए अब हम वही है कि हम और आप लोग तब जागते हैं जब कहते हैं ना प्यास लगती है तब कुआं खोदने की बात करती। जब पिछले 2015 से लगातार पेरिस जलवायु समझौते के बाद से दुनिया में यह आशंका जताई जा रही थी कि हम और आप लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन तो करने ही पड़ेंगे और हमें और आपको अपने अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें आपको अपने न्यू नॉर्मल न्यू नियम सेट करने पड़ेंगे प्रकृति हितैषी जीवन के लिए। वो तो हमने किया नहीं। अब आज जब प्रकृति के दिए हुए हम और आप लोगों के सामने परिणाम आ रहे हैं तो अब हम और आप लोग फिर से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कहा गया है कि भगवान तो मेरे आपके पापों की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति निश्चित ही जो भी हमारे आपके काम है, जो भी हमने प्रकृति विरोधी काम किए हैं उनकी सजा तो निश्चित ही मिलेगी। आप हम लोगों ने देखा कि एक तरफ दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपने देखा यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी, ये भी एक प्रकार का यही था प्रकृति विरोधी कामों की वजह से हम और आप लोगों ने इसको महसूस किया। या दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धरती का तीसरा ध्रुव जिसे हिमालय कहते हैं वहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्थात ग्लेशियर टूट रहे हैं और वहां से अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां, जिसमें हमने अपने भारत के बिहार राज्य में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी प्राकृतिक तबाही को भी देखा,
0: नेपाल में हाल फिलहाल में हमने देखी है तबाही, उसका असर वहां भी देखा है। सुशील जी लौटते एक बार आनंद जी को भी इंक्लूड कर लो। आनंद जी एक और रिपोर्ट में पढ़ देती हूँ, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2027 में ग्लोबल फूड क्राइसिस का साया मंडरा रहा है, अलनीनो के प्रभाव में हम लोग सब हैं और पूरी दुनिया पर असर इसका होगा, खाद्य संकट और ज्यादा गहराने वाला है। क्या लगता है आने वाले समय में स्थिति कैसी रहेगी आनंद जी?
6: देखिए आपके तीनों विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर बेग, डॉक्टर द्विवेदी और डॉक्टर मिश्रा साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये बहुत ही गहरा संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी असेसमेंट हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर उसी चीज़ को मैं दोहराना चाहूँगा कि ये जो एल नीनो आया है ये अभी तक जैसा डॉक्टर बेग ने कहा इतना उतरने के हिसाब में नहीं है, मूड में नहीं है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है थोड़ा सा पता किया है तो ये तो अभी 4 डिग्री के ऊपर जाएगा और उसका मतलब ये है कि अगले 6 से 8 महीने हमें किसी तरह की ये बारिश की संभावना नहीं नज़र आती। और जैसा जेपी मॉर्गन ने कहा बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जिस समय बारिश नहीं होती, क्योंकि इंडिया में 50-55% के करीब हम इरिगेशन जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन के पे डिपेंडेंट है, बाकी की जो है वो वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, पर कुछ ऐसे हमारे एरिया हैं जहाँ पे बहुत धान होता है, जहाँ पे और दूसरी खेती होती है, वहाँ पे बरसात फिर भी उतनी बुरी नहीं हुई है। तो एक तो वो है और दूसरा ये है कि इसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होगा, पर मैं ये समझता हूँ कि भारत ने जो अभी तक पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं उनमें एक तो सबसे बड़ा ये है कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट्स की तरफ जा रही है, मिलेट्स के लिए एक तो शॉर्ट क्रॉप होती है थोड़ी सी रिलेटिवली, और थोड़ा उसके अंदर पानी की कमी ज़रूरत होती है, कम ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो एक तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि और इसी के साथ साथ हमें ड्रिप इरीगेशन, वो क्रॉप्स जो कम पानी यूज़ करती हैं हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। IARI बहुत सारी अपनी धान की वैरायटीज के ऊपर इस तरह का काम कर रहा है कि जहाँ पे पानी की बहुत कम ज़रूरत हो, पर हमें ड्रिप इरिगेशन ग्रीन हाउसेस की तरफ हमें बढ़ना ही होगा और इसके आपके पास कोई दो उपाय नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर हमें किसी तरह से, अब जैसे पंजाब का डॉक्टर साहब बोल रहे थे, पंजाब के अंदर एक तो इरीगेशन तो है ही है पर वाटर टेबल इतनी नीचे जा चुकी है, वहाँ पे इसकी आपकी पैडी की क्रॉप लगाने के लिए, क्योंकि पहले तीन तीन क्रॉप ले लेते थे, दो दो क्रॉप तो

0: ऐसे चेयर्स हैं जहाँ पे ये बहुत कुछ और उगा सकते हैं, तो इनको आपका क्रॉप से शिफ्ट करना ही एक पैटर्न बनना चाहिए। और उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इंसेंटिव्स किसान को देने हैं वो देने हैं। तो और ये तो हम जानते हैं कि भाई हमारा 15% से 20% के करीब हमारा जीडीपी फ्लोट करता है अपना एग्रीकल्चर की वजह से।
1: जी
0: और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो आने वाली है लेबर के लिए, क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर श्रिंक करता है, छोटा होता है, तो उसी हिसाब से जो 40% के करीब हमारा एग्रीकल्चर के अंदर लेबर बना है उनके पास नौकरी शायद ख़त्म हो जाए। पर यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ इंडिया ने बहुत कुछ किया है। अब ये इंडिया 19वीं और शताब्दी का तो बिल्कुल ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: और 20 से लेके 21 के अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आज हमारे पास फूड के रिजर्व्स हैं, और आजकल जिस तरह से पॉलिसीज का काम उन पे काम किया जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है।
1: बिल्कुल हाँ
0: कहीं पे भी कैसा क्राइसिस हो, हमें लगे नहीं ऐसा, पर हमारी सोसाइटी का एक कैरेक्टर है जो इतना रेजिलियंट है कि हम किसी भी तरह के खतरे को हम अच्छी तरह से उसको
1: बिल्कुल
0: टैकल कर
1: आनंद
0: सकते हैं।
1: जी। और इसके लिए सबसे पहले मौसम विभाग ने आगाह किया था, डॉक्टर बेग भी हमारे साथ हैं, चर्चा शुरू से हम कर रहे थे कि 10% कम रह सकता है इस बार मॉनसून, कम बारिश हो सकती है, लेकिन उससे भी कम हुआ है। डॉक्टर बेग आप ही के पास आना चाहूंगी, असर, क्योंकि हमने पहले भी किया कि इसका असर केवल एशियन कंट्रीज पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज पर भी पड़ेगा। कुछ एक जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये भी तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है और नुकसान वहां पर भी बहुत ज्यादा हुआ है कम बारिश की वजह से। खाद्य संकट को लेकर जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पूरे दुनिया के लिए ही हैं।
2: जी देखिए, ये वाला जो आपने सब बताया है कि ये कहीं पे कुछ असर करता है, कहीं पे कुछ असर करता है, यानी कि होते वही एक एडवर्स इफेक्ट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस बार जो दूसरा, जो बाकी भारत के अलावा जो दूसरे देशों में खतरा मंडरा रहा है, वो है कि गर्मी इतनी ज्यादा होने की संभावना है इन लाइक सुमात्रा या मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस टाइप के जो जंगल्स हैं वहां पे आग तो लगती ही है, मतलब उसको आप बचा नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े एरिया में आग लगेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आग लगेगी, और वहां से निकलने वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करते हैं, और जिधर की तरफ की विंड डायरेक्शंस होती है उधर की तरफ होते हैं। और ये देश क्योंकि हमारे देश के नजदीक है आसपास के एरिया में, और इतना तक अगर इन्होंने ट्रेवल किया तो जो लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट होता है पोल्यूटेंट्स का, और इन जनरल जो विंड्स की स्थिति होगी वो हमारे यहाँ पर मंडराने का काफी, मतलब उसका डेंजरस सिचुएशन होगी, हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने बताया साउदर्न हेमिस्फेयर में अब गर्मी आने वाली है,
1: हाँ
2: नॉर्दर्न स्पेयर में हमारे जो है सर्दी आने वाली है। तो अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आती है और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसका असर ये चारों तरफ फैल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब वो गर्मी की वेव्स आएंगी अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो हमारा जो है सर्दी की ऋतु है वो एकदम से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, ऐसा लगेगा सर्दी नहीं है। जैसे ही उसकी वेव्स की डायरेक्शन दूसरी तरफ हुई, अपना प्रकोप दिखाएगा एलिनो, और टेम्परेचर जो सर्दी का नॉर्मल होता है वो अपना एकदम से बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आएंगे सर्दी के समय में, अभी आने वाली जो ठंड है उसके अंदर, उसका क्या असर होने वाला है, उससे बहुत सारी चीजों प्रभावित होती है। इनफैक्ट फसल को हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, या ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो या ठंडा टेम्परेचर हो, फसलें उसी हिसाब से उनकी उनकी जो टेंडेंसी होती है
1: बिल्कुल
2: जो कि उसको झेल सकती है। लेकिन अगर इस तरह के फ्लक्चुएशंस आए, आपके हेल्थ को भी ये बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि बॉडी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन है उसको एक्नलाइज होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: लेकिन अगर इसके अंदर ही हुआ तो जो खतरे हेल्थ के होते हैं, ब्रोंकाइटिस की, अपर रेस्पिरेटरी
1: हाँ
2: सिस्टम, लोअर यानी कि जो एलर्जी होना उसका, ये सब चीजें हैं
1: ठीक है,
2: जो कि
1: जिस पर
2: संभावना है
1: इफेक्ट हो
2: जिनकी
1: सकता है।
2: बिगड़ने
1: बिल्कुल
2: की।
1: आनंद जी ने ना फूड रिजर्व्स की बात की थी, जिसका जवाब सुशील जी आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी से डॉक्टर बेग ने जिस बात पर फोकस किया है, डॉक्टर गुरुदत्त मैं चाहूंगी इस पर एक राय आप अपनी रख दीजिए कि क्या आने वाले सीजन्स पर इसका असर होगा भारत में?

0: अगर हम इसके बाद की बात करें तो सर्दी का सीजन कैसा रह सकता है?
1: देखिए मैं एक बात बता दूं मोटी मोटी कि अक्टूबर से हमारे यहाँ संक्रमण काल होता है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चार अगले जो 4 महीने आने वाले हैं फरवरी तक, तो अल्लीनो का सुपर इफेक्ट होगा और सर्दियां कम पड़ेंगी। तापमान चूंकि हमारे यहाँ रबी फसल होती है, गेहूं की, चना है, सरसों है, तो उनके लिए भरपूर टेम्परेचर कम होना जरूरी है, नहीं तो उत्पादन भी कमी होगी। दूसरी बात, चूंकि नमी है, पानी ज्यादा लगेगा, जलाशय में कम स्थिति है भारत में और जमीन के अंदर भी पानी है, तो बहुत लोड पड़ेगा, बिजली कैसे मिलेगी आने वाले दिनों में। लेकिन भारत में एक सबसे अच्छी बात है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं नवंबर में दिसंबर में जनवरी में, तो अगर वो थोड़ा बहुत ही पश्चिमी विक्षोभ आए, बर्फबारी होगी, उससे पानी गिरा, तो वो पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इस सुपर अल्लीनो का जो पूर्व का प्रभाव था, अगर आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर जनवरी में वर्षा हमारे यहाँ जिसको माउठा बोलते हैं नहीं हुई है, लेकिन अगर ये WD स्ट्रांग हो गया, बर्फबारी हुई या बर्फ ज्यादा पिघल गया, तो हमको हो सकता है कुछ पानी मिल जाए तो हमारा काम चल सकता है। ये समुद्र की परिस्थितियां तापमान पर निर्भर करेंगी, लेकिन सुपर अल्लीनो है, उसका प्रभाव शुरू हो चुका है, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन चूंकि भारत भौगोलिक दिशाओं में अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो हो सकता है कुछ जगह अच्छा प्रभाव भी इसका हो, कुछ जगह खराब भी हो, लेकिन अगर तापमान कम बनता है तो फसल गेहूं की अच्छी आएगी।
0: ठीक है, कुछ डब्ल्यूडी से भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ गुरुदत्त जी लौटूंगी। दलहन तिलहन और मुख्य अनाज को लेकर भी चर्चा करेंगे, स्थिति कैसी है और कितने फूड रिजर्व्स इस वक्त भारत के पास है, कितना भारत इसको लेकर तैयार है, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स है वो बता रहे हैं कि खाद्य संकट हो सकता है, हमारी तैयारी कितनी है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: आपके बरस कम बरसे बारिश को तरसे, और बारिश कम हुई है कहां कहां, कितने परसेंट कम हुई है इसका आंकड़ा लगातार हम बताते जा रहे हैं, दिखाते भी जा रहे हैं, लेकिन असर कहां कहां हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही कि खाद्य संकट हो सकता है, लेकिन हम कितने तैयार हैं इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आनंद आर्य जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि हमें वैकल्पिक अनाज की तरफ भी जाना चाहिए, जिसको लेकर सरकार भी अपनी तरफ से पॉलिसीज बना रही है, लेकिन इसी के साथ साथ असर कितना है, रिजर्व्स, फूड रिजर्व हमारे पास कितना है। डॉक्टर सुशील, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आनंद जी की बात को आगे बढ़ाइएगा, और एक आंकड़ा मैं यहां रख देती हूं। अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें तो 1 करोड़ टन घटने की आशंका है, और पिछले साल की तुलना अगर इसको की जाए तो 6.5% कम उत्पादन इस बार हुआ है। इन टोटल 14.4 टन कम चावल का उत्पादन इस साल भारत में हुआ है।
1: अगर भारत सरकार के ही दूसरे आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो भारत सरकार के पास जो बफर स्टॉक है, जो आज की डेट में रखा हुआ है केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, तो उनके अनुसार लगभग तीन गुना ज्यादा बफर स्टॉक है। मतलब 60 मिलियन टन के आसपास बफर स्टॉक है, और ये इसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल के साथ साथ और दूसरी क्रॉप्स के बफर स्टॉक के रूप में रखा गया है, जो भारतीय खाद्य निगम के जो अलग अलग गोदाम है। लेकिन वही बात है ना कि अगर मेरी जेब फटी हो और उसमें मैं कुछ रखूं तो वो तो गिरता रहेगा। तो अब जो ये जो पूरा सिस्टम है, ये बहुत पहले बनाया गया है, इसमें भी नवीनीकरण की जरूरत है, क्योंकि एक आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में जितना खाद्य आपूर्ति चाहिए बांग्लादेश जैसे देश के लिए, उतना तो हमारे यहाँ चूहे ही खा जाते, तो ये भी एक बहुत ही दुखद बात है, इस तरफ भी गौर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बहुत भी बड़ा संकट जो मुंह बाए खड़े है, वो हिडन हंगर का है, वो छिपी हुई भूख, जिसे हम कह सकते हैं भुखमरी। मतलब खाना तो मिल रहा है, लेकिन वो पौष्टिक खाना चाहिए जो हमारा, क्योंकि भारत देश युवा देश है, युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उन्हें बहुत ही पौष्टिक खाना चाहिए। अब वो पौष्टिक खाने के लिए हमें भोजन की अलग अलग वेराइटी चाहिए, और जैसे कि अभी आदरणीय आनंद आर्य जी ने कहा कि एक स्वाभाविक विकल्प सीरियल्स हैं, या फिर हम मोटे अनाज, या हम श्री अन्न कह सकते हैं। और दूसरा एक विकल्प जो हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो CSIR की लैब हो या DRDO की, या जो IRI और ICAR और ये सब जो भी प्रयोगशालाओं पे काम हो रहे हैं, तो वो ऐसी बायो फोर्टिफाइड फसलें भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जो जो पोषक पदार्थ हैं उनकी अगर कमी है तो उनको बायो फोर्टिफिकेशन के द्वारा या जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा जीन संवर्धित क्रॉप्स की अब आवश्यकता है। तो वर्तमान दौर चूंकि बायोटेक्नोलॉजी का योग है, तो स्वाभाविक रूप से अब हमारी आपकी आशाएं, हम लोगों ने पुस्तकों में तो पढ़ा है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम भुखमरी को भी दूर कर सकते हैं, हम पोषक फसलों को भी उगा सकते, तो अब ये एक चैलेंज होगा बहुत बड़ा कि वो जो वैज्ञानिकों ने ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई थी, सूखा प्रतिरोधी फसलें जो कम पानी में उग सकती थी, तो जब ऐसी स्थिति में जब भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश कम हुई है, दुनिया में भी ऐसे हालात बन रहे हैं, तो क्या उन फसलों से हमारी मानवता का जो भूख है वो शांत हो पाएगी कि नहीं।
0: सुशील जी,
1: अब आने वाले समय में हमें आपको
0: आप खुद बुंदेलखंड से आते हैं सर, और आप खुद किसानी, खेती किसानी से ताल्लुक रखते हैं। आनंद जी ने एक बड़ा अच्छा विकल्प और भी कहा, और इसको लेकर बार बार चर्चा होती है, हर मंच से प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि हमें वैकल्पिक अनाज की तरफ जाना चाहिए, और उसमें भी सबसे बड़ी बात की मोटे अनाज की तरफ। ग्राउंड रियलिटी सर अगर आप हमें समझा पाए, क्या किसान उसके लिए तैयार है, क्या किसान अपनी जो फसलें हैं बेसिक फसल जो ऑलरेडी वो उगाता है, क्या उसको छोड़ सकता है? क्योंकि ये हमारा आप सभी जानते हैं कि पहली बात तो पर्याप्त जलाशय नहीं है, उतना वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये है कि धरती के नीचे भी पानी कम होता जा रहा है।
1: नवजोत जी, हमें और आपको चमकदार चीजें अच्छी लगती हैं, ये वर्तमान दौर की सच्चाई है। अब चमकदार चीजों में जब से ये गेहूं आया चमकता हुआ, जो अलग अलग नॉर्मन बोरलॉग साहब के समय से हरित क्रांति के माध्यम से, और हमारे देश में M.S. स्वामीनाथन साहब ने उसको जोड़ दिया, और अच्छा भी किया, क्योंकि हम नहीं तो भूखे एक टाइम सो रहे थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, और हम लोग PL 480 वाले गेहूं पर आश्रित थे, जो हमें अमेरिका से और यूनाइटेड नेशन के नियमों के अंतर्गत हमें मिल रहा था, उसके गिफ्ट के रूप में हमें कांग्रेस ग्रास भी मिली। तो हमें चमकता हुआ गेहूं जो जब आया, तो इसने जो हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी उन पर हावी हो गया, और जो हमारे मोटे अनाज थे वो निश्चित ही उनका प्रोडक्शन कम हुआ। वर्तमान दौर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोगों के बीच में जाके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जोड़ दिया। भारत में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, गोष्ठियां हुई, लोगों को अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सिलेबस तैयार किया गया उसमें भी मिलेट श्री अन्न के बारे में चीजें जोड़ी गई, बच्चे हमारे जाने, नई पीढ़ी जाने, और अब लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई गई। लेकिन अभी भी नाकाफी है, बहुत कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी नाकाफी है। अभी भी किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत है, तभी वो जो आप वर्तमान दौर में जो फसलें उगा रहे हैं तब वहां से हटके हाँ। वो मिलेट्स या श्री अन्न जैसे फूट पर आएंगे, और इसके लिए उनको भी कहीं ना कहीं से उनको तैयार करना पड़ेगा किसानों को। मिलेट्स होते हैं, ये सुपर फूड होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज कराते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस्ड मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, कम पानी में उगते हैं
0: जी। और यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारी किसानी सेहत के लिए भी अच्छा है। यही इसी पर आनंद जी आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए एक और चीज, एक बड़ा एग्जांपल जो सेट किया गवर्नमेंट ने भी कि ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में भी सुपर फूड को, मिलेट्स को रखा गया ताकि दुनिया भी देखे कि ये हमारा फूड कैसे, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं, यानी दिखाने की कोशिश। लेकिन क्या हम अपने यहाँ पे किसानों को इसके लिए तैयार कर पाए हैं या पाएंगे, क्या पॉलिसीज वाकई उतनी हैं?
2: देखिए अभी मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह से बड़ा नेसेंट स्टेज में है, बिगिनिंग की स्टेज में है जो कैंपेन हमने इसका चलाया है। तो हमारे पास इस समय, हम बहुत लकी हैं कि पिछले कुछ सालों की पॉलिसीज की वजह से या जैसे भी आप कह लीजिए, हमारे पास इस समय अन्न का अच्छा भंडार है, और उसकी वजह से हम एक तो ये कि जितनी शॉर्ट क्रॉप होगी, जैसे आपने कहा कि एस्टिमेट है कि चावल 1 करोड़ टन के करीब कम हो जाएगा, तो उसके लिए बफर स्टॉक है 4 करोड़ टन के करीब हमारे पास, तो वो उतना फिक्र करने की बात नहीं है। पर उसी के साथ इन्हीं सब चीज़ों को लेके, जबकि इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि फूड शॉर्टेज होने वाली है वर्ल्ड के अंदर, और उन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारे यहाँ भी ये प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये जो हमारा फूड स्टॉक है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ वरदान है कि उसको हम यूज करके प्राइसेस स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे नीचे जो लोअर रैंक ऑफ पॉपुलेशन है उनके ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े। और जिस तरह से भी जो हम कर रहे हैं कि भाई जो हमारा वेलफेयर नेट है कि भाई हम इतना अन्न देते हैं लोगों को, तो उसके अंदर थोड़ा चेंज हो सकता है कि आप उसमें चावल और गेहूं की जगह आप मिलेट्स ज्यादा दें तो इसके लिए, पर इस ये सब तो हमें अब वॉर फुटिंग पे करना होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा डॉक्टर द्विवेदी से थोड़ा डिफरेंट है मेरा व्यू, ये जलवायु परिवर्तन नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि ये जलवायु का जो हमारा पूरा सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है, तो इसीलिए आप इस तरह का एल नीनो का इफेक्ट देख रहे हैं। और अगले 4-5 महीने में जो हमारी रबी की क्रॉप आती है उसका इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमें क्लाइमेट के ऊपर, अभी पिछले हफ्ते भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज और जो एडवांस कंट्रीज हैं, वेस्ट की कंट्रीज हैं, ये बहुत हमसे 6 से 7 गुना करती हैं। तो इसके लिए जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अब क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, अब नई क्लाइमेट सिस्टम ही हमें बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आज से जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ इस देश में ही नहीं होगा, हमें सारी दुनिया में इस चीज को काम करना होगा, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो आने वाले दिन बहुत ही कठिन हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, एक बार डॉक्टर बेग आपके पास आना चाहूंगी। जो नदियों को जोड़ने की योजना थी वो अभी किस मुकाम पर पहुंची है, कहां कहां योजना जमीन पर साकार हुई है, अगर आप बता पाएं? क्योंकि हर साल तो हम देखते ही आ रहे हैं कि पहाड़ और मैदान, मतलब बारिश होती है लेकिन फिर भी एक बड़ा इलाका है, एक तो बाढ़ में डूब जाता है और बहुत से ऐसे इलाके जहां पर सूखा बहुत ज्यादा होता है।
3: ये नदियों को जोड़ने का जो सिस्टम था, लिंकिंग ऑफ द रिवर का जो प्रोजेक्ट था, वो बहुत तेजी के साथ में एक दशक पहले शुरू किया था, 1-2 दशक पहले, लेकिन बीच में फिर वो बहुत स्लो डाउन हो गया। अभी भी काम चल रहा है उसका, लेकिन एक काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो, और काफी फिजिबिलिटी स्टडीज हैं। बीच के अंदर ये माना गया कि कुछ ऐसे ऐसे कुछ एक ग्रुप है जो कि लिंकिंग ऑफ द रिवर्स को अपोज करता है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स से पॉसिबल रहेगा, जबकि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ज्यादा पानी को एंजॉय करते हैं, कुछ को एकदम कम करते हैं। तो ये सीरीज विरोधाभास चल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन एक बार अगर लिंकिंग ऑफ द रिवर हो गया तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी
0: ठीक है,
3: और मेरे ख्याल से काफी उससे
0: फायदा होगा। जल्दी से एक एक
3: फायदा।
0: सवाल और सर, जहां जहां हुआ है, जहां जहां जोड़ा गया, क्या वहां पर कुछ आप तब्दीली देख पाए हैं?
3: बिल्कुल, देखिए इसके अंदर जब तक कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए इसका पूरा असर एकदम सामने दिखता नहीं है, क्योंकि अगर ये दो चार रिवर्स को लिंकिंग कर दिया
0: हाँ
3: वो कर दिया तो वो एक मतलब आइसोलेटेड सी सिचुएशन होती है, इतना प्रोमिनेंट तौर से उसका असर सामने नजर नहीं आता है
0: ठीक है।
3: जितना आना चाहिए। तो जब तक ये कंप्लीट एक मतलब एटलीस्ट मोर देन 50-70% अगर लिंकिंग हुआ
0: हाँ
3: तो एक सिग्निफिकेंट उसका असर देखने को मिलेगा।
0: बिल्कुल आनंद जी, इसी पर एक राय आपकी भी जानना चाहूंगी।
2: देखिए बड़ा सिंपल है, मेरे हिसाब से इस समय जो हमें करना है वो सबसे बड़ा है कि हमें इसको एलनीनो जैसे इफेक्ट जो भी होते हैं इनको काउंटर करने के लिए हमें नए क्लाइमेट सिस्टम पे जाना पड़ेगा, एक नया नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर कहना किसी भी तरह की कि कल क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है।
0: सुशील जी, इस पर आपकी राय नदियों को जोड़ने को लेकर। हालांकि देखिए, इस पे भी डॉक्टर बेग बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस पर भी आपत्ति है।
1: मैं सौभाग्य से बुंदेलखंड से ही आता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर केन बेतवा दो नदियों का जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और मैं उसका साक्षी भी हूं, स्वयं देख भी रहा हूं। दोनों नदियां अलग अलग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हैं तो उनको जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो जो पर्यावरण विधि जो जो परेशानियां आ रही है पर्यावरण के रूप में, वो ये है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है या उसके आसपास का वन क्षेत्र, उसका बहुत बड़ा हिस्सा डूबने जा रहा है। तो अब यह वही बात है ना कि एक तरफ हमें विकास भी करना है, दूसरी तरफ हमें वो जो भी विकास की कीमत चुकाएंगे अगर हम, तो उसके लिए हमें नया फॉरेस्ट लगाने के लिए, या क्या हम वन्य जीव क्या हमारे अनुसार अपना जीवन बदलेंगे क्या, इस सब पे तमाम चर्चा चल रही है। लेकिन मैं
0: नहीं सर,
1: मोटा
0: इसका
1: मोटी
0: सॉल्यूशन भी बताइए, क्या हो सकता है? फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है?
1: फायदा तो ऐसा है कि फायदा ज्यादा इसलिए लग रहा है कि अगर हम इंसानों के पर्सपेक्टिव में देखें तो जहां पर पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड में, अगर पानी हर जगह तक पहुंच जाए या एक नदी में बाढ़ आ रही दूसरी सूख रही है तो दोनों नदी को मिला दिया जाए, तो फायदा तो है ही कि एक तरफ हम जीवन देख रहे हैं कि हम अपने आप को बचाने की बात करें कि जल ही जीवन है, और दूसरी तरफ नुकसान के रूप में अगर पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है तो हमें फिर अपने अंदर बदलाव लाके फिर हमें कुछ ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि हमको नया फॉरेस्ट के रूप में कितना हम दे सकते योगदान, इस पर सोचना पड़ेगा। और दोनों नदियों के अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, अलग
0: ठीक
1: अलग पीएच होता है, अलग अलग प्रकार की फिशेज पाई जाती हैं, तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है कि इसके क्या आगे दूरगामी परिणाम तो नहीं होंगे, लेकिन अभी अगर प्रथम दृष्टिगत देखा जाए तो सीधे सीधे अभी तो फायदा दिखाई दे रहा है और
0: ठीक है।
1: काफी हद तक इस प्रोजेक्ट ये कंप्लीशन की तरफ जा भी रहा है, और हो सकता है कि भविष्य में बुंदेलखंड
0: बिल्कुल
1: में जो
0: आनंद जी,
1: पानी
0: इस पर
1: की
0: कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आनंद जी?
2: देखिए इसके लिए अभी से या किसी दो नदियों को जोड़ने पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि सुशील जी ने भी कहा कि जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं डिफरेंट नदियों के, पर इसके साथ जो काम हम बहुत आसानी से वो ये कर सकते हैं कि जो हमारे डैम्स हैं उनका मैनेजमेंट हम अच्छा करें और उनके साथ उनका जो कनाल नेटवर्क का सिस्टम है पूरा जो कमांड एरिया होता है उसको हम डबल कर दें, तो जितना पानी हम संचय करते हैं उससे कोई दो गुना पानी हम संचय कर सकते हैं, और इन्हीं के साथ अगर इन्हीं कनाल रूट्स के साथ पानी जब जाएगा तो जो आपकी वेटलैंड्स हैं वो जो जितना पानी सोखेंगी क्योंकि देखिए कहीं पे भी आप देख लीजिए, पांच जैसे दिल्ली में है 50% पानी अब जमीन से उठाते हैं, और जगह कहीं 30% होगा, कहीं 40% होगा, पर 40-30 से 50% के बीच में आपका ये पानी है। तो जब तक हम अपने वेटलैंड्स को संरक्षण नहीं देंगे, जब तक कि हम पानी का जो हम 15-20% बरसात का पानी उठाते हैं, हम क्यों नहीं उसको 40% संचय कर सकते?
0: ठीक,
2: अगर वो करें तो इस देश के अंदर
0: सी बात है, वो बदलाव आ सकता है। बिल्कुल सर, वक्त अभी इतना ही है आनंद जी, वक्त अभी इतना ही है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या मंगल की वजह से व्यक्ति जीवन में मुकदमे में फंसता है? क्या राहु की वजह से जीवन में झूठे आरोप लगते हैं? क्या है मुकदमे में फंसने के कारण और क्या है उसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से एक दिल छू लेने वाली खबर, जहां पर तीस्ता नदी के तेज बहाव में 3 दिन का एक हाथी का बच्चा बह गया, लेकिन समय रहते इसे मछुआरों ने बचा लिया और उसकी मां से मिला दिया। दरअसल हाथियों का एक झुंड जंगल से तीस्ता नदी को पार कर रहा था, उसी झुंड में छोटा सा बच्चा शामिल था और इस समय गडोल जोबा से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। हाथी पानी में फंस गया और किसी तरह बड़े हाथी तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन ये छोटा बच्चा झुंड से अलग हो गया और पानी के बहाव में बह गया, जहां पर कुछ मछुआरों ने इसे पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला, उसे तुरंत उसकी मां से मिलवा दिया। गणेशोत्सव अब समापन की ओर है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडालों में विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें ऐसे गणपति पंडाल भी हैं जो अपनी अनोखी थीम और अनोखे गणेश प्रतिमाओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चाहे वो मुंबई के परे इलाके में पप्पा की पंचमुखी प्रतिमा हो या फिर अमरावती में विघ्नहर्ता की नवग्रह मूर्ति।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक खूबसूरत भव्य और अनोखी प्रतिमाएं जो देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह लें। मुंबई से लेकर अमरावती तक ऐसी ही अनोखी गणेश प्रतिमाओं की भरमार है जो गणेशोत्सव के दौरान इन दिनों गणपति पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। ये तस्वीर मुंबई के परेल इलाके के विद्यार्थी सेवा मंडल के गणपति पंडाल की है जहां बप्पा भक्तों को पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के परेल इलाके में विद्यार्थी सेवा मंडल में और यहां के गणेश जी के दरबार में आप देखिए किस तरीके से उनकी एक विशाल प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बेहद ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और जब इनका आगमन हुआ था तो एक बड़ी संख्या में आसपास के जितने भी लोग हैं सेवादार हैं और जो भी गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा मानते हैं उन्हें प्यार करते हैं वो लोग मौजूद हो गए थे। एक भव्य सीरत भव्य सूरत बहुत ही ज्यादा विशाल का इस समय गणपति बप्पा यहाँ पर देखे जा रहे हैं।
0: विद्यार्थी सेवा मंडल 68 सालों से ऐसी ही अनोखी गणेश प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अपनी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए इस साल भी मंडल ने बप्पा की 33 फीट ऊंची विशाल मूर्ति तैयार कराई और इसे पंचमुखी हनुमान के रूप में पेश किया जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि बप्पा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजाना आ रहे हैं।
2: जो कि एक कथा है प्रभु श्री राम का रामायण में पंचमुखी हनुमान रूप एक कभी लिया था ये भक्तों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए इस साल हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट यानी पंचमुखी हनुमान का करने की एक कोशिश की थी जो हम लोग की सफल हो गई है।
0: गौरीपुत्र गणेश की ऐसी ही दो अनोखी प्रतिमाएं अमरावती के दो गणपति पंडालों में देखने को मिली है। बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव मंडल ने जहां अंजीर और मखाने से 7 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा तैयार की है तो वहीं विलासनगर के गणेश उत्सव मंडल ने तो सुपारी और पूजा सामग्री से ही नवग्रह की अनोखी प्रतिमा बनाई है। दरअसल लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मकसद से ही दोनों मंडलों ने ये अनोखा प्रयोग किया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
3: इस साल हमने नवग्रह जैसे गणपति जो लाल सुपारी है पूजा सामग्री में लाल सुपारी को गणपति का दर्जा दिया गया है और गणेश जी माना जाता है पूजा में तो वही सुपारी लाल सुपारी को मिलकर और नवग्रह की पूरी पूजा सामग्री को मिलकर हमने यह मूर्ति स्थापित की है।
4: कितनी सुपारी लगी क्या लगाई?
3: इस मूर्ति में 21 किलो सुपारी लगी हुई है।
5: फिलहाल है बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में जहां पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। पिछले वक्त इन्होंने खारक से बनी बप्पा की प्रतिमा बनाई थी लेकिन इस वक्त जो है अंजीर जो अमूमन जो है ड्राई फ्रूट में गिना जाता है वो उस ड्राई फ्रूट से ये बप्पा की सुंदर 7 फीट की मूर्ति जो बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे हैं और साथ ही जो बप्पा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है।
6: मंडल की परंपरा है कि एक निसर्ग के साथ चल के इको फ्रेंडली या पर्यावरण पूरक वाला संदेश दे के इस मूर्ति को सजाया जाए ताकि पीओपी का जो अतिरिक्त चल रहा है उससे परे कुछ चीजें करे और एक इको फ्रेंडली वाला मैसेज सब लोगों को दे गणपति उत्सव के माध्यम से।
0: गणेशोत्सव के जरिए पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था को प्रकृति से जोड़ता है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण बनाने का संदेश भी देता है। यही वजह है कि अब ज्यादातर गणपति पंडाल इको फ्रेंडली मूर्तियां बनवाना पसंद कर रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
7: और गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाए जा रहे गणेशोत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। हम आपके भेजे गए इन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलायानगर से प्रीति ओझा ने हमें ये एक वीडियो भेजा है, पर्व की खुशियों को साझा किया है। बप्पा का दरबार बहुत सुंदर लाइट से सजाया हुआ है, साथ ही फूलों से भी पंडाल को सुंदर तरीके से सजाया गया है। भगवान गजानन के सम्मुख अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही नासिक से आई है, दीपा अमित राठौर ने हमें भेजी है। आसन पर विराजमान बप्पा को सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाई हुई है, साथ ही फल मिष्ठान से बप्पा का भोग लगाया जा रहा है। गुलाब के फूलों से सजे बप्पा बेहद सुंदर लग रहे हैं।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: क्या मंगल की वजह से व्यक्ति जीवन में मुकदमे में फंसता है? क्या राहु की वजह से जीवन में झूठे आरोप लगते हैं, क्या है मुकदमे में फंसने के कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। शुरुआत आज भक्ति की उस तस्वीर से करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। लालबाग से राजा के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान की तस्वीर वायरल है, तो कैसे बाप्पा की भक्ति में लीन नजर आया शाहरुख, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, बात उन गणपति पंडालों की भी हम करेंगे जहां पर केवल बप्पा की भक्ति ही नहीं बल्कि संदेशों की अलग भी चल रही है। मुंबई समेत पूरे देश में अलग अलग थीम पर बने पंडालों के जरिए कैसे दिया जा रहा है सामाजिक संदेश, इसकी भी तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आज आपको एक ऐसी रीयूनियन की तस्वीरें दिखाएंगे जहां 65 साल के बुजुर्ग बच्चों की तरह शरारतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहां हुई है ये रीयूनियन, उसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
4: एवरेस्ट दिखाला, सही दिखा सही लाल।
3: गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुआ 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, कलाकारों को किया जा रहा सम्मानित। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देशभर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति के बयार, अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का 11 तोले का सोने का मुकुट। मुंबई में लालबाग राजा के दरबार में अभिनेता संजय दत्त ने लगाई हाजिरी, पत्नी के साथ आरती में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा। युद्धाभ्यास 2026 के बीच अमेरिकी सैनिकों का सांस्कृतिक सफर, बीकानेर के जूनागढ़ किले पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान, भारत की सांस्कृतिक विरासत का किया दीदार। पहली बार भारत में गरजेंगे 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2026 का बनेंगे हिस्सा, 40 देशों की एयरफोर्स लेंगी हिस्सा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं गणपति उत्सव की खबर के साथ। आपको बता दें कि मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है, पूरे प्रदेश में उल्लास छाया हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। शाहरुख खान के साथ पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान ने भी लाल बागचा राजा के पंडाल में जाकर दर्शन किए, जहां उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया और लाल बागचा राजा की आरती में वो शामिल हुए।
2: शाहरुख खान की बप्पा में गहरी आस्था है और वो हर साल मुंबई के लालबाग चा राजा के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर पहुंचते हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के बाद बॉलीवुड के किंग खान गणपति दर्शन के लिए टी सीरीज के ऑफिस भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बप्पा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया।

0: बापा के दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर आदमी सिर झुकाए हाथ जोड़े दर्शन के लिए कतार में खड़ा है। फिर चाहे वो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ही क्यों ना हो। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने परिवार के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक लाल तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पूजा की। वो लालबागचा राजा की प्रतिमा के सामने बड़ी ही श्रद्धा और लीनता के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते दिखे। इसके बाद उन्होंने बापा के चरणों में अपना माथा टेका और बापा का आशीर्वाद लिया। शाहरुख ने मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा भी अर्पित की। शाहरुख के साथ उनकी पत्नी गौरी खान पीले रंग के सूट में और बेटी सुहाना खान हरे रंग के एथनिक आउटफिट में नजर आईं। दोनों ने बापा के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते हुए और उनके सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। मन्नत के राजा शाहरुख खान की बापा में गहरी आस्था है। वो हर साल मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। ये कोई पहली बार नहीं है। आस्था का यह टूट सिलसिला पिछले कई सालों से यूं ही चलता आ रहा है। साल 2023 में जब शाहरुख खान की फिल्म जवान ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी, तब वो अपने छोटे बेटे अबराम के साथ लालबागचा राजा का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। उस वक्त शाहरुख बेटे अबराम का हाथ थामे जब पंडाल में दाखिल हुए थे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया था। तब सफेद कैजुअल शर्ट में शाहरुख खान की सादगी भरा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा था। लालबागचा राजा के सामने खड़े होकर शाहरुख खान ने पूरी आस्था के साथ आंखें बंद कर प्रार्थना की थी। उन्होंने बापा के चरणों में नारियल और मिठाइयां अर्पित कर भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नन्हे अबराम को भी बापा का आशीर्वाद दिलवाया था। इसके बाद आया साल 2024, जब गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर शाहरुख ने अपनी इसी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर अपने बेटे अबराम के साथ विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, पुजारी से तिलक लगवाया, बापा का पवित्र प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि 2025 में शाहरुख लालबाग के राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे। अब 2026 में उन्होंने एक बार फिर लालबागचा राजा के दर्शन कर अपनी इस फिल्म की कामयाबी की कामना भी की होगी, जो अगले साल रिलीज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और देखिए, इसी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के बाद बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे। यहां शाहरुख ने अपनी मैनेजर पूजा डडलानी के साथ गणपति पूजा में हिस्सा लिया। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान शाहरुख का सादगी भरा अंदाज भी देखने को मिला।

0: और मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक हर जगह देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग लालबाग चौराहा के दरबार में देखी जा सकती है, जहां मुंबई के सबसे चर्चित गणपति दरबारों में एक इसे कहा जाता है। आम भक्त हो यहाँ पर बॉलीवुड के सितारे, हर कोई बप्पा के दरबार में यहाँ मत्था टेकने पहुंचता है।
1: और देखिए लालबाग चौराहा के दरबार में इस बार भी बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। किंग खान, शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और कई दूसरे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। दरअसल लालबाग के राजा से बड़ी आस्था जुड़ी है। लालबाग चौराहा के दरबार में हर कोई अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है और मान्यता है कि बप्पा के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।
2: शाहरुख से पहले एक्टर रणवीर सिंह भी लाल बाग चौराहा के दर्शन करने और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। रणवीर पारंपरिक सफेद कुर्ता और पजामा में नंगे पैर पंडाल में पहुंचे और अंदर जाते समय काफी खुश दिखे। इस दौरान उन्होंने पंडाल में मौजूद फैंस से भी हाथ मिलाया।

0: फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी से लेकर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेगनेंसी तक रणवीर सिंह के लिए ये साल बेहद खास गुजरा है। स्वाभाविक है कि इसके लिए रणवीर ने गणपति के सामने आभार जताया। पंडाल के अंदर भी एक्टर रणवीर सिंह प्रार्थना में ध्यान लगाते हुए फैंस का अभिवादन करते दिखे। आशीर्वाद लेने के बाद रणवीर अपनी कार की ओर बढ़े। जाते समय भी एक्टर ने अपने फैंस को बाय कहा और उनमें से कई लोगों से हाथ मिलाया। पापा के प्रति अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की आस्था भी किसी से छिपी नहीं है। वो हर साल अपने घर में पापा की स्थापना करती हैं। लेकिन इसके बाद वो हर साल लाल बागचा राजा का आशीर्वाद जरूर लेती हैं। शिल्पा इस बार भी छोटी बहन शमिता शेट्टी और परिवार के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने बापा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो गणपति जी के वाहन मूषक महाराज से बात करने के लिए भी थोड़ा समय मांगती दिख रही हैं। वीडियो में शिल्पा शेट्टी कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि वो मूषक जी के कान में कुछ कहना चाहती हैं। हालांकि दर्शन के लिए भारी भीड़ होने के कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली। हालांकि लाल बागचा राजा के दर्शन के दौरान अभिनेत्री और उनकी बहन के पारंपरिक लुक ने ज्यादा चर्चा बटोरी, खासकर शिल्पा शेट्टी के झुमकों ने जो 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी बापा के दर्शन करने लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंची। हालांकि परिणीति के इस दर्शन की सबसे खास बात उनका लुक नहीं बल्कि उनके पति राघव चड्ढा से जुड़ा एक प्यारा पल रहा। दरअसल पंडाल में मौजूद परिणीति ने वीडियो कॉल के जरिए राघव को भी लाल बागचा राजा के दर्शन करवाए। एक्टर रितेश देशमुख भी अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ लाल बागचा राजा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कपल बेहद सादगी भरे पारंपरिक अंदाज में भक्तों की भीड़ के बीच एक दूसरे का हाथ थामे पंडाल में पहुंचा और बापा का आशीर्वाद लिया। हर साल की तरह इस बार भी गणपति उत्सव में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने घर बापा की स्थापना से लेकर लाल बागचा राजा के दरबार में माथा टेकने तक पूरा बॉलीवुड बापा की आराधना में रंगा नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए, गणपति की आपने आराधना कर ली, उनकी लाल बागचा राजा के दर्शन कर लिए। अब आपको कराते हैं भगवान शिव और राम जी के दर्शन, जिनकी झलक आप इन दोनों गणेशोत्सव के दौरान दो गणेश पंडालों में देख सकते हैं। पहला पंडाल है अंधेरी चा राजा, जिसे अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। वहीं दूसरा घाटकोपर चा गणेश पंडाल है, जिसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है।
2: और देखिए, मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोग घाटकोपर चा गणेश पंडाल पहुंच रहे हैं।
3: बाप्पा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी चा राजा पंडाल भी है, जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया सवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बाप्पा की आभा ही निराली है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बाप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दिला रहा है।
4: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
3: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के इस राम मंदिर थीम वाले एक दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
5: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत जगाई है और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया, ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
6: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा, सेटअप इतना अच्छा है, उन्हें तो ग्रैंड है।
7: मुझे तो बहुत मजा आया, जैसे मैं देखी हूँ इतना सुंदर सेटअप किया है, मेरे को इतना अच्छा लगा दर्शन करते, ऐसा लगा कि मैं कहीं एक डिफरेंट जगह पे पहुंच गई हूँ, मेरे को इतना दिल से अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
3: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार होता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसी यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीनों में तैयार हुआ। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना जरूरी है,
8: और ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा, और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टभंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में, तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है, अंधेरी का राजा का साथ जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
3: इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर भी आ रही है।
8: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ाव भी करते हैं।
9: क्या बात है, गणपति बप्पा
8: मोरिया।
3: वहीं अब इस गणेशोत्सव मुंबई में ही करिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन, जिसकी तस्वीर आपको घाटकोपरचा राजा पंडाल में नजर आएगी।
10: मुंबई में ही आप पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन करिए, मेरे साथ तमाम श्रद्धालु भी इस समय मौजूद हैं, और अब तस्वीरें सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हाँ, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
3: मुंबई में 26 साल से घाटकोपरचा राजा पंडाल अपनी अलग अलग थीम के लिए भी मशहूर रहा है। वहीं इस बार भी पशुपतिनाथ मंदिर की भव्य प्रतिकृति की वजह से ये पंडाल स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहरी श्रद्धालुओं के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस पंडाल में आकर आप पशुपतिनाथ महाराज की पौराणिक कथाओं को जानेंगे, और क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर जंगल के ईश्वर के नाम से मशहूर है, इसलिए बप्पा के आसपास कई जानवरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं।
11: श्री गणेश आज बैठे हैं विराजमान शिवलिंग पे, और उसके शिवलिंग के ऊपर जटाधारी है, और श्री गणेश बैठे हैं शिवलिंग पे, और इसमें आज 25 बर्ड्स जैसे कि पशुपतिनाथ के जो भी है प्रकृति में आते हुए, वो सब गणेश भक्त जो देख रहे हैं, वे प्रकृति एक पशुपतिनाथ के ऊपर बनाई गई है।
3: मुंबई के बांद्रा पश्चिम मंडल द्वारा बनाए गए इस भव्य आकर्षक पंडाल में आस्थावान पहुंच रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ की मौजूदगी का अलौकिक अनुभव ले रहे हैं।
9: अंकल गणपति बप्पा
12: मोरिया,
9: मंगल मूर्ति
12: मोरिया।
9: ऐसा लगा बप्पा, कैसे दिख रहे हैं आपको?
12: बहुत भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है आपका।
9: इस तरह की खुशहाली आपको मुंबई महाराष्ट्र और देश के हर उस जगह पे देखने को मिलेगी, जो लोग बहुत ही उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। फिलहाल ये घाटकोपर के राजा के दरबार में है। विजिलेंस स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुडनेस टुडे मुंबई।
13: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को बप्पा के अलग अलग और अनोखे रूपों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ के बालाजी वार्ड में श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की अनोखी झांकी तैयार की है,
2: और इस गुफा में भगवान राम के रूप में गणेश जी की 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है। खास बात यह है कि गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को अपने पैर धोकर ही अंदर जाना होता है।

0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये अनोखा गणेश पंडाल भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की थीम पर भव्य झांकी तैयार की है, लिहाजा बाहर से ये गणेश पंडाल सुग्रीव गुफा के जैसा दिखाई देता है, लेकिन गुफा के भीतर प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलग अद्भुत एहसास होता है। आयोजकों का मानना है कि रिद्धि सिद्धि के दाता के दर्शन से पहले तन और मन दोनों का शुद्ध होना जरूरी है, लिहाजा सुग्रीव गुफा पंडाल में भक्तों को पैर धोने के बाद ही प्रवेश मिलता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों को भगवान श्री राम के रूप में गजानन के दर्शन होते हैं। करीब 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, चार भुजाएं और हाथ में धनुष, गणेश जी का ये राम रूपी स्वरूप भक्तों को खूब भा रहा है, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्त यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं।
1: और इस साल हमारा 55वां साल है और ये प्रथा जो है पूरा 55 सालों से लेके आते हैं। और इस साल हमारा जो रूप है वो सुग्रीव का जो गुफा है उसमें हमने राम का जो वनवास के टाइम का जो सुग्रीव के साथ मिलन हुआ था वो टाइम का हमने यहाँ पे मतलब दिखा है पूरा। और उसके बाद में हमारे जो वार्ड का जो पूरा इतने सालों से जो प्रथा है आज सब हम मिलके एक भाईचारे के साथ में सब कर रहे हैं।
0: श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल पिछले 55 सालों से अलग अलग धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गणेश पंडाल की स्थापना करता आ रहा है। इस बार सुग्रीव गुफा थीम पर बेस्ड इस पंडाल को तैयार करने में करीब 3 महीने का समय लगा। श्री राम के जीवन काल से जुड़ी ये भव्य झांकी गणेश भक्तों को लुभा रही है और बड़ी संख्या में भक्त श्री राम रूपी गणेश जी के दर्शन को पहुँच रहे हैं। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और पुणे का एक गणपति पंडाल चर्चा में है। इसमें ट्रैफिक जाम में मां को खोने का दर्द दिखाया गया है। पुणे के आईटी प्रोफेशनल रवि चौहान की मां की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, जिससे समय पर अस्पताल ना पहुंचने की वजह से उनकी मां का निधन हो गया था।
3: और देखिए, अपनी मां को खोने के बाद रवि चौहान ने इस साल गणपति उत्सव के दौरान अपने पंडाल की सजावट में पुनावले अंडरपास के ट्रैफिक जाम को दिखाया है। इस अनोखे झांकी के जरिए उन्होंने प्रशासन का ध्यान सड़कों की खराब स्थिति और ट्रैफिक की समस्या की ओर खींचने की कोशिश की है।
4: सर, एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम है, क्या ताल्लुकात है ये सब?
5: ये एम्बुलेंस के पीछे मेरी पर्सनल कहानी है। 1 जनवरी 2026 को इसी रास्ते पे मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था अस्पताल में, उनको हार्ट अटैक आया था, पर वो एम्बुलेंस ऐसी अटकी कि मेरी मम्मी ने आखिरी सांस वहीं पे ली। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा, पर किसी ने रास्ता नहीं दिया। तो मैं समाज तक एक संदेशा पहुंचाना चाहता था कि ऐसी परिस्थिति और किसी को ना आए। तो मैं कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था कि प्रशासन इसके लिए कुछ करे। आप कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, पुणे में हर जगह पे ट्रैफिक लगी रहती है, रास्ता खराब है, रास्ते पे गड्ढे है। अब एक भी बारिश आती है, रास्ता तुरंत खराब हो जाता है, और रास्ता जब बनना शुरू होता है तो सालों साल लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रास्ता बहुत सही से बने, और एक बार बन जाए तो अच्छी क्वालिटी का बने। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट बाकी हम आम जनता से भी थी कि आप भी ट्रैफिक का पालन करें। अगर आप एम्बुलेंस देखे, आप एम्बुलेंस को भी रास्ता दे एटलीस्ट। तो थीम का नाम था कि हम गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता बोलते हैं, पर गणपति बाप्पा बोलते हैं कि आप एक दूसरे के लिए विघ्नहर्ता बन सकते हो। तो प्रशासन ये कर ले तो हम प्रशासन भी हमारे लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं, और हम ट्रैफिक का पालन करें। अगर एम्बुलेंस को रास्ता देने लगे तो हम एक दूसरे के लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं।
2: कहते हैं बचपन के दोस्त और स्कूल की यादें कभी भुलाई नहीं जाती। आगरा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ करीब 55 साल बाद पुराने दोस्त फिर उसी स्कूल में पहुंचे जहाँ कभी छठी क्लास में साथ पढ़ा करते थे।
3: और देखिए, खास बात ये रही कि इस मुलाकात में उम्र का असर कहीं नजर नहीं आया। कोई स्कूल ड्रेस में पहुंचा तो किसी ने बच्चों की तरह मस्ती की और पुराने किस्से दोहराए। इन दोस्तों की मुलाकात करीब 7 साल पुराने एक वीडियो की वजह से हुई जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
6: 50 साल बाद जब हम सभी पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिले तो दिल में एक ख्वाहिश जागी, क्यों ना उन सुनहरे पलों को फिर से जिया जाए।
7: सफेद कमीज, काली पैंट और गले में पानी की बोतल, बिल्कुल छठी क्लास के बच्चों की तरह ये दोस्त अपने पुराने स्कूल पहुंचे और फिर शुरू हुआ बचपन को दोबारा जीने का सिलसिला।
6: पुराने खेल खेले, पुरानी शरारतों को याद किया और बचपन की यादों को फिर से जी लिया।
7: किसी ने स्कूल के गेट से दौड़ते हुए एंट्री की तो कोई दोस्तों के साथ नाचते गाते क्लासरूम तक पहुंचा। क्लासरूम में पहुंचकर कोई बेंच पर बैठा तो किसी ने पुराने दिनों वाली शरारतें शुरू कर दी। आगरा के एक स्कूल में 55 साल बाद जब पुराने दोस्त फिर से मिले तो उम्र का फासला जैसे पल भर में मिट गया। कभी इसी स्कूल में छठी क्लास के बच्चे रहे, ये बुजुर्ग उसी अंदाज में लौटे और फिर 55 साल पुराने वो दिन एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे।
8: ये वीडियो जो हमने उसी स्कूल में जाके उसी राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में जाकर शूट किया था, तो हमने उस वीडियो में ये दिखाया है कि हम जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो साथ में पढ़ते थे, वो फीलिंग आए, इसलिए हम लोगों ने बैग और बोतल वगैरह हाथ में ली हुई है। तो हम सब दोस्त जो हैं, हम आगरा में जो जितने भी हम लोगों का जो है जो मुलाकात हुई, सब दोस्त जो इकट्ठे हुए, वो आगरा के जितने भी साथी थे वहाँ जाकर उन सब लोगों ने प्ले किया।
7: किसी ने पुराने किस्से सुनाए तो किसी ने अपने साथियों की शरारतें याद की।

0: के भी जुड़े, आगरा में काफी स्टूडेंट हमारे साथ के मित्र थे वो जुड़ गए, तो ग्रुप जब हमारा बन गया हम लोग सब इकट्ठे हो गए। फिर जब इकट्ठे हो गए तो मन में आया कि एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना अपने कॉलेज उसी कॉलेज में जाकर वीडियो बनाए।
1: स्कूल के उन्हीं गलियारों में लौटकर इन दोस्तों ने सिर्फ खेल और मस्ती नहीं की बल्कि 55 साल पुराने रिश्तों को भी फिर से महसूस किया। वक्त बदला, जिंदगी बदली, लेकिन दोस्तों के बीच का अपनापन आज भी वैसा ही है।
0: जितने भी दोस्त हैं हम लोग जो व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आगरा में जितने भी दोस्त हैं, हम एक दूसरे से बहुत काफी एक नजदीकी से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं हमारे, खूब एंजॉय करते हैं।
1: असल में इस पुरानी कहानी के पीछे करीब 7 साल पुराना एक वीडियो है। आगरा के राकेश नागर और उनके दोस्तों ने 2019 में अपने YouTube चैनल के लिए ये वीडियो बनाया था जिसे उस वक्त 1500 व्यूज मिले थे, लेकिन हाल ही में नए तरीके से इस वीडियो के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट हुए और देखते ही देखते वायरल हो गए।
0: ये वीडियो हमने वैसे 5-6 साल पहले बनाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं थी यूट्यूब पे। अब जो है 4-5 दिन पहले उसका थोड़ा सा पार्ट लेके हमने वीडियो बनाई, वो लोगों ने बहुत पसंद करी, बहुत प्यार दिया हमको और इतनी वायरल हो गई कि बस पूछो मत।
1: वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मुलाकात को खूब पसंद किया। किसी ने इसे बचपन की यादों में लौटने का वो खूबसूरत पल बताया, तो किसी ने 55 साल बाद दोस्तों को एक साथ देखकर अपनी पुरानी स्कूल की यादें साझा की।
0: ये एक सपना सा लगता है और मैं समझता हूँ ये हम लोग बहुत खुश नसीब है जो हमारे संग ये हुआ, क्योंकि इतने साल बाद मिलना, 55 साल बाद हम लोग टकराए मान लिया, तो 55 साल बाद हम टकराए और वो आज इकट्ठे हैं और वही दिन जो हम याद करते हैं, तो लगता है ये क्या वास्तव हमारे संग हो रहा है।
1: 55 साल बाद मिले इन दोस्तों ने दिखा दिया कि वक्त बीत सकता है लेकिन दोस्ती की यादें कभी पुरानी नहीं होती। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात के केवड़िया में चल रहे फिल्म फेस्टिवल की झलक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, कलाकारों को किया जा रहा है सम्मानित। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, विमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देश भर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार, अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का, 11 तोले का सोने का मुकुट। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में अभिनेता संजय दत्त ने लगाई हाजिरी, पत्नी के साथ आरती में शामिल हुए, विधि विधान से की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात के अंबाजी में भादरवी महामेले का शुभारंभ, 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। युद्धाभ्यास 2026 के बीच अमेरिकी सैनिकों का सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक सफर, बीकानेर के जूनागढ़ किले पहुंचे भारत और अमेरिका के जवान, भारत की सांस्कृतिक विरासत का दीदार किया। और अब बात करते हैं गुजरात के केवड़िया में चल रहे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च माने जाने वाले सम्मान की। इतिहास में पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास तैयार किए गए विशेष हाईटेक जर्मन डोम में ये सम्मान समारोह चल रहा है। ये 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह है जिसका आयोजन पहली बार गुजरात में हुआ है। अब से पहले तक ये आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ करता था, लेकिन इस बार ये सेरेमनी गुजरात के केवड़िया में यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रही है।
1: और देखिए अवार्ड 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए कार्तिक आर्यन कल ही केवड़िया पहुंच गए थे। शाम करीब 6:30 बजे अवार्ड सेरेमनी का समापन होगा, जिसके बाद मेहमानों के लिए नर्मदा नदी के किनारे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खास थीम आधारित लेजर और लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा।
2: फॉर द बेस्ट बंगाली फिल्म इज बीइंग गिवन टू चलचित्र अखोन प्रोड्यूसर,
3: गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
4: तो नई दिल्ली के बाद पहली बार गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है, जहां खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को अवार्ड वो अब दे रही हैं। विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई को की जा चुकी थी। ये अवार्ड 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए हैं। आपको बता दें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को उनकी फिल्म ब्रह्म युगम को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को उनकी फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिला है।
1: और देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए श्रीकांत को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म आर्टिकल 370 को मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड पिपलाथ्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म को मिला है। रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया है। अमरन फिल्म के लिए राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, जबकि रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
0: और दिग्गज एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अनंत नाग कन्नड़ सिनेमा के केवल दूसरे एक्टर हैं। इससे पहले कन्नड़ एक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं अनंत नाग का फिल्मों में क्या योगदान रहा है। अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। अनंत नाग को उनके अभिनय के लिए 5 फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। अनंत नाग ने अपने 50 साल के लंबे फिल्मी सफर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्में, साथ ही साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के फिल्में भी शामिल हैं। अनंत नाग ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ फिल्म संकल्प से की थी।
1: इसी के साथ श्याम बेनेगल की प्रसिद्ध फिल्म अंकुर से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में पत्रकार आनंद इंगलागी की भूमिका निभाई। दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सिनेमा के साथ साथ अनंत नाग राजनीति में भी सक्रिय रहे। वो बैंगलोर के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
0: और बेस्ट तमिल फिल्म के लिए रायन को अवार्ड मिला है, जिसके डायरेक्टर धनुष हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धनुष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान ग्रहण करते हुए 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवड़िया से तस्वीरें। 5:30 बजे का वक्त था जब पुरस्कारों अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हुई है।
4: बिल्कुल, और उसके बाद आप देख सकते हैं मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर को, पटकथा और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्हें फिल्म मैदान के भावपूर्ण गीत जाते हैं हम जाने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।
2: बंगाली फिल्म इज बीइंग गिवन टू चलचित्र अखोन प्रोड्यूस्ड।
5: रहा था जहां वफादारी।
4: कार्तिक आर्यन को आपको बता दें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, जिन्होंने उन्होंने गजब की भूमिका निभाई थी।
1: और इसी के साथ देखिए यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है।
4: आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन को एक बार फिर से आप देख सकते हैं बेस्ट एक्टर का इन्हें अवार्ड मिला है चंदू चैंपियन के लिए। इनकी भूमिका की सराहना।
0: ममूटी को ब्रह्मयुगम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल के नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया और उन्हें यह सम्मान मिला है।
1: और इसी के साथ बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए संजय मिश्रा को अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्म भक्षक के लिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
2: वाली फिल्म इज बीइंग गिवन टू चलचित्र अखोन प्रोड्यूस
5: किया है एक रोमांस।
4: और फिल्म के बाद अब बात कर लेते हैं खेलों की दुनिया से। जो खबर आई है भारत के लिए गुड न्यूज आई है। आपको बता दें कि जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज तीसरा दिन है। भारत की बेटियों ने आज एशियन गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया है। नशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के सामने 217 रनों का टारगेट सेट किया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 15.4 ओवरों में 69 रनों पर सिमट गई।
1: और देखिए भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वहीं शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने 7 छक्के और 5 चौके की मदद से 45 बॉल पर 79 रनों का योगदान दिया। वहीं ऋचा घोष ने सिर्फ 22 बॉल पर नाबाद 49 रन बनाए। ओपनर शेफाली वर्मा ने 29 बॉल पर 48 रनों की पारी खेली।
0: कहते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो सात समंदर पार भी आपके सपनों का परचम लहराता है। बिहार के रोहतास के रहने वाले एक लड़के की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और क्रिकेट के गलियारों में खूब हो रही है।
1: देखिए आईआईटी कानपुर से केमिस्ट्री की पढ़ाई, टोक्यो में 9 to 5 की कॉरपोरेट नौकरी और उसके बाद जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में एंट्री, ये कहानी है अभिषेक आनंद की, जिन्होंने साबित कर दिया कि जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। सात समंदर पार जाकर बिहार और भारत का नाम रोशन करने वाले अभिषेक आनंद की ये खास रिपोर्ट देखिए।
6: जापान क्रिकेट टीम में भी बिहारी?
7: अरे तो अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, बिहारी कहाँ नहीं है भाई।
6: तो कहाँ कैसे पहुंच गए यहाँ नेशनल टीम में?
7: घर तो रोहतास जिला है और बिहारी है तो बचपन से क्रिकेट खेलने का कीड़ा है ही।
8: जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोगों ने क्रिकेट की किताब का पन्ना पलटना शुरू कर दिया। पूछा जाने लगा कि आखिर अभिषेक आनंद है कौन और बिहार के रोहतास के होकर वो जापान क्रिकेट टीम का हिस्सा कैसे बन गए। दरअसल अभिषेक आनंद की कहानी क्रिकेट के रोमांच से ज्यादा रोमांचक है। अभिषेक ने आईआईटी कानपुर से केमिस्ट्री की पढ़ाई की, कॉलेज में क्रिकेट खेला और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए पहुंच गए टोक्यो, लेकिन जापान पहुँच कर भी बल्ला नहीं छोड़ा।
9: आई स्टार्टेड क्रिकेट इन बिहार फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई स्टार्टेड प्लेइंग सॉफ्टबॉल क्रिकेट से स्टार्ट किया मैं अपना जर्नी। साथ साथ पेरेंट्स का था कि मुझे कुछ स्टडी में भी कुछ आगे करना है, तो उनके लिए मैंने आईटीज किया। आईटीज में जाने के बाद प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया लेदर बॉल से और फिर क्रिकेट को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और फिर इन द फाइनल ईयर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एक्सेंचर जापान से जॉब ऑफर मिला और उसके बाद डिसाइड करने के बाद सबको इसे आई डिसाइडेड कि लेट्स गो टू जापान एंड एक्सप्लोर क्रिकेट अपॉर्चुनिटी देयर। तो इस तरह से मेरी बिहार से जापान तक की जर्नी स्टार्ट हुई।
8: यानी क्रिकेट अभिषेक के लिए सिर्फ शौक नहीं था, ये वो जुनून था जिसे अभिषेक नौकरी के साथ भी लेकर चलते रहे। और उन्होंने जापान में क्लब क्रिकेट खेला, स्थानीय मुकाबलों में अपना हुनर दिखाया और धीरे धीरे उनका खेल जापान के सिलेक्टर्स की नजरों में आने लगा।
9: यहाँ पर आने के बाद मैं लोकल क्रिकेट क्लब्स ज्वाइन किया, टोक्यो फाल्कन क्रिकेट क्लब्स, एंड फिर उनके साथ जुड़कर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा। और देन जेसीए called me to be part of Japan national team. तो इस तरह से from Bihar to Japan in short ऐसे इस तरह से journey start हुई हमारी.
8: अभिषेक की कहानी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को अपना फुल टाइम करियर नहीं बनाया बल्कि दिन में नौकरी की और समय मिलते ही क्रिकेट में हाथ आजमाया, यानी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने को भी जिंदा रखा और यही कोशिश उन्हें जापान की नेशनल टीम तक ले गई.
9: इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज जॉब जो होती है हमारी वीकडेज पे होती है और मेनली जो क्रिकेट जापान में है खास करके वो वीकेंड्स पे होती है. कभी कभार जैसे हम नेशनल टीम्स के लोग हैं तो मे बी वी यूज टू हैव नाइट प्रैक्टिस, तो वो वर्क के बाद ही होता है तो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है.
8: बिहार के होकर भले ही अभिषेक आनंद जापान की टीम का हिस्सा हूँ लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है. भारतीय टीम में ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो अभिषेक के फेवरेट हैं.
9: माय ऑल टाइम फेवरेट विल ऑलवेज बी एमएस धोनी, बट करेंटली ऑल एवरीवन्स फेवरेट इज सूर्यवंशी ओनली एंड खास करके अपना बिहारी है.
8: अभिषेक भले ही जापान की टीम की ओर से हाथ आजमा रहे हूँ लेकिन टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी उनकी पैनी नजर रहती है.
9: अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो सारे ही खतरनाक है, लाइक फ्रॉम अभिषेक शर्मा टू संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, किसी को बोला ही नहीं जा सकता कि कोई खतरनाक नहीं है, सारे ही डिस्ट्रक्टिव है. कोई एक भी चलेगा देन मैच विल बी एंडेड.
7: जापान से क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, क्लब क्रिकेट से नेशनल टीम में.
8: फिलहाल अभिषेक जापान में केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का गौरव बन चुके हैं. अपनी माटी की महक और अपने संस्कारों के मान को वो सात समंदर पार भी गर्व से बताते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: कहते हैं ममता की कोई सीमा नहीं होती और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नजारा हर किसी की आंखें नम कर देता है. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और मां बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है.
1: देखिए उफनती तिस्ता नदी में तेज बहाव में जब एक नन्ना गजराज मौत से जंग लड़ रहा था तब पांच जाबाज मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे मां को लौटाया गया.
8: दिल छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है. माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है. तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है. आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है. इस कहानी के तीन हिस्से हैं. पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं. हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है. जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा. वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था. नॉर्थ बंगाल फिशमैन फोरम के पांच सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे. तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा. हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं. ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया. नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुँचे. इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए. मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया. ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया.
10: जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। जब हाथियों का झुंड अपलचंद जंगल की कांताबारी रेंज के पास नदी पार कर रहा था, उसी समय हाथी का ये बच्चा नदी की धारा में बहकर करीब 4 किलोमीटर दूर चला गया, जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ के आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जू में हुई स्पेशल दावत की तस्वीरें।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: क्या मंगल की वजह से व्यक्ति जीवन में मुकदमे में फंसता है? क्या राहु की वजह से जीवन में झूठे आरोप लगते हैं? क्या है मुकदमे में फंसने के कारण और क्या है उसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब आपको ले चलते हैं यूपी के नोएडा में, जहां एक ऐसा अनोखा कैफे है जो स्कूल की थीम पर न सिर्फ बनाया गया है बल्कि यहां आने वाले ग्राहकों को उनके बचपन और स्कूल के दिनों की यादों में ले जाता है।
0: और इस कैफे का इंटीरियर बिल्कुल स्कूल क्लासरूम की तरह डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मेन्यू कार्ड है, जिसे मार्कशीट की तर्ज पर बनाया गया है।

0: ब्लैक बोर्ड है, घंटी है, लाइब्रेरी है, मार्कशीट भी है और रोल नंबर भी। ये कोई नए जमाने का स्कूल नहीं है बल्कि ये है स्कूल की थीम पर तैयार एक कैफे, इसलिए इसे अटेंडेंस शीट कैफे नाम दिया गया है जो मौजूद है यूपी के नोएडा में। इस अटेंडेंस शीट कैफे का पूरा कॉन्सेप्ट ही स्कूल की यादों पर आधारित है।
1: हम स्कूल में होते हैं तो कितनी जल्दी में होते हैं ना, कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, कितनी जल्दी ढेर सारे पैसे कमाएं, कितनी जल्दी अपने डिसीजन हम खुद ले लें। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन स्कूल हमसे बाहर कभी आ ही नहीं पाया, वो स्कूल हमेशा हमारे भीतर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं जहां जब आप पहुंचेंगे तो ना सिर्फ आपको अपना स्कूल याद आएगा बल्कि अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर, अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी मार्कशीट, सब कुछ याद आने वाली है। हम मौजूद हैं नोएडा में और इस जगह का नाम है अटेंडेंस शीट कैफे।
0: इस कैफे का इंटीरियर किसी स्कूल के क्लासरूम की तरह ही डिजाइन हुआ है, जहां डेस्क, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, लाइब्रेरी, टेबल नंबर की जगह रोल नंबर और पुरानी यादें ताजा करने वाला माहौल मिलता है। कैफे की एक दीवार पर क्लासरूम में प्रवेश करने से जुड़ी यादों को दर्शाया गया है, जैसे क्लासरूम में प्रवेश करते समय मे आई कम इन सर बोलना, पनिशमेंट मिलने पर स्टैंड अप ऑन द बेंच, बच्चों के बदमाशी करने पर साइलेंस इन द क्लास और होमवर्क चेक करवाना।
1: कुछ चीजें आपके जहन में हमेशा रजिस्टर होती हैं, जैसे कि स्कूल टाइम्स के ये डायलॉग्स, मे आई कम इन सर, किसने फेंका ये कागज, हू थ्रू दिस पेपर, स्टैंड अप ऑन द बेंच जब सजा मिलती थी, साइलेंस इन द क्लास जब टीचर गुस्सा होते थे, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये अगर स्कूल की हम बात करें और ब्लैक बोर्ड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपको एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा जिस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि आपने बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड है और साथ साथ एक कन्फेशन बोर्ड भी है, मतलब आपको यहाँ पर वो कन्फेस करना है जो कभी आपने अपने क्लासरूम में किया हो, स्कूल में किया हो।
0: इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मेन्यू कार्ड है, जिसे क्वेश्चन पेपर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, इस मेन्यू में आपको हर डिश और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। होमवर्क तड़का मैगी, ट्यूशन वाली मैगी, स्टाफ रूम प्रिंसिपल चाय, केमिस्ट्री साइंस लैब मॉकटेल्स और बैक बेंचर मोमोज, ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मेन्यू में नजर आ जाएंगी।
2: एक ऐसी थीम है जो जितने भी लोग पास आउट हो चुके हैं, मतलब 12th पास आउट करने के बाद, इवन अगर मैं अपने फादर की एज की बात करूं, अपनी बात करूं, या जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं 12th से, वो सबको कैटर करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये थीम जो स्कूल में बच्चे अभी जा रहे हैं उन्हें भी पसंद आया, वो भी यहाँ पे आते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, इतना पसंद आता है उन्हें।
0: वहीं कैफे में साइंस लैब और लाइब्रेरी भी बनाई गई है। साइंस लैब में तो स्कूल के समय बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की तरह लाइव प्रोजेक्ट्स रखे हैं। साइंस लैब में पंप होने वाले प्रोजेक्ट, सोलर हाउस और विंड से जुड़े मॉडल्स बनाए गए हैं। यानी नोएडा का ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि बचपन की यादों को फिर से जीने का एक शानदार अनुभव है।
1: वॉल आप देखिए कितने अच्छे से बनाई गई है और इसमें लिखा हुआ है वो लास्ट बेंच, वो लास्ट बेल, वो लास्ट बाइट, सब कुछ, रोल नंबर बदल गया, दोस्ती नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ज़रूर आप उन दिनों में लौट जाएंगे जिन दिनों में आप बहुत छोटे थे और शायद आप यही सोचते थे कि कितनी जल्दी हम स्कूल से निकल पाए, लेकिन वो स्कूल हमसे कभी निकल नहीं पाया। अगर आप फिर से उन्हीं स्कूल के दिनों को जीना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
3: और चलिए अब आपको एक अनोखी दावत में लिए चलते हैं। चीन के वुशी चिड़ियाघर में जानवरों के लिए इस दावत में कुछ खास तैयार किया गया। मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले यहां पर जिराफ, कैपिबारा और रेड पांडा समेत तमाम जानवरों के लिए खास मून केक बनाए गए हैं। इन मून केक को नेचुरल चीजों से तैयार किया गया है। इस दावत में हर जानवर की खाने की आदत को ध्यान में रखा गया है। जानवरों के सामने जैसे ही ये खास ट्रीट परोसी गई, उन्होंने बड़े चाव से उन्हें खाया।
4: दरअसल वुशी जू में इन दिनों ऑटम फन थीम पर खास कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें क्यूट एनिमल एनकाउंटर, इमर्सिव परफॉर्मेंस और साइंस एजुकेशन से जुड़े इंटरैक्टिव प्रोग्राम शामिल हैं। मकसद साफ है कि लोगों को जानवरों के करीब लाना और चिड़ियाघर के अनुभव को और खास बनाना। मिड ऑटम फेस्टिवल का 3 दिन का अवकाश शुक्रवार से रविवार तक रहेगा।
3: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: पंजाब के जिला फरीदकोट में 57वें बाबा शेख फरीद आगमन पर्व मेले का शानदार आयोजन किया गया। ये मेला 23 सितंबर तक चलेगा। मेले में फरीदकोट शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखरे नजर आए। मेले की शुरुआत विरासत काफिला के साथ हुई और किला मुबारक से शुरू हुआ। विरासत काफिला शहर के प्रमुख रास्तों से होता हुआ दरबारगंज पहुंचा। काफिले में कई राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं, वहां की वेशभूषा, लोक कला और लोक परंपराओं को दिखाया गया। रास्ते में लोगों ने काफिले का गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी उमड़े।
6: और देखिए, अलग अलग राज्यों से पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र और कलाकार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। सजे हुए घोड़े और ऊंटों ने भी काफिले की शोभा बढ़ाई। शहर के लोगों ने कई राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों का आनंद लिया। मेले का मकसद युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास, प्राचीन विरासत और समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। इसी मकसद से हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है।
0: और चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या मंगल की वजह से व्यक्ति जीवन में मुकदमे में फंसता है? क्या राहु की वजह से जीवन में झूठे आरोप लगते हैं? क्या है मुकदमे में फंसने के कारण और क्या है उसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
8: एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। वेमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट। देश भर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति के बयार। अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का 11 तोले का सोने का मुकुट। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में अभिनेता संजय दत्त ने लगाई हाजिरी। पत्नी के साथ आरती में हुए शामिल। विधि विधान से की पूजा। शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात के अंबाजी में भादरवी महामेले का शुभारंभ। 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने के पहुंचने की उम्मीद। एक से दो महीने बाद तेजस MQ-1A वायुसेना में हो सकते हैं शामिल। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने की पुष्टि।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बस नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश हर दिन गुजरने के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाती चली गई और अब कामयाबी का एक नया शिखर इस फिल्म ने छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 350 करोड़ की धुआंधार कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

0: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: ये कहानी है उसी विश्वास की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार पाने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ही ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 350 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। अपनी रिलीज के 46 दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई 352 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ को पार कर चुका है। बात अगर ओवरसीज कलेक्शन की जाए तो फिल्म ने देश के बाहर अभी तक 26.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से हनुमान अंश का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 352 करोड़ को पार कर चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का ना तो भव्य प्रमोशन हुआ और ना ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खैर खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्ते तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: ये फिल्म की एक जो सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो फर्स्ट 2 हफ्ते ये फिल्म आई और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई है। सडनली जब बड़ी फिल्में बंटवारा, आवारापन 2, ये सारी फिल्मों के बीच में, इवन टॉक्सिक, यश की टॉक्सिक आई थी और उसके बीच में हनुमान अंश ने अपना कमाल किया। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, उसका मैजिक हुआ। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और ये कहने लगे कि ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन, जो एक फिल्म की क्वालिटी है वो इतनी सुपर्ब थी, उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन, और सबसे बड़ी जो बात है नीम करोली बाबा की जो कहानी है वो शायद हमने आज तक सिर्फ सुनी थी, उसे सिनेमा में पहली बार दिखाया गया। और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच आते हुए भी हनुमान अंश ने 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे, वहीं हनुमान अंश जैसी एक छोटे बजट की फिल्म इस तरीके की एक मैजिक क्रिएट करती है। और जो डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि ये फिल्म की जो फेट है ये पहले से लिखी हुई थी, कि 10 दिनों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और सडनली जो दूसरे हफ्ते के एंड से स्क्रीन्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ 20 स्क्रीन्स उनके पास बची थी और उसके बाद हजारों में स्क्रीन्स बढ़ाई गई, बहुत सारे थिएटर्स में ऑडियंसेस के डिमांड पे स्क्रीन्स बढ़ी।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की इस सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he says, he tells अर्जुना that कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वो ये थी कि लाखों करोड़ों लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे। ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। सो वी थिंकिंग ऑफ इन्फ्लेटेबल थिएटर्स लेटर ऑन, कि भाई ऐसे थिएटरिकल एंड खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा, प्रॉब्ली द बिजनेस एंड देन द होल थिंग इज प्रॉब्ली नॉट माई कप ऑफ टी एंड नॉट माई, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है।
1: हनुमान अंश अपनी रिलीज का 7वां हफ्ता बीते बीते 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्रॉस फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है और 352 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम बार बार और लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 350 करोड़ की कमाई के इस सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछला वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 7वां वीकेंड था और 7वें वीकेंड में हनुमान अंश ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म रिलीज के 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया है जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।

0: हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी सूत्र से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 352 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाएंगे। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ 350 करोड़ रुपए और अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 350 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 17,500 यानी लगभग 175% का रिटर्न, 175% विशुद्ध प्रॉफिट। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली फिल्मों की लिस्ट में जहां इस लिस्ट में 17,500% के मुनाफे के साथ हनुमान अंश पहले नंबर पर है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में लगभग 3 गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो 4th नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है।
1: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागिनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड ही वॉज द वन हु वॉज टेलिंग अस दैट लिसन, आई मीन वी कैन यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से इतना आ सकता है, लैंग्वेज में इतना आ सकता है। सो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जो भाव और श्रद्धा से ये फिल्म स्टार्ट करी गई है और जिस ढंग से हम लोग एक एक करके, जैसे लग रहा था कि बाबा पिक एंड चूज कर रहे थे हम लोगों को और मिला रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को पता नहीं क्यों चिंता नहीं हुई कभी।
0: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है, उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट पे बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1,650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
2: बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये और सारे ही लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतोषी माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी, उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साईं बाबा पे फिल्म बनाई थी वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसे 100 करोड़ का बिजनेस किया।
0: बता दें कि हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने 2025 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म लालो देखी थी। लालो एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट लगभग 50 लाख रुपए का था, लेकिन लालो ने करीब 125 करोड़ का बिजनेस किया था। हनुमान अंश के मेकर्स ने ये माना है कि फिल्म वालों की रिपोर्ट देखने के बाद उनके मन में ऐसी ही कामयाबी दोहराने की उम्मीद जगी थी।
1: हम लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई कि शायद वो फिल्म रीजनल थी, गुजराती में थी, उसका नाम था लालो। सो हम लोग ने जब फिल्म बना ली थी उसके बाद हम लोग ये फिल्म देखने गए थे लालो, एज अ यूनिट हम लोग गए थे। और कहीं पर मैंने विशाल से आते हुए कहा था, मैंने कहा विशाल क्या पता ये फिल्म भी हमारी इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि लालो ने भी 50 लाख में फिल्म कंप्लीट की थी लालो के प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद वो फिल्म, उस फिल्म ने भी 200 से 250 करोड़ का बिजनेस किया था। सो वो भी एक हम लोग के लिए एक तौर पर एक रोल मॉडल बनी वो फिल्म, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को उस फिल्म से अपनी फिल्म में लगी कि हमारी फिल्म में भी ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो ये मैं कहूँगी तो ये झूठ होगा कि हम लोगों को 200 और 250 की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये लगा कि अगर ये फिल्म चल गई तो ये लालो भी हो सकता।
0: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। ऐसे में हो सकता है कि हनुमान अंश अभी कमाई और कामयाबी के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कामयाबी के सुनामी के बीच ही सियासी गलियारों में भी हनुमान अंश फिल्म की धूम है। अब तक कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, कई नेता फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर को फिल्म की टीम से नई दिल्ली में मुलाकात की और फिल्म की शानदार कामयाबी पर टीम को बधाई दी। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर समेत बाकी टीम मेंबर्स भी नजर आए। इससे पहले हनुमान अंश की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। फिल्म की इसी शानदार कामयाबी के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो भी पहुंची, जहां पर मैंने उनसे खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमान अंश की प्रोड्यूसर ने फिल्म की कामयाबी पर क्या कुछ कहा। आप जब छोटी थी तब आप खुद नीब करौरी बाबा से मिल चुकी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो मूवी बनी है और जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप कितनी छोटी थी, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जाती थी?
1: 6 और 7 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स थे मुझसे बड़े थे सब लोग, उनको भी बहुत क्लियरली बाबा की याद है, मगर मुझे भी इतना छोटे होने के बावजूद मुझे कम्बल वाले बाबा अब तक बहुत बहुत साफ याद है। और कैसे वो प्रसाद देते थे, कैसे वो बच्चों के साथ पे बहुत ही स्नेह से पेश आते थे, और हम सब लोगों को एक बहुत प्यारी सी याद है बाबा की। और वही बाबा का जो सेवा भाव था, वही जो प्यार था, वो जो एक यू नो प्रसाद देने का वो था, और जो उनको भूखों को जैसे कहते थे भोजन कराना, उनके ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों के एक कहीं पर याद में रह गए हैं। क्योंकि वो प्रसाद जो होता था वो हम लोग जब सब लोग एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार जाते थे, और जब कम्बल वाले बाबा हम लोग को प्रसाद देते थे तो सब लोग बहुत खुश जाते थे कि अब तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हम लोगों के। तो मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स तो वहीं से तय हो गए थे।
3: और जब विशाल ने आपको आशीर्वाद बाबा का तब से ही मिला हुआ है पूरे परिवार को,
1: आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि वो प्रसाद ही कहीं पर जब विशाल मुझे सुना रहे थे, और मैंने विशाल से कहा, विशाल डू यू नो दैट आई एम मेट हिम, और विशाल के लिए नो, आई सेड यस आई मेट हिम. तो वो सबसे बड़ी एक बात थी जो हम दोनों को ये बात.
3: तो इस पूरे मूवी के दौरान, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स आपने पैसे लगाए, लेकिन इस मूवी के दौरान चूंकि आपका खुद एक पर्सनल लगाव, एक टच रहा है, आप जानती रही हैं उनको, तो आपने ये थ्रू आउट कोशिश की इस बात को देखने और जानने की कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए मूवी, कहीं भी जैसे वो थे वैसा ना दिखे पर्दे पर, ऐसा ना हो, वो जैसे थे एक्चुअली वो वैसे दिखने चाहिए, कहानी बिल्कुल वही हो.
1: सो विशाल ने जब हम लोग को कहानी सुनाई थी और सीन बाय सीन सुनाई थी, उस वक्त जब वो सुना रहे थे कहानी तो भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं कहते थे विशाल तुमने कैसे लिखी है ये कहानी. तो मैं कहूंगी जो एक परसेप्शन था, जो एक विजन था विशाल का, वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे निर्देशक होते हैं जिनको कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी एक. विशाल वैसे भी बहुत ही स्पिरिचुअल खुद भी हैं और बहुत ही वो भी मानने वालों में से हैं. सो हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है इस प्रोजेक्ट को तो सिर्फ विशाल कर सकते हैं, और हम लोगों ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी.
3: पहली बार मैंने खुद ऐसी फिल्म देखी है जब प्रचार उस तरह का नहीं था. प्रचार था भंडारा, प्रचार था मंदिरों में जाना, प्रचार था संतों से मिलना. ये स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब ये सोच कैसे आई?
1: ये सोच थी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सब होता चला गया, बिकॉज पैसे तो हम लोग के पास वाकई में नहीं थे प्रचार के, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस फिल्म में कोई भी प्रचार ऐसा होता तो शायद ये फिल्म इससे बड़ी हो गई होती. मगर हम लोगों ने जो नहीं किया प्रचार, वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म को जिसने चलाया है वो दर्शक हैं, उन्होंने चलाया है और उनके जो रिएक्शन है उन्होंने चलाया है, और इस फिल्म की जो सादगी और जो जो सहजता थी उसने चलाया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नहीं थे पैसे खर्च करने के लिए, जो कि नॉर्मली फिल्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जितना फिल्म का बजट होता है उतना ही शायद पब्लिसिटी का भी बजट होता है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फिल्म में. मगर जिस तरीके से ये फिल्म चली है वो दर्शकों ने चलाई है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म जो है वो कुछ ऐसा लेकर के आई, दर्शकों का एक ऐसा इमोशन लेकर के आई कि उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग जाइए फिल्म देखने के लिए, और लोग गए फिल्म देखने के लिए. मगर एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो टीम थी, विशाल और उनकी एक मतलब एक छोटी सी टीम है मगर बहुत ही मेहनती टीम है, और वो लोग निकल गए थे जब हमारी फिल्म थोड़ा सा कहीं पर ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो लोग निकल गए थे अपने एक ट्रिप पर, और वो हर जगह पे गए और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी गुजरात से, सूरत और सब जगहों पर जाकर के उन्होंने, जब थिएटर्स में गए वो उन मंदिरों में गए जहाँ पर कि जाकर के उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कहीं पर बाबा से प्रार्थना करी होगी, और वो सब उन्होंने सुनी और खुद उतर आए बाबा इस फिल्म को चलाने के लिए, और उन्हीं का चमत्कार है जो कि आज फिल्म इतना सुंदर बिजनेस कर रही है. मगर हम लोगों को
3: और एक और बात अभी मतलब सुनने में ये आया था कि शायद, जो कि शायद आपने डिनाई भी कर दिया है, कि लगभग 100 करोड़ के आसपास कुछ नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मामला था.
1: I will still deny that.
3: ऐसा है, लेकिन भारी भरकम कुछ आ रहा है आप लोगों के पास अमाउंट,
1: कुछ ऐसा हम लोग
3: बहुत बड़ी डील की बात वो कर रहे हैं.
1: जो आपने भारी भरकम की बात करी, तो हम लोग ने विशाल और हम सब प्रोड्यूसर से बात करते हैं तो हम लोगों को वो भारी भरकम दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी. मगर हाँ, हमारे पास ऑफिस है और हम लोग जब अभी थोड़े से और दिन का टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिल्म चल रही है उस हिसाब से विशाल का कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म थिएटर में जाने के हिसाब से, जैसे हम लोग अभी बात करते कि 100 करोड़ लोग जब, सॉरी 1 करोड़ लोग जब इस फिल्म को देख लेंगे तो हम लोग के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे कि हम लोग नंबर्स गिने, फाइनेंस गिने और इस तरीके की.
3: फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म की को प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अयोध्या पहुंची. उन्होंने हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म की सफलता को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ते हुए अपने अयोध्या दौरे को बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अप्रैल में हनुमान गढ़ी और राम मंदिर आई थी. उस समय हनुमान अंश फिल्म पर काम चल रहा था और वो चाहती थी कि फिल्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें.
4: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी, राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले। और आज मैं वापस आई हूँ जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई, वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई, क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुंचे हैं।
3: इससे पहले फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बागेश्वर धाम भी पहुंची थी। दरअसल एक वक्त जब फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर यह छलांग लगाई थी। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक

0: की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गयी। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुँचाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से हराया। दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देश भर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार। अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जालना में 65 किलो चांदी से बप्पा का, 11 तोले का सोने का मुकुट। मुंबई में लालबाग राजा के दरबार में अभिनेता संजय दत्त ने लगाई हाजिरी। पत्नी के साथ आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात के अंबाजी में भादरवी महामेले का शुभारंभ। 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का उम्मीद। एक से दो महीने बाद तेजस MK-1A वायु सेना में हो सकते हैं शामिल। भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने की पुष्टि।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और मम्मूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। वहीं पर फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड। तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं पर तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय करने के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए। विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला। गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड। फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर के साथ पटकनी देकर जीता गोल्ड। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से खरारी शिकस्त। 16वें ओवर में पूरी टीम महज 69 रनों पर ढेर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल टारगेट। स्मृति मंदना ने खेली 79 रनों की पारी। शेफ अली वर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल। 48 रनों में शानदार शतकीय पारी खेली। पावर प्ले में झटके श्रीलंका के 2 विकेट। T20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत। इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर। भारतीय टीम ने 4x100 मीटर मेडली रैली के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऋषभ दास, धनुष, सुरेश बेनेडिक्टन, रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में 3:40.41 सेकेंड्स समय लेकर हासिल किया है 7वां पायदान। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 हराया। एशियन गेम्स 2026 में भारत की हॉकी टीम की बड़ी सफलता। श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक रहा है बहुत जबरदस्त। दोनों मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने किए हैं गोल। गणेशोत्सव के 9वें दिन भी लालबाग राजा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़। बप्पा का मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरी चा राजा के दरबार में दिखी अयोध्या की भव्यता। इस वर्ष राम मंदिर पर आधारित है पंडाल की थीम। पंडाल में प्रवेश करते ही अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता के होते हैं दर्शन। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में विराजमान है गणपति बप्पा। इस पंडाल के निर्माण करने के लिए खासतौर पर अयोध्या गई थी आयोजकों की टीम। अंधेरी चा राजा पंडाल में स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा और आभूषण सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान देख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल। भट्टवाड़ी का राजा के दरबार में एआई थीम पर आधारित। आस्था के साथ तकनीक की मदद से गणपति के दरबार की सुंदर सजावट, एआई से मिल रही है सफलता। एलईडी के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है एआई की कहानी। पूरी तरीके से कागज से बनाए गए हैं इको फ्रेंडली भट्टवाड़ी का राजा गणपति। इस साल अपना 58 साल मना रहा है ये मंडल। बप्पा के दर्शन और राधेश विकास की कहानी देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं भक्त। जालना में 65 किलो चांदी के गणपति बप्पा की मूर्ति बनी विशेष आकर्षण। दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणपति बप्पा को पहनाया गया 11 तोले का सोने का मुकुट। मान के पहले गणपति के तौर पर मशहूर इस पंडाल का ये 79वां वर्ष। बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पिछले करीब 17 वर्षों से मंडल की ओर से की जा रही 65 किलो चांदी की गणपति मूर्ति स्थापित। जालना में 25 फीट ऊंची भव्य गणेश मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। बप्पा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन। जालना के पड़ी सड़क इलाके में अलग अलग पंडालों में विराजमान गजानन के अनोखे श्रृंगार। चंद्रपुर में किसान के रूप में बप्पा के दर्शन। खेत में हल चलाते हुए बप्पा की प्रतिमा ने खींचा ध्यान। किसानों को समर्पित है यह सुंदर राजा की बप्पा से किसानों के दुख हरने और अच्छी फसल की कामना। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था करों का संगम। भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के हो रहे हैं दिव्य दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सांवरिया सेठ का स्वरूप एक ही मूर्ति में किया गया है। दोनों का स्वरूपों का अद्भुत समन्वय। चंद्रपुर के श्री अष्टविनायक गणेश मंडल की ओर से साकार की गई है भव्य झांकी बप्पा के साथ ही स्थापित की गई है। अनोखे गणपति पंडालों की लिस्ट में अमरावती का एक वीरा गणेश मंडल भी शामिल है। भक्ति के साथ पढ़ाई के महत्व पर फोकस। पंडाल में पारंपरिक मराठी स्कूल का दृश्य किया गया है तैयार। बच्चों की कक्षा में पढ़ते हुए बनाई गई है भव्य झांकी। इस वर्ष पर्यावरण के अनुकूल छोटी गणेश प्रतिमा की गई स्थापित। प्रकृति के संरक्षण का सामाजिक संदेश देने की कोशिश। कोटा की रेलवे कॉलोनी में अनोखा गणेश उत्सव। 9 फीट के मूषक पर विराज 7 फीट के गणपति। करीब 10 वर्षों से बालाजी नव युवक मंडल की ओर से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। गणपति दर्शन करने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल में अनोखी थीम खींच रही है सभी का ध्यान। घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण की तर्ज पर तैयार की गई है झांकी। पंडाल के अंदर बनाई गई है सुंदर गुफा और जंगली जानवरों के कई जीवंत स्टैच्यू। झांकी के जरिए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का संदेश। आस्था के साथ भविष्य के लिए भी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। रोज हजारों लोग कर रहे हैं बप्पा के दर्शन। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले और उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ मंदिर में किया दौरा। अमेरिकी जवानों को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानने का मौका मिला। आपसी भाईचारे और राष्ट्र सम्मान को मजबूत करना है सांस्कृतिक दौरे का मकसद। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में लगे भादरवी मेले में आ रहे हैं भक्तों के लिए पहली बार लगाया गया एसी डोम। मेले के पहले 2 दिन में करीब 8.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। 26 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में करीब 40 लाख से ज्यादा भक्तों के अंबाजी पहुंचने की उम्मीद है। संगम नगरी प्रयागराज में पितृपक्ष की तैयारियां तेज। हिंदू धर्म में यह समय अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। इस अवसर पर पिंडदान करने गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। 26 सितंबर से हो रही है पितृपक्ष की शुरुआत, 10 अक्टूबर को समापन। इस बार प्रयागराज में ऑनलाइन पिंडदान की भी व्यवस्था है। जो लोग देश विदेश या किसी कारणवश अपने पुरखों का पिंडदान करने नहीं आ सकते उनके लिए सुविधा उपलब्ध है। अम्बाला में वामन द्वादशी मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ऐतिहासिक मेले में भगवान वामन के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने संत से मुलाकात की। पीजावर मठ के संत श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी से मिले। तिरुमाला में अली पीरी पैदल मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पेड़ पर देखा तेंदुआ। तीस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में नदी में बाहर नन्हा हाथी सुरक्षित बाहर निकाला गया। मां से मिलते ही दोनों का मिलन अद्भुत। पिंडदानियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने के लिए मेला क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से हो जा रही है निगरानी। विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पूरे मेला क्षेत्र पर पुलिस की नजर रहेगी। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की निगरानी होगी और असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी पैनी नजर। गया पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था की जा रही है। यूपी में बुंदेलखंड के महोबा जिले में इस बार मानसून ने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसत से 71% अधिक हुई बारिश। महोबा जिले के सभी प्रमुख बांध पानी से लबालब। 13,100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पेरुंथ लेवर कामराजर नाश्ता योजना के विस्तार का किया उद्घाटन। आयोजन में बच्चों के साथ साथ नाश्ता करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री विजय। पंक्ति में बच्चों के साथ भोजन। इस योजना के तहत अब कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त दिया जाएगा नाश्ता। केरल के कासरगोड में पुलिस विभाग ने विस्फोट का पता लगाने वाले अपने 2 K9 डॉग्स को दिया भावुक विदाई। विदाई समारोह के दौरान दोनों डॉग्स को सम्मान में ओढ़ाई गई शॉल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्टार्टअप आइडिया चैलेंज 2.0 के तहत एक दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया। जेएनके स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 के तहत आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। बूट कैंप में विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों के 150 से ज्यादा छात्र और शिक्षक शामिल। करगिल की ओर स्ट्रा बढ़ा वायुसेना का साइकिल दल। दिल्ली में एयर मार्शल शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। नेशनल वॉर मेमोरियल से कन्याकुमारी टू करगिल साइकिल अभियान का ये अंतिम चरण। राष्ट्रीय एकता के साथ युवाओं में फिटनेस का संदेश। रोहतक के किलोई गांव में जश्न। एशियाई खेलों में 60 किलो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका को ब्रॉन्ज। मध्य प्रदेश में अब वर्दी पहनकर रेल बनाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। पुलिस मुख्यालय में जारी की गई नई गाइडलाइन। चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर सरकारी या संवेदनशील जानकारी साझा करने और जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर भी रोक। पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी रोजगार कुंभ जारी। मुख्यमंत्री योगी ने आज 3,567 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, सरकार का दावा। अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। जल्दी भारतीय एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल यात्री डीजी यात्रा का कर सकेंगे इस्तेमाल। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल का नेशनल डे की छुट्टियों आ रही है। त्यौहार पर खाई जाने वाली पारंपरिक मून केक मिठाई बनाने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। त्यौहार के इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और खुशहाली मनाते हैं। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में इंटरनेशनल लाल लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर देश विदेश के हजारों सुंदर लालटेनों को देखने को मिलता है। सरकार लोगों को घूमने फिरने के लिए करोड़ों रुपए के डिस्काउंट और कूपन दे रही है, जिससे इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के घूमने की उम्मीद है। चीन के वुशी चिड़ियाघर में मिड ऑटम फेस्टिवल की पहले जिराफा, कैपिबारा और लाल पांडा जैसे जानवरों को स्पेशल मून केक दिए गए। ये मून केक जानवरों की पसंद और सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। चिड़ियाघर ने इन खास मौके को यादगार बनाने के लिए ऑटम फन नाम से कई मजेदार कार्यक्रम भी शुरू किए। बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजक और रोमांचक परफॉर्मेंस भी आयोजित की जा रही है। इस साल में ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियां चीन में 3 दिन की होंगी, जो शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक चलेंगी। सऊदी अरब की ऑटो कंपनी सोर ने अपनी पहली 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर दी। इस इलेक्ट्रिक कार का लुक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह नजर आता है, उसमें ऊपर की ओर खुलने वाले बहुत स्टाइलिश गल्विंग लगे हुए हैं। कार में आगे और पीछे की सीट के पीछे वाला पिलर हटा दिया गया है, इसकी वजह से कंपनी बहुत मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सऊदी अरब का लक्ष्य 2030 तक 5 और नए मॉडल लॉन्च करना है। कंपनी सऊदी अरब के सरकारी फंड और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है।

0: न्यूयॉर्क हार्बर में उड़ती इलेक्ट्रिक बोट बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। वेसिव की VS9 ने पानी से ऊपर उठकर भरी रफ्तार। पानी पर नहीं, हवा में दौड़ी इलेक्ट्रिक बोट। 10 यात्रियों वाली VS9 ने न्यूयॉर्क में दिखाया दम। न्यूयॉर्क हार्बर में भविष्य की बोट का डेब्यू। क्लाइमेट वीक में फ्लाइंग बोट का जलवा। टेस्ला जैसी बैटरी ड्रोन जैसा कंट्रोल। वेसिव ने इलेक्ट्रिक बोट में जोड़ी कई नई टेक्नोलॉजी। न्यूयॉर्क में देखी वाटर ट्रांसपोर्ट की नई तस्वीर। उड़ती बोट पहुंची अमेरिका के कमर्शियल मार्केट। लंदन में प्रिंस हैरी ने बच्चों से की खास मुलाकात। वेल चाइल्ड अवार्ड्स के विजेताओं और उनके परिवारों से मुलाकात हुई। बच्चों की बहादुरी और उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। वेल चाइल्ड अवार्ड्स में देखा प्रिंस हैरी का खास अंदाज। बच्चों से बातें करती हुए और पोस्टर पर उन्होंने साइन भी किए। प्रिंस हैरी ने व्हीलचेयर पर बैठे बच्चों से मुलाकात की। प्रिंस हैरी लंबे समय से वाइल्ड चाइल्ड चैरिटी के संरक्षक हैं। प्रिंस हैरी ने सुनी बच्चों की कहानी, बढ़ाया हौसला। प्रिंस हैरी वाइल्ड चाइल्ड अवार्ड्स अब तक 15 बार हो चुके हैं शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
0: आते हैं। जर्मनी में बिखरे भारतीय संस्कृति के कुछ रंग। जर्मनी में इंटरनेशनल मैथिल डायस्पोरा ने 2 दिवसीय प्रथम विद्यापीठ समारोह का भव्य आयोजन किया और इस विशेष आयोजन में जर्मनी के कोने कोने से मैथिल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुदूर परदेश में अपनी जड़ों से जुड़ने के पावन अवसर पर सभी परिवारों ने एक दूसरे से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान सभी ने परस्पर मेलजोल बढ़ाने, एक दूसरे का सहयोग करने और अपनी भावी पीढ़ी को मैथिली संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखने का संकल्प लिया। आयोजन में एक विशेष मिथिला प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही, साथ ही साथ लोगों ने मिथिला व्यंजनों का आनंद भी उठाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को बप्पा के अलग अलग और अनोखे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां के बालाजी वार्ड में श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की अनोखी झांकी तैयार की है। देखिए इस गुफा में भगवान राम के रूप में गणेश जी की 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है और खास बात इसमें यह है कि गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को अपने पैर धोकर ही अंदर जाना होता है।

0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये अनोखा गणेश पंडाल भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल ने इस बार सुग्रीव गुफा की थीम पर भव्य झांकी तैयार की है, लिहाजा बाहर से ये गणेश पंडाल सुग्रीव गुफा के जैसा दिखाई देता है, लेकिन गुफा के भीतर प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलग अद्भुत एहसास होता है। आयोजकों का मानना है कि रिद्धि सिद्धि के दाता के दर्शन से पहले तन और मन दोनों का शुद्ध होना जरूरी है, लिहाजा सुग्रीव गुफा पंडाल में भक्तों को पैर धोने के बाद ही प्रवेश मिलता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों को भगवान श्री राम के रूप में गजानन के दर्शन होते हैं। करीब 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, चार भुजाएं और हाथ में धनुष, गणेश जी का ये राम रूपी स्वरूप भक्तों को खूब भा रहा है, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्त यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं।
1: और इस साल हमारा 55वां साल है और ये प्रथा जो है पूरा 55 सालों से लेके आते हैं। और इस साल हमारा जो रूप है वो सुग्रीव का जो गुफा है उसमें हमने राम का जो वनवास के टाइम का जो सुग्रीव के साथ मिलन हुआ था वो टाइम का हमने यहाँ पे मतलब दिखा है पूरा। और उसके बाद में हमारे जो वार्ड का जो पूरा इतने सालों से जो प्रथा है आज सब हम मिलके एक भाईचारे के साथ में सब कर रहे हैं।
0: श्री बालाजी नवयुवक गणेश मंडल पिछले 55 सालों से अलग अलग धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गणेश पंडाल की स्थापना करता आ रहा है। इस बार सुग्रीव गुफा थीम पर बेस्ड इस पंडाल को तैयार करने में करीब 3 महीने का समय लगा। श्री राम के जीवन काल से जुड़ी ये भव्य झांकी गणेश भक्तों को लुभा रही है और बड़ी संख्या में भक्त श्री राम रूपी गणेश जी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाया जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोज आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को जैन से रानी परिहार ने गणेशोत्सव के मौके पर बप्पा की मनमोहक प्रतिमा घर में स्थापित की है। भक्तों को निर्भय होने का वरदान दे रहे भगवान गजानन को प्रिय मोदक का भोग लगाया गया है। गले में मोतियों के माला धारण किए बप्पा की सुंदर दर्शन प्राप्त सभी को हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, गुरुग्राम से मोनिका सेठी की है और यहाँ पर सुगंधित पुष्पों की माला से सुशोभित भगवान गणेश के पीछे राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: राहुल गांधी को देखने उमड़ी लाखों की भीड़, इंदौर में राहुल के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में जन सैलाब, सहारनपुर की मस्जिद में बुलडोजर एक्शन पर भड़के जज, उम्र छोटी पर हुनर बेमिसाल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
2: बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देश भर से बधाइयां। गजानन के पंडालों में भक्ति की बयार। अकोला में पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जालना में 65 किलो चांदी के बप्पा का 11 तोले का सोने का मुकुट। मुंबई में लालबाग शाह राजा के दरबार में अभिनेता संजय दत्त ने लगाई हाजिरी। पत्नी के साथ आरती में हुए शामिल। विधि विधान से की पूजा। शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात के अंबाजी में भादरवी महामेले का शुभारंभ। 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। एक से दो महीने बाद तेजस MQ-1A वायुसेना में हो सकते हैं शामिल। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने की पुष्टि।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, उत्सव और उमंग की। पूरा देश गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ है और सबसे भव्य और दिव्य उत्सव के रंग में सराबोर है मुंबई, जहां लाल बाग चौराहा के दरबार से लेकर अंधेरी चौराहा तक हर दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में आज की हमारी पहली गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। बापा के दरबार में फिल्मी सितारों का मेला। जी हाँ, आपको बता दें कि शहर शहर फूलों से सजे भव्य पंडाल, बप्पा की मनमोहक प्रतिमाएं और दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें गणेश उत्सव को और भव्य बना रही है।
3: भक्तों की लगी है भीड़ पार, गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। आस्था और भक्ति से सराबोर है पूरा देश। महाराष्ट्र, गुजरात समेत पूरे देश में गणेश उत्सव की रौनक है और खूबसूरत नजारा है। माया नगरी मुंबई का, जहां हर कोई बप्पा की भक्ति में रंग गया है, गली गली गणपति पंडाल लगे हैं। जो प्रसिद्ध पंडाल है उनकी छटा निराली है। मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों में से एक लाल बाग के राजा के दरबार में भक्तों का जमघट है। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ लाल बाग चौराहा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक लाल तिलक लगाए शाहरुख ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लाल बाग चौराहा के दरबार में पूजा की। शाहरुख खान के अलावा परिंदी चोपड़ा, शहनाज गिल समेत तमाम सितारे बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बप्पा के दर्शन का सिलसिला दूसरे पंडालों में भी जारी है। मुंबई के भटवाड़ी में भटवाड़ी के राजा का दरबार इस बार भविष्य की कहानी कह रहा है। इस पंडाल की थीम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ LED स्क्रीन के जरिए बप्पा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को AI की कहानी दिखाई जा रही है।
4: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा विज्ञान में एआई कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी एआई की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, एआई सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है।
3: प्रतिमा के विसर्जन के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। गणपति बप्पा का विसर्जन पास ही बने बीएमसी के कृत्रिम तालाब में किया जाएगा। यानी एक तरफ भविष्य की तकनीक एआई की कहानी तो दूसरी तरफ प्रकृति को बचाने का संदेश ये पंडाल दे रहा है।
5: जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं अपन खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
3: आस्था, आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा ही खूबसूरत संगम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ गणेश उत्सव के दौरान बप्पा की भक्ति के साथ सामाजिक सरोकार भी देखने को मिल रहा है। पानी टंकी परिसर स्थित युवा गणेश मंडल ने इस साल किसानों को समर्पित अनोखी झांकी तैयार की है। यहाँ बप्पा के दरबार में भक्तों को खाटू श्याम जी का सांवलिया सेठ के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की भव्य झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात ये है कि खाटू श्याम जी का चेहरा और सांवलिया सेठ का स्वरूप दोनों का अद्भुत संगम एक ही मूर्ति में किया गया है। महाराष्ट्र के जालना शहर में भी गणेशोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ कादराबाद इलाके में नवयुवक गणेश मंडल की ओर से स्थापित किए गए बप्पा की प्रतिमा को खास अंदाज में तैयार किया गया है। गणपति बप्पा की ये प्रतिमा 65 किलो चांदी से बनी है जिसकी चमक श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यहाँ बप्पा का श्रृंगार भी बेहद खास है। यहाँ गणपति महाराज को 11 तोले वजन का सोने का मुकुट पहनाया गया है। चांदी से बनी भव्य प्रतिमा और सिर पर सजा सोने का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, जालना से गौरव सांठी, चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ये रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और छत्तीसगढ़ के भिलाई में हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनवाए गए गणेश मंदिर में गणेश जी का धूमधाम से विवाह होता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है भगवान गणेश का अनूठा विवाह उत्सव। दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहाँ का हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह। दरअसल यहाँ गणेश विवाह परंपरा दशकों पुरानी है और बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शादियों का रास्ता खोला है।
6: कुछ ऐसी वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के 7वें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। तो वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
7: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक एक एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज। तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है। तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
6: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है। कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और बद्रीनाथ धाम में दो दिनों तक परंपरा और लोक आस्था से जुड़े उत्सव में लोग झूमते रहे। यहां पर देवभूमि कल्चर फेस्ट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस महोत्सव की थीम थी हमारी विरासत हमारा भविष्य। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है देवभूमि में लोक संस्कृति और सैन्य शक्ति साथ साथ। आपको बता दें कि इस आयोजन में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और सीमांत गांव की जीवन शैली की जीवंत झलक देखने को मिली। भारतीय सेना और स्थानीय ग्रामीणों ने साथ मिलकर देवभूमि की संस्कृति को देश दुनिया के सामने रखा।

बद्री विशाल का धाम देवभूमि की लोक परंपराओं के रंग में दो दिनों तक रंगा नजर आया, जहां दो दिनों तक संस्कृति से लेकर सैन्य शक्ति तक की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2026 में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस महोत्सव ने देवभूमि की संस्कृति को एक नया मंच दिया। इस महोत्सव की थीम रखी गई हमारी विरासत हमारा भविष्य। इस फेस्टिवल में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया।

0: बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में सजे इस सांस्कृतिक उत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। लोक गीतों की गूंज, पारंपरिक नृत्यों की थिरकन, स्थानीय कला और हस्तशिल्प की खूबसूरती और पहाड़ के पारंपरिक उत्पादों ने यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का खूब ध्यान खींचा।
1: मुख्य उद्देश्य लोगों को, सेना को और जो वाइब्रेंट विलेज माणा गांव है उसकी आर्थिकी और वहां से जुड़े हुए कार्यक्रमों को यहां पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो भारतीय सेना है, जो लोग हैं यहां के चमोली के, वो सब एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी यहां पे पहुंचे हैं और तमाम लोग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं। आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। ऐसे में तमाम जगहों की संस्कृति के बाद एक नई पहल यहां पे भारतीय सेना द्वारा, पिछले वर्ष पहला संस्करण हुआ था, इस बार दूसरा संस्करण ये चल रहा है।
0: दो दिनों तक चले इस देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शरीक हुए। इससे पहले उन्होंने बामणी गांव पहुंचकर नंदा अष्टमी के अवसर पर ग्रामीणों के साथ पारंपरिक झूमेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय महिलाओं के साथ झूमेलों करते नजर आए। इसके बाद वो बद्रीनाथ में चल रहे देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में पहुंचे और भारतीय सेना की हथियारों की प्रदर्शनी को देखा और अत्याधुनिक हथियारों एवं सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी ली।
2: जो देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का कल्चर है, उससे सभी लोग परिचित हों। वो एक समृद्ध कल्चर हमारा शुरू से रहा है, प्राचीन समय से, पहले समय से, और साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ के स्कूलों के, हमारे कॉलेजों के, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के बच्चे हैं, उन सभी को एक मंच मिलता है। यहाँ पर सेना के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रदर्शनी से हमारे सब नौजवान युवाओं को आधुनिक अत्याधुनिक जो उपकरण हैं, हथियार हैं, वो देखने को मिलते हैं।
0: महोत्सव में गढ़वाली और हिमालयी लोक नृत्य संगीत के साथ स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक परिधान, स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। इस आयोजन का मकसद सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करना नहीं था, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों, सेना और आम नागरिकों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करना भी था। इस कार्यक्रम के दौरान देश के पहले गाँव माणा में भारतीय सेना ने विशाल तिरंगा स्थापित किया। अब जो भी यात्री या पर्यटक बद्रीनाथ धाम और माणा गांव पहुंचेगा, उसे दूर से ही ये तिरंगा दिखाई देगा। इन दिनों औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास 2026 चल रहा है। इस दौरान अमेरिकी सेना के जवान भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और देवभूमि की लोक संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखा और इस फेस्टिवल का आनंद उठाया। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में इस साल अनोखे पत्ती मेले का आयोजन किया गया है। कपरोली, बालसिम, पनाओ और गवीट गांव में आयोजित इस पारंपरिक मेले में ग्रामीणों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ दिलचस्प प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पौड़ी के पत्ती मेले में चीड़ के पेड़ पर चढ़ने की होड़। पौड़ी गढ़वाल में मेले की शुरुआत मां नंदा के जागरों और धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुई। इसके बाद मेले का सबसे दिलचस्प राउंड शुरू हुआ, जिसमें करीब 15 मीटर लंबे चीड़ के खड़े पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता के लिए पेड़ को पूरी तरह से चिकना और फिसलन भरा बनाया जाता है। पेड़ के सबसे ऊपर पत्तियां, पहाड़ी फल और कुछ पैसे रखे जाते हैं। प्रतियोगिता में जो व्यक्ति पेड़ के ऊपर तक पहुंचकर वहां रखा सामान हासिल कर लेता है, वही विजेता माना जाता है और ऊपर रखा सामान उसके लिए इनाम होता है। ओनारा में एक ऐसा अनोखा कैफे है जिसे न केवल स्कूल की थीम पर बनाया गया है, बल्कि यहां आने वाले ग्राहकों को उनके बचपन और स्कूल के दिनों की यादों में वो ले जाता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है नोएडा में स्कूल की थीम पर बना अटेंडेंस शीट कैफे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस कैफे का इंटीरियर बिल्कुल स्कूल के क्लासरूम की तरह डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मेन्यू कार्ड है, जिसे मार्कशीट की तर्ज पर बनाया गया है।

0: ब्लैक बोर्ड है, घंटी है, लाइब्रेरी है, मार्कशीट भी है और रोल नंबर भी। ये कोई नए जमाने का स्कूल नहीं है बल्कि ये है स्कूल की थीम पर तैयार एक कैफे, इसलिए इसे अटेंडेंस शीट कैफे नाम दिया गया है जो मौजूद है यूपी के नोएडा में। इस अटेंडेंस शीट कैफे का पूरा कॉन्सेप्ट ही स्कूल की यादों पर आधारित है।
1: हम स्कूल में होते हैं तो कितनी जल्दी में होते हैं ना, कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, कितनी जल्दी ढेर सारे पैसे कमाएं, कितनी जल्दी अपने डिसीजन हम खुद ले लें। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन स्कूल हमसे बाहर कभी आ ही नहीं पाया, वो स्कूल हमेशा हमारे भीतर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं जहां जब आप पहुंचेंगे तो ना सिर्फ आपको अपना स्कूल याद आएगा बल्कि अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर, अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी मार्कशीट, सब कुछ याद आने वाली है। हम मौजूद हैं नोएडा में और इस जगह का नाम है अटेंडेंस शीट कैफे।
0: इस कैफे का इंटीरियर किसी स्कूल के क्लासरूम की तरह ही डिजाइन हुआ है, जहां डेस्क, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, लाइब्रेरी, टेबल नंबर की जगह रोल नंबर और पुरानी यादें ताजा करने वाला माहौल मिलता है। कैफे की एक दीवार पर क्लासरूम में प्रवेश करने से जुड़ी यादों को दर्शाया गया है, जैसे क्लासरूम में प्रवेश करते समय मे आई कम इन सर बोलना, पनिशमेंट मिलने पर स्टैंड अप ऑन द बेंच, बच्चों की बदमाशी करने पर साइलेंस इन द क्लास और होमवर्क चेक करवाना। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मेन्यू कार्ड है, जिसे क्वेश्चन पेपर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, इस मेन्यू में आपको हर डिश और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। होमवर्क तड़का मैगी, ट्यूशन वाली मैगी, स्टाफ रूम प्रिंसिपल चाय, केमिस्ट्री साइंस लैब मॉकटेल्स और बैक बेंचर मोमोज, ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मेन्यू में नजर आ जाएंगी। वहीं कैफे में साइंस लैब और लाइब्रेरी भी बनाई गई है। साइंस लैब में तो स्कूल के समय बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की तरह लाइव प्रोजेक्ट्स रखे हैं। साइंस लैब में पंप होने वाले प्रोजेक्ट, सोलर हाउस और विंड से जुड़े मॉडल्स बनाए गए हैं। यानी नोएडा का ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि बचपन की यादों को फिर से जीने का एक शानदार अनुभव है।
1: वॉल आप देखिए कितने अच्छे से बनाई गई है और इसमें लिखा हुआ है वो लास्ट बेंच, वो लास्ट बेल, वो लास्ट बाइट, सब कुछ। रोल नंबर बदल गया, दोस्ती नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ज़रूर आप उन दिनों में लौट जाएंगे जिन दिनों में आप बहुत छोटे थे और शायद आप यही सोचते थे कि कितनी जल्दी हम स्कूल से निकल पाए, लेकिन वो स्कूल हमसे कभी निकल नहीं पाया। अगर आप फिर से उन्हीं स्कूल के दिनों को जीना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
2: और प्रयागराज में 5 साल के बच्चे कौटिल्य ने छोटी उम्र में पुस्तक लिखकर बाल साहित्य की दुनिया में अनोखा कारनामा कर दिया है। ये किताब बच्चों की कहानियों की किताब है जिसका नाम कैप्टन ऑक्टोपस द ग्रेट आर्कटिक एडवेंचर है। कौटिल्य के माता पिता ने बाकायदा अपने बेटे की बुक लॉन्चिंग उसके जन्मदिन पर धूमधाम से आयोजित की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। 5 साल का कौटिल्य बना लेखक। यूपी के प्रयागराज में रहने वाले और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अतुल शाही एवं श्यामली सिंह के पुत्र कौटिल्य ने कम उम्र में ये पुस्तक लिखकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। कौटिल्य को बचपन से ही किताबें पढ़ने और कहानियां बनाने में विशेष रुचि रही है। इसी रुचि से प्रेरित होकर उसने इस बाल साहित्य की रचना की है। कौटिल्य की मां के अनुसार जब वो 3 महीने का था तब से उसे बाल साहित्य की पुस्तकों से जुड़ी कहानियां सुनाती हैं और जब कौटिल्य पढ़ने लायक हुआ तो उसके लिए पुस्तकें घर आने लगी। अब कौटिल्य की अपनी लाइब्रेरी है। केजी में पढ़ने वाले कौटिल्य की प्रतिभा को उनके माता पिता ने कम उम्र में पहचान कर उसे निखारने का भरपूर मौका दिया। इतना ही नहीं, कौटिल्य के छठवें जन्मदिन पर धूमधाम से उसकी पुस्तक के विमोचन के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कौटिल्य की पुस्तक का नाम कैप्टन ऑक्टोपस द ग्रेट आर्कटिक एडवेंचर है। कौटिल्य के माता पिता चाहते हैं कि वो बड़ा होकर एक लेखक साहित्यकार बने। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकों के दौर में इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो। लिहाजा इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत और जापान के सहयोग से युवाओं को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए युवा सीख रहे जापानी तकनीक। आपको बता दें कि गुरुग्राम के पास जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिम में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस टेक्निकल ट्रेनिंग में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

0: ये तस्वीर है उस बदलती हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जहां सिर्फ मशीनें ही स्मार्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि उन्हें चलाने और संभालने वाले हाथ भी नई तकनीक के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मौजूद जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जिम युवाओं को इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रहा है। यहाँ युवाओं को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ मशीनों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
0: युवा यहाँ नई तकनीक को समझते हैं, मशीनों के साथ काम करने का हुनर सीखते हैं और इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक खुद को तैयार करते हैं। यानी ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के बदलते भविष्य के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने की प्रयोगशाला भी है।
2: इस इंस्टीट्यूट में भी जो NCVET का करिकुलम है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके ऊपर हमने अपना एड ऑन कोर्सेज किए हैं जो उनको मेकाट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स में, स्विच गियर्स में, सिमुलेटर्स में, रोबोटिक्स में, जो CNC मशीन का प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स हैं उनके कंट्रोल में कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कोर्स में हमने करिकुलम में डाले हैं।
0: जिम की ट्रेनिंग की खासियत केवल आधुनिक मशीनों तक सीमित नहीं है। यहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी DST मॉडल को फॉलो किया जाता है। साथ ही लड़कियां भी टेक्निकल ट्रेनिंग ले रही हैं, मशीनों को समझ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीख रही हैं और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक खुद को तैयार कर रही हैं।
3: मैम बिल्कुल मेरा लिए अलग एक्सपीरियंस है। मैंने इतने लड़कों के बीच एक्सपीरियंस करा कि कैसे काम करा जाता है। सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
0: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से EV, रोबोटिक्स और ऑटो मशीन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग वर्क फोर्स की स्किल्स को भी उसी रफ्तार के साथ बदलने की जरूरत है। तकनीक आधारित ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर के जरिए युवाओं को इसी बदलती हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तरफ तेजी से बदलती तकनीक, दूसरी तरफ तकनीक को अपनाने के लिए तैयार होती नई पीढ़ी। जिम की ये तस्वीर बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बदलाव सिर्फ मशीनों में नहीं हो रहा, वर्कफोर्स भी बदल रही है, स्किल्स भी बदल रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट, प्रोड्यूस टुडे।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 Good News में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: राहुल गांधी को देखने उमड़ी लाखों की भीड़, इंदौर में राहुल के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में जन सैलाब। सहारनपुर की मस्जिद में बुलडोजर एक्शन पर

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: बप्पा के दर पर खास मुंबई के अंधेरी में भव्य राम मंदिर, मशीन देखो बनाना सीखो, स्कूल की याद दिलाता है क्या फिर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: बहत्तर में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, विमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, देश भर से बधाइयां। मुंबई में लालबाग चार राजा के दरबार में दर्शन को पहुंचे फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे, संजय दत्त पत्नी संग बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात के अंबाजी में भदरवी महामेले का शुभारंभ, 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद।

0: एक से दो महीने बाद तेजस MQ-1 वायुसेना में हो सकता है शामिल। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पुष्टि की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मानते हैं, आगे शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। हम सच और झूठ की रेखा को साफ करते हैं और आप तक लाते हैं सही और सच्ची खबरें। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने वाले, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि 19 सितंबर को इंदौर में हुए राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब का यह वीडियो है। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने योगी सरकार को फटकार लगाई। इसकी सच्चाई क्या है, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब इसी को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ये इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो है। क्या है इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने पेपर लीक, संस्थानों की विफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्वस्त होना और निजीकरण जैसे मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की। अब इसी कार्यक्रम से जोड़कर जन सैलाब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुल के ऊपर और नीचे बड़ी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने आए छात्रों की भीड़ का वीडियो है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा कि एक शहर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसने अभी अभी राहुल गांधी के लिए प्यार, ऊर्जा और उत्साह की एक अविश्वसनीय लहर देखी। सड़कें गूंज उठी, छात्र इकट्ठा हुए और इंदौर ने अपनी आवाज बुलंद की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम को जोड़ते हुए जनसैलाब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक पुल के ऊपर और नीचे बड़ी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। इसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने आए छात्रों की भीड़ का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचाना हमारा मकसद है, क्योंकि अक्सर जो दावे किए जाते हैं वो बहुत बार सही नहीं होते। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम इंदौर के आईडीए ग्राउंड पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के पांचवें एडिशन में उन्होंने सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स विषय पर युवाओं से संवाद किया था, लेकिन वायरल वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहा है वो किसी फ्लाइवर का है। तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी था कि वायरल वीडियो राहुल गांधी के कार्यक्रम का हिस्सा लेने जा रहे लोगों का है या फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद का ये वीडियो है। इसके लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, पाया कि इस वीडियो में दिख रही वैन पर लगे एक पोस्टर में आदिवासी दिवस लिखा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो ये है और पोस्टर में आदिवासी दिवस है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके बाद वायरल वीडियो फ्लाईओवर के पास दृश्य आईएएस और कौटिल्य एकेडमी के बोर्ड भी देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में खोजबीन की तो ये सामने आया कि इंदौर का अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग है। यहां से तो ये साफ हो गया है कि वायरल हो रहा वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का ही है। साथ ही साथ वीडियो को गौर से देखने पर एक और बात हमें थोड़ी सी खटकी, फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लेकिन इस भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के जवान नजर नहीं आ रहे। अमूमन यही देखने को मिलता है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए भारी भरकम पुलिस वहां पर मौजूद रहती है ताकि व्यवस्था मेंटेन की जाए, चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इंदौर में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम का अगर ये वीडियो है तो फिर ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि भीड़ में सिर्फ पीले और लाल रंग के झंडे ही क्यों नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का झंडा क्यों नजर नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल, छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संबंधित ये वीडियो है तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह के कोई वीडियो की जानकारी क्यों नहीं मिली, ऐसा वीडियो देखने को क्यों नहीं मिला। तीसरा सवाल ये कि कहीं किसी और कार्यक्रम से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर 10 अगस्त 2026 को अपलोड किया मिला। अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसी तरह के कई वीडियो इस अकाउंट पर आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की रैली का बताते हुए शेयर किए गए हैं। अभी तक मिली जानकारी से ये तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के दौरान का है। इसके बाद लगातार खोजबीन के बाद हमें एक यूट्यूब अकाउंट से इंदौर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के दृश्य मिले,
2: जिसने की काफी अच्छा माहौल बना के रखा था। उसके बाद हमारे मनावर वाला नागरा साउंड आता है जो की बेस में तगड़ा ही बज रहा था। आता है मनावर वाला नारायण साउंड और उसपे तो माहौल तगड़ा ही था।
0: इन सभी वीडियोस में हमें वह गाड़ी भी दिखाई दी जिस पर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई वाले पोस्टर लगे हैं और उस पर अंग्रेजी में बुलेट भी लिखा है, जो वहां का एक डीजे और साउंड ऑपरेटर है। जांच के दौरान हमें 10 अगस्त को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई थी। इस रैली में लोग आदिवासी वेशभूषा में सजे हुए थे। ये रैली लालबाग परिसर से शुरू हुई और इसके बाद ये कलेक्ट्रेट चौराहा पलसीकर चौराहा, सोनकर धर्मशाला चौराहा, सिंधी कॉलोनी चौराहा और टावर चौराहा होते हुए राजीव गांधी चौराहे पहुंची, जहां इसका समापन हुआ था। हमारे जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में 9 अगस्त को इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस के दौरान निकाले गए जुलूस का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यूपी के सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने पर हाईकोर्ट जज ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। क्या है सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने के मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही मस्जिद पर लगाए गए 6.41 करोड़ के जुर्माने पर अंतरिम रोक भी लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होती है। दरअसल सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक मस्जिद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मानकर सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई को इसे गिराने का आदेश दिया था और 6.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की, जिसे 2 सितंबर को खारिज कर दिया गया। अब इसी संदर्भ में किसी केस की ऑनलाइन सुनवाई का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है।
1: बुलडोजर चलने लगा, ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? एक ऑफिसर इंचार्ज दे जाएगा?
2: ऐसा है
1: नहीं, नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं, पुलिस में आप जैसा ऑफिसर पैदा नहीं हुआ।
2: चलिए,
0: वीडियो के एक विंडो में जज नजर आते हैं तो दूसरे विंडो में कोर्ट में मौजूद वकील। इस दौरान जज साहब घर तोड़ने और बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते हैं।
1: क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने घर? क्यों तोड़ दिया? बुलडोजर? क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? एक ऑफिसर इंचार्ज जेल जाएगा?
2: ऐसा है नहीं,
1: नहीं, नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं, पुलिस में आपसे ऐसा ऑफिसर पैदा नहीं हुआ।
2: चलिए,
0: वीडियो पर लिखा है, सहारनपुर मस्जिद शहीद करने पर योगी पर भड़के जज साहब, योगी के अधिकारियों को होगी जेल, डीएम के पैसे से बनेगी मस्जिद। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तो जज साहब ने भी इशारा दे दिया।
1: ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका?
0: लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: नहीं, नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं।
3: दरअसल 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। इसके साथ ही मस्जिद कमेटी पर 6.41 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। इसी मामले से जोड़ते हुए एक वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसे वायरल करते हुए ये कहा जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और डीएम को अपने खर्च पर टूटी हुई मस्जिद का निर्माण करवाने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो सबसे पहले हमने सर्च के दौरान ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह कोई आदेश दिया है या फिर नहीं दिया है, और इसकी पड़ताल के लिए हमने अलग अलग वेबसाइट से कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जांच की, लेकिन इस दौरान हमें ये साफ पता चला कि डीएम को अपने खर्च पर टूटी हुई मस्जिद निर्माण करवाने का इस तरह का कोई आदेश दिया नहीं गया है। इसी के साथ साथ डीएम को जिस तरह के निर्देश दिए गए थे जज साहब से, उसको लेकर भी हमने पड़ताल की और इसमें तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जज साहब दे रहे थे, जिसको यहां पर हमने देखा। तो साथ ही साथ इसी को जोड़ते हुए सवाल थे, सवाल पहला ये था कि मस्जिद को तोड़ने से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी तो फिर इसमें मस्जिद की जगह पर घर तोड़ने का जिक्र क्यों है, क्योंकि जज साहब जब बात रख रहे हैं तो उसमें घर की बात हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है। तो हमने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल और वायरल वीडियो में नजर आ रहे जज साहब के चेहरे का भी मिलान किया, जिससे फर्क साफ नजर आया। तो ऐसे में सवाल सीधे तौर पर यही था कि वीडियो में जो जज नजर आ रहे हैं उनकी पहचान क्या है, और तीसरा सवाल ये कि कहीं किसी पुराने वीडियो को नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि वायरल वीडियो में जो जज नजर आ रहा है वो कौन है। लगातार खोजबीन के बाद हमें 4 सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट हाथ लगी। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में दिख रहे जज पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार हैं। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली, इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उस वक्त संदीप कुमार संजोगा देवी नामक याचिकाकर्ता के केस की सुनवाई कर रहे थे, जिनका घर 15 अक्टूबर 2022 को बुलडोजर एक्शन के तहत तोड़ दिया गया था। उनके वकील का आरोप था कि उनकी जमीन खाली करवाने के लिए उन पर दबाव डाला गया और उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता पर दायर FIR पर स्टे लगा दिया गया था।
1: नहीं, नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं, पुलिस में आपसे ऐसा अवसर पैदा नहीं हुआ।
2: चलिए,
0: इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि 2022 का बिहार का वीडियो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को सहारनपुर मस्जिद मामले पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। ज्योति त्रिवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: बप्पा की दर पर खास, मुंबई के अंधेरी में भव्य राम मंदिर, मशीन देखो बनाना सीखो, स्कूल की याद दिलाता है क्या फिर? देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्चे का यह छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। पिता का प्यार और जिम्मेदारी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। पिता ने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। पीठ पर टोकरी बांधकर उसने बच्चे को सुरक्षित खड़ा किया और साथ साथ घर के काम भी करते रहे। उनके लिए बच्चे की देखभाल सबसे जरूरी है। पिता का ये अंदाज भले ही साधारण नजर आए लेकिन इसमें अपने बच्चे के प्रति अपार प्यार, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई देती है। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। मासूम बच्ची ने लाठी से ऐसा करतब दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान हैं। नारंगी रंग की पारंपरिक पोशाक और जूते पहने ये छोटी सी बच्ची सड़क पर निडरता और सटीकता के साथ लाठी को चारों तरफ घुमा रही है। वह किसी मंझे हुए कलाकार से कम नहीं लगता। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और फुर्ती देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नन्ही योद्धा मैदान में उतरी हो। ये प्रदर्शन किसी उत्सव या कार्यक्रम के दौरान सड़क पर होता दिख रहा है। पारंपरिक संगीत की धुन पर बच्चे अपनी कलाबाजी दिखाती है। आसपास खड़े युवक, बच्चे और बड़े बुजुर्ग बच्ची की अद्भुत कला को बड़े ध्यान से देखते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बच्चे ने माहौल बनाया उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। बच्चे का महिला पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान देखकर लोग उसकी मासूमियत और संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं। रात का समय है, सड़क पर तीन महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान आगे बढ़ रही होती हैं। तभी लाल टोपी पहने एक छोटा बच्चा उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। बच्चा महिला पुलिसकर्मियों के पास पहुंचते ही हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है। इसके बाद वह झुककर उनके पैर छूता है। बच्चे के इस व्यवहार में किसी तरह की झिझक नजर नहीं आती। वह बेहद सहज अंदाज में पुलिसकर्मियों के प्रति अपना सम्मान जाहिर करता है। इतना ही नहीं, बच्चा इसके बाद पुलिसकर्मियों को सैल्यूट भी करता है। नन्हे बच्चे का यह अंदाज देखकर महिला पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह बच्चे को प्यार से अपने पास बुलाती हैं, उसके सिर पर हाथ फेरकर दुलार करती नजर आती हैं। बच्चे और महिला पुलिसकर्मियों के बीच की छोटी सी मुलाकात बताती है कि सम्मान जताने के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं। एक छोटा बच्चा भी अपने तरीके से किसी के प्रति आदर और अपनापन जाहिर कर सकता है। पहाड़ों के बीच खुला आसमान और बच्चों के चेहरे पर जन्मदिन की चमक। यहाँ बर्थडे पार्टी किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच मनाई जा रही है। नन्हे बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर जन्मदिन की खुशियाँ बांट रहे हैं। केक काटा गया, तालियां बजी और फिर शुरू हुआ केक खिलाने का सिलसिला। मासूमियत से भरे इन पलों ने हर किसी का दिल जीत लिया।
10: मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे क्या है यार, मुझे पता नहीं। ओह यार, हैप्पी बर्थडे अभी तक पता नहीं चला। हैप्पी बर्थडे ना केक काटते हैं भी काटते हैं। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं ना, उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना, उस वक्त हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है।
0: सोशल मीडिया पर भी लोग बच्चों की इस प्यारी दोस्ती और प्यार को खूब पसंद कर रहे हैं। इस नन्हे कलाकार ने अपनी मासूम और सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लिया है। बच्चे के शानदार टैलेंट को देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उसके हाथों में गिटार और चेहरे पर गाने के दौरान नजर आ रही मासूमियत वीडियो को और खास बना रही है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा कैमरे के सामने किसी दबाव के बिना अपने संगीत का आनंद ले रहा हो। टीचर का बच्चों को डांस सिखाने का अंदाज वाकई देखने लायक है। वो बच्चों को सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखा रही बल्कि हर मूवमेंट के साथ भावनाओं को भी समझा रही है। उनके एक्सप्रेशन, धैर्य और बच्चों के साथ तालमेल ने इस पूरे वीडियो को खास बना दिया है। बच्चों को इतनी प्यार और खूबसूरती से डांस सिखाते देख कर लोग भी हैरान है। सच कहा जाए तो डांस सिखाना सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझाने की भी कला है। देखने में खेल जितना आसान लगता है खेलने में उतना ही मुश्किल है। पहिए के आकार के इस गोल चक्कर को अपनी तय लाइन में ही घुमाना है। जरा सा संतुलन बिगड़ा, जरा सा पहिया लाइन से बाहर हुआ और खिलाड़ी सीधे गेम से बाहर। यही वजह है कि इस खेल में ताकत से ज्यादा जरूरी है संतुलन, फोकस और सही टाइमिंग। प्रतिभागी पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने में जुटे हैं। खेल का रोमांच ऐसा है कि देखने वालों की नजरें भी टिकी रह जाती है।

ये तोता मोबाइल फोन का दीवाना है। तोते को मोबाइल में वीडियो देखना ही नहीं बल्कि यूट्यूब चलाना भी आता है। वह आराम से फोन को देखता रहता है और अपनी पसंद की वीडियो देखने में व्यस्त रहता है। और अगर गलती से जब कोई उसका मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो वो नाराज हो जाता है। यानी उसे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी वीडियो देखने की मस्ती में दखल दे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। गणेशोत्सव का पावन पर्व और इस दौरान देखिए हर तरफ बप्पा की भक्ति का उल्लास है, दिखाएंगे तस्वीरें। गुरुग्राम में काबिलियत के दम पर रोजगार की ट्रेनिंग, जापान के साथ साझा सहयोग से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्कूल की याद दिलाता है कैफे जहां आपको लिए चलेंगे बचपन की यादों में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
1: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आनंद नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते दिखे भक्त।

शारदीय नवरात्र से पहले गुजरात की अंबाजी में भादरवी महामेले का शुभारंभ, 7 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। एक से दो महीने बाद तेजस MQ-1A वायुसेना में हो सकता है शामिल, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: और अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले गणेश उत्सव के अलग अलग रंगों की करेंगे। इस उत्सव के पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक रूप भी गणेश पंडालों में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में बप्पा के दिव्य दरबारों में तकनीक पर भी फोकस किया गया है, जो नई पीढ़ी को इस उत्सव के साथ जोड़ने की एक अच्छी पहल है। साथ ही साथ गणपति के ऐसे दरबार भी देखने को मिल रहे हैं जहां से शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों के लिए भी सामाजिक संदेश दिया जा रहा है।
2: राजबान है, भक्त पंडालों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव से जुड़ी खूबसूरत तस्वीर के बीच आम से लेकर खास हर कोई गणपति के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा का दरबार हो या फिर अंधेरी के राजा का दिव्य पंडाल, भक्तों के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति ने इस बार अंधेरीचा राजा का दिव्य दरबार अयोध्या के भव्य राम मंदिर के थीम पर सजाया है। बाहर से लेकर अंदर तक राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है।
3: उपनगर मुंबई का बहुचर्चित पंडाल अंधेरी के राजा का दरबार इस बार श्री राम के मूर्ति के साथ सजा हुआ है। अयोध्या की थीम रखी गई है। सबसे पहले आप खुद भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं जैसे कि आपको ही देख रही हूं, और देखकर ये कह रही हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, अब सारा का सारा आपका जो समस्या है परेशानी खत्म कर दी जाएगी। ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
4: मैं बोल रही हूँ कि एक सेकंड के लिए लगा मैं अयोध्या में ही स्वयं खड़ी हूँ। और क्या भव्य श्रृंगार है गणपति जी का, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, आई मीन रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया आपने सच में।
5: इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा, सेटअप इतना अच्छा है, इतना ग्रैंड है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट चाय पर बुलाया के पहले जैसे बप्पा ने ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है।
3: आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं।
2: अंधेरी का राजा की टीम ने अयोध्या जाकर बकायदा सभी बारीकियों का अध्ययन कर वहाँ की कमेटी से मंजूरी लेकर इस थीम पर काम किया है।
6: पर्सनली वहाँ पर गए, पूरा डिजाइन, एक एक जो डिजाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिजाइन, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डन जो कलर है वहाँ पर व्हाइट में है, तो ये फर्क है। इंटीरियर अगर इंटीरियर देखें तो पूरा फाइबर का बना हुआ है, 50 साल इसका लाइफ है। इसको फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग जो इवेंट रहते हैं इसको यूज कर लेते हैं, इसको रीयूजेबल है, तो ये हम लोग एनवायरमेंटल को भी ख्याल में रखा हुआ है, और ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज़ है, तो उसको कम से कम 4 से 5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा। और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टभंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था।
2: इस उत्सव समिति ने अपने पंडाल, बप्पा की प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। बप्पा की भक्ति में इस बार परंपरा के रंग के साथ आधुनिक तकनीक की चमक भी नजर आ रही है। कहीं पारंपरिक सजावट और शास्त्रीय विधि विधान आकर्षण का केंद्र है, तो कहीं लेजर शो, एलईडी स्क्रीन, डिजिटल लाइटिंग और तकनीकी साउंड इफेक्ट्स उत्सव को नया आयाम दे रहे हैं। घाटकोपर के भटवाडीचा राजा के दरबार में तकनीक का समावेश दिख रहा है। यहाँ गणेशोत्सव के इतिहास से लेकर सुरक्षित भविष्य, विकसित भारत जैसी कहानी एलईडी के जरिए दिखाई जाती है। यहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में योगदान फायदेमंद है या उसका नुकसान, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी गणेशोत्सव में अब आस्था के साथ इनोवेशन भी दिखाई दे रहा है। तकनीक का ये मेल उत्सव को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक माध्यम बन रहा है।
3: देश की तरक्की में एआई की कितनी ज्यादा मदद है, एआई कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। जैसे कि किस तरीके से एआई के हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में एआई कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है, और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी एआई की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, एआई सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है।
7: एआई ही क्यों इस बार? एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने एआई कैसा यूज करना है, एआई के फायदे क्या है, एआई अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग एआई कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है। साथ ही ये डेकोरेशन के साथ हमने एआई के जो वर्कशॉप रखे है, ताकि सोसाइटी के लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, वो एआई का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं।
2: भटवाडीचा राजा के गणपति कागज के बनाए गए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षण तो है ही, पूरी तरह इको फ्रेंडली है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पिछले कुछ वर्ष से कागज के ही गणपति बनाए जाते हैं। ये तस्वीरें पुणे के हिजवड़ी इलाके की हैं, जिसे आईटी हब कहा जाता है, लेकिन खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम यहाँ एक बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ विराजे बप्पा के सामने समस्या को दिखाने की कोशिश की गई है। सड़क पर ट्रैफिक है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन जाम लगने से लोग परेशान हैं। सब कुछ इतनी बारीकी से तैयार किया गया है, जो ये आभास करा रहा है कि ये वास्तविक दृश्य है। इसमें ट्रैफिक के बीच सायरन बजाती एम्बुलेंस भी दिखाई देती है, जिसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और इसी में छुपी है वो असली कहानी, जिसे यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है।
8: मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल पंडाल नहीं, घरगुती पंडाल है। ट्रैफिक जाम का जो प्रॉब्लम है पुणे का, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते कि पूरा मतलब रियलिटी की तरह इन्होंने एक गणपति बप्पा के आगे जो पंडाल किया है, उसमें आपको दिखाई दे रहा, मतलब एम्बुलेंस हो या फिर अलग अलग गाड़ियां हो या फिर मिक्सर सीमेंट हो, इसकी वजह से कितना जाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुलेंस है और उसमें एक औरत है और ये अटकी हुई है, और इसी से ताल्लुकात ये जो घरगुती गणपति का देखा हुआ है, उससे हमारे साथ गणेश भक्त है, उनसे बात करेंगे। सर, एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम है, क्या ताल्लुकात है ये सब?
9: ये एम्बुलेंस के पीछे मेरी पर्सनल कहानी है। 1 जनवरी 2026 को इसी रास्ते पे मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था अस्पताल में, उनको हार्ट अटैक आया था, पर वो एम्बुलेंस ऐसी अटकी कि मेरी मम्मी ने आखिरी सांस वहीं पे ली। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा, पर किसी ने रास्ता नहीं दिया। तो मैं समाज तक एक संदेशा पहुंचाना चाहता था कि ऐसी परिस्थिति और किसी को ना आए, तो मैं कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था कि प्रशासन इसके लिए कुछ करे। तो अब हम प्रशासन भी हमारे लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं और हम ट्रैफिक का पालन करें। अगर एम्बुलेंस को रास्ता देने लगे तो हम एक दूसरे के लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं।
8: ये पूरा ट्रैफिक का जो माहौल है वो किसी को दिखाना चाहिए, और ट्रैफिक की वजह से किसी और की मौत ना हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का घरगुती गणपति का देखा हुआ जो है वो बनाया है।
2: जाम की वजह से अपनी मां को खोने वाले आईटी इंजीनियर रवि चौहान ने उस दर्द को गणेशोत्सव के रंगों में पिरोया है, ताकि पुणे की समस्या पर शासन प्रशासन का ध्यान जाए और भविष्य में उनकी तरह किसी और को अपनों को ना खोना पड़े। बप्पा के दरबार में सबसे गहरी रोशनी उस उम्मीद की होती है, जो दर्द के बीच भी भक्त के मन में प्रज्वलित है। साफ है कि गणेशोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, अभिव्यक्ति भी है, और आंखों में छुपे दर्द के जरिए रवि चौहान ने इसे ही बप्पा के सामने व्यक्त किया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पुणे से श्री कृष्ण पंचाल के साथ रिपोर्ट, फुल न्यूज़ टुडे।
1: चलिए बात करते हैं कुशल और कौशल ट्रेनिंग की। गुरुग्राम में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां युवा न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं बल्कि ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं। बदलाव के दौर में तकनीक पर कमांड जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट में जापानी तकनीक का खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है।

0: ये तस्वीरें ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलाव को दिखा रही है, जहां मशीनों के साथ साथ उन्हें चलाने वाले भी स्मार्ट हो रहे हैं। तकनीक के इस दौर में इस इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो। इसी के चलते भारत और जापान के सहयोग और युवाओं को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में इस जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकों पर खास फोकस किया जा रहा है।
1: टेक्नोलॉजी जिस तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है, उसका असर पढ़ाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जो है वो देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तक जो है टेक्नोलॉजी अब नहीं रही है सिर्फ मशीनों पर ही जो लोग हैं वो काम करते हुए जो है आपको नजर आए, बल्कि उसके अलावा एआई का सबसे बड़ा रोल जो है अब देखा जा रहा है। उसके साथ ऑटोमेशन की बात करें हम, रोबोटिक्स की बात करें या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी के साथ जो दायरा है टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में युवाओं को भी अब इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ जो है काम करने का जो है एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। क्लासरूम जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो बच्चों को देखने को मिल रहा है, और पेड इंटर्नशिप इनके लिए खासतौर पर रखी जाती है कि 7 मंथ्स की इनको पेड इंटर्नशिप दी जाती है, 5 मंथ्स के इनका जो है थ्योरी क्लासरूम स्टडी होती है, ताकि दोनों ही जो है बच्चे पढ़ सके समझ सके।
0: इस पहल का मकसद युवाओं को ऐसी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स देना है जिनकी जरूरत मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। यहाँ स्टूडेंट्स को मिनी व्हीकल असेंबली लाइन, इंजन असेंबली लाइन, वेल्डिंग और पेंटिंग सिमुलेटर्स, रोबोटिक इनेबल सिस्टम और बॉडी रिपेयर जैसी सुविधाओं के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
2: जिन बच्चों को आप स्किल कर रहे हैं वो फिर 10, 20, 30, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे ना ट्रेन करके आज और कल की टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करें। जो इक्विपमेंट आप यहाँ पर देखेंगे इस स्किलिंग इंस्टीट्यूट में, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप मारुति सुजुकी के कार मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पाएंगे। जैसे ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, रोबोटिक आर्म हो गई, CNC मशीन्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, ये पेंट शॉप बूथ है मॉडर्न, तो ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट पे।
0: ट्रेनिंग में जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स पर जोर दिया जाता है, साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाता है।
3: सबसे पहले हमें इसी चीज के बारे, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, और हमारी ड्रेसिंग कोड वगैरह, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारी वो डेवलप करी जाती है। मैम बोला जाए तो कम्प्लीटली फ़ायदा मिल रहा है। मैम जब हम OGT के लिए गए तो मैम वहाँ भी कोई चीज़ हमें नई अनजानी नहीं लगी, क्योंकि हमें पहले से ही 5S और 3S, 3R और 3K वगैरह सभी के चीज़ों के बारे में, जापानीज वर्ल्ड के बारे में सभी के बारे में बता दिया गया था। और जैसे मैम एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल वगैरह के बारे में हमें यहाँ पहले से एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाती है मैडम।
0: एक खास बात यह है कि अब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लड़कियां भी दिलचस्पी दिखा रही है, यही वजह है कि वो भी यहां पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग लेती नजर आ रही है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रही है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
4: सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूव करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
1: कितना अच्छा लग रहा है कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं जापानी टेक्नोलॉजी जो है वो सीख पा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की होकर और ये सब सब बहुत आसानी से सीख रही हूँ, और सब लोग सपोर्ट से मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है।
0: साफ है कि टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। गुरुग्राम के पटौदी से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए अब आपको एक ऐसे कैफे में लिए चलते हैं जो आपको स्कूल के बीते दिनों की याद करवा देगा। यहां ग्राहकों की फीडबैक के लिए नोटिस बोर्ड लगा है। क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र के अंदाज में आपको फूड का मेन्यू दिखेगा और टेबल नंबर की जगह पर रोल नंबर बताने पर ही आपको ऑर्डर सर्व किया जाएगा। और इस अनोखे कैफे में पैर रखते ही आपको एकदम क्लासरूम जैसा एहसास होगा क्योंकि अटेंडेंस शीट भी यहां पर है और मार्कशीट भी है और बहुत कुछ पलक झपकते ही याद आने वाला है। खाने पीने की चीजों के नाम भी ऐसे रखे गए कि उन्हें पढ़ते ही स्कूल में बिताए दिनों की याद आ जाएगी।

0: जिंदगी की भागदौड़ और उम्मीदों के बोझ के बीच अक्सर हमें अपने स्कूली दिनों की याद आ ही जाती है। जीवन के उस खूबसूरत दौर में जहां ना कोई डर था ना ही कोई चिंता, आने वाले कल को लेकर जब बेफिक्री थी और आंखों में बेहिसाब सपने थे। खैर गुजरा जमाना तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैफे जरूर है जो शर्तिया आपको अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाएगा। नोएडा का यह अनोखा कैफे आपको स्कूल के दिनों की यादों को जीने का मौका दोबारा देगा, जिससे जुड़ी स्मृतियां आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में एक मीठा एहसास कराएगी। खाने पीने के आइटम से पहले कैफे की थीम और कॉन्सेप्ट ग्राहकों को प्रभावित करती है। यहाँ पैर रखते ही क्लासरूम, रोल नंबर, अटेंडेंस शीट, मार्कशीट और बहुत कुछ पलक झपकते याद आने लगते हैं। बचपन भले ही लौट कर न आए, लेकिन उससे जुड़ी यादें चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर लाती है।
1: जब हम स्कूल में होते हैं तो कितनी जल्दी में होते हैं ना, कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, कितनी जल्दी ढेर सारे पैसे कमाएं, कितनी जल्दी अपने डिसीजन हम खुद ले लें। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन स्कूल हमसे बाहर कभी आ ही नहीं पाया, वो स्कूल हमेशा हमारे भीतर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं जहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ना सिर्फ आपको अपना स्कूल याद आएगा, बल्कि अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर, अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी मार्कशीट, सब कुछ याद आने वाली है। हम मौजूद हैं नोएडा में और इस जगह का नाम है अटेंडेंस शीट कैफे।
0: कैफे में लटकी स्कूल की घंटी ग्राहकों के लिए टाइम कीपर की तरह काम करती है। समय के बदलाव, अनुशासन और बचपन की अनमोल यादों की याद दिलाने के साथ ये घंटी पीरियड की शुरुआत या अंत होने का भी प्रतीकात्मक संकेत देती है। हालांकि कैफे में लगी घंटी बजने के बाद वहां लगे ब्लैक बोर्ड पर आपको ग्राहकों को अपना रोल नंबर, नाम और फेवरेट स्नैक के बारे में लिखना होता है।
1: तो स्कूल की घंटी बज चुकी है, पीरियड्स आपके शुरू हो चुके हैं, तो आइए अंदर। और सबसे पहले क्या करना है स्कूल में आने के बाद, कि आप अपना नाम लिखेंगे और याद करेंगे कि आपका स्कूल में रोल नंबर क्या हुआ करता था, उसे याद करिए और फिर उसे यहाँ पर आप डालते जाइए। देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपने नाम लिखे हैं, अपने रोल नंबर लिखे हैं और क्या उनको पसंद है स्नैक में, वो भी यहाँ पर लोगों ने लिखा है।
0: इसके अलावा कैफे की दीवारें आपको पीरियड के दौरान टीचर्स की तरफ से बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ आम वाक्यों की भी याद दिला देंगी। कैफे में कन्फेशन बोर्ड भी मौजूद है, जिस पर स्कूल के दिनों में छिपे हुए विचार, भावनाएं, गलतियां या अपना कोई राज बताने की छूट है। साइंस लैब तो स्कूल के दिनों में किए गए प्रोजेक्ट्स की याद दिलाने की गारंटी की तरह है।
1: कुछ चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें आपके जहन में हमेशा रजिस्टर होती हैं, जैसे कि स्कूल टाइम्स के ये डायलॉग्स, मैं आई कम इन सर, किसने फेंका ये कागज, हु थ्रू दिस पेपर, स्टैंड अप ऑन द बेंच जब सजा मिलती थी, साइलेंस इन द क्लास जब टीचर गुस्सा होते थे, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये अगर स्कूल की हम बात करें और ब्लैक बोर्ड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपको एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा जिस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि आपने बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड है और साथ साथ एक कन्फेशन बोर्ड भी है, मतलब आपको यहाँ पर वो कन्फेस करना है जो कभी आपने अपने क्लासरूम में किया हो, स्कूल में किया हो। उसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया है, उन्होंने अपनी रियल स्कूल डेज की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई हुई हैं। अभी तो ये फोटोज़ ऐसे टंगी हुई हैं, लेकिन अपने घरों में हमने अपने स्कूल डेज की फ़ोटो को फ्रेम करके रखा है।
0: आज की भागदौड़ में जब हम थक जाते हैं तो हमारा मन सुरक्षित और सुकून भरे कोने को खोजता है, तब बचपन की यादों से जुड़ा ये कैफे एक सहारा बन सकता है।
2: जो ये आप टाई बेल्ट देख रहे हैं, हमारे स्कूल टाइम पे इसी तरीके की टाई बेल्ट होते थे, तो वही हमने कोशिश करा है यहाँ पे प्लेस करने के लिए। ये पूरी वॉल जो है, ये स्कूल की एक्सेसरी वॉल्स है, वॉल है जो हमारे स्कूल में वाटर बॉटल हम यूज करते थे वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। आप देख रहे हैं टिफिन बॉक्स हो गया, टाई बेल्ट्स और पेंसिल बॉक्स, ये सब आपको याद दिलाते हैं आपके स्कूल टाइम के जो एक्सेसरीज होते थे उन सब चीजों।
0: इस कैफे की सबसे खास चीज है इसका मेन्यू कार्ड। यहाँ मेन्यू किसी रेस्टोरेंट के कार्ड की तरह नहीं, बल्कि क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र की तरह डिजाइन किया गया है। ग्राहक को इसी मार्कशीट में अपनी पसंद की डिश पर टिक लगाना होता है और फिर इसे स्टाफ को दे देना होता है, और खाने के नाम भी पूरे स्कूल वाले अंदाज में रखे गए हैं। मेन्यू में शामिल खाने की चीजों का नाम भी स्कूल के दिनों से जुड़ी है।
2: ये आपके जो उस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होते हैं जिसमें टीचर लिखती थी, ये वो है। तो पूरा मेन्यू भी हमने उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, हमने डिजाइन किया है।
1: केमिस्ट्री लैब मॉकटेल्स, क्या नाम रखे हैं हमने? गजब,
2: मॉकटेल्स केमिस्ट्री में, क्योंकि आप देखते हो काफी सॉल्यूशन लिक्विड्स मिलते हैं, तो उसे हमने मॉकटेल को केमिस्ट्री लैब से जोड़ा है।
1: और गॉसिप पीरियड मोमोज,
2: जी बिल्कुल। तो ये सारा मेन्यू उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अपने स्कूल डेज की याद आ सके।
0: कैफे में विजिट करने वाले ग्राहकों के लिए खाने की गुणवत्ता, सर्विस और माहौल जानने के लिए नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जहां वो अपनी राय बिना लाग लपेट के चिपका देते हैं, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की शिकायत होने पर उसे तुरंत दूर करने के लिए कदम उठाया जा सके। साफ है कि नोएडा का ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि बचपन और स्कूल से जुड़ी यादों को फिर से जीने का एक मौका देता है।
1: स्कूल छूट गया है, लेकिन एक बार आप यहाँ जरूर आइए, हो सकता है आपके स्कूल के छूटे हुए दोस्त शायद यहाँ मिल जाए, जैसे आशीष को मिले। ये वॉल आप देखिए कितने अच्छे से बनाई गई है, और इसमें लिखा हुआ है वो लास्ट बेंच, वो लास्ट बेल, वो लास्ट बाइट, सब कुछ। रोल नंबर बदल गया, दोस्ती नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ज़रूर आप उन दिनों में लौट जाएंगे जिन दिनों में आप बहुत छोटे थे, और शायद आप यही सोचते थे कि कितनी जल्दी हम स्कूल से निकल पाए, लेकिन वो स्कूल हमसे कभी निकल नहीं पाया। अगर आप फिर से उन्हीं स्कूल के दिनों को जीना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे

0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में

0: विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मुकदमेबाजी की और इसके समाधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी के बारे में। कभी कभी परिवार में मुकदमा होता है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा, नौकरी का मुकदमा, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष में ये मुकदमेबाजी होती कैसे है, आती कैसे है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध होते हैं, जेल जा सकता है आदमी, जीवन में बहुत सारी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। मंगल भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल राहु के साथ प्रभावित हो जाए, राहु का इंपैक्ट पड़ जाए मंगल के ऊपर, तो झूठी मुकदमेबाजी होती है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं या काल्पनिक मुकदमे जीवन में पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल का निगेटिव होना दो चीजों में आदमी को फंसाता है। पहला, कर्जा। कर्जा लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि निकल ही नहीं पाते, वहां मंगल खराब है। बेवजह के मुकदमे में फंस गए, पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, वहां भी मंगल खराब है। तो मंगल का खराब होना कर्ज और मुकदमेबाजी का कारण आपके जीवन में बन सकता है। मेष राशि। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर भाई भाई के बीच में, परिवार में चाचा ताऊ, इन सब लोगों के बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करेंगे, मंगलवार को प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए। हलवा पूड़ी ना बांट सके तो गुड़ बांटिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 9 मंगलवार को करिएगा। भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में जो मुकदमा है उसका हल निकल आएगा। अगर नौकरी के संबंध में कोई मुकदमा हो, आप सस्पेंड हो।

0: यानी नौकरी का कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों तो क्या करें, मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए, अगर महिला हैं तो आप केवल लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाइएगा, इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर मंदिर में ही या मंदिर से घर आकर एक मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का जप करिएगा, एक माला तीन माला या 11 माला, ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार को करिए, नौकरी के संबंध का जो मुकदमा है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिंह राशि, काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आज के समय में मैरिटल मुकदमे सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर विवाह का कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके, तो क्या करें कि मामला हल हो जाए, लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ रखिए, इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप करिएगा, ये प्रयोग बैक टू बैक 3 मंगलवार की रात को करें और प्रार्थना करें वैवाहिक मुकदमे का समाधान निकल आएगा। जैसा आपको पहले बताया कि अगर मुकदमेबाजी में राहु का प्रभाव हो तो आदमी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस जाता है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, झूठे मुकदमे में फंस गए, तो कैसे इससे बाहर निकलें? सुबह के समय जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इसके बाद सूर्य की रोशनी में या सूर्य के सामने बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए। चौपाई होगी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, 3 माला जप करिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे 1 से 3 महीने के अंदर झूठे आरोप से, झूठे मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई, फिर आपने आगे अपील की और अभी बाहर हैं, लेकिन मुकदमे में हारने की वजह से सजा हो गई है, या परिवार में कोई मुकदमा हार गया उसको सजा हो गई है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को सुबह ही बैठ जाइएगा और धीरे धीरे करके, रुक रुक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, या अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 10-10 करके या 9-9 करके 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए और रोज हनुमान जी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और जैसे ही ये प्रयोग समाप्त करेंगे मुकदमे से, सजा से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। फिर बता दूं, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और गुड़ का भोग लगाकर लोगों में बांटिए। साथ ही साथ अपना ईमानदार प्रयास जारी रखिए, आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। कभी मुकदमे जेल की नौबत ना आए इसके लिए क्या करें, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार को मांस मदिरा प्याज लहसुन ना खाएं और मंगलवार के शाम को गुड़ या हलवा पूरी का दान करें, अच्छा रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: और गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेशोत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे और हमारे पास लगातार आपके भेजे हुए तमाम वीडियोस आ भी रहे हैं। ये दो वीडियोस देखिए, जिनमें से पहला वीडियो हमें भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से, और आरव ने ये वीडियो भेजा है जिसमें बेहद खूबसूरत बप्पा पधारे हैं उनके घर पर और बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से बप्पा को सजाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर श्वेता सोनकर की है और ये रोहिणी दिल्ली से, इन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है और बहुत ही खूबसूरती से बप्पा को यहाँ पर विराजमान किया गया है। उनके सामने अखंड ज्योत जलाई गई है, प्रसाद उनका जो फेवरेट है मोदक वो भी वहां पर रखा गया है। ये दो तस्वीरें हमारे दर्शकों द्वारा भेजी गई, तो आप भी अपने घर पधारे बप्पा की तस्वीर भेजिए और हमारे साथ इस उत्सव का हिस्सा बनिए। चलिए अब आपको एक ऐसी अनोखी दावत पर लिए चलते हैं। चीन के वुशु चिड़ियाघर में जानवरों के लिए इस दावत में कुछ खास तैयार किया गया। मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले यहां जिराफ, कैपिबारा और रेड पांडा समेत तमाम जानवरों के लिए खास मून केक बनाए गए। इन मून केक्स को नेचुरल चीजों से तैयार किया गया था। इस दावत में हर जानवर की खाने की आदत को ध्यान में रखते हुए ही मेन्यू तैयार किया गया। जानवरों के सामने जैसे ये खास ट्रीट परोसी गई, उन्होंने बड़े चाव के साथ इसे खाया। दरअसल वुशी जू में इन दिनों ऑटम फन थीम पर खास कार्यक्रम चल रहा है और इसमें क्यूट एनिमल एनकाउंटर, इमर्सिव परफॉर्मेंस और साइंस एजुकेशन से जुड़े इंटरैक्टिव प्रोग्राम शामिल है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए बापा के दर्शन।

0: में बापा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी, देखने उमड़ी भारी भीड़। 1097 से चली आ रही है विशेष गणेश प्रतिमा की परंपरा। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते दिखे भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री शाह, एनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिसका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा उन जाबाज मछुआरों की भी है जिन्होंने तिस्ता नदी में बह रहे नन्हे हाथी का रेस्क्यू कर उसे उसकी माँ से मिलवाया।
1: नन्हे से हाथी को नदी से रेस्क्यू करने वाले मछुआरों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। घटना पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर फॉरेस्ट डिवीजन की है, जहां महज 3-4 दिन का एक हाथी का बच्चा बह गया। माँ वहीं मौजूद थी, लेकिन चाहकर भी कुछ न कर सकी। असहाय नजरों से बेचैन देखती रही। हाथी पानी के बहाव में करीब 4-5 किलोमीटर दूर बह गया। माँ उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस नन्हे हाथी पर मछुआरों की नजर गई और वो उस नन्हे हाथी को किसी फरिश्ते की तरह बचाने में जुट गए, और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल भी लाए। वन विभाग की मदद से 5 बहादुर मछुआरों अजय, बबलू, गोपाल, मिठू और विश्वनाथ दास ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बेबस बच्चे को उफनती नदी से बाहर निकाला और उसे अपनी माँ से मिलवा दिया। माँ और बच्चे के मिलन का ये दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे अब तक का सबसे सुंदर वीडियो बता रहे हैं। शिक्षा का महत्व क्या है, ये कोई इनसे पूछे जो सिर्फ एक छात्रा को पढ़ाने के लिए रोज 5 किलोमीटर जंगल पैदल पार करके स्कूल पहुंचते हैं। वो स्कूल है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला परिषद का विद्या मंदिर स्कूल, कावलटेक धनगरवाड़ा में। इस स्कूल में सिर्फ एक विद्यार्थी है, स्वरा बोर्ड के। इन्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। उनका सपना अधूरा न रह जाए, इसलिए 55 साल के उसके स्कूल टीचर जीवन मिठारी रोज 5 किलोमीटर का सफर तय करके उसे पढ़ाने स्कूल आते हैं। पिछले 13 साल से ये इसी तरह रोजाना स्कूल आते हैं, ताकि अगर एक भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी शिकायत शिक्षक को लेकर ना हो। जीवन मिठारी के मुताबिक गांव से लोगों का पलायन हो चुका है, 2-3 परिवार ही यहाँ रहते हैं। बच्चों के लिए जंगल पार करके स्कूल जाना संभव नहीं, इसलिए ये जोखिम वो खुद उठाते हैं। ब्लैक बोर्ड है, घंटी है, लाइब्रेरी है, मार्कशीट भी है और रोल नंबर भी है। ये कोई नए जमाने का स्कूल नहीं है, बल्कि यह स्कूल की थीम पर तैयार एक कैफे, इसलिए इसे अटेंडेंट शीट कैफे नाम दिया गया है, जो मौजूद है यूपी के नोएडा में। इस अटेंडेंट शीट कैफे का पूरा कॉन्सेप्ट ही स्कूल की यादों पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मेन्यू कार्ड है, जिसे क्वेश्चन पेपर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, इस मेन्यू में आपको हर डिश और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। होमवर्क, तड़का मैगी, ट्यूशन वाली मैगी, स्टाफ रूम प्रिंसिपल चाय, केमिस्ट्री साइंस लैब, मॉकटेल्स और बैक बेंचर मोमोज, ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मेन्यू में दिखाई देती है। कैफे में आने वाले हर ग्राहक को स्कूल वाली फीलिंग देने का ये प्रयास कैफे के को फाउंडर आशीष और उनके दोस्त ने किया है। तमिलनाडु के सीएम विजय अपनी सादगी भरे अंदाज के लिए खूब सुर्खियां बटोरते हैं। उनका ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में विजय स्कूली बच्चों को खाना परोसते और फिर उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते दिख रहे हैं। इस दौरान वो विद्यार्थियों से बात करते भी नजर आए। असल में ये वीडियो तिरुवनमयूर में उनके कार्यक्रम का है, जहां छात्रों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव पर गणपति बाप्पा का अलग अलग रंग पंडालों की विशेष थीम लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसे ही गणपति विराजे हैं चंद्रपुर में, जहां वो किसान के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस झांकी में विघ्नहर्ता खुद खेत में हल चलाते नजर आ रहे हैं। सिर पर पारंपरिक दुपट्टा, धोती कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी और बैलों की कमान थामे किसान रूपी बाप्पा का बेहद मनमोहक अंदाज दिखाया गया है, और उनसे किसानों के कष्ट हरने की कामना भी है। वहीं अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और शहरों की ओर बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। यहाँ पंडाल के अंदर बनाई गई गुफा और जंगल में जंगली जानवरों के स्टैचू के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
0: और अब बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया गया और इसमें शिरकत करने के लिए तमाम फिल्मी सितारे गुजरात पहुंचे। ये अवार्ड 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और ज्ञानी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। इतिहास में पहली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी पर नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। अब तक ये आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है।

0: ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया की हैं, जहां रेड कारपेट पर फिल्मी दुनिया के कई दिग्गज सितारों और कलाकारों ने 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इनके अलावा गुजरात और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। फिल्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले बड़े नामों में कार्तिक आर्यन भी शामिल हैं, जिन्हें मलयालम स्टार ममूटी के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म चंदू चैंपियन में मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने वाले कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है।
1: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार श्री कार्तिक आर्यन को हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए प्रदान किया जा रहा है,
0: जबकि मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को फिल्म ब्रह्मयुगम में शानदार एक्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया।
2: स्टैंडिंग ओवेशन फॉर श्री ममूटी फॉर द फिल्म ब्रह्मयुगम।
0: वहीं बेस्ट फीचर फिल्म के कैटेगरी में आर्टिकल 370 और राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सम्मान मिला है। फिल्म आर्टिकल 370 में यामी गौतम ने खुफिया अधिकारी का किरदार निभाया था।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल गोज टू मिस यामी गौतम धर इन हिंदी फिल्म आर्टिकल 370।
0: जबकि रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर सम्मानित किया गया और भांगर को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। म्यूजिक कैटेगरी में तमिल फिल्म अमरण के लिए जीवी प्रकाश कुमार को बेस्ट संगीत निर्देशक का अवार्ड मिला। वहीं आर्टिकल 370 के लिए शाश्वत सचदेव को हिंदी सिनेमा में बेस्ट म्यूजिक के अवार्ड से नवाजा गया।
1: उत्कृष्ट संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री शाश्वत सचदेव को प्रदान किया जा रहा है।
3: यू डोंट नो व्हाट लाइफ हैज फॉर यू, आप मेहनत करते रहिए, आप अच्छा अपना काम करते रहिए, ढूंढते रहिए और एक ना एक दिन ऐसे मैं नहीं कहूँगी कोई मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँची हूँ, पर क्योंकि जर्नी अभी भी बहुत बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है, पर अपने आप में ही इतना बड़ा सम्मान मिलना और ऐसी जगह पे जो एक ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, फॉर दिस, फॉर ऑल द रिस्पेक्ट।
0: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में कल्कि 2898 एडी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म को मिला। राम नामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। अमरन फिल्म के लिए राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कई सेलेब्स वहां पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास तस्वीरें क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनके फैंस तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानना दिलचस्प है कि सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड से किन्हें नवाजा गया। आर्टिकल 370 तीन अवार्ड, अमरन 3 अवार्ड, पुष्पा 2 2 अवार्ड, कल्कि 2898 एडी 2 अवार्ड, महाराजा 2 अवार्ड, कैप्टन मिलर 2 अवार्ड, ब्रह्मयुगम 2 अवार्ड, मिथ्या 2 अवार्ड और फिल्म कमेटी कुरलोल्लू को 2 अवार्ड मिले।
3: ये जो इवेंट है, ये जो स्पिरिट है नेशनल अवार्ड्स का, वो भी कहीं ना कहीं यही है कि अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जो भाषा रिप्रेजेंट करते हैं, कल्चर, फिल्में, सब एक साथ एक रूफ के नीचे आप सब आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमा, भारतीय सिनेमा को, और सो बाकी में एकता का प्रतीक आप कह सकते हैं इस समारोह को।
4: मेरे लिए दोहरी खुशी, दुगनी खुशी इस बात की है कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की छत्र छाया में मुझे ये पुरस्कार दिया गया, हम सबको ये ऑनर मिला और ये जगह, मैं ये बात पूरे भारत से अनुरोध करता हूँ, ये अद्भुत जगह है, हम सबको केवड़िया एक बार आके और हमारे लौह पुरुष के दर्शन करने चाहिए। अगर वही ना होते तो ये जो हमारा भारत आज अखंड भारत है जिसपे हम इतना गर्व करते हैं, ये शायद 562 टुकड़ों में बंट चुका होता। सरदार पटेल की जय, केवड़िया की जय, नर्मदा की जय।
0: वहीं भारतीय सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए दिग्गज एक्टर अनंत नाग को वर्ष 2024 के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।
5: आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के विजेता श्री अनंत नाग जी भी हैं।
0: दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अनंत नाग कन्नड़ सिनेमा के दूसरे एक्टर हैं। इससे पहले कन्नड़ एक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग का फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है। अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। अनंत नाग को उनके अभिनय के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। अनंत नाग ने अपने 50 साल के लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के फिल्में शामिल हैं। अनंतनाग ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ फिल्म संकल्प से की थी। श्याम बेनेगल की प्रसिद्ध फिल्म अंकुर से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में पत्रकार आनंद इंगलागी की भूमिका निभाई थी। दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सिनेमा के साथ साथ अनंतनाग राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे बेंगलुरु के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। बीते 71 सालों से ये पुरस्कार समारोह देश के राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होता रहा है, लेकिन 72वें साल में ऐसा पहली बार है जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया।
6: दिल्ली के बाहर यहाँ पर और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो देश की यूनिटी के लिए खड़ा है वहाँ पर ये आयोजन हुआ और मुझे आशा है कि आगे भी और जगहों में भी होगा और सभी जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेशनल फिल्म अवार्ड्स को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना और भारतीय सिनेमा की क्षेत्रीय विविधता को सामने लाना है। गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: दिल्ली में खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र की शुरुआत हुई है। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: दिल्ली में पुरानी और खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 से ज्यादा विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने ये पहल की है। लोग अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री को पेड़ों के नीचे, पार्कों या सड़कों के किनारे छोड़ देते थे, जिससे आस्था का अनादर होता था और गंदगी भी फैलती थी। अब लोग इन्हें इन केंद्रों पर श्रद्धापूर्वक जमा कर सकेंगे। सरकार के मुताबिक संग्रह केंद्रों पर जमा होने वाली सामग्री और मूर्तियों का पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीकों से रिसाइकलिंग किया जाएगा। गया जी में पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पिंडदानियों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। गया जी के एसएसपी सुशील कुमार के मुताबिक पूरे मेला क्षेत्र में 118 पुलिस शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। निगरानी के लिए मेला क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। यूपी के महोबा जिले में इस बार मानसून ने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। औसत से 71% ज्यादा बारिश हुई, जिससे यहां के लगभग सभी डैम लबालब हो चुके हैं। सबसे खास बात यह कि इस मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इस बारिश ने जिले के 2,00,000 किसानों और लगभग 1,50,000 शहरी आबादी को पानी के संकट से बड़ी राहत दी है। युद्धाभ्यास 2026 में हिस्सा लेने बीकानेर और औली पहुंचे अमेरिकी सैनिक न सिर्फ युद्ध में तालमेल बिठाने की कला सीख रहे हैं, बल्कि यहां की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को भी करीब से देख रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले का दौरा किया। जूनागढ़ किले में सैनिकों ने राजस्थान के शाही इतिहास, शानदार वास्तुकला और युद्ध कला की परंपराओं की झलक देखी। गुजरात के अंबाजी में चल रहे भाद्रवी मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि से पहले लाखों भक्त इस मेले में अंबाजी माता जी को आने वाले नवरात्र पर्व पर अपने घर आने का न्योता देने पहुंचते हैं। ऐसे में यहां मेले में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, साथ ही लोक संस्कृति की अनूठी छटा भी लोगों का मन मोह रही है।
7: और अब बात गणेश उत्सव की। मुंबई समेत पूरे देश में गणपति उत्सव का उल्लास छाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाल बाग के राजा के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आम भक्तों या बॉलीवुड के सितारे, हर कोई बप्पा के दरबार में पूजा अर्चना कर रहा है। बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख से लेकर रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और कई दूसरे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके अलावा गणपति पंडालों में भी रौनक है। अंधेरी चार राजा को अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। वहीं घाट कोपरचा गणेश पंडाल, जिसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है।

0: महाराष्ट्र गुजरात समेत पूरे देश में लगे पंडालों में बाप्पा विराजमान हैं और भक्त पंडालों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां हर कोई बाप्पा की भक्ति में रंग गया है। गली गली गणपति पंडाल लगे हैं और आम से लेकर खास तक हर कोई गणपति के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहा है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। माथे पर लाल तिलक लगाए शाहरुख ने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लालबाग के राजा के दरबार में पूजा की। शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, शहनाज गिल समेत तमाम सितारे बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कोई बप्पा के चरणों में शीश झुका रहा है तो कोई परिवार के साथ मंगल मूर्ति का आशीर्वाद ले रहा है। मुंबई में आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति ने इस बार अंधेरी के राजा का दिव्य दरबार अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर सजाया है। बाहर से लेकर अंदर तक राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है।
1: अंधेरी के राजा का दरबार इस बार श्री राम के मूर्ति के साथ सजा हुआ है। अयोध्या की थीम रखी गई है। सबसे पहले आप खुद भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं, जैसे कि आपको ही देख रही हूँ और देख कर ये कह रही हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब सारा का सारा आपका जो समस्या है परेशानी खत्म कर दी जाएगी। ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
2: एक सेकंड के लिए लगा मैं अयोध्या में ही स्वयं खड़ी हूँ, और क्या भव्य श्रृंगार है गणपति जी का, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया आप।
3: बप्पा ने हमें बुलाया इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा, सेटअप इतना अच्छा है, इतना ग्रैंड है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट चाय पर बुलाया के पहले जैसे बप्पा ने ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है।
1: आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं।
0: इस उत्सव समिति ने अपने पंडाल, बापा की प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। बापा की भक्ति में इस बार परंपरा के रंग के साथ आधुनिक तकनीक की चमक भी नजर आ रही है। कहीं पारंपरिक सजावट और शास्त्रीय विधि विधान आकर्षण का केंद्र है, तो कहीं लेजर शो, LED स्क्रीन, डिजिटल लाइटिंग और तकनीकी साउंड इफेक्ट्स उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। घाटकोपर में भट्टवाड़ी के राजा का दरबार इस बार भविष्य की कहानी कह रहा है। इस पंडाल की थीम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ LED स्क्रीन के जरिए इतिहास से लेकर सुरक्षित भविष्य, विकसित भारत जैसी कहानी LED के जरिए दिखाई जाती है। यानी गणेशोत्सव में अब आस्था के साथ इनोवेशन भी दिखाई दे रहा है। तकनीक का ये मेल उत्सव को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक माध्यम बन रहा है।
1: देश की तरक्की में AI की कितनी ज्यादा मदद है, AI कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक, डीप तक जा चुकी है, और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी AI की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है।
4: से जानने की कोशिश करते हैं AI ही क्यों इस बार। एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, AI के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, AI के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है। साथ ही ये डेकोरेशन के साथ हमने AI के जो वर्कशॉप्स रखे हैं, ताकि सोसाइटी के लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, वो AI का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं।
1: मराठी में कहते हैं गणपति बप्पा मोरया उर्चा वर्षी लोकरिया।
0: आस्था, आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा ही खूबसूरत संगम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ गणेशोत्सव के दौरान बापा की भक्ति के साथ सामाजिक सरोकार की छटा निराली है। पानी टंकी परिसर स्थित युवा गणेश मंडल ने इस बार किसानों को समर्पित अनोखी झांकी तैयार की है। महाराष्ट्र के जालना में भी गणेशोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ कादराबाद इलाके में नवयुवक गणेश मंडल की ओर से स्थापित किए गए बापा की प्रतिमा को खास अंदाज में तैयार किया गया है। गणपति बापा की ये प्रतिमा 65 किलो चांदी से बनी है, जिसकी चमक श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यही नहीं, गणपति महाराज को 11 तोले वजन का सोने का मुकुट भी चढ़ाया गया है। चांदी से बनी भव्य प्रतिमा और सिर पर सजा सोने का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बापा के भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें पुणे के हिंजवड़े इलाके की हैं, जिसे आईटी हब कहा जाता है, लेकिन खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम यहाँ की बड़ी समस्या है। इसलिए यहाँ विराजे बापा के जरिए इस समस्या को दिखाने की कोशिश की गई है। सड़क पर ट्रैफिक है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन जाम लगने से लोग परेशान हैं। ये सब कुछ इतनी बारीकी से तैयार किया गया है, जो ये आभास करा रहा है कि ये वास्तविक दृश्य है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक के बीच सायरन बजाती एम्बुलेंस भी दिखाई देती है, जिसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा।
5: मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल पंडाल नहीं, घरगुती पंडाल है। ट्रैफिक जाम का जो प्रॉब्लम है पुणे का, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते कि पूरा मतलब रियलिटी की तरह इन्होंने एक गणपति बप्पा के आगे जो पंडाल किया है उसमें आपको दिखाई दे रहा, मतलब एम्बुलेंस हो या फिर अलग अलग गाड़ियाँ हो या फिर मिक्सर सीमेंट हो, इसकी वजह से कितना जाम हो सकता है वो दिखाई दे रहा। यहाँ पर एक एम्बुलेंस है और उसमें एक औरत है और ये अटकी हुई है, और इसी से ताल्लुकात ये जो घरगुती गणपति का देखा हुआ है उससे हमारे साथ गणेश भक्त है, उनसे बात करेंगे। सर, एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम है, क्या ताल्लुकात है ये सब?
6: ये एम्बुलेंस के पीछे मेरी पर्सनल कहानी है। 1 जनवरी 2026 को इसी रास्ते पे मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था अस्पताल में, उनको हार्ट अटैक आया था, पर वो एम्बुलेंस ऐसी अटकी कि मेरी मम्मी ने आखिरी सांस वहीं पे ली। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा, पर किसी ने रास्ता नहीं दिया। तो मैं समाज तक एक संदेशा पहुंचाना चाहता था कि ऐसी परिस्थिति और किसी को ना आए। तो मैं कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था कि प्रशासन इसके लिए कुछ करे, तो प्रशासन ये कर ले तो हम प्रशासन भी हमारे लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं और हम ट्रैफिक का पालन करें। अगर एम्बुलेंस को रास्ता देने लगे तो हम एक दूसरे के लिए विघ्नहर्ता बन सकते।
5: पूरा ट्रैफिक का जो माहौल है वो किसी को दिखाना चाहिए और ट्रैफिक की वजह से किसी और की मौत ना हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का घरगुती गणपति का देखा हुआ जो है वो बनाया है।
0: इससे साफ है कि गणेशोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि समाज की अभिव्यक्ति भी है। यही वजह है कि बापा के भक्तों को उनके आने का साल भर इंतजार रहता है। उन्हें विश्वास है कि विघ्नहर्ता आएंगे और उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। महाराष्ट्र के जालना से गौरवशाली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर और पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 330 अंक लुढ़ककर 74529 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 85 अंक फिसला, यह गिरकर 23329 पर आ गया। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के कारण सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 1500 रुपए नीचे आई। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,54,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए पर स्थिर रही। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 19 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 59 पैसे हो गई।
7: फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: भारतीय सिनेमा में पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों पर आधारित फिल्मों का दौर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एपिक फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी किया गया है। निर्देशक रमेश वर्मा के निर्देशन में बन रही इस भव्य फिल्म में राघव लॉरेंस, महाभारत के सबसे महान दानवीर और पराक्रमी योद्धा कर्ण की कालजयी भूमिका में नजर आएंगे। लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म अगले साल हिंदी समेत 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। राजस्थानी फिल्म धूड़ का मोशन पिक्चर जारी हुआ है। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी राजस्थान की संस्कृति, परिवेश और एक परिवार की गहरी इच्छाओं और मजबूरियों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में यशपाल शर्मा, अलका अमीन, भवानी सिंह चौहान, विवेक पारीक, प्रवीण चौधरी और वानिकी त्यागी को कास्ट किया गया है।
8: जो तू मेरे साथ कर रही थी वो क्यों कर रही थी?
9: मुझे लगा तू हार्मलेसली फ्लर्ट कर रहा है मेरे। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अगर पता होता ना तो देखती नहीं तेरी तरफ।
0: प्यार का पंचनामा जैसी कल्ट रोमांटिक कॉमेडी बनाने वाले निर्माता लवरंजन अब नए जमाने की जनरेशन को एंटरटेन करने के लिए नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी में 6 नए कलाकारों को शामिल किया गया है। 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर में सभी डेब्यूटेंट अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीत रहे हैं और यही वजह है कि पहला प्यार दूसरी बार को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। एक्टर वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार और दो दोस्तों के बीच एक लड़की को लेकर पैदा होने वाली खींचतान को कहानी का आधार बनाया गया है। फिल्म का माहौल हल्का फुल्का है और इसमें रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
7: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबागचा राजा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए बापा के दर्शन।

0: सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी, देखने उमड़ी भारी भीड़। 1097 से चली आ रही है विशेष गणेश प्रतिमा की परंपरा। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पाल की सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते दिखे भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री शाह, एनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: छोटे से गणपति, छोटा सा मंदिर, लेकिन रौनक ऐसी कि सारी भव्यताएं फीकी पड़ जाए।

0: इन्हें देखिए, खुद आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन पीछे चल रहे कार वाले को रास्ता बता रहे हैं। हाथों के इशारे से बता रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी कब किस साइड में रखनी है। आगे बाइक चला रहे शख्स को मालूम नहीं है कि उनके पीछे हो क्या रहा है और ये जनाब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। स्कूल का रास्ता लंबा मालूम पड़ता है, तभी इतनी फुर्सत से दूसरा काम भी साथ साथ निपटा रहे हैं। कम से कम सफर मजेदार तो हो जाएगा। वैसे सफर तो इन कार वाले भाई साहब का भी मजेदार हो गया, बच्चे की मेहनत और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जाया नहीं होने दे रहे। वैसे ही कार ड्राइव कर रहे हैं जैसे आगे बच्चा इशारा कर रहा है। वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा और दोनों के बीच का प्यार सबसे अनूठा। दीदी को देखकर छोटे भाई का चेहरा ऐसे खिल गया है मानो सारे जहां की खुशी मिल गई हो। ऐसे गले मिल रहे हैं मानो अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। भाई बहन का ये प्यारा वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। दादी अम्मा की उम्र 100 साल पार कर चुकी है पर घर की सबसे छोटी सदस्य ने मानो उनकी जीने की चाह और बढ़ा दी है। छोटी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कवायद में वो हर वो तरकीब अपना रही हैं जो उनसे हो सकता है। वो अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। भाई बहन का ये प्यारा वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। दादी अम्मा की उम्र 100 साल पार कर चुकी है पर घर की सबसे छोटी सदस्य ने मानो उनकी जीने की चाह और बढ़ा दी है। छोटी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कवायद में वो हर वो तरकीब अपना रही हैं जो उनसे हो सकता है। कभी हाथों के इशारे से कुछ कहती नजर आती है।
1: टूथपेस्ट की पैकेजिंग के लिए भी नए नियम जारी किए। इन नियमों से सामान खरीदने वाले ग्राहकों को ये पता चल सकेगा कि कोई प्रोडक्ट शाकाहारी चीजों से बना है या मांसाहारी चीजों से। नियमों के मुताबिक अब सामान की पैकिंग पर यह बताना जरूरी होगा कि प्रोडक्ट वेज है या फिर नॉन वेज। नए नियमों के तहत वेज प्रोडक्ट्स पर हरा डॉट होना चाहिए जबकि नॉन वेज प्रोडक्ट्स पर लाल या भूरा डॉट होगा। सरकार की तरफ से जारी नियमों में कहा गया है कि ये निशान पैकेज के मुख्य डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपर होना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 में बदलाव करके ये नया नियम लागू किया है। इस बारे में सरकार ने 21 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये नियम सोमवार से ही लागू हो गए हैं। नए नियम लागू होने से साबुन शैम्पू या टूथपेस्ट खरीदते समय ग्राहक अब पैकेजिंग पर बने हरे लाल या भूरे निशानों से ये पहचान सकेंगे कि ये प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज। साफ है, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स से जुड़े प्रोडक्ट्स खरीदने के दौरान पैकिंग पर ग्रीन और रेड डॉट नजर आने से ऐसे ग्राहकों को बड़ी सहूलियत होगी जो नॉनवेज से परहेज करते हैं। इस नए नियम को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन हैं और उनके शायद ये धोखा हो सकता है कि बिकॉज अगर उनके साथ कभी नॉनवेज प्रोडक्ट अगर वो यूज करते हैं तो ये काफी इनिशिएटिव है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, रियली अप्रिशिएट, और ये होना भी चाहिए अगर इवन मेडिसिन इवन इन शॉप सो, और वो भी हार्मफुल अगर कोई भी इसको ले करता है तो वेरी गुड फॉर देम। और माइट भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद नॉनवेज के लिए एलिजेटिक भी हो सकता है, राइट, तो उनके लिए भी बेटर है कि दैट दे मस्ट अवेयर कि क्या वेज है और क्या नॉन वेज है।
3: लाइक ऑयल्स में अभी हम लोग काफी कुछ देख रहे हैं, हम अगर डेली की बात करें तो सोप्स में ऐसे काफी चीजें हैं जो यूज हो रही हैं बट हमें पता ही नहीं है। फूड प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे ऐसे डेली यूजेस के काफी चीजें हैं, सोप्स हैं, पाउडर्स हैं एंड ऑल। अगर वो डिफरेंशिएट हो जाएगा तो वी कैन प्लान इन दैट वे, तो दिस इज अ गुड। अगर आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा वेज एंड नॉन वेज फूड की तरह से जैसा भी आ रहा है पैक फूड पे, इट्स गुड।
4: मेरा मानना है कि फूड प्रोडक्ट्स में भी काफी चीजें हैं जिससे बच्चों को या बड़े लोगों में एलर्जी रहती है या आर्थराइटिस का है तो इन्फ्लेमेशन रहता है, वीट से बहुत लोगों को एलर्जी है, वो चीजें हाईलाइट होनी चाहिए ताकि लोग उसमें अवेयर रहें, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि प्रोडक्ट्स में अगर हम वो चीज हाईलाइट करेंगे देन पीपल विल थिंक अबाउट दिस कि हमें यूज करना है कि नहीं क्या, अननेसेसरी अननोइंगली लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि कोई प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है पर आपको नहीं करेगा, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो अगर क्लैरिटी रहेगी तो ये सबके लिए और हेल्थ वाइज पूरे मतलब सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा
5: है। मेरा ये मानना है कि हमारे क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर कई जातीय और संप्रदाय के लोग हैं जिनकी अपनी मान्यता होती है

0: धार्मिक आस्थाएं होती है, उसको देखते हुए एक्चुअली सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल वैलिड रीजन है। क्योंकि मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है जब हम ये कहीं जाते हैं और जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में और कुछ जब इस तरह के डॉट जो आइडेंटिकल होती है नॉन वेज और वेजिटेरियन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो बड़ा टफ होता है कि मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मैं जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो ये डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे कोई किचन वगैरह में कोई ऐसा डाउट रहता है मन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर मिक्स हो रहा हो कोई गर्व शुगर सामान, तो जस्ट टू अवॉइड दैट मैं सिर्फ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाता हूँ। सेम चीज अगर हम जब हम कॉस्मेटिक्स है या डेली यूजेज टूथपेस्ट वगैरह है, कुछ और भी साबुन टॉयलेट्रीज वगैरह यूज करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए वैलिड रीजन है कि ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसमें कहीं नॉन वेजिटेरियन कोई एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह तो यूज नहीं गए, तो ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि सरकार का बिल्कुल वैलिड रीजन है और सही कदम है।
1: सरकार जो ये अभी कर रही है रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपयोगी सामान है उनके ऊपर रेड और ग्रीन टैक्स जो लगा रही है वो बहुत अच्छी इनकी सोच है, क्योंकि हम गलती से काफी सारे प्रोडक्ट में फिश ऑयल हो गए हैं या कोई भी ऐसा जानवरों की चर्बी टाइप की चीजें होती हैं, तो हमें पता नहीं होती कि किस प्रोडक्ट में है किस में नहीं है, लेकिन हमें यदि ये ग्रीन और रेड टैग लग जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा। हम कई बार काफी लोगों का व्रत होते हैं, फास्टिंग करते हैं और धार्मिक आस्था जो लोग रखते हैं और प्योर वेज हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम होगा कि ग्रीन और रेड टैग लग गया तो वो उसको उस दिन यूज करेगा या नहीं करेगा, या उसमें कुछ डला है तो गलती से उसने कंज्यूम कर लिया तो वो उसको जाकर देख सकता है कि इसमें रेड टैग में ये चीजें इसमें एड ऑन है। तो सरकार का जो निर्णय है बहुत अच्छा है और हम सबके लिए और सबसे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मैटर है, तो बहुत ही बढ़िया है इसका स्वागत।
2: ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बदल रहा है, नए तकनीकों के दौर में इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी है। लिहाजा इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत और जापान के सहयोग से युवाओं को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरुग्राम के पास जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिम में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस टेक्निकल ट्रेनिंग में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

0: ये तस्वीर है उस बदलती हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जहां सिर्फ मशीनें ही स्मार्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि उन्हें चलाने और संभालने वाले हाथ भी नई तकनीक के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मौजूद जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जिम युवाओं को इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रहा है। यहाँ युवाओं को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ मशीनों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
0: युवा यहाँ नई तकनीक को समझते हैं, मशीनों के साथ काम करने का हुनर सीखते हैं और इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक खुद को तैयार करते हैं। यानी ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के बदलते भविष्य के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने की प्रयोगशाला भी है।
2: इस इंस्टीट्यूट में भी जो NCVET का करिकुलम है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके ऊपर हमने अपना एड ऑन कोर्सेज किए हैं जो उनको मेकाट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स में, स्विच गियर्स में, सिमुलेटर्स में, रोबोटिक्स में, जो CNC मशीन का प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स हैं उनके कंट्रोल में कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कोर्स में हमने करिकुलम में डाले हैं।
0: जिम की ट्रेनिंग की खासियत केवल आधुनिक मशीनों तक सीमित नहीं है। यहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी DST मॉडल को फॉलो किया जाता है। साथ ही लड़कियां भी टेक्निकल ट्रेनिंग ले रही हैं, मशीनों को समझ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीख रही हैं और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक खुद को तैयार कर रही है।
3: मैम बिल्कुल मेरा लिए अलग एक्सपीरियंस है। मैंने इतने लड़कों के बीच एक्सपीरियंस करा कि कैसे काम करा जाता है। सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
0: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से EV, रोबोटिक्स और ऑटो मशीन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग वर्क फोर्स की स्किल्स को भी उसी रफ्तार के साथ बदलने की जरूरत है। तकनीक आधारित ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर के जरिए युवाओं को इसी बदलती हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तरफ तेजी से बदलती तकनीक, दूसरी तरफ तकनीक को अपनाने के लिए तैयार होती नई पीढ़ी। जिम की ये तस्वीर बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बदलाव सिर्फ मशीनों में नहीं हो रहा, वर्कफोर्स भी बदल रही है, स्किल्स भी बदल रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट, प्रोड्यूस टुडे।
4: बद्रीनाथ धाम में दो दिनों तक परंपरा और लोक आस्था से जुड़े उत्सव में लोग झूमते रहे। यहां पर देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस महोत्सव की थीम थी हमारी विरासत हमारा भविष्य।
5: बद्री विशाल का धाम देवभूमि की लोक परंपराओं के रंग में दो दिनों तक रंगा नजर आया, जहां दो दिनों तक संस्कृति से लेकर सैन्य शक्ति तक की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2026 में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस महोत्सव ने देवभूमि की संस्कृति को एक नया मंच दिया। इस महोत्सव की थीम रखी गई हमारी विरासत हमारा भविष्य। इस फेस्टिवल में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया।

0: बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में सजे इस सांस्कृतिक उत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। लोक गीतों की गूंज, पारंपरिक नृत्यों की थिरकन, स्थानीय कला और हस्तशिल्प की खूबसूरती और पहाड़ के पारंपरिक उत्पादों ने यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का खूब ध्यान खींचा।
1: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को, सेना को और जो वाइब्रेंट विलेज माणा गांव है उसकी आर्थिकी और वहां से जुड़े हुए कार्यक्रमों को यहां पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो भारतीय सेना है, जो लोग हैं यहां के चमोली के, वो सब एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी यहां पे पहुंचे हैं और तमाम लोग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं। आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। ऐसे में तमाम लोगों की संस्कृति के बाद एक नई पहल यहां पे भारतीय सेना द्वारा, पिछले वर्ष पहला संस्करण हुआ था, इस बार दूसरा संस्करण ये चल रहा है।
0: दो दिनों तक चले इस देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शरीक हुए। इससे पहले उन्होंने बामणी गांव पहुंचकर नंदा अष्टमी के अवसर पर ग्रामीणों के साथ पारंपरिक झूमेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय महिलाओं के साथ झूमेलों करते नजर आए। इसके बाद वो बद्रीनाथ में चल रहे देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में पहुंचे और भारतीय सेना की हथियारों की प्रदर्शनी को देखा और अत्याधुनिक हथियारों एवं सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी ली।
2: जो देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का कल्चर है, उससे सभी लोग परिचित हों। वो एक समृद्ध कल्चर हमारा शुरू से रहा है, प्राचीन समय से, पहले समय से, और साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ के स्कूलों के, हमारे कॉलेजों के, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के बच्चे हैं, उन सभी को एक मंच मिलता है। यहाँ पर सेना के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रदर्शनी से हमारे सब नौजवान युवाओं को आधुनिक अत्याधुनिक जो उपकरण हैं, हथियार हैं, वो देखने को मिलते हैं।
0: महोत्सव में गढ़वाली और हिमालयी लोक नृत्य संगीत के साथ स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक परिधान, स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। इस आयोजन का मकसद सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करना नहीं था, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों, सेना और आम नागरिकों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करना भी था। इस कार्यक्रम के दौरान देश के पहले गाँव माणा में भारतीय सेना ने विशाल तिरंगा स्थापित किया। अब जो भी यात्री या पर्यटक बद्रीनाथ धाम और माणा गांव पहुंचेगा, उसे दूर से ही ये तिरंगा दिखाई देगा। इन दिनों औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास 2026 चल रहा है। इस दौरान अमेरिकी सेना के जवान भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और देवभूमि की लोक संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखा और इस फेस्टिवल का आनंद उठाया। कमल नैन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मिल गया है। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। टीम ने आज फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर न सिर्फ सुनहरा मेडल अपने नाम किया बल्कि एक रिकॉर्ड भी बनाया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। ये एशियन गेम्स में भारतीय वुमेन्स टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। 217 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने 2022 हांगझू एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। एशियन गेम्स में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में मंधाना ने मात्र 45 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस मुकाबले में उतरने से पहले उन्हें 11,000 रन के आंकड़े को छूने के लिए मात्र 13 रनों की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने अपनी इस आतिश पारी के दौरान आसानी से पूरा कर लिया। एशियन गेम्स में वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने भारत का एक मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने आज महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मकाओ की चू मेनसिन को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोशिबिना इससे पहले हांगझू एशियाड में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियो भेज भी रहे हैं, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमें भेजी है यूपी के इटावा से पूजा सेन ने। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया, मंगल मूर्ति का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। दूसरी तस्वीर हमें भेजी है मध्य प्रदेश के विदिशा से, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से झांकी बनाई गई है और गणपति को उस झांकी में बिठाया गया है जिसमें ग्रामीण परिवेश दिखाया जा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चार राजा के दरबार में दर्शन करने को पहुंचे फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए पप्पा के दर्शन। नासिक के सुनार की अनूठी गणेश भक्ति, 3mm से लेकर 1 इंच तक के साइज की बनाई 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां, इन्हें देखने के लिए पड़ती है माइक्रोस्कोप की जरूरत। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी, देखने को मिली भारी भीड़, 1097 से चली आ रही है विशेष गणेश प्रतिमा की परंपरा। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश के से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़।
9: नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनके पंडाल श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं महाराष्ट्र, और खासकर अगर हम देखें मुंबई के पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी बप्पा के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहे के पंडाल में पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त जैसे सितारों ने हाजिरी लगाई। आज आपको गणपति के इस सबसे लोकप्रिय पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के दूसरे अनोखे पंडालों के दर्शन भी आपको आज कराने जा रहे हैं। उस पंडाल में भी आपको लिए चलेंगे जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिल्कुल बनाया गया है। आखिर में हम बात करेंगे गणपति के विवाह की। भिलाई में तमिल समुदाय के लोगों ने धूमधाम से रिद्धि सिद्धि संग गणपति का विवाह संपन्न किया। क्या है ये धार्मिक परंपरा, आपको विस्तार से बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां गणपति उत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबागशाह राजा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शुमार हैं। पहले शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लालबागशाह राजा के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे। उसके बाद संजय दत्त, चंकी पांडे और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने बप्पा के चरणों में सिर झुकाया। रिपोर्ट देखिए।

साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए आते हैं पप्पा, सुख समृद्धि धन धान्य संग रोशनी लाते हैं पप्पा। इसीलिए तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो नामचीन है जो सितारों की तरह सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं। लाल बागचा राजा को देखने, पूजने और उन्हें अपनी मनोकामना बताने अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे। दोनों ने बप्पा के चरणों पर सर झुकाया। संजय दत्त ने आशीर्वाद के तौर पर बप्पा के चरणों का सिंदूर अपनी ललाट पर लगाया, साथ ही पत्नी के माथे पर तिलक लगाया। फैन से मिलते, उनका अभिवादन स्वीकार करते, संजय दत्त सभी से मुस्कुरा कर मिले। इसी तरह अभिनेता चंकी पांडे अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे, बप्पा के चरणों में प्रणाम किया और चढ़ावा अर्पित किया। और हाँ, बेटी अनन्या के साथ सेल्फी लेना नहीं भूले। गणपति के इस पंडाल में जहाँ लाखों लोग रोजाना श्रद्धा से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं जानी मानी हस्तियां भी पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं। सोमवार की रात बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान लाल बागचा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लाल बागचा राजा के दरबार में पूजा की। शाहरुख ने बप्पा के चरणों में मत्था टेका और बप्पा से आशीर्वाद लिया और मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा अर्पित की। परिवार को पहले पुरोहित ने माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद मैनेजर पूजा ददलानी ने भी उनके माथे पर तिलक लगाया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते और उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। संयोग है कि शाहरुख के बंगले का नाम भी मन्नत है और लाल बागचा राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ये श्रद्धा ही है कि शाहरुख खान मुंबई के इस सबसे मशहूर गणपति पंडाल में हाजिरी लगाना नहीं भूलते।

0: साल 2023 में शाहरुख खान अपने बेटे अब्राम के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बप्पा के चरणों में नारियल मिठाइयां अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। साल 2024 में भी शाहरुख खान अब्राम के साथ ही विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल 2025 में शाहरुख खान गणेशोत्सव के दौरान शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे, लेकिन इस साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दरबार में पहुंचे। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी गणपति की स्थापना होती है और परिवार करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की डेढ़ दिन की आराधना करता है। ये गणपति के प्रति शाहरुख की आस्था की एक और तस्वीर है। मंगलवार को शाहरुख टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे और वहां स्थापित गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और माथे पर तिलक लगाया। संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां गणपति के पंडाल में माथा टेक चुकी हैं। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई के पंडालों की भव्यता देखने लायक है। कहीं पूरा पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है तो कहीं पर पंडाल में भगवान कृष्ण की लीला नजर आती है, कहीं बप्पा को भगवान शिव के अवतार के रूप में सजाया गया है तो कहीं पर गणपति महाराजा के अवतार में नजर आते हैं। जैसी भावना वैसी भक्ति और इसी हिसाब से गणपति को अलग अलग अंदाज दिया गया है। चलिए आपको मुंबई के जाने माने पंडालों के दर्शन करवाते हैं जहाँ की रौनक देखकर आप दंग रह जाएंगे।

0: मन मोह लेते हैं मंगल मूर्ति। विशाल देह, भव्य चेहरा और बोलती हुई आंखें, जैसे स्नेह बरसा रही हूँ। बप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला है और ढोलक की थाप पर जयदेव जयदेव की पुकार है। यूं तो मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं, लेकिन इनमें भी अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चा महाराज की चर्चा खूब होती है और इसकी वजह है इनका भव्य पंडाल। राजमहल जैसे पंडाल में बप्पा की प्रतिमा महाराजा के अनुरूप ही है। हाँ, खास बात यह है कि पंडाल को भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ा चा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से, बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं।
2: सर, में हम लोग को ये प्लान था कि गए टाइम में शिवाजी महाराज का बताया था, तो बोले टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर जो लीला उनकी, तो उस तरीके से हम लोग ये अरेंज किया हुआ है।
0: अंधेरी के बाद चलिए आपको सांता क्रूज इलाके के गणपति के दर्शन कराते हैं। सर पर जटा और जटाओं में गंगा, गले में सर्प और रुद्राक्ष और कमर में मृगछाल। बताने की जरूरत नहीं कि बप्पा को शिवजी के अवतार में स्थापित किया गया है।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन, वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है, ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहां पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए, कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। भीतर की तरफ गणपति बप्पा शिवजी के अवतार में हैं, इसलिए सबसे पहले लोग शिवजी का ही दर्शन करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री गणेश के पिता हैं। फिर से एक बार भीतर की तरफ चलते हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय इस पंडाल से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, कितना साल मना रहे हैं इस बार और गणपति इस बार आपने शिवजी के रूप में लाया क्यों?
3: ये हमारा 44 वर्ष पूरा हो गया इस साल। हमारी स्थापना 1983 में हुई थी और ये सार्वजनिक गणेश मंडल गौठन लेन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि गौठन एक ये ऐसी एक हमारी जो सांताक्रूज में गौठन है जिसमें गणपति लाया जाता है, बाकी का और किधर कोई गौठन में गणपति नहीं लाते। और हमारे इधर एक खास बात ये है कि गौठन के अंदर हमारे जो रहवासी है यहाँ पे जो 80% लगभग कैथलिक समाज के हैं और ये बस 2 मिनट की दूरी पर हमारे इधर बुरी समाज है, मस्जिद है हमारे इधर, जो बाकी दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी हमको बहुत सहयोग मिलता है।
4: यहाँ के कार्यकर्ते बहुत लगाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं।
0: गणपति की प्रतिमा को अलग ढंग, अलग रंग और अलग अंदाज में बनाया और स्थापित किया जाता है। कहीं तो बप्पा परंपरा से जुड़ते हैं तो कहीं विज्ञान से। उपनगर मुंबई के भटवाड़ी के राजा को ही देख लीजिए, जहां आधुनिक ज्ञान विज्ञान और खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम बनाया गया है, और इसके जरिए इस तकनीक के फायदे और नुकसान समझाने की कोशिश है।
5: जेवा इंटरनेट नव्हतं, जेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द ही जन्माला आला नव्हता।
0: जितना खास ये पंडाल है उतनी ही विशेष है ये प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तरह कागज से बनाई गई है।
1: देश की तरक्की में AI की कितनी ज्यादा मदद है, AI कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है, और पास के ही कृत्रिम तालाब में जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है। खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है, और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी AI की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है। इस बार ये मंडल अपना 98वां साल मना रहा है।
6: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है, और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं, अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
1: आपसे जानने की कोशिश करते हैं, AI ही क्यों इस बार?
7: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, AI के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, AI के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है।
0: बप्पा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी सा राजा पंडाल भी है, जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वही भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दे रहा है।
1: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
0: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के इस राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
8: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत गई है, और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए, और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
9: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया है इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा।
0: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसे यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीने में तैयार किया गया। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है।
10: ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा। और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है, वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्ट मंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी। तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में। तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है, अंधेरी का राजा का साथ जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
0: यानी एक तरफ अयोध्या के रामलला की भक्ति भाव है, तो दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश की आराधना। इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर आ रही है।
10: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ावा भी करते हैं।
11: क्या बात है, गणपति बप्पा
10: मोरिया।
11: देखिए आपको बताएं कि ऐसी एक दान पेटी खुली थी मुंबई के लालबाग के राजा में, जहां कई तरह की ऐसी भी चिट्ठियां पढ़ने को मिली, जिसमें पिता ने अपने बेटे के नौकरी की बात करी थी। एक चिट्ठी ऐसी मिली जिसमें एक मां ने अपने बेटे की शादी की बात करी थी, और एक चिट्ठी एक प्रेमी द्वारा लिखी गई थी जो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ कई ऐसी चिट्ठियां भी आई जिसमें बप्पा के लिए लोगों ने धन्यवाद भी लिखा है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चमत्कार है यहां के बप्पा में, ऐसे लोगों की मान्यता है। वीडियोजली स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल ये विवाह तमिल समुदाय की धार्मिक परंपरा रही है। बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाइयों को गूंजने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट देखिए।

0: जैसे वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। तो वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है। दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है। कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है, जहाँ बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: तो गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव के साथ शामिल हो जाइए। आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस को स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922 और याद रहे ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियोस और तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, अपने गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: क्या परिवार के किसी मुकदमे से परेशान हैं? क्या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है? क्या मुकदमे में सजा हो गई है? क्या है मुकदमे के पीछे के ग्रहों का हाल और क्या है समाधान? जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते,

0: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग शाहराजा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार, नासिक में का सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी, देखने को उमड़ी भारी भीड़, लगातार चली आ रही है परंपरा, विशेष गणेश प्रतिमा की परंपरा। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सूरत में कल्प वृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजा गया, यहां पर भगवान गणेश के दर्शन करने के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। पंडाल की डालियों पर ड्रग्स, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन्स लिखे गए। गणेश पंडाल में पूजा के साथ साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है। कल्प वृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील की गई। पंडाल में लगे कटआउट्स और संदेश बच्चों और युवाओं का खींच रहे हैं अपनी ओर ध्यान। आयोजक पीयूष चावला के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर मनाया गया था गणेश उत्सव। कराड़ के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी बनाई गई है, झांकी को देखने के लिए शहर के साथ साथ आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। नवजवान गणेश मंडल की गणेश उत्सव

0: परंपरा कई दशकों पुरानी। मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी और 1970 से यहां पर विशेष शैली की गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। नवजवान गणेश मंडल ने 2009 से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद शहर के दूसरे पंडालों ने पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा की शुरुआत की। इस बार झांकी में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार नजर आए। नरसिंह अवतार की झांकी देखने के लिए आजाद चौक में जुटी भारी भीड़, बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हुए। नासिक के सुनार भगवान दास करोटी ने सोने के गणेश की बहुत छोटी प्रतिमा तैयार की। सबसे छोटी प्रतिमा 3 मिलीमीटर। भगवान दास खरोटे ने अलग अलग आकार और रूपों में 291 सूक्ष्म गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। पिछले 32 साल से इस कला पर हो रहा है काम। इन मूर्तियों को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाथों से तैयार किया जाता है। चाय की केटली और कप पकड़े गणेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आकृति मौजूद है। भगवान दास करोटी की सूक्ष्म कलाकारी के नाम अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी प्रदर्शनी में अलग अलग देशों और परंपराओं से जुड़े गणेश के अनोखे प्रतिमाएं नजर। गणेश उत्सव के 9वें दिन भी लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों की भारी भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरीचा राजा के दरबार में दिखी अयोध्या की भव्यता। इस वर्ष राम मंदिर है थीम। पंडाल में प्रवेश करते ही अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता के होते हैं दर्शन। इस पंडाल के निर्माण के लिए खासतौर पर अयोध्या गई थी आयोजकों की टीम। राम मंदिर के हर बारीकी और भव्यता को पंडाल में उकेरा गया। अंधेरीचा राजा पंडाल में स्थापित गणपति प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा है। मुंबई के गणेशोत्सव के दौरान दिख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल। भट्टवाड़ी का राजा के दरबार में एआई का इस्तेमाल। आस्था के साथ तकनीक की मदद से गणपति के दरबार की सुंदरता में हुए 4 चांद। एआई से मिल रही है सफलता और देश के विकास में एआई के योगदान पर प्रकाश डालती थी। एलईडी के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है एआई की कहानी। पूरी तरीके से कागज से बनाए गए हैं इको फ्रेंडली भट्टवाड़ी का राजा की गणपति। इस साल अपना 58वां साल बना रहा है यह मंडल। बप्पा के दर्शन और देश के विकास की कहानी बयां कर रहा है। जालना में 65 किलो चांदी की गणपति बप्पा की मूर्ति बनी विशेष आकर्षण। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। गणपति बप्पा को पहनाया गया 11 तोले का सोने का मुकुट। बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पिछले करीब 17 वर्षों से मंडल की ओर से बनाई जा रही है इस प्रकार की तैयारियां। जाला में 25 फीट ऊंची भव्य गणेश मूर्तियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बप्पा के अलग अलग स्वरूपों के हो रहे हैं दर्शन। जालना के बड़ी सड़क इलाके में अलग अलग पंडालों में विराजमान गजानन के अनेक स्वरूप। पूरे परिवार में गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरया। चंद्रपुर में किसान के रूप में बप्पा के दर्शन। खेत में हल चलाते हुए बप्पा की प्रतिमा ने ध्यान आकर्षित किया। किसानों को समर्पित है ये सुंदर झांकी। बप्पा से किसानों के दुख हरने और अच्छी फसल की कामना। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम। भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी के हो रहे दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सांवरिया सेठ का स्वरूप। चंद्रपुर के श्री अश्वनायक गणेश मंडल की ओर से सरकार की गई भव्य झांकी बप्पा के साथ ही की गई स्थापित। अनोखे गणपति पंडालों की लिस्ट में अमरावती का एक वीरा गणेश मंडाल भी शामिल है। भक्ति के साथ पढ़ाई के महत्व पर फोकस। पंडाल में पारंपरिक मराठी स्कूल का दृश्य देखने को मिल रहा है। बच्चों के कक्षा में पढ़ते हुए नजर आए गणपति। इस वर्ष पर्यावरण के अनुकूल छोटी गणेश प्रतिमा की गई है स्थापित। कोटा की रेलवे कॉलोनी में अनोखा गणेश उत्सव। 9 फीट के मूषक पर विराज 7 फीट के गणपति। करीब 10 वर्षों से बालाजी नव युवक का मंडल की ओर से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल में अनोखी थीम ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण की तर्ज पर तैयार की गई है प्रतिमा। पंडाल के अंदर बनाई गई है सुंदर गुफा और जंगली जानवरों की जीवंत स्टैच्यू। आस्था के साथ भविष्य के लिए भी पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश दे रहा है ये पंडाल। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले और उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए। अमेरिकी जवानों को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानने का मिला मौका। आपसी भाईचारे और सम्मान को मजबूत करना लक्ष्य। रायसेन के उदयपुरा में 2/11 पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार। महिला, पुरुष और बच्चे भगवान के विमान के नीचे से निकले और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। विमान यात्रा में भजन मंडलियां भगवान के भजन गाती हुई नजर आई। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े भी निकाले गए जहां पर कलाकारों ने हरतंगेज करतब भी दिखाए। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और मम्मूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। वहीं पर फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड। तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं पर तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय करने के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान। हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए। विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार दिया गया। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड। फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर से पटकनी देकर जीता गोल्ड। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हरा दिया। 16वें ओवर में ही पूरी टीम सिमट गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल टारगेट। स्मृति मंदना ने खेली 79 रनों की पारी श्रीलंका के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 11,000 रन। शिवाली वर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल। 48 गेंद में शानदार सेंचुरी मारी। पावरफ्ली में झटके श्रीलंका के 2 विकेट। T20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत। इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर निकल कर आई। भारतीय टीम ने 4x100 मीटर मेडली रैली के फाइनल में क्वालिफाई किया। ऋषभ दास, धनुष, सुरेश वेटन, रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में 3.40 सेकंड का समय लेकर हासिल किया 7वां पायदान। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन। एशियन गेम्स 2026 में भारत हॉकी टीम की बड़ी जीत। श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक का बहुत जबरदस्त रहा। दोनों मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने किए गोल। बोली बोगी गांव में महिलाएं गंगू पत्ते से बना रही हैं टोपी। महिलाएं जंगल से गंगू पत्ता लाकर टोपी करती हैं तैयार। इस कला की उन्होंने कई ट्रेनिंग ली नहीं है। खेतों में काम करते समय पहनती हैं महिलाएं गंगू पत्ते की टोपी। महिलाओं के मुताबिक ये धूप और बारिश से बचाता है। गंगू पत्ते की एक टोपी 100 से 150 रुपए तक बिकती है। जमुना टूडू के मुताबिक अच्छा बाजार मिले तो महिलाओं की पड़ सकती है आय। गांव की महिलाएं बताती हैं कि इस टोपी को मजबूत और टिकाऊ, उनके मुताबिक टोपी सही देखभाल के साथ साथ करीब 5 साल तक चल सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए सीईओ सत्यम मिश्रा ने संभाला कार्यभार, श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने और सुविधाओं पर बेहतर करने का फोकस। मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी, इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन और एक्सपर्ट्स की टीम होगी शामिल। तिरुमाला में अलीपिरी पैदल मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पेड़ पर दिखा तेंदुआ। तीस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा, वन कर्मियों और मछुआरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में नदी में बहा नन्हा हाथी, मां से मिलते ही अद्भुत नजारा। पिंडदानियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने के लिए मेला क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तैनात। विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पूरे मेला क्षेत्र पुलिस की नजर रहेगी, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी पर निगरानी। गया में पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जिले में इस बार मॉनसून ने पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, औसत से 71% ज्यादा बारिश हुई। महोबा जिले के सभी प्रमुख बांध पानी से लबालब, 13,100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे की छुट्टियां आ रही हैं, इसके लिए जश्न की तैयारी। द्वार पर खाई जाने वाली पारंपरिक मून केक मिठाई की हो रही है जबरदस्त तरीके से तैयारी। त्यौहार के खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए खुशहाली लाने वाले ताजे और खूबसूरत फूल पौधे जमकर खरीद रहे हैं। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में इंटरनेशनल लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर देश विदेश के हजारों सुंदर लालटेन देखने को मिल रही हैं। सरकार लोगों को घूमने फिरने के लिए करोड़ों रुपए का डिस्काउंट कूपन भी दे रही है। चीन के वुशी चिड़ियाघर में मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले जिराफ, कैपीबारा और लाल पांडा जैसे जानवरों को स्पेशल मून केक दिए गए। ये मून केक जानवरों की पसंद और सेहत को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चीजों से बनाए गए थे। चिड़ियाघर ने इस खास मौके पर यादगार बनाने के लिए ऑटम फन नाम से कई मजेदार कार्यक्रम भी शुरू किए। बच्चों और बड़ों के लिए कई मनोरंजक और रोमांचक परफॉर्मेंस देखने को मिली। इस साल मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियां चीन में 3 दिन तक होंगी। टेलर स्विफ्ट को एमटीवी वीएमए में पहली बार आर्टिस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड म्यूजिक वीडियो में उनके डायरेक्शन और क्रिएटिव काम करने के लिए है। टेलर स्विफ्ट अब तक 7 बार वीएमए में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। टेलर ने द फेट ऑफ ओफिलिया, ओपेलाइट और एंटी हीरो जैसे वीडियो में डायरेक्शन किया है। टेलर स्विफ्ट 14 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। इस साल एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स की मेजबानी स्नूप डॉग करने जा रहे हैं, समारोह रविवार को लॉस एंजलिस में होगा। सऊदी अरब की ऑटो कंपनी असोर ने अपनी पहली 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च किया। इस इलेक्ट्रिक कार का लुक साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह नजर आता है, स्टाइलिश इंगेज। कार में आगे और पीछे की सीट के बीच वाला पिलर हटा दिया गया, इसलिए इसको बहुत मजबूती के साथ तैयार किया गया। सऊदी अरब का लक्ष्य 2030 तक 5 और नए मॉडल्स को लॉन्च करना है। ये कंपनी सऊदी अरब के सरकारी फंड और कॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या परिवार के किसी मुकदमे से परेशान हैं? क्या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, क्या मुकदमे में सजा हो गई है, क्या है मुकदमे के पीछे के ग्रहों का हाल और क्या है समाधान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: ममता की कोई सीमा नहीं होती और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नज़ारा हर किसी की आंखें नम कर देता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और मां बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। उफनती तीस्ता नदी के तेज बहाव में जब एक नन्हा गजराज मौत से जंग लड़ रहा था तब 5 जाबाज बचुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला, उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे उसकी मां तक पहुंचाया गया।
3: दिल छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है। माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। नॉर्थ बंगाल फिशमैन फोरम के 5 सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा। हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुँचे। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए। मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया। जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। जब हाथियों का झुंड अपलचंद जंगल की कांताबारी रेंज के पास नदी पार कर रहा था उसी समय हाथी का ये बच्चा नदी की धारा में बहकर करीब 4 किलोमीटर दूर चला गया जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ की आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोस आ रहे हैं। देखिए राजस्थान के कोटा से राजेंद्र वर्मा ने अपने घर में विराजमान बप्पा की वीडियो हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने बप्पा के पंडाल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट इसकी बाकायदा की गई है, विग्रहार्ता का श्रृंगार अद्भुत नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर हमारे साथ साझा की है दिल्ली से अक्षय खन्ना ने। इन्होंने बप्पा की भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। न सिर्फ बप्पा की प्रतिमा को फ्रेंडली है, बल्कि बप्पा के दरबार को भी प्राकृतिक वस्तुओं और घास से तैयार किया गया है। भक्ति के साथ साथ ये एक शानदार संदेश भी है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो उसके कारण क्या कुछ होते हैं और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और गुड़ का भोग लगाकर लोगों में बांटिए। साथ ही साथ अपना ईमानदार प्रयास जारी रखिए, आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 23 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अपने विषय से जुड़ी हुई बात करते हैं। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि मुकदमेबाजी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध होता है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी के बारे में। कभी कभी परिवार में मुकदमा होता है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा, नौकरी का मुकदमा, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष में ये मुकदमेबाजी होती कैसे है, आती कैसे है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध होते हैं, जेल जा सकता है आदमी, जीवन में बहुत सारी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। मंगल भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल राहु के साथ प्रभावित हो जाए, राहु का इंपैक्ट पड़ जाए मंगल के ऊपर, तो झूठी मुकदमेबाजी होती है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं या काल्पनिक मुकदमे जीवन में पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल का निगेटिव होना दो चीजों में आदमी को फंसाता है। पहला कर्जा, कर्जा लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि निकल ही नहीं पाते, वहां मंगल खराब है। बेवजह के मुकदमे में फंस गए, पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, वहां भी मंगल खराब है। तो मंगल का खराब होना कर्ज और मुकदमेबाजी का कारण आपके जीवन में बन सकता है।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है?
1: मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से ये जानेंगे कि अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी चल रही है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं?
1: देखिए, अगर भाई भाई के बीच में, परिवार में चाचा ताऊ, इन सब लोगों के बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करेंगे, मंगलवार को प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए। हलवा पूड़ी ना बांट सके तो गुड़ बांटिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 9 मंगलवार को करिएगा। भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में जो मुकदमा है उसका हल निकल आएगा।
0: और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर नौकरी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है तो इसका समाधान करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
1: अगर नौकरी के संबंध में कोई मुकदमा हो, आप

0: मुकदमा लड़ रहे हों, यानी नौकरी का कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों, तो क्या करें? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। अगर महिला हैं तो आप केवल लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाइएगा। इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर मंदिर में ही या मंदिर से घर आकर एक मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का जप करिएगा। एक माला, तीन माला या 11 माला, ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार को करिए। नौकरी के संबंध का जो मुकदमा है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
1: और अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी आज आप सबसे पहला सवाल किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न अलका जी ने हमें लिखा है और अलका जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं, अहमदाबाद से। 16 जुलाई 1988 का जन्म है। शाम के 3:55 जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। अलका कह रही हैं कि मेरा एक विवाह टूट चुका है, क्या आगे मेरी दूसरी शादी होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अलका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरे विवाह की संभावना प्रबल है। कुंडली में साल 2027 के अप्रैल से दिसंबर के बीच में आपकी दूसरी शादी होगी, आपकी अपनी इच्छा से, और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि विवाह के बाद आप अहमदाबाद से दूर जाएंगी, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और हर रविवार को दिन के समय में पार्वती मंगल का अगर पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न रानी चौहान ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1975, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। रानी कह रही हैं कि मेरे 2 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं और अभी मुझे हड्डियों में काफी समस्या है, तो क्या मेरा आगे भी ऑपरेशन होगा और अगर मैं अपनी हड्डियों की सर्जरी कराऊं तो क्या उससे सुधार होगा मेरे लिए? रानी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको आगे चल करके अपने ज्वाइंट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपकी कुंडली में ये संभावना बन रही है। अगले साल के मध्य में, 2027 के मध्य में आपके ज्वाइंट का ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन आपके लिए कुल मिला के सफल रहने वाला है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर विवाह का या फिर पति पत्नी का कोई मुकदमा चल रहा हो तो क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए, आज के समय में मैरिटल मुकदमे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर विवाह का कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके, तो क्या करें कि मामला हल हो जाए? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का दो मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ रखिए। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप करिएगा। ये प्रयोग बैक टू बैक 3 मंगलवार की रात को करें और प्रार्थना करें वैवाहिक मुकदमे का समाधान निकल आएगा।
1: और इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेंगे कि अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो इसका उपाय क्या है।
0: जैसा आपको पहले बताया कि अगर मुकदमेबाजी में राहु का प्रभाव हो तो आदमी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस जाता है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, झूठे मुकदमे में फंस गए, तो कैसे इससे बाहर निकलें? सुबह के समय जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में या सूर्य के सामने बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए। चौपाई होगी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते 3 माला जप करिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे 1 से 3 महीने के अंदर झूठे आरोप से, झूठे मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर मुकदमे में हार की वजह से सजा हो गई हो तो क्या कुछ करना चाहिए।
0: अगर आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई, फिर आपने आगे अपील की और अभी बाहर हैं, लेकिन मुकदमे में हारने की वजह से सजा हो गई है, या परिवार में कोई मुकदमा हार गया उसको सजा हो गई है, तो क्या उपाय करेंगे। मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को सुबह ही बैठ जाइएगा और धीरे धीरे करके रुक रुक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, या अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 10-10 करके या 9-9 करके 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए और रोज हनुमान जी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और जैसे ही ये प्रयोग समाप्त करेंगे मुकदमे से सजा से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। फिर बता दूं, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे।
1: और अब वक्त हो चला है मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
0: मकर राशि, रुके हुए काम

होते दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेंगे कि तीसरा सवाल पंडित जी किसका लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी अगला प्रश्न हमें अर्चना जी ने लिखा है और अर्चना जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1993। जन्म का समय रात में 1:35। जन्म का स्थान है धूलिया महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है और मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है, नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? देखिए अर्चना, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी समस्या टोटल साइकोलॉजिकल है, पूरी तरह से मानसिक है, चंद्रमा से कंट्रोल हो रही है, इसलिए सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें ताकि वो आपके मन और नींद के साइकिल को बेहतर करे। ज्योतिष के हिसाब से आप अभी नवंबर के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके चौथे और अंतिम सवाल का। पंडित जी चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी

धीरेन्द्र त्यागी ने हमें लिखा है और धीरेन्द्र जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1970

मैं सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है मेरठ। धीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके पिछले 1 वर्ष से व्यवसाय कर रहा हूं, लेकिन व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले। धीरेंद्र जी सबसे

0: थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, आपका व्यापार बेहतर होगा जून 2027 के बाद, और इसके बाद आपकी स्थितियां ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। दो उपाय करिए, पहले तो एक ओपल बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज शाम को कम से कम 3 माला शनि मंत्र का जप करें, लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 23 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 23 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, हालांकि विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु भी किसी व्यक्ति को संस्कार के अनुसार मिलते हैं। देखिए, व्यक्ति के संस्कार उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जिस तरह के कर्मों का जीवन पर प्रभाव होता है उसी के संस्कार भोगने के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। वास्तविक गुरु, सद्गुरु जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों और संस्कारों के बाद मिलते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 23 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणपति मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और अब वक्त हो चला है आज की गुडलक राशि के बारे में जान लेने का। जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में क्या करें। आज की गुडलक राशि है कन्या, इनको पूजा में शंख जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से इनका स्वास्थ्य और इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर, और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर। जानेंगे पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है जिसका पालन करने से लोगों के जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि कभी मुकदमे जेल की नौबत ना आए इसके लिए क्या करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार को मांस मदिरा प्याज लहसुन ना खाएं, और मंगलवार के शाम को गुड़ या हलवा पूड़ी का दान करें, अच्छा रहेगा।
1: तो पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेशोत्सव पर बप्पा के पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक रूप भी पंडालों में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में बप्पा के दिव्य दरबारों में तकनीक पर भी फोकस किया जा रहा है, जो नई पीढ़ी को इस उत्सव से जोड़ने का एक अच्छी प्रयास जरूर हम इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ गणपति के ऐसे दरबार भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों के लिए भी सामाजिक संदेश।
7: राजमान है, भक्त पंडालों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव से जुड़ी खूबसूरत तस्वीर के बीच आम से लेकर खास हर कोई गणपति के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा का दरबार हो या फिर अंधेरी के राजा का दिव्य पंडाल, भक्तों के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति ने इस बार अंधेरीचा राजा का दिव्य दरबार अयोध्या के भव्य राम मंदिर के थीम पर सजाया है। बाहर से लेकर अंदर तक राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है।
8: उपनगर मुंबई का बहुचर्चित पंडाल अंधेरी के राजा का दरबार इस बार श्री राम के मूर्ति के साथ सजा हुआ है। अयोध्या की थीम रखी गई है। सबसे पहले आप खुद भी गणपति बप्पा का दर्शन करें, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं जैसे कि आपको ही देख रही हूं, और देखकर ये कह रही हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, अब सारा का सारा आपका जो समस्या है परेशानी खत्म कर दी जाएगी। ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें, अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
9: मैं बोल रही हूँ कि एक सेकंड के लिए लगा मैं अयोध्या में ही स्वयं खड़ी हूँ, और क्या भव्य श्रृंगार है गणपति जी का, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, आई मीन रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया आपने सच में।
10: इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा, सेटअप इतना अच्छा है, इतना ग्रैंड है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट टाइप पर बुलाया कि पहले जैसे बप्पा ने ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है।
8: आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं।
7: अंधेरी का राजा की टीम ने अयोध्या जाकर बकायदा सभी बारीकियों का अध्ययन कर वहाँ की कमेटी से मंजूरी लेकर इस थीम पर काम किया है।
11: पर्सनली वहाँ पर गए, पूरा डिजाइन, एक एक जो डिजाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिजाइन, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डन जो कलर है वहाँ पर व्हाइट में है, तो ये फर्क है। इंटीरियर अगर इंटीरियर देखें तो पूरा एक फाइबर का बना हुआ है, 50 साल इसका लाइफ है, इसको फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग जो इवेंट रहते हैं इसको यूज कर लेते हैं, इसको रीयूजेबल है, तो ये हम लोग एनवायरमेंटल को भी ख्याल में रखा हुआ है, और ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज़ है, तो उसको कम से कम 4 से 5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा, और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टभंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था।
7: इस उत्सव समिति ने अपने पंडाल, बप्पा की प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। बप्पा की भक्ति में इस बार परंपरा के रंग के साथ आधुनिक तकनीक की चमक भी नजर आ रही है। कहीं पारंपरिक सजावट और शास्त्रीय विधि विधान आकर्षण का केंद्र है, तो कहीं लेजर शो, एलईडी स्क्रीन, डिजिटल लाइटिंग और तकनीकी साउंड इफेक्ट्स उत्सव को नया आयाम दे रहे हैं। घाटकोपर के भटवाडीचा राजा के दरबार में तकनीक का समावेश दिख रहा है। यहाँ गणेशोत्सव के इतिहास से लेकर सुरक्षित भविष्य, विकसित भारत जैसी कहानी एलईडी के जरिए दिखाई जाती है। यहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में योगदान फायदेमंद है या उसका नुकसान, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी गणेशोत्सव में अब आस्था के साथ इनोवेशन भी दिखाई दे रहा है। तकनीक का ये मेल उत्सव को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक माध्यम बन रहा है।
8: देश की तरक्की में एआई की कितनी ज्यादा मदद है, एआई कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। जैसे कि किस तरीके से एआई के हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में एआई कितने अंदर तक, डीप तक जा चुकी है, और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी एआई की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, एआई सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। एआई ही क्यों इस बार?
4: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने एआई कैसा यूज करना है, एआई के फायदे क्या है, एआई अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग एआई कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है। साथ ही ये डेकोरेशन के साथ हमने एआई के जो वर्कशॉप्स रखे हैं ताकि सोसाइटी के लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, वो एआई का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं।
7: भटवाड़ीचा राजा के गणपति कागज के बनाए गए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षण तो है ही, पूरी तरह इको फ्रेंडली है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पिछले कुछ वर्ष से कागज के ही गणपति बनाए जाते हैं। ये तस्वीरें पुणे के हिजवड़ी इलाके की हैं, जिसे आईटी हब कहा जाता है, लेकिन खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम यहाँ एक बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ विराजे बप्पा के सामने समस्या को दिखाने की कोशिश की गई है। सड़क पर ट्रैफिक है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन जाम लगने से लोग परेशान हैं। सब कुछ इतनी बारीकी से तैयार किया गया है जो ये आभास करा रहा है कि ये वास्तविक दृश्य है। इसमें ट्रैफिक के बीच सायरन बजाती एम्बुलेंस भी दिखाई देती है, जिसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और इसी में छुपी है वो असली कहानी जिसे यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है।
12: मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल पंडाल नहीं, घरगुती पंडाल है। ट्रैफिक जाम का जो प्रॉब्लम है पुणे का, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते कि पूरा मतलब रियलिटी की तरह इन्होंने एक गणपति बप्पा के आगे जो पंडाल किया है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एम्बुलेंस हो या फिर अलग अलग गाड़ियां हो या फिर मिक्सर सीमेंट हो, इसकी वजह से कितना जाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुलेंस है और उसमें एक औरत है और ये अटकी हुई है, और इसी से ताल्लुकात ये जो घरगुती गणपति का देखा हुआ है उससे हमारे साथ गणेश भक्त है, उनसे बात करेंगे। सर, एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम है, क्या ताल्लुकात है ये सब?
13: ये एम्बुलेंस के पीछे मेरी पर्सनल कहानी है। 1 जनवरी 2026 को इसी रास्ते पे मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था अस्पताल में, उनको हार्ट अटैक आया था, पर वो एम्बुलेंस ऐसी अटकी कि मेरी मम्मी ने आखिरी सांस वहीं पे ली। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा, पर किसी ने रास्ता नहीं दिया। तो मैं समाज तक एक संदेशा पहुंचाना चाहता था कि ऐसी परिस्थिति और किसी को ना आए। तो मैं कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था कि प्रशासन इसके लिए कुछ करे, तो अब हम प्रशासन भी हमारे लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं और हम ट्रैफिक का पालन करें। अगर एम्बुलेंस को रास्ता देने लगे तो हम एक दूसरे के लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं।
12: ये पूरा ट्रैफिक का जो माहौल है वो किसी को दिखाना चाहिए, और ट्रैफिक की वजह से किसी और की मौत ना हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का घरगुती गणपति का देखावा जो है वो बनाया है।
7: जाम की वजह से अपनी मां को खोने वाले आईटी इंजीनियर रवि चौहान ने उस दर्द को गणेशोत्सव के रंगों में पिरोया है, ताकि पुणे की समस्या पर शासन प्रशासन का ध्यान जाए और भविष्य में उनकी तरह किसी और को अपनों को ना खोना पड़े। बापा के दरबार में सबसे गहरी रोशनी उस उम्मीद की होती है जो दर्द के बीच भी भक्त के मन में प्रज्वलित है। साफ है कि गणेशोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, अभिव्यक्ति भी है, और आंखों में छिपे दर्द के जरिए रवि चौहान ने इसे ही बप्पा के सामने व्यक्त किया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पुणे से श्री कृष्ण पंचाल के साथ रिपोर्ट कुल न्यूज टुडे।
6: अब बात करते हैं एक कुशल और कौशल ट्रेनिंग की। गुरुग्राम में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर युवा न सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकते हैं। बदलाव के दौर में तकनीक पर कमांड जरूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूट में जापानीज तकनीक का खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है।

0: ये तस्वीर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलाव को दिखा रही है, जहां मशीनों के साथ साथ उन्हें चलाने वाले भी स्मार्ट हो रहे हैं। तकनीक के इस दौर में इस इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो। इसी के चलते भारत और जापान के सहयोग और युवाओं को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में इस जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकों पर खास फोकस किया जा रहा है।
1: टेक्नोलॉजी जिस तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है, उसका असर पढ़ाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जो है वो देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तक जो है टेक्नोलॉजी अब नहीं रही है सिर्फ मशीनों पर ही जो लोग हैं वो काम करते हुए जो है आपको नजर आए, बल्कि उसके अलावा एआई का सबसे बड़ा रोल जो है अब देखा जा रहा है। उसके साथ ऑटोमेशन की बात करें हम, रोबोटिक्स की बात करें या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी के साथ जो दायरा है टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में युवाओं को भी अब इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ जो है काम करने का जो है एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। क्लासरूम जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो बच्चों को देखने को मिल रहा है, और पेड इंटर्नशिप इनके लिए खासतौर पर रखी जाती है कि 7 मंथ्स की इनको पेड इंटर्नशिप दी जाती है, 5 मंथ्स के इनका जो है थ्योरी क्लासरूम स्टडी होती है, ताकि दोनों ही जो है बच्चे पढ़ सके समझ सके।
0: इस पहल का मकसद युवाओं को ऐसी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स देना है जिनकी जरूरत मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। यहाँ स्टूडेंट्स को मिनी व्हीकल असेंबली लाइन, इंजन असेंबली लाइन, वेल्डिंग और पेंटिंग सिमुलेटर्स, रोबोटिक इनेबल सिस्टम और बॉडी रिपेयर जैसी सुविधाओं के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
2: जिन बच्चों को आप स्किल कर रहे हैं वो फिर 10, 20, 30, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे ना ट्रेन करके आज और कल की टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करें। जो इक्विपमेंट आप यहाँ पर देखेंगे इस स्किलिंग इंस्टीट्यूट में, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप मारुति सुजुकी के कार मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पाएंगे। जैसे ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, रोबोटिक आर्म हो गई, CNC मशीन्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, ये पेंट शॉप बूथ है मॉडर्न, तो ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट पे।
0: ट्रेनिंग में जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स पर जोर दिया जाता है, साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाता है।
3: सबसे पहले हमें इसी चीज के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, और हमारी ड्रेसिंग कोड वगैरह, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारी वो डेवलप करी जाती है। मैम बोला जाए तो कम्प्लीटली फ़ायदा मिल रहा है। मैम जब हम OGT के लिए गए तो मैम वहाँ भी कोई चीज़ हमें नई अनजानी नहीं लगी, क्योंकि हमें पहले से ही 5S और 3S, 3R और 3K वगैरह सभी के चीज़ों के बारे में, जापानीज वर्ल्ड के बारे में सभी के बारे में बता दिया गया था। और जैसे मैम एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल वगैरह के बारे में हमें यहाँ पहले से एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाती है मैडम।
0: एक खास बात यह है कि अब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लड़कियां भी दिलचस्पी दिखा रही है, यही वजह है कि वो भी यहां पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग लेती नजर आ रही है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रही है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
4: सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
1: कितना अच्छा लग रहा है कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं जापानी टेक्नोलॉजी जो है वो सीख पा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की होकर और ये सब बहुत आसानी से सीख रही हूँ, और सब सपोर्ट से मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है।
0: साफ है कि टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। गुरुग्राम के पटौदी से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कहते हैं बचपन के दोस्त और स्कूल की यादें कभी भुलाई नहीं जाती। आगरा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां करीब 55 साल बाद पुराने दोस्त फिर उसी स्कूल में पहुंचे जहां कभी छठी क्लास में वो साथ पढ़ा करते थे। खास बात इसमें यह रही कि इस मुलाकात में उम्र का असर कहीं नजर नहीं आया। कोई स्कूल ड्रेस में पहुंचा तो किसी ने बच्चों की तरह मस्ती की और पुराने किस्से दोहराए। इन दोस्तों की यह मुलाकात करीब 7 साल पुरानी एक वीडियो की वजह से हुई जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
7: 50 साल बाद जब हम सभी पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिले तो दिल में एक ख्वाहिश जागी, क्यों ना उन सुनहरे पलों को फिर से जिया जाए।
8: सफेद कमीज, काली पैंट और गले में पानी की बोतल, बिल्कुल छठी क्लास के बच्चों की तरह ये दोस्त अपने पुराने स्कूल पहुंचे और फिर शुरू हुआ बचपन को दोबारा जीने का सिलसिला।
7: पुराने खेल खेले, पुरानी शरारतों को याद किया और बचपन की यादों को फिर से जी लिया।
8: किसी ने स्कूल के गेट से दौड़ते हुए एंट्री की तो कोई दोस्तों के साथ नाचते गाते क्लासरूम तक पहुंचा। क्लासरूम में पहुंचकर कोई बेंच पर बैठा तो किसी ने पुराने दिनों वाली शरारतें शुरू कर दी। आगरा के एक स्कूल में 55 साल बाद जब पुराने दोस्त फिर से मिले तो उम्र का फासला जैसे पल भर में मिट गया। कभी इसी स्कूल में छठी क्लास के बच्चे रहे, ये बुजुर्ग उसी अंदाज में लौटे और फिर 55 साल पुराने वो दिन एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे।
9: ये वीडियो जो हमने उसी स्कूल में जाके, उसी राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में जाकर शूट किया था, तो हमने उस वीडियो में ये दिखाया है कि हम जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो साथ में पढ़ते थे, वो फीलिंग आए, इसलिए हम लोगों ने बैग और बोतल वगैरह हाथ में ली हुई है। तो हम सब दोस्त जो हैं, हम आगरा में जो जितने भी हम लोगों का जो है जो मुलाकात हुई, सब दोस्त जो इकट्ठे हुए, वो आगरा के जितने भी साथी थे वहां जाकर उन सब लोगों ने प्ले किया।
8: किसी ने पुराने किस्से सुनाए तो किसी ने अपने साथियों की शरारतें याद की, चेहरे पर वही मुस्कान, बस वक्त काफी आगे निकल चुका है। 55 साल बाद हुई इस मुलाकात में दोस्ती की वो डोर फिर मजबूत हुई।
9: आज से 8-10 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, दोस्त एक दूसरे के जो परिचित थे वो बताते चले गए और हम लोग जुड़ते चले गए। बाहर के भी बहुत से दोस्त जुड़े हमसे, आगरा के भी जुड़े। आगरा में काफी स्टूडेंट हमारे साथ के मित्र थे, वो जुड़ गए, तो ग्रुप जो हमारा बन गया, हम लोग सब इकट्ठे हो गए। फिर जब इकट्ठे हो गए तो मन में आया कि एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना अपने कॉलेज, उसी कॉलेज में जाकर वीडियो बनाए।
8: स्कूल के उन्हीं गलियारों में लौटकर इन दोस्तों ने सिर्फ खेल और मस्ती नहीं की बल्कि 55 साल पुराने रिश्तों को भी फिर से महसूस किया। वक्त बदला, जिंदगी बदली, लेकिन दोस्तों के बीच का अपनापन आज भी वैसा ही है।
9: जितने भी दोस्त हैं हम लोग जो व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आगरा में जितने भी दोस्त हैं, हम एक दूसरे से बहुत काफ़ी एक नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं हमारे, खूब एंजॉय करते हैं।
8: असल में इस पुरानी कहानी के पीछे करीब 7 साल पुराना एक वीडियो है। आगरा के राकेश नागर और उनके दोस्तों ने 2019 में अपने YouTube चैनल के लिए ये वीडियो बनाया था जिसे उस वक्त 1500 व्यूज मिले थे, लेकिन हाल ही में नए तरीके से इस वीडियो के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट हुए और देखते ही देखते वायरल हो गए।
9: ये वीडियो हमने वैसे 5-6 साल पहले बनाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं थी यूट्यूब पे। अब जो है 4-5 दिन पहले उसका थोड़ा सा पार्ट लेके हमने वीडियो बनाई, वो लोगों ने बहुत पसंद करी, बहुत प्यार दिया हमको और इतनी वायरल हो गई कि बस पूछो मत।
8: वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मुलाकात को खूब पसंद किया। किसी ने इसे बचपन की यादों में लौटने का वो खूबसूरत पल बताया तो किसी ने 55 साल बाद दोस्तों को एक साथ देखकर अपनी पुरानी स्कूल की यादें साझा की।
9: ये एक सपना सा लगता है और मैं समझता हूँ ये हम लोग बहुत खुश नसीब है जो हमारे संग ये हुआ, क्योंकि इतने साल बाद मिलना 55 साल बाद, लगभग 55 साल बाद हम लोग टकराए वालिया, तो 55 साल बाद हम टकराए और वो आज इकट्ठे हैं और वही दिन जो हम याद करते हैं तो लगता ही है क्या वास्तव हमारे संग हो रहा है।
8: 55 साल बाद मिले इन दोस्तों ने दिखा दिया कि वक्त बीत सकता है लेकिन दोस्ती की यादें कभी पुरानी नहीं होती। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट
12: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बस नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश हर दिन गुजरने के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाती चली गई और अब कामयाबी का एक नया शिखर इस फिल्म ने छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 350 करोड़ की धुआंधार कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

0: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: ये कहानी है उसी विश्वास की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ही ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 350 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। अपनी रिलीज के 46 दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई 352 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ को पार कर चुका है। बात अगर ओवरसीज कलेक्शन की जाए तो फिल्म ने देश के बाहर अभी तक 26.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से हनुमान अंश का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 352 करोड़ को पार कर चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का ना तो भव्य प्रमोशन हुआ और ना ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खैर खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्ते तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: ये फिल्म की एक जो सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो फर्स्ट 2 हफ्ते ये फिल्म आई और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई है। सडनली जब बड़ी फिल्में बंटवारा, आवारापन 2, ये सारी फिल्मों के बीच में, इवन टॉक्सिक, यश की टॉक्सिक आई थी और उसके बीच में हनुमान अंश ने अपना कमाल किया। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, उसका मैजिक हुआ। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और ये कहने लगे कि ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन, जो एक फिल्म की क्वालिटी है वो इतनी सुपर्ब थी। उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन, और सबसे बड़ी जो बात है, नीम करोली बाबा की जो कहानी है वो शायद हमने आज तक सिर्फ सुनी थी, उसे सिनेमा में पहली बार दिखाया गया। और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच आते हुए भी हनुमान अंश ने 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे, वहीं हनुमान अंश जैसी एक छोटे बजट की फिल्म इस तरीके की एक मैजिक क्रिएट करती है। और जो डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने काफी बार ये कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि ये फिल्म की जो फेट है ये पहले से लिखी हुई थी, कि 10 दिनों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और सडनली जो दूसरे हफ्ते के एंड से स्क्रीन्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ 20 स्क्रीन्स उनके पास बची थी और उसके बाद हजारों में स्क्रीन्स बढ़ाई गई, बहुत सारे थिएटर्स में ऑडियंसेस के डिमांड पे स्क्रीन्स बढ़ी।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की इस सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he tells अर्जुना दैट कर्मण्येवाधिक रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वो थी कि लाखों करोड़ लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे, ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। So we're thinking of inflatable theaters later on, कि भाई ऐसे theatrical end खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के ideas हम सोच रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा probably the business and then the whole thing is probably not my cup of tea and not my मेरी understanding से भी बाहर है।
1: हनुमान अंश अपनी रिलीज का 7वां हफ्ता बीते 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्रॉस फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है और 352 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम बार बार और लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 350 करोड़ की कमाई के इस सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछला वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 7वां वीकेंड था और 7वें वीकेंड में हनुमान अंश ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म रिलीज के 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया है जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।

0: हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी सूत्र से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 352 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाएंगे। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ 350 करोड़ रुपए और अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 350 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 17,500। यह अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली फिल्मों की लिस्ट में जहां इस लिस्ट में 17,500% के मुनाफे के साथ हनुमान अंश पहले नंबर पर है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में लगभग 3 गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो 4th नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है।
1: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड ही वाज द वन हु वाज टेलिंग अस दैट लिसन, आई मीन वी कैन यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से इतना आ सकता है, लैंग्वेज में इतना आ सकता है। सो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जो भाव और श्रद्धा से ये फिल्म स्टार्ट करी गई है और जिस ढंग से हम लोग एक एक करके, जैसे लग रहा था कि बाबा पिक एंड चूज कर रहे थे हम लोगों को और मिला रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को पता नहीं क्यों चिंता नहीं हुई कभी।
0: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट पे बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
2: बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये और सारे ही लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्तिभाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतोषी माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया।
0: बताने की हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने 2025 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म लालो देखी थी। लालो एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट लगभग 50 लाख रुपए का था, लेकिन लालो ने करीब 125 करोड़ का बिजनेस किया था। हनुमान अंश के मेकर्स ने ये माना है कि फिल्म वालों की रिपोर्ट देखने के बाद उनके मन में ऐसी ही कामयाबी दोहराने की उम्मीद जगी थी।
1: हम लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई कि शायद वो फिल्म रीजनल थी, गुजराती में थी, उसका नाम था लालो। सो हम लोग ने जब फिल्म बना ली थी उसके बाद हम लोग ये फिल्म देखने गए थे लालो, एज अ यूनिट हम लोग गए थे। और कहीं पर मैंने विशाल से आते हुए कहा था, मैंने कहा विशाल क्या पता ये फिल्म भी हमारी इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि लालो ने भी 50 लाख में फिल्म कंप्लीट की थी लालो के प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद वो फिल्म, उस फिल्म ने भी 200 से 250 करोड़ का बिजनेस किया था। सो वो भी एक हम लोग के लिए एक तौर पर एक रोल मॉडल बनी वो फिल्म, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को उस फिल्म से अपनी फिल्म में लगी कि हमारी फिल्म में भी ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो ये मैं कहूँगी तो ये झूठ होगा कि हम लोगों को 200 और 250 की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये लगा कि अगर ये फिल्म चल गई तो ये लालो भी हो सकता।
0: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। ऐसे में हो सकता है कि हनुमान अंश अभी कमाई और कामयाबी के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कामयाबी के सुनामी के बीच ही सियासी गलियारों में भी हनुमान अंश फिल्म की धूम है। अब तक कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, कई नेता फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर को फिल्म की टीम से नई दिल्ली में मुलाकात की और फिल्म की शानदार कामयाबी पर टीम को बधाई दी। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर समेत बाकी टीम मेंबर्स भी नजर आए। इससे पहले हनुमान अंश की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। फिल्म की इसी शानदार कामयाबी के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो भी पहुंची, जहां पर मैंने उनसे खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमान अंश की प्रोड्यूसर ने फिल्म की कामयाबी पर क्या कुछ कहा। आप जब छोटी थी तब आप खुद नीब करौरी बाबा से मिल चुकी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो मूवी बनी है और जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप कितनी छोटी थी, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जाती थी?
1: 6 और 7 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स थे मुझसे बड़े थे सब लोग, उनको भी बहुत क्लियरली बाबा की याद है, मगर मुझे भी इतना छोटे होने के बावजूद मुझे कम्बल वाले बाबा ये अब तक बहुत बहुत साफ याद है। और कैसे वो प्रसाद देते थे, कैसे वो बच्चों के साथ पे बहुत ही स्नेह से पेश आते थे, और हम सब लोगों को एक बहुत प्यारी सी याद है बाबा की। और वही बाबा का जो सेवा भाव था, वही जो प्यार था, वो जो एक यू नो प्रसाद देने का वो था, और जो उनको भूखों को जैसे कहते थे भोजन कराना, उनके ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों के एक कहीं पर याद में रह गए हैं। क्योंकि वो प्रसाद जो होता था वो हम लोग जब सब लोग एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार जाते थे, और जब कम्बल वाले बाबा हम लोग को प्रसाद देते थे तो सब लोग बहुत खुश जाते थे कि अब तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हम लोगों के। तो मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स तो वहीं से तय हो गए थे।
3: और जब विशाल ने आपको आशीर्वाद बाबा का तब से ही मिला हुआ है पूरे परिवार को,
1: आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि वो प्रसाद ही कहीं पर जब विशाल मुझे सुना रहे थे, और मैंने विशाल से कहा विशाल डू यू नो दैट आई एम मेट हिम, और विशाल के लिए नो, आई सर यस आई मेट हर. तो वो सबसे बड़ी एक बात थी जो हम दोनों को ये बात.
3: तो इस पूरे मूवी के दौरान, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स आपने पैसे लगाए, लेकिन इस मूवी के दौरान चूंकि आपका खुद एक पर्सनल लगाव, एक टच रहा है, आप जानती रही हैं उनको, तो आपने ये थ्रू आउट कोशिश की इस बात को देखने और जानने की कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए मूवी, कहीं भी जैसे वो थे वैसा ना दिखे पर्दे पर, ऐसा ना हो, वो जैसे थे एक्चुअली वो वैसे दिखने चाहिए, कहानी बिल्कुल वही हो.
1: सो विशाल ने जब हम लोग को कहानी सुनाई थी और सीन बाय सीन सुनाई थी, उस वक्त जब वो सुना रहे थे कहानी तो भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं कहते थे विशाल तुमने कैसे लिखी है ये कहानी. तो मैं कहूंगी जो एक परसेप्शन था, जो एक विजन था विशाल का, वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे निर्देशक होते हैं जिनको कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी एक. विशाल वैसे भी बहुत ही स्पिरिचुअल खुद भी हैं और बहुत ही वो भी मानने वालों में से हैं. सो हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है इस प्रोजेक्ट को तो सिर्फ विशाल कर सकते हैं, और हम लोगों ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी.
3: पहली बार मैंने खुद ऐसी फिल्म देखी है जब प्रचार उस तरह का नहीं था. प्रचार था भंडारा, प्रचार था मंदिरों में जाना, प्रचार था संतों से मिलना. ये स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब ये सोच कैसे आई?
1: ये सोच थी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सब होता चला गया, बिकॉज पैसे तो हम लोग के पास वाकई में नहीं थे प्रचार के, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस फिल्म में कोई भी प्रचार ऐसा होता तो शायद ये फिल्म इससे बड़ी हो गई होती. मगर हम लोगों ने जो नहीं किया प्रचार, वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म को जिसने चलाया है वो दर्शक हैं, उन्होंने चलाया है और उनके जो रिएक्शन है उन्होंने चलाया है, और इस फिल्म की जो सादगी और जो जो सहजता थी उसने चलाया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नहीं थे पैसे खर्च करने के लिए, जो कि नॉर्मली फिल्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जितना फिल्म का बजट होता है उतना ही शायद पब्लिसिटी का भी बजट होता है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फिल्म में. मगर जिस तरीके से ये फिल्म चली है वो दर्शकों ने चलाई है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म जो है वो कुछ ऐसा लेकर के आई, दर्शकों का एक ऐसा इमोशन लेकर के आई कि उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग जाइए फिल्म देखने के लिए, और लोग गए फिल्म देखने के लिए. मगर एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो टीम थी, विशाल और उनकी एक मतलब एक छोटी सी टीम है मगर बहुत ही मेहनती टीम है, और वो लोग निकल गए थे जब हमारी फिल्म थोड़ा सा कहीं पर ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो लोग निकल गए थे अपने एक ट्रिप पर, और वो हर जगह पे गए और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी गुजरात से, सूरत और सब जगहों पर जाकर के उन्होंने, जब थिएटर्स में गए वो उन मंदिरों में गए जहाँ पर कि जाकर के उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कहीं पर बाबा से प्रार्थना करी होगी, और वो सब उन्होंने सुनी और खुद उतर आए बाबा इस फिल्म को चलाने के लिए. और उन्हीं का चमत्कार है जो कि आज फिल्म इतना सुंदर बिजनेस कर रही है. मगर हम लोगों को
3: और एक और बात अभी मतलब सुनने में ये आया था कि शायद, जो कि शायद आपने डिनाय भी कर दिया है, कि लगभग 100 करोड़ के आसपास कुछ नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मामला था.
1: I will still deny that.
3: ऐसा है, लेकिन भारी भरकम कुछ आ रहा है आप लोगों के पास?
1: नहीं, कुछ ऐसा हम लोग
3: बहुत बड़ी डील की बात वो कर रहे हैं.
1: जो आप भारी भरकम की बात करिए, तो हम लोग ने, विशाल और हम सब प्रोड्यूसर जब बात करते हैं तो हम लोगों को वो भारी भरकम दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी. मगर हाँ, हमारे पास ऑफिस है और हम लोग जब अभी थोड़े से और दिन का टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिल्म चल रही है उस हिसाब से विशाल का कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म थिएटर में जाने के हिसाब से, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि 100 करोड़ लोग जब, सॉरी 1 करोड़ लोग जब इस फिल्म को देख लेंगे तो हम लोग के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे कि हम लोग नंबर्स गिने, फाइनेंस गिने और इस तरीके की.
3: फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म की को प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अयोध्या पहुंची. उन्होंने हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म की सफलता को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ते हुए अपने अयोध्या दौरे को बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अप्रैल में हनुमान गढ़ी और राम मंदिर आई थी. उस समय हनुमान अंश फिल्म पर काम चल रहा था और वो चाहती थी कि फिल्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें.
4: मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले, और आज मैं वापस आई हूँ जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुंचे हैं।
3: इससे पहले फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बागेश्वर धाम भी पहुंची थी। दरअसल एक वक्त जब फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर यह छलांग लगाई थी। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया नागर हाल ही में दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची। अनुप्रिया के मुताबिक एक समय उनके फिल्म हनुमान अंश का प्रदर्शन काफी गिर गया था। फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर केवल 30 स्क्रीन पर आ गई थी। उस समय उन्होंने बागेश्वर महाराज से मुलाकात की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू बोलने, उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुँचाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनके पंडाल श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं महाराष्ट्र, और खासकर अगर हम देखें मुंबई के पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी बप्पा के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहा के पंडाल में पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त जैसे सितारों ने हाजिरी लगाई। आज आपको गणपति के इस सबसे लोकप्रिय पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के दूसरे अनोखे पंडालों के दर्शन भी आपको आज कराने जा रहे हैं। उस पंडाल में भी आपको लिए चलेंगे जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिल्कुल बनाया गया है। आखिर में हम बात करेंगे गणपति के विवाह की। भिलाई में तमिल समुदाय के लोगों ने धूमधाम से रिद्धि सिद्धि संग गणपति का विवाह संपन्न किया। क्या है ये धार्मिक परंपरा, आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां गणपति उत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शुमार हैं। पहले शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लालबाग चौराहा के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसके बाद संजय दत्त, चंकी पांडे और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने बप्पा के चरणों में सिर झुकाया। रिपोर्ट देखिए।

साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए आते हैं पप्पा, सुख समृद्धि धन धान्य संग रोशनी लाते हैं पप्पा। इसीलिए तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो नामचीन है जो सितारों की तरह सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं। लाल बागचा राजा को देखने पूजने और उन्हें अपनी मनोकामना बताने अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे। दोनों ने बप्पा के चरणों पर सर झुकाया। संजय दत्त ने आशीर्वाद के तौर पर बप्पा के चरणों का सिंदूर

फैन से मिलते, उनका अभिवादन स्वीकार करते। संजय दत्त सभी से मुस्कुरा कर मिले। इसी तरह अभिनेता चंकी पांडे अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे, बप्पा के चरणों में प्रणाम किया और चढ़ावा अर्पित किया। और हाँ, बेटी अनन्या के साथ सेल्फी लेना नहीं भूले। गणपति के इस पंडाल में जहाँ लाखों लोग रोजाना श्रद्धा से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं जानी मानी हस्तियां भी पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं। सोमवार की रात बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान लालबाग चा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लालबाग चा राजा के दरबार में पूजा की। शाहरुख ने बापा के चरणों में मत्था टेका और बप्पा से आशीर्वाद लिया और मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा अर्पित की। परिवार को पहले पुरोहित ने माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद मैनेजर पूजा ददलानी ने भी उनके माथे पर तिलक लगाया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते और उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। संयोग है कि शाहरुख के बंगले का नाम भी मन्नत है और लालबाग चा राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ये श्रद्धा ही है कि शाहरुख खान मुंबई के इस सबसे मशहूर गणपति पंडाल में हाजिरी लगाना नहीं भूलते।

0: साल 2023 में शाहरुख खान अपने बेटे अब्राम के साथ लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बप्पा के चरणों में नारियल मिठाइयां अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। साल 2024 में भी शाहरुख खान अब्राम के साथ ही विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल 2025 में शाहरुख खान गणेशोत्सव के दौरान शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे, लेकिन इस साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दरबार में पहुंचे। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी गणपति की स्थापना होती है और परिवार करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की डेढ़ दिन की आराधना करता है। ये गणपति के प्रति शाहरुख की आस्था की एक और तस्वीर है। मंगलवार को शाहरुख टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे और वहां स्थापित गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और माथे पर तिलक लगाया। संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां गणपति के पंडाल में माथा टेक चुकी हैं। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई के पंडालों की भव्यता देखने लायक है। कहीं पूरा पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है, तो कहीं पर पंडाल में भगवान कृष्ण की लीला नजर आती है, कहीं बप्पा को भगवान शिव के अवतार के रूप में सजाया गया है, तो कहीं पर गणपति महाराजा के अवतार में नजर आते हैं। जैसी भावना वैसी भक्ति, और इसी हिसाब से गणपति को अलग अलग अंदाज दिया गया है। चलिए आपको मुंबई के जाने माने पंडालों के दर्शन करवाते हैं, जहां की रौनक देखकर आप दंग रह जाएंगे।

मन मोह लेते हैं मंगल मूर्ति। विशाल देह, भव्य चेहरा और बोलती हुई आंखें, जैसे स्नेह बरसा रही हूं। बप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला है और ढोलक की थाप पर जयदेव जयदेव की पुकार है। यूं तो मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं, लेकिन इनमें भी अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चा महाराज की चर्चा खूब होती है और इसकी वजह है इनका भव्य पंडाल। राजमहल जैसे पंडाल में बप्पा की प्रतिमा महाराजा के अनुरूप

0: की है। हाँ, खास बात यह है कि पंडाल को भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं ना कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से, बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं।
2: सर, में हम लोग का ये प्लान था कि गए टाइम में शिवाजी महाराज का बताया था, तो बोले टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर जो लीला उनकी, तो उस तरीके से हम लोग ये अरेंज किया हुआ है।
0: अंधेरी के बाद चलिए आपको सांता क्रूज इलाके के गणपति के दर्शन कराते हैं। सर पर जटा और जटाओं में गंगा। गले में सर्प और रुद्राक्ष और कमर में मृगछाल। बताने की जरूरत नहीं कि बप्पा को शिवजी के अवतार में स्थापित किया गया है।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहाँ पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहाँ के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है, ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। भीतर की तरफ गणपति बप्पा शिवजी के अवतार में हैं, इसलिए सबसे पहले लोग शिवजी का ही दर्शन करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री गणेश के पिता हैं। फिर से एक बार भीतर की तरफ चलते हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय इस पंडाल से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, कितना साल मना रहे हैं इस बार और गणपति इस बार आपने शिवजी के रूप में लाया क्यों?
3: ये हमारा 44 वर्ष पूरा हो गया इस साल। हमारी स्थापना 1983 में हुई थी और ये सार्वजनिक गणेशो मंडल गौठन लेन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि गौठन एक ये ऐसी एक हमारी जो सांताक्रूज में गौठन है जिसमें गणपति लाया जाता है, बाकी का और किधर कोई गौठन में गणपति नहीं लाते। और हमारे इधर एक खास बात यह है कि गौठन के अंदर हमारे जो रहवासी है यहाँ पे जो 80% लगभग कैथलिक समाज के हैं और ये बस 2 मिनट की दूरी पर हमारे इधर बुरी समाज है, मस्जिद है हमारे इधर, जो बाकी दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी हमको बहुत सहयोग मिलता है।
4: यहाँ के कार्यकर्ते बहुत लगाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं।
0: गणपति की प्रतिमा को अलग ढंग, अलग रंग और अलग अंदाज में बनाया और स्थापित किया जाता है। कहीं तो बप्पा परंपरा से जुड़ते हैं तो कहीं विज्ञान से। उपनगर मुंबई के भटवाड़ी के राजा को ही देख लीजिए, जहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम बनाया गया है और इसके जरिए इस तकनीक के फायदे और नुकसान समझाने की कोशिश है।
5: जेवा इंटरनेट नव्हतं, जेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द ही जन्माला आला नव्हता।
0: जितना खास ये पंडाल है उतनी ही विशेष है ये प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तरह कागज से बनाई गई है।
1: देश की तरक्की में एआई की कितनी ज्यादा मदद है, एआई कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है। खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो एआई पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से एआई की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा विज्ञान में एआई कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी एआई की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, एआई सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है। इस बार ये मंडल अपना 98वां साल मना रहा है।
6: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
1: आपसे जानने की कोशिश करते हैं एआई ही क्यों इस बार?
7: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने एआई कैसा यूज करना है, एआई के फायदे क्या है, एआई अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग एआई कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है।
0: बप्पा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी सा राजा पंडाल भी है जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दे रहा है।
1: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
0: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चार राजा के इस राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
8: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत जगाई है और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया, ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
9: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया है इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा।
0: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसे यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीने में तैयार किया गया। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है।
10: ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्ट मंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में, तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है अंधेरी का राजा का साथ, जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
0: यानी एक तरफ अयोध्या के रामलला की भक्ति भाव है तो दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश की आराधना। इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर आ रही है।
10: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ावा भी करते हैं।
11: क्या बात है, गणपति बप्पा
10: मोरिया।
11: देखिए आपको बताएं कि ऐसी एक दान पेटी खुली थी मुंबई के लालबाग के राजा में, जहां कई तरह की ऐसी भी चिट्ठियां पढ़ने को मिली जिसमें पिता ने अपने बेटे के नौकरी की बात करी थी। एक चिट्ठी ऐसी मिली जिसमें एक मां ने अपने बेटे की शादी की बात करी थी, और एक चिट्ठी एक प्रेमी द्वारा लिखी गई थी जो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ कई ऐसी चिट्ठियां भी आई जिसमें बप्पा के लिए लोगों ने धन्यवाद भी लिखा है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चमत्कार है यहां के बप्पा में, ऐसे लोगों की मान्यता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल ये विवाह तमिल समुदाय की धार्मिक परंपरा रही है। बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाइयों को गूंजने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट देखिए।

0: कुछ ऐसी वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। तो वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक एक एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं, वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित, मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: ममता की कोई सीमा नहीं होती, और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नज़ारा हर किसी की आंखें नम कर देता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और माँ बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। वंती तीस्ता नदी के तेज बहाव में जब एक नन्हा गजराज मौत से जंग लड़ रहा था, तब 5 जाबाज मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला, उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे उसकी मां तक पहुंचाया गया।
6: दिल छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है। माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। 9 बंगाल फिशमैन फोरम के 5 सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा। हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुँचे। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए। मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया। जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। जब हाथियों का झुंड अपलचंद जंगल की कांताबारी रेंज के पास नदी पार कर रहा था, उसी समय हाथी का ये बच्चा नदी की धारा में बहकर करीब 4 किलोमीटर दूर चला गया, जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ की आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रणाली।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बस नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश हर दिन गुजरने के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाती चली गई और अब कामयाबी का एक नया शिखर इस फिल्म ने छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 350 करोड़ की धुआंधार कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

0: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: ये कहानी है उसी विश्वास की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे ना माने हार जब चमत्कार ही ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 350 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। अपनी रिलीज के 46 दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई 352 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ को पार कर चुका है। बात अगर ओवरसीज कलेक्शन की जाए तो फिल्म ने देश के बाहर अभी तक 26.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से हनुमान अंश का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 352 करोड़ को पार कर चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का ना तो भव्य प्रमोशन हुआ और ना ही इसकी फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खैर खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्ते तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: ये फिल्म की एक जो सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो फर्स्ट 2 हफ्ते ये फिल्म आई और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई है। सडनली जब बड़ी फिल्में बंटवारा, आवारापन 2, ये सारी फिल्मों के बीच में, इवन टॉक्सिक, यश की टॉक्सिक आई थी और उसके बीच में हनुमान अंश ने अपना कमाल किया। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, उसका मैजिक हुआ। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और ये कहने लगे कि ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन, जो एक फिल्म की क्वालिटी है वो इतनी सुपर्ब थी। उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन, और सबसे बड़ी जो बात है, नीम करोली बाबा की जो कहानी है वो शायद हमने आज तक सिर्फ सुनी थी, उसे सिनेमा में पहली बार दिखाया गया। और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच आते हुए भी हनुमान अंश ने 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे, वहीं हनुमान अंश जैसी एक छोटी बजट की फिल्म इस तरीके की एक मैजिक क्रिएट करती है। और जो डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि ये फिल्म की जो फेट है ये पहले से लिखी हुई थी, कि 10 दिनों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और सडनली जो दूसरे हफ्ते के एंड से स्क्रीन्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ 20 स्क्रीन्स उनके पास बची थी और उसके बाद हजारों में स्क्रीन्स बढ़ाई गई, बहुत सारे थिएटर्स में ऑडियंसेस के डिमांड पे स्क्रीन्स बढ़ी।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की इस सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he tells अर्जुना दैट कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वही थी कि लाखों करोड़ों लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे। ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। सो वी थिंकिंग ऑफ इन्फ्लेटेबल थिएटर्स लेटर ऑन, कि भाई ऐसे थिएटर खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा, प्रॉब्ली द बिजनेस एंड देन द होल थिंग इज प्रॉब्ली नॉट माई कप ऑफ टी एंड नॉट माई, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है।
1: हनुमान अंश अपनी रिलीज का 7वां हफ्ता बीते बीते 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्रॉस फिल्मों ने लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है और 352 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम बार बार और लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 350 करोड़ की कमाई के इस सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछला वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 7वां वीकेंड था और 7वें वीकेंड में हनुमान अंश ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म रिलीज के 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया है जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।

0: हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी सूत्र से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 352 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाएंगे। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ 350 करोड़ रुपए और अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 350 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 17,500। यह अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली फिल्मों की लिस्ट में जहां इस लिस्ट में 17,500% के मुनाफे के साथ हनुमान अंश पहले नंबर पर है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में लगभग 3 गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो 4th नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है।
1: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रानी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड ही वॉज द वन हु वॉज टेलिंग अस दैट लिसन, आई मीन वी कैन यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से इतना आ सकता है, लैंग्वेज में इतना आ सकता है। सो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जो भाव और श्रद्धा से ये फिल्म स्टार्ट करी गई है और जिस ढंग से हम लोग एक एक करके, जैसे लग रहा था कि बाबा पिक एंड चूज कर रहे थे हम लोगों को और मिला रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को पता नहीं क्यों चिंता नहीं हुई कभी।
0: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है, उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट पे बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1,650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
2: बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये और सारे ही लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतोषी माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी, उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, इसे 100 करोड़ का बिजनेस किया।
0: बता दें कि हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने 2025 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म लालो देखी थी। लालो एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट लगभग 50 लाख रुपए का था, लेकिन लालो ने करीब 125 करोड़ का बिजनेस किया था। हनुमान अंश के मेकर्स ने ये माना है कि फिल्म वालों की रिपोर्ट देखने के बाद उनके मन में ऐसी ही कामयाबी दोहराने की उम्मीद जगी थी।
1: हम लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई कि शायद वो फिल्म रीजनल थी, गुजराती में थी, उसका नाम था लालो। सो हम लोग ने जब फिल्म बना ली थी उसके बाद हम लोग ये फिल्म देखने गए थे लालो, एज अ यूनिट हम लोग गए थे। और कहीं पर मैंने विशाल से आते हुए कहा था, मैंने कहा विशाल क्या पता ये फिल्म भी हमारी इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि लालो ने भी 50 लाख में फिल्म कंप्लीट की थी लालो के प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद वो फिल्म, उस फिल्म ने भी 200 से 250 करोड़ का बिजनेस किया था। सो वो भी एक हम लोग के लिए एक तौर पर एक रोल मॉडल बनी वो फिल्म, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को उस फिल्म से अपनी फिल्म में लगी कि हमारी फिल्म में भी ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो ये मैं कहूँगी तो ये झूठ होगा कि हम लोगों को 200 और 250 की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये लगा कि अगर ये फिल्म चल गई तो ये लालो भी हो सकता।
0: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। ऐसे में हो सकता है कि हनुमान अंश अभी कमाई और कामयाबी के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कामयाबी के सुनामी के बीच ही सियासी गलियारों में भी हनुमान अंश फिल्म की धूम है। अब तक कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, कई नेता फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर को फिल्म की टीम से नई दिल्ली में मुलाकात की और फिल्म की शानदार कामयाबी पर टीम को बधाई दी। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर समेत बाकी टीम मेंबर्स भी नजर आए। इससे पहले हनुमान अंश की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। फिल्म की इसी शानदार कामयाबी के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो भी पहुंची, जहां पर मैंने उनसे खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमान अंश की प्रोड्यूसर ने फिल्म की कामयाबी पर क्या कुछ कहा। आप जब छोटी थी तब आप खुद नीब करौरी बाबा से मिल चुकी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो मूवी बनी है और जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप कितनी छोटी थी, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जाती थी?
1: 6 और 7 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स थे मुझसे बड़े थे सब लोग, उनको भी बहुत क्लियरली बाबा की याद है, मगर मुझे भी इतना छोटे होने के बावजूद मुझे कम्बल वाले बाबा अब तक बहुत बहुत साफ याद है। और कैसे वो प्रसाद देते थे, कैसे वो बच्चों के साथ पे बहुत ही स्नेह से पेश आते थे, और हम सब लोगों को एक बहुत प्यारी सी याद है बाबा की। और वही बाबा का जो सेवा भाव था, वही जो प्यार था, वो जो एक यू नो प्रसाद देने का वो था, और जो उनको भूखों को जैसे कहते थे भोजन कराना उनके, ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों के एक कहीं पर याद में रह गए हैं। क्योंकि वो प्रसाद जो होता था वो हम लोग जब सब लोग एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार जाते थे, और जब कंबल वाले बाबा हम लोग को प्रसाद देते थे तो सब लोग बहुत खुश जाते थे कि अब तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हम लोगों के। तो मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स तो वहीं से तय हो गए थे।
3: और जब विशाल ने आपको आशीर्वाद बाबा का तब से ही मिला हुआ है पूरे परिवार को,
1: आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि वो प्रसाद ही कहीं पर जब विशाल मुझे सुना रहे थे, और मैंने विशाल से कहा विशाल डू यू नो दैट आई एम मेट हिम, और विशाल के लिए नो, आई सेड यस आई मेट हिम. तो वो सबसे बड़ी एक बात थी जो हम दोनों को ये बात.
3: तो इस पूरे मूवी के दौरान, ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स आपने पैसे लगाए, लेकिन इस मूवी के दौरान चूंकि आपका खुद एक पर्सनल लगाव, एक टच रहा है, आप जानती रही हैं उनको, तो आपने ये थ्रू आउट कोशिश की इस बात को देखने और जानने की कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए मूवी, कहीं भी जैसे वो थे वैसा ना दिखे पर्दे पर, ऐसा ना हो, वो जैसे थे एक्चुअली वो वैसे दिखने चाहिए, कहानी बिल्कुल वही हो.
1: सो विशाल ने जब हम लोग को कहानी सुनाई थी और सीन बाय सीन सुनाई थी, उस वक्त जब वो सुना रहे थे कहानी तो भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और मैं कहते थे विशाल तुमने कैसे लिखी है ये कहानी. तो मैं कहूंगी जो एक परसेप्शन था, जो एक विजन था विशाल का, वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे निर्देशक होते हैं जिनको कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी एक. विशाल वैसे भी बहुत ही स्पिरिचुअल खुद भी हैं और बहुत ही वो भी मानने वालों में से हैं. सो हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है इस प्रोजेक्ट को तो सिर्फ विशाल कर सकते हैं, और हम लोगों ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी.
3: पहली बार मैंने खुद ऐसी फिल्म देखी है जब प्रचार उस तरह का नहीं था. प्रचार था भंडारा, प्रचार था मंदिरों में जाना, प्रचार था संतों से मिलना. ये स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब ये सोच कैसे आई?
1: ये सोच थी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सब होता चला गया, बिकॉज पैसे तो हम लोग के पास वाकई में नहीं थे प्रचार के, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस फिल्म में कोई भी प्रचार ऐसा होता तो शायद ये फिल्म इससे बड़ी हो गई होती. मगर हम लोगों ने जो नहीं किया प्रचार, वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म को जिसने चलाया है वो दर्शक है, उन्होंने चलाया है, और उनके जो रिएक्शन है उन्होंने चलाया, और इस फिल्म की जो सादगी और जो जो सहजता थी उसने चलाया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नहीं थे पैसे खर्च करने के लिए, जो कि नॉर्मली फिल्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जितना फिल्म का बजट होता है उतना ही शायद पब्लिसिटी का भी बजट होता है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फिल्म में. मगर जिस तरीके से ये फिल्म चली है, वो दर्शकों ने चलाई है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म जो है वो कुछ ऐसा लेकर के आई, दर्शकों का एक ऐसा इमोशन लेकर के आई कि उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग जाइए फिल्म देखने के लिए, और लोग गए फिल्म देखने के लिए. मगर एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो टीम थी, विशाल और उनके मतलब एक छोटी सी टीम है मगर बहुत ही मेहनती टीम है, और वो लोग निकल गए थे जब हमारी फिल्म थोड़ा सा कहीं पर ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो लोग निकल गए थे अपने एक ट्रिप पर, और वो हर जगह पे गए, और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी गुजरात से, सूरत, और सब जगहों पर जाकर के उन्होंने जब थिएटर्स में गए, वो उन मंदिरों में गए जहाँ पर कि जाकर के उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कहीं पर बाबा से प्रार्थना करी होगी, और वो सब उन्होंने सुनी और खुद उतर आए बाबा इस फिल्म को चलाने के लिए. और उन्हीं का चमत्कार है जो कि आज फिल्म इतना सुंदर बिजनेस कर रही है. मगर हम लोगों को
3: और एक और बात अभी मतलब सुनने में ये आया था कि शायद, जो कि शायद आपने डिनाई भी कर दिया है, कि लगभग 100 करोड़ के आसपास कुछ नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मामला था.
1: I will still deny that.
3: ऐसा है, लेकिन भारी भरकम कुछ आ रहा है आप लोगों के पास अमाउंट,
1: कुछ ऐसा हम लोग
3: बहुत बड़ी डील की बात वो कर रहे हैं.
1: जो आपने भारी भरकम की बात करी, तो हम लोग ने विशाल और हम सब प्रोड्यूसर जब बात करते हैं तो हम लोगों को वो भारी भरकम दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी. मगर हाँ, हमारे पास ऑफिस है, और हम लोग जब अभी थोड़े से और दिन का टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिल्म चल रही है उस हिसाब से विशाल का कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म थिएटर में जाने के हिसाब से, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि 100 करोड़ लोग जब, सॉरी, 1 करोड़ लोग जब इस फिल्म को देख लेंगे तो हम लोग के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे कि हम लोग नंबर्स गिने, फाइनेंस गिने, और इस तरीके की.
3: फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म की को प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अयोध्या पहुंची. उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म की सफलता को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ते हुए अपने अयोध्या दौरे को बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अप्रैल में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर आई थी. उस समय हनुमान अंश फिल्म पर काम चल रहा था और वो चाहती थी कि फिल्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें.
4: मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले। और आज मैं वापस आई हूँ जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई, वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुंचे हैं।
3: इससे पहले फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बागेश्वर धाम भी पहुंची थी। दरअसल एक वक्त जब फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर यह छलांग लगाई थी। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया नागर हाल ही में दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची। अनुप्रिया के मुताबिक एक समय उनकी फिल्म हनुमान अंश का प्रदर्शन काफी गिर गया था। फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर केवल 30 स्क्रीन पर आ गई थी। उस समय उन्होंने बागेश्वर महाराज से मुलाकात की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू बोलने, उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुँचाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनके पंडाल श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं महाराष्ट्र, और खासकर अगर हम देखें मुंबई के पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी बप्पा के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहे के पंडाल में पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त जैसे सितारों ने हाजिरी लगाई। आज आपको गणपति के इस सबसे लोकप्रिय पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के दूसरे अनोखे पंडालों के दर्शन भी आपको आज कराने जा रहे हैं। उस पंडाल में भी आपको लिए चलेंगे जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिल्कुल बनाया गया है। आखिर में हम बात करेंगे गणपति के विवाह की। भिलाई में तमिल समुदाय के लोगों ने धूमधाम से रिद्धि सिद्धि संग गणपति का विवाह संपन्न किया। क्या है ये धार्मिक परंपरा, आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां गणपति उत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शुमार हैं। पहले शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लालबाग चौराहे के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसके बाद संजय दत्त, चंकी पांडे और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने बप्पा के चरणों में सिर झुकाया। रिपोर्ट देखिए।

साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए आते हैं पप्पा, सुख समृद्धि धन धान्य संग रोशनी लाते हैं पप्पा। इसीलिए तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो नामचीन है जो सितारों की तरह सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं। लाल बागचा राजा को देखने, पूजने और उन्हें अपनी मनोकामना बताने अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे। दोनों ने बप्पा के चरणों पर सर झुकाया। संजय दत्त ने आशीर्वाद के तौर पर बप्पा के चरणों का सिंदूर अपनी ललाट पर लगाया, साथ ही पत्नी के माथे पर तिलक लगाया। फैन से मिलते, उनका अभिवादन स्वीकार करते, संजय दत्त सभी से मुस्कुरा कर मिले। इसी तरह अभिनेता चंकी पांडे अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे, बप्पा के चरणों में प्रणाम किया और चढ़ावा अर्पित किया। और हाँ, बेटी अनन्या के साथ सेल्फी

गणपति के इस पंडाल में जहां लाखों लोग रोजाना श्रद्धा से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं जानी मानी हस्तियां भी पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं। सोमवार की रात बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान लालबागचा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पूजा की। शाहरुख ने बापा के चरणों में मत्था टेका और बप्पा से आशीर्वाद लिया और मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा अर्पित की। परिवार को पहले पुरोहित ने माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद मैनेजर पूजा ददलानी ने भी उनके माथे पर तिलक लगाया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते और उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। संयोग है कि शाहरुख के बंगले का नाम भी मन्नत है और लालबागचा राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ये श्रद्धा ही है कि शाहरुख खान मुंबई के इस सबसे मशहूर गणपति पंडाल में हाजिरी लगाना नहीं भूलते।

0: साल 2023 में शाहरुख खान अपने बेटे अब्राम के साथ लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बप्पा के चरणों में नारियल मिठाइयां अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। साल 2024 में भी शाहरुख खान अब्राम के साथ ही विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल 2025 में शाहरुख खान गणेशोत्सव के दौरान शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे, लेकिन इस साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दरबार में पहुंचे। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी गणपति की स्थापना होती है और परिवार करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की डेढ़ दिन की आराधना करता है। ये गणपति के प्रति शाहरुख की आस्था की एक और तस्वीर है। मंगलवार को शाहरुख टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे और वहां स्थापित गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और माथे पर तिलक लगाया। संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां गणपति के पंडाल में माथा टेक चुकी हैं। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई के पंडालों की भव्यता देखने लायक है। कहीं पूरा पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है तो कहीं पर पंडाल में भगवान कृष्ण की लीला नजर आती है, कहीं बप्पा को भगवान शिव के अवतार के रूप में सजाया गया है तो कहीं पर गणपति महाराजा के अवतार में नजर आते हैं। जैसी भावना वैसी भक्ति और इसी हिसाब से गणपति को अलग अलग अंदाज दिया गया है। चलिए आपको मुंबई के जाने माने पंडालों के दर्शन करवाते हैं जहाँ की रौनक देखकर आप दंग रह जाएंगे।

0: मन मोह लेते हैं मंगल मूर्ति। विशाल देह, भव्य चेहरा और बोलती हुई आंखें, जैसे स्नेह बरसा रही हूं। बप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला है और ढोलक की थाप पर जयदेव जयदेव की पुकार है। यूं तो मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं, लेकिन इनमें भी अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चौ महाराज की चर्चा खूब होती है और इसकी वजह है इनका भव्य पंडाल। राजमहल जैसे पंडाल में बप्पा की प्रतिमा महाराजा के अनुरूप ही है। हाँ, खास बात यह है कि पंडाल को भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है।

0: श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं, जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहां से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहां पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं ना कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप दे देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहां भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बाकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं।
1: सर में हम लोग को ये प्लान था कि गए टाइम में शिवाजी महाराज का बताया था, तो बोले टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर जो लीला उनकी, तो उस तरीके से हम लोग ये अरेंज किया हुआ है।
2: अंधेरी के बाद चलिए आपको सांता क्रूज इलाके के गणपति के दर्शन कराते हैं। सर पर जटा और जटाओं में गंगा, गले में सर्प और रुद्राक्ष और कमर में मृगछाल। बताने की जरूरत नहीं कि बप्पा को शिवजी के अवतार में स्थापित किया गया है।
0: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन, वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहां पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। भीतर की तरफ गणपति बप्पा शिवजी के अवतार में हैं, इसलिए सबसे पहले लोग शिवजी का ही दर्शन करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री गणेश के पिता हैं। फिर से एक बार भीतर की तरफ चलते हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय इस पंडाल से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए शुरुआत आपसे करते, कितना साल मना रहे हैं इस बार और गणपति इस बार आपने शिवजी के रूप में लाया क्यों?
3: ये हमारा 44 वर्ष पूरा हो गया इस साल। हमारी स्थापना 1983 में हुई थी और ये सार्वजनिक गणेश मंडल गौठन लेन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि गौठन एक ये ऐसी एक हमारी जो सांताक्रूज में गौठन है जिसमें गणपति लाया जाता है, बाकी का और किधर कोई गौठन में गणपति नहीं लाते। और हमारे इधर एक खास बात यह है कि गौठन के अंदर हमारे जो रहवासी है यहाँ पे जो 80% लगभग कैथलिक समाज के हैं और ये बस 2 मिनट की दूरी पर हमारे इधर बुरी समाज है, मस्जिद है हमारे इधर, जो बाकी दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी हमको बहुत सहयोग मिलता है।
4: यहाँ के कार्यकर्ते बहुत लगाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं।
2: गणपति की प्रतिमा को अलग ढंग अलग रंग और अलग अंदाज में बनाया और स्थापित किया जाता है। कहीं तो बप्पा परंपरा से जुड़ते हैं तो कहीं विज्ञान से। उपनगर मुंबई के भटवाड़ी के राजा को ही देख लीजिए, जहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम बनाया गया है और इसके जरिए इस तकनीक के फायदे और नुकसान समझाने की कोशिश है।
5: जेवा इंटरनेट नव्हतं, जेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द ही जन्माला आला नव्हता।
2: जितना खास ये पंडाल है उतनी ही विशेष है ये प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तरह कागज से बनाई गई है।
0: देश की तरक्की में AI की कितनी ज्यादा मदद है, AI कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है। खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी AI की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है। इस बार ये मंडल अपना 98वां साल मना रहा है।
6: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले ने अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
0: आपसे जानने की कोशिश करते हैं, AI ही क्यों इस बार?
7: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, AI के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, AI के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है।
2: बापा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी सा राजा पंडाल भी है, जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वही भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दे रहा है।
0: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
2: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के इस राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
8: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत गई है और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया, ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
9: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया है इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा।
2: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसे यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीने में तैयार किया गया। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है।
10: ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा, और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टम अंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में, तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है, अंधेरी का राजा का साथ जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
2: यानी एक तरफ अयोध्या के रामलला की भक्ति भाव है तो दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश की आराधना। इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर आ रही है।
10: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ावा भी करते हैं।
0: क्या बात है, गणपति बप्पा
10: मोरिया।
0: देखिए आपको बताएं कि ऐसी एक दान पेटी खुली थी मुंबई के लालबाग के राजा में, जहां कई तरह की ऐसी भी चिट्ठियां पढ़ने को मिली जिसमें पिता ने अपने बेटे के नौकरी की बात करी थी। एक चिट्ठी ऐसी मिली जिसमें एक मां ने अपने बेटे की शादी की बात करी थी, और एक चिट्ठी एक प्रेमी द्वारा लिखी गई थी जो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ कई ऐसी चिट्ठियां भी आई जिसमें बप्पा के लिए लोगों ने धन्यवाद भी लिखा है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चमत्कार है यहां के बप्पा में, ऐसे लोगों की मान्यता है। वीडियोजली स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
11: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल ये विवाह तमिल समुदाय की धार्मिक परंपरा रही है। बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाइयों को गूंजने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट देखिए।

0: कुछ ऐसे वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। तो वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: ममता की कोई सीमा नहीं होती। और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नज़ारा हर किसी की आंखें नम कर देता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और माँ बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वंती तीस्ता नदी के तेज बहाव में जब एक नन्हा गजराज मौत से जंग लड़ रहा था तब 5 जाबाज मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला, उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे उसकी माँ तक पहुँचाया गया।
2: छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है। माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। 9 बंगाल फिशमैन फोरम के 5 सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा। हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुँचे। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए। मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया। जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे अपना जंगल की कांतावारी रेंज 4 किलोमीटर दूर चला गया जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ की आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बस नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश हर दिन गुजरने के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाती चली गई और अब कामयाबी का एक नया शिखर इस फिल्म ने छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 350 करोड़ की धुआंधार कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

0: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: ये कहानी है उसी विश्वास की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे ना माने हार जब चमत्कार ही ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 350 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। अपनी रिलीज के 46 दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई 352 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ को पार कर चुका है। बात अगर ओवरसीज कलेक्शन की जाए तो फिल्म ने देश के बाहर अभी तक 26.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से हनुमान अंश का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 352 करोड़ को पार कर चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का ना तो भव्य प्रमोशन हुआ और ना ही इसकी फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खैर खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्ते तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: ये फिल्म की एक जो सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो फर्स्ट 2 हफ्ते ये फिल्म आई और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई है। सडनली जब बड़ी फिल्में बंटवारा, आवारापन 2, ये सारी फिल्मों के बीच में, इवन टॉक्सिक, यश की टॉक्सिक आई थी और उसके बीच में हनुमान अंश ने अपना कमाल किया। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, उसका मैजिक हुआ। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और ये कहने लगे कि ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन, जो एक फिल्म की क्वालिटी है वो इतनी सुपर्ब थी, उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन, और सबसे बड़ी जो बात है नीम करोली बाबा की जो कहानी है वो शायद हमने आज तक सिर्फ सुनी थी, उसे सिनेमा में पहली बार दिखाया गया। और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच आते हुए भी हनुमान अंश ने 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे, वहीं हनुमान अंश जैसी एक छोटे बजट की फिल्म इस तरीके की एक मैजिक क्रिएट करती है। और जो डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि ये फिल्म की जो फेट है ये पहले से लिखी हुई थी, कि 10 दिनों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और सडनली जो दूसरे हफ्ते के एंड से स्क्रीन्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ 20 स्क्रीन्स उनके पास बची थी और उसके बाद हजारों में स्क्रीन्स बढ़ाई गई, बहुत सारे थिएटर्स में ऑडियंसेस के डिमांड पे स्क्रीन्स बढ़ी।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की इस सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he tells अर्जुना दैट कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वही थी कि लाखों करोड़ों लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे। ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। So we're thinking of inflatable theaters later on, कि भाई ऐसे theatrical end खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा, probably the business and then the whole thing is probably not my cup of tea and not my मेरी understanding से भी बाहर है।
1: हनुमान अंश अपनी रिलीज का 7वां हफ्ता बीते बीते 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्रॉस फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है और 352 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम बार बार और लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 350 करोड़ की कमाई के इस सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछला वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 7वां वीकेंड था और 7वें वीकेंड में हनुमान अंश ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म रिलीज के 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया है जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।

0: हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी सूत्र से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 352 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाएंगे। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ 350 करोड़ रुपए और अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 350 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 17,500। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली फिल्मों की लिस्ट में जहां इस लिस्ट में 17,500 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश पहले नंबर पर है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में लगभग 3 गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो 4th नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है।
1: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड ही वॉज द वन हु वॉज टेलिंग अस दैट लिसन, आई मीन वी कैन यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से इतना आ सकता है, लैंग्वेज में इतना आ सकता है। सो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जो भाव और श्रद्धा से ये फिल्म स्टार्ट करी गई है और जिस ढंग से हम लोग एक एक करके जैसे लग रहा था कि बाबा पिक एंड चूज कर रहे थे हम लोगों को और मिला रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को पता नहीं क्यों चिंता नहीं हुई कभी।
0: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट पे बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1,650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
2: बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये और सारे ही लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्तिभाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतोषी माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया।
0: बता दें कि हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने 2025 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म लालो देखी थी। लालो एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट लगभग 50 लाख रुपए का था, लेकिन लालो ने करीब 125 करोड़ का बिजनेस किया था। हनुमान अंश के मेकर्स ने ये माना है कि फिल्म वालों की रिपोर्ट देखने के बाद उनके मन में ऐसी ही कामयाबी दोहराने की उम्मीद जगी थी।
1: हम लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई कि शायद वो फिल्म रीजनल थी, गुजराती में थी, उसका नाम था लालो। सो हम लोग ने जब फिल्म बना ली थी उसके बाद हम लोग ये फिल्म देखने गए थे लालो, एज अ यूनिट हम लोग गए थे। और कहीं पर मैंने विशाल से आते हुए कहा था, मैंने कहा विशाल क्या पता ये फिल्म भी हमारी इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि लालो ने भी 50 लाख में फिल्म कंप्लीट की थी लालो के प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद वो फिल्म, उस फिल्म ने भी 200 से 250 करोड़ का बिजनेस किया था। सो वो भी एक हम लोग के लिए एक तौर पर एक रोल मॉडल बनी वो फिल्म, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को उस फिल्म से अपनी फिल्म में लगी कि हमारी फिल्म में भी ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो ये मैं कहूँगी तो ये झूठ होगा कि हम लोगों को 200 और 250 की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये लगा कि अगर ये फिल्म चल गई तो ये लालो भी हो सकता।
0: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। ऐसे में हो सकता है कि हनुमान अंश अभी कमाई और कामयाबी के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कामयाबी के सुनामी के बीच ही सियासी गलियारों में भी हनुमान अंश फिल्म की धूम है। अब तक कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, कई नेता फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर को फिल्म की टीम से नई दिल्ली में मुलाकात की और फिल्म की शानदार कामयाबी पर टीम को बधाई दी। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर समेत बाकी टीम मेंबर्स भी नजर आए। इससे पहले हनुमान अंश की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। फिल्म की इसी शानदार कामयाबी के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो भी पहुंची, जहां पर मैंने उनसे खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमान अंश की प्रोड्यूसर ने फिल्म की कामयाबी पर क्या कुछ कहा। आप जब छोटी थी तब आप खुद नीब करौरी बाबा से मिल चुकी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो मूवी बनी है और जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप कितनी छोटी थी, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जाती थी?
1: 6 और 7 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स थे मुझसे बड़े थे सब लोग, उनको भी बहुत क्लियरली बाबा की याद है, मगर मुझे भी इतना छोटे होने के बावजूद मुझे कम्बल वाले बाबा अब तक बहुत बहुत साफ याद है, और कैसे वो प्रसाद देते थे, कैसे वो बच्चों के साथ में बहुत ही स्नेह से पेश आते थे, और हम सब लोगों को एक बहुत प्यारी सी याद है बाबा की। और वही बाबा का जो सेवा भाव था, वही जो प्यार था, वो जो एक प्रसाद देने का वो था, और जो उनको भूखों को जैसे कहते थे भोजन कराना, उनके ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों के एक कहीं पर याद में रह गए हैं, क्योंकि वो प्रसाद जो होता था वो हम लोग जब सब लोग एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार जाते थे, और जब कम्बल वाले बाबा हम लोग को प्रसाद देते थे तो सब लोग बहुत खुश जाते थे कि अब तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हम लोगों के। तो मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स तो वहीं से तय हो गए थे।
3: और जब विशाल ने आपको आशीर्वाद बाबा का तब से ही मिला हुआ है पूरे परिवार को,
1: आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि वो प्रसाद ही कहीं पर जब विशाल मुझे सुना रहे थे, और मैंने विशाल से कहा, विशाल डू यू नो दैट आई एम मेट हिम, और विशाल के लिए नो, आई सेड यस आई एम बेटर. तो वो सबसे बड़ी एक बात थी जो हम दोनों को ये बात.
3: तो इस पूरे मूवी के दौरान, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स आपने पैसे लगाए, लेकिन इस मूवी के दौरान चूंकि आपका खुद एक पर्सनल लगाव, एक टच रहा है, आप जानती रही हैं उनको, तो आपने ये थ्रू आउट कोशिश की इस बात को देखने और जानने की कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए मूवी, कहीं भी जैसे वो थे वैसा ना दिखे पर्दे पर, ऐसा ना हो वो जैसे थे एक्चुअली वो वैसे दिखने चाहिए, कहानी बिल्कुल वही हो.
1: सो विशाल ने जब हम लोग को कहानी सुनाई थी और सीन बाय सीन सुनाई थी, उस वक्त जब वो सुना रहे थे कहानी तो भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं कहते थे विशाल तुमने कैसे लिखी है ये कहानी. तो मैं कहूंगी जो एक परसेप्शन था, जो एक विजन था विशाल का, वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे निर्देशक होते हैं जिनको कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी एक. विशाल वैसे भी बहुत ही स्पिरिचुअल खुद भी हैं और बहुत ही वो भी मानने वालों में से हैं. सो हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है इस प्रोजेक्ट को तो सिर्फ विशाल कर सकते हैं, और हम लोगों ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी.
3: पहली बार मैंने खुद ऐसी फिल्म देखी है जब प्रचार उस तरह का नहीं था. प्रचार था भंडारा, प्रचार था मंदिरों में जाना, प्रचार था संतों से मिलना. ये स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब ये सोच कैसे आई?
1: ये सोच थी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सब होता चला गया, बिकॉज पैसे तो हम लोग के पास वाकई में नहीं थे प्रचार के, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस फिल्म में कोई भी प्रचार ऐसा होता तो शायद ये फिल्म इससे बड़ी हो गई होती, मगर हम लोगों ने जो नहीं किया प्रचार वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म को जिसने चलाया है वो दर्शक हैं, उन्होंने चलाया है और उनके जो रिएक्शन है उन्होंने चलाया है, और इस फिल्म की जो सादगी और जो जो सहजता थी उसने चलाया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नहीं थे पैसे खर्च करने के लिए, जो कि नॉर्मली फिल्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जितना फिल्म का बजट होता है उतना ही शायद पब्लिसिटी का भी बजट होता है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फिल्म में. मगर जिस तरीके से ये फिल्म चली है वो दर्शकों ने चलाई है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म जो है वो कुछ ऐसा लेकर के आई, दर्शकों का एक ऐसा इमोशन लेकर के आई कि उन्होंने ही सबसे बोला कि आप लोग जाइए फिल्म देखने के लिए, और लोग गए फिल्म देखने के लिए. मगर एक बात इसमें और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो टीम थी, विशाल और उनकी एक मतलब एक छोटी सी टीम है मगर बहुत ही मेहनती टीम है, और वो लोग निकल गए थे जब हमारी फिल्म थोड़ा सा कहीं पर ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो लोग निकल गए थे अपने एक ट्रिप पर, और वो हर जगह पे गए और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी गुजरात से, सूरत और सब जगहों पर जाकर के उन्होंने, जब थिएटर्स में गए वो उन मंदिरों में गए जहाँ पर कि जाकर के उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कहीं पर बाबा से प्रार्थना करी होगी, और वो सब उन्होंने सुनी और खुद उतर आए बाबा इस फिल्म को चलाने के लिए. और उन्हीं का चमत्कार है जो कि आज फिल्म इतना सुंदर बिजनेस कर रही है, मगर हम लोगों को
3: वो... और एक और बात अभी मतलब सुनने में ये आया था कि शायद, जो कि शायद आपने डिनाई भी कर दिया है, कि लगभग 100 करोड़ के आसपास कुछ नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मामला था.
1: I will still deny that.
3: ऐसा है, लेकिन भारी भरकम कुछ आ रहा है आप लोगों के पास
1: अमाउंट, कुछ ऐसा हम लोग
3: बहुत बड़ी डील की बात वो कर रहे हैं.
1: जो आप भारी भरकम की बात करिए, तो हम लोग ने विशाल और हम सब प्रोड्यूसर जब बात करते हैं तो हम लोगों को वो भारी भरकम दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी, मगर हाँ हमारे पास ऑफिस है और हम लोग जब अभी थोड़े से और दिन का टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिल्म चल रही है उस हिसाब से विशाल का कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म थिएटर में जाने के हिसाब से, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि 100 करोड़ लोग जब, सॉरी 1 करोड़ लोग जब इस फिल्म को देख लेंगे तो हम लोग के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे कि हम लोग नंबर्स गिने, फाइनेंस गिने और इस तरीके की.
3: फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म की को प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अयोध्या पहुंची. उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म की सफलता को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ते हुए अपने अयोध्या दौरे को बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अप्रैल में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर आई थी. उस समय हनुमान अंश फिल्म पर काम चल रहा था और वो चाहती थी कि फिल्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें.
4: मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले। और आज मैं वापस आई हूँ जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई, वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुंचे हैं।
3: इससे पहले फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बागेश्वर धाम भी पहुंची थी। दरअसल एक वक्त जब फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर यह छलांग लगाई थी। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया नागर हाल ही में दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची। अनुप्रिया के मुताबिक एक समय उनकी फिल्म हनुमान अंश का प्रदर्शन काफी गिर गया था। फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर केवल 30 स्क्रीन पर आ गई थी। उस समय उन्होंने बागेश्वर महाराज से मुलाकात की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू बोलने, उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुँचाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनके पंडाल श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं महाराष्ट्र, और खासकर अगर हम देखें मुंबई के पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी बप्पा के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहे के पंडाल में पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त जैसे सितारों ने हाजिरी लगाई। आज आपको गणपति के इस सबसे लोकप्रिय पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के दूसरे अनोखे पंडालों के दर्शन भी आपको आज कराने जा रहे हैं। उस पंडाल में भी आपको लिए चलेंगे जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिल्कुल बनाया गया है। आखिर में हम बात करेंगे गणपति के विवाह की। भिलाई में तमिल समुदाय के लोगों ने धूमधाम से रिद्धि सिद्धि संग गणपति का विवाह संपन्न किया। क्या है ये धार्मिक परंपरा, आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां गणपति उत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शुमार हैं। पहले शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लालबाग चौराहे के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसके बाद संजय दत्त, चंकी पांडे और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने बप्पा के चरणों में सिर झुकाया। रिपोर्ट देखिए।

साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए आते हैं पप्पा, सुख समृद्धि धन धान्य संग रोशनी लाते हैं पप्पा। इसीलिए तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो नामचीन है जो सितारों की तरह सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं। लाल बागचा राजा को देखने पूजने और उन्हें अपनी मनोकामना बताने अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे। दोनों ने बप्पा के चरणों पर सर झुकाया। संजय दत्त ने आशीर्वाद के तौर पर बप्पा के चरणों का सिंदूर अपनी ललाट पर लगाया, साथ ही पत्नी के माथे पर तिलक लगाया। फैन से मिलते, उनका अभिवादन स्वीकार करते, संजय दत्त सभी से मुस्कुरा कर मिले। इसी तरह अभिनेता चंकी पांडे अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे, बप्पा के चरणों में प्रणाम किया और चढ़ावा अर्पित किया। और हाँ, बेटी अनन्या के साथ सेल्फी लेना नहीं भूले। गणपति के इस पंडाल में जहाँ लाखों लोग रोजाना श्रद्धा से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं जानी मानी हस्तियां भी पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं। सोमवार की रात बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान लाल बागचा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई।

माँ से आशीर्वाद लिया और मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा अर्पित की। परिवार को पहले पुरोहित ने माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद मैनेजर पूजा ददलानी ने भी उनके माथे पर तिलक लगाया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते और उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। संयोग है कि शाहरुख के बंगले का नाम भी मन्नत है और लालबाग चा राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ये श्रद्धा ही है कि शाहरुख खान मुंबई के इस सबसे मशहूर गणपति पंडाल में हाजिरी लगाना नहीं भूलते।

0: साल 2023 में शाहरुख खान अपने बेटे अब्राम के साथ लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बप्पा के चरणों में नारियल मिठाइयां अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। साल 2024 में भी शाहरुख खान अब्राम के साथ ही विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल 2025 में शाहरुख खान गणेशोत्सव के दौरान शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे, लेकिन इस साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दरबार में पहुंचे। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी गणपति की स्थापना होती है और परिवार करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की डेढ़ दिन की आराधना करता है। ये गणपति के प्रति शाहरुख की आस्था की एक और तस्वीर है। मंगलवार को शाहरुख टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे और वहां स्थापित गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और माथे पर तिलक लगाया। संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां गणपति के पंडाल में माथा टेक चुकी हैं। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई के पंडालों की भव्यता देखने लायक है। कहीं पूरा पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है तो कहीं पर पंडाल में भगवान कृष्ण की लीला नजर आती है, कहीं बप्पा को भगवान शिव के अवतार के रूप में सजाया गया है तो कहीं पर गणपति महाराजा के अवतार में नजर आते हैं। जैसी भावना वैसी भक्ति और इसी हिसाब से गणपति को अलग अलग अंदाज दिया गया है। चलिए आपको मुंबई के जाने माने पंडालों के दर्शन करवाते हैं जहाँ की रौनक देखकर आप दंग रह जाएंगे।

0: मन मोह लेते हैं मंगल मूर्ति। विशाल देह, भव्य चेहरा और बोलती हुई आंखें, जैसे स्नेह बरसा रही हूँ। बप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला है और ढोलक की थाप पर जयदेव जयदेव की पुकार है। यूं तो मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं, लेकिन इनमें भी अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चा महाराज की चर्चा खूब होती है और इसकी वजह है इनका भव्य पंडाल। राजमहल जैसे पंडाल में बप्पा की प्रतिमा महाराजा के अनुरूप ही है। हाँ, खास बात यह है कि पंडाल को भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह

0: कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहां भी आप देखे झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहां आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहां पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहां आते हैं और दर्शन करते हैं।
1: सर में हम लोग को ये प्लान था कि गए टाइम में शिवाजी महाराज का बताया था, तो बोले टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर जो लीला उनकी, तो उस तरीके से हम लोग ये अरेंज किया हुआ है।
2: अंधेरी के बाद चलिए आपको सांता क्रूज इलाके के गणपति के दर्शन कराते हैं। सर पर जटा और जटाओं में गंगा, गले में सर्प और रुद्राक्ष और कमर में मृगछाल। बताने की जरूरत नहीं कि बप्पा को शिवजी के अवतार में स्थापित किया गया है।
0: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है, ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहां पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। भीतर की तरफ गणपति बप्पा शिवजी के अवतार में हैं, इसलिए सबसे पहले लोग शिवजी का ही दर्शन करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री गणेश के पिता हैं। फिर से एक बार भीतर की तरफ चलते हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय इस पंडाल से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, कितना साल मना रहे हैं इस बार और गणपति इस बार आपने शिवजी के रूप में लाया क्यों?
3: ये हमारा 44 वर्ष पूरा हो गया इस साल। हमारी स्थापना 1983 में हुई थी और ये सार्वजनिक गणेश मंडल गौठन लेन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि गौठन एक ये ऐसी एक हमारी जो सांताक्रूज में गौठन है जिसमें गणपति लाया जाता है, बाकी का और किधर कोई गौठन में गणपति नहीं लाते। और हमारे इधर एक खास बात यह है कि गौठन के अंदर हमारे जो रहवासी है यहाँ पे जो 80% लगभग कैथलिक समाज के हैं और ये बस 2 मिनट की दूरी पर हमारे इधर बुरी समाज है, मस्जिद है हमारे इधर, जो बाकी दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी हमको बहुत सहयोग मिलता है।
4: यहाँ के कार्यकर्ते बहुत लगाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं।
2: गणपति की प्रतिमा को अलग ढंग, अलग रंग और अलग अंदाज में बनाया और स्थापित किया जाता है। कहीं तो बप्पा परंपरा से जुड़ते हैं तो कहीं विज्ञान से। उपनगर मुंबई के भटवाड़ी के राजा को ही देख लीजिए, जहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम बनाया गया है और इसके जरिए इस तकनीक के फायदे और नुकसान समझाने की कोशिश है। जितना खास ये पंडाल है उतनी ही विशेष है ये प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तरह कागज से बनाई गई है।
0: देश की तरक्की में AI की कितनी ज्यादा मदद है, AI कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है। खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी AI की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। एआई सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है। इस बार ये मंडल अपना 98वां साल मना रहा है।
5: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है, और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे। इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं, अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
0: आपसे जानने की कोशिश करते हैं, AI ही क्यों इस बार?
6: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, AI के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, AI के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने, हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है।
2: बापा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी सा राजा पंडाल भी है, जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वही भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दे रहा है।
0: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
2: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के इस राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
7: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत लगाई है, और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया, ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए, और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
8: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया है इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा।
2: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसे यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीने में तैयार किया गया। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है।
9: ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बना हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा, और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टमंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में, तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है, अंधेरी का राजा का साथ जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
2: यानी एक तरफ अयोध्या के रामलला की भक्ति भाव है तो दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश की आराधना। इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर आ रही है।
9: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ावा भी करते हैं।
0: क्या बात है, गणपति बप्पा
9: मोरिया।
0: देखिए आपको बताएं कि ऐसी एक दान पेटी खुली थी मुंबई के लालबाग के राजा में, जहां कई तरह की ऐसी भी चिट्ठियां पढ़ने को मिली जिसमें पिता ने अपने बेटे के नौकरी की बात करी थी, एक चिट्ठी ऐसी मिली जिसमें एक मां ने अपने बेटे की शादी की बात करी थी, और एक चिट्ठी एक प्रेमी द्वारा लिखी गई थी जो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ कई ऐसी चिट्ठियां भी आई जिसमें बप्पा के लिए लोगों ने धन्यवाद भी लिखा है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चमत्कार है यहां के बप्पा में, ऐसे लोगों की मान्यता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
10: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल ये विवाह तमिल समुदाय की धार्मिक परंपरा रही है। बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाइयों को गूंजने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट देखिए।

0: कुछ ऐसी वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। तो वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक एक एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं, वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित, मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: ममता की कोई सीमा नहीं होती, और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नज़ारा हर किसी की आंखें नम कर देता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और माँ बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वंती तीस्ता नदी के तेज बहाव में जब एक नन्हा गजराज मौत से जंग लड़ रहा था, तब 5 जाबाज मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला, उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे उसकी मां तक पहुंचाया गया।
7: दिल छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है। माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। नॉर्थ बंगाल फिशमैन फोरम के 5 सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा। हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुंचे। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए। मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया। जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। जब हाथियों का झुंड अपलचंद जंगल की कांथाबारी रेंज के पास नदी पार कर रहा था, उसी समय हाथी का ये बच्चा नदी की धारा में बहकर करीब 4 किलोमीटर दूर चला गया, जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ की आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: इसीलिए खबर के
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
9: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किया बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रणाली।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बस नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी तारीफ हुई कि हनुमान अंश हर दिन गुजरने के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाती चली गई और अब कामयाबी का एक नया शिखर इस फिल्म ने छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 350 करोड़ की धुआंधार कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

0: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: ये कहानी है उसी विश्वास की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार है जिसका हिसाब लगाते लगाते फिल्मी पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ही ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 350 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। अपनी रिलीज के 46 दिन के बाद हनुमान अंश की कमाई 352 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 325.80 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ को पार कर चुका है। बात अगर ओवरसीज कलेक्शन की जाए तो फिल्म ने देश के बाहर अभी तक 26.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से हनुमान अंश का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 352 करोड़ को पार कर चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का ना तो भव्य प्रमोशन हुआ और ना ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खैर खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्ते तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: ये फिल्म की एक जो सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो फर्स्ट 2 हफ्ते ये फिल्म आई और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आई है। सडनली जब बड़ी फिल्में बंटवारा, आवारापन 2, ये सारी फिल्मों के बीच में, इवन टॉक्सिक, यश की टॉक्सिक आई थी और उसके बीच में हनुमान अंश ने अपना कमाल किया। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, उसका मैजिक हुआ। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और ये कहने लगे कि ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन, जो एक फिल्म की क्वालिटी है वो इतनी सुपर्ब थी। उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन, और सबसे बड़ी जो बात है, नीम करोली बाबा की जो कहानी है वो शायद हमने आज तक सिर्फ सुनी थी, उसे सिनेमा में पहली बार दिखाया गया। और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच आते हुए भी हनुमान अंश ने 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे, वहीं हनुमान अंश जैसी एक छोटे बजट की फिल्म इस तरीके की एक मैजिक क्रिएट करती है। और जो डायरेक्टर हैं विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने काफी बार ये कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि ये फिल्म की जो फेट है ये पहले से लिखी हुई थी, कि 10 दिनों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और सडनली जो दूसरे हफ्ते के एंड से स्क्रीन्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ 20 स्क्रीन्स उनके पास बची थी और उसके बाद हजारों में स्क्रीन्स बढ़ाई गई, बहुत सारे थिएटर्स में ऑडियंसेस के डिमांड पे स्क्रीन्स बढ़ी।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की इस सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he tells अर्जुना that कर्मण्य वादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वो ये थी कि लाखों करोड़ लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे, ये आइडिया था कि उसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। सो वी थिंकिंग ऑफ इन्फ्लेटेबल थिएटर्स लेटर ऑन, कि भाई ऐसे थिएटरिकल एंड खत्म हो जाएगा, फिर हम जो गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा, प्रॉब्ली द बिजनेस एंड द होल थिंग इज प्रॉब्ली नॉट माई कप ऑफ टी एंड नॉट माई, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है।
1: हनुमान अंश अपनी रिलीज का 7वां हफ्ता बीते बीते 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्रॉस फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है और 352 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है। अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम बार बार और लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 350 करोड़ की कमाई के इस सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछला वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 7वां वीकेंड था और 7वें वीकेंड में हनुमान अंश ने लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म रिलीज के 7वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया है जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।

0: हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी सूत्र से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 352 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाएंगे। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ 350 करोड़ रुपए और अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 350 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 17,500। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली फिल्मों की लिस्ट में जहां इस लिस्ट में 17,500 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश पहले नंबर पर है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में लगभग 3 गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो 4th नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है।
1: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रानी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड ही वॉज द वन हु वॉज टेलिंग अस दैट लिसन, आई मीन वी कैन यहाँ से इतना आ सकता है, यहाँ से इतना आ सकता है, लैंग्वेज में इतना आ सकता है। सो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जो भाव और श्रद्धा से ये फिल्म स्टार्ट करी गई है और जिस ढंग से हम लोग एक एक करके, जैसे लग रहा था कि बाबा पिक एंड चूज कर रहे थे हम लोगों को और मिला रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों को पता नहीं क्यों चिंता नहीं हुई कभी भी।
0: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का बड़ा खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से होने लगी है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1,650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दोहराती नजर आ रही है।
2: बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये और सारे ही लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है, हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्तिभाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतोषी माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया।
0: बता दें कि हनुमान अंश की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने 2025 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म लालो देखी थी। लालो एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट लगभग 50 लाख रुपए का था, लेकिन लालो ने करीब 125 करोड़ का बिजनेस किया था। हनुमान अंश के मेकर्स ने ये माना है कि फिल्म वालों की रिपोर्ट देखने के बाद उनके मन में ऐसी ही कामयाबी दोहराने की उम्मीद जगी थी।
1: हम लोगों ने एक फिल्म आई थी बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई कि शायद वो फिल्म रीजनल थी, गुजराती में थी, उसका नाम था लालो। सो हम लोग ने जब फिल्म बना ली थी उसके बाद हम लोग ये फिल्म देखने गए थे लालो, एज अ यूनिट हम लोग गए थे। और कहीं पर मैंने विशाल से आते हुए कहा था, मैंने कहा विशाल क्या पता ये फिल्म भी हमारी इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि लालो ने भी 50 लाख में फिल्म कंप्लीट की थी लालो के प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद वो फिल्म, उस फिल्म ने भी 200 से 250 करोड़ का बिजनेस किया था। सो वो भी एक हम लोग के लिए एक तौर पर एक रोल मॉडल बनी वो फिल्म, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को उस फिल्म से अपनी फिल्म में लगी कि हमारी फिल्म में भी ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो ये मैं कहूँगी तो ये झूठ होगा कि हम लोगों को 200-250 की तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये लगा कि अगर ये फिल्म चल गई हाँ। तो ये लालो भी हो सकता।
0: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। ऐसे में हो सकता है कि हनुमान अंश अभी कमाई और कामयाबी के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो कामयाबी के सुनामी के बीच ही सियासी गलियारों में भी हनुमान अंश फिल्म की धूम है। अब तक कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, कई नेता फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर को फिल्म की टीम से नई दिल्ली में मुलाकात की और फिल्म की शानदार कामयाबी पर टीम को बधाई दी। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर समेत बाकी टीम मेंबर्स भी नजर आए। इससे पहले हनुमान अंश की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुकी है। फिल्म की इसी शानदार कामयाबी के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो भी पहुंची, जहां पर मैंने उनसे खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमान अंश की प्रोड्यूसर ने फिल्म की कामयाबी पर क्या कुछ कहा। आप जब छोटी थी तब आप खुद नीब करौरी बाबा से मिल चुकी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिनके लिए हम ये बात कर रहे हैं, जो मूवी बनी है और जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप कितनी छोटी थी, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जाते थे?
1: 6 और 7 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स थे मुझसे बड़े थे सब लोग, उनको भी बहुत क्लियरली बाबा की याद है, मगर मुझे भी इतना छोटे होने के बावजूद मुझे कम्बल वाले बाबा अब तक बहुत बहुत साफ याद है। और कैसे वो प्रसाद देते थे, कैसे वो बच्चों के साथ पे बहुत ही स्नेह से पेश आते थे, और हम सब लोगों को एक एक बहुत प्यारी सी याद है बाबा की। और वही बाबा का जो सेवा भाव था, वही जो प्यार था, वो जो एक यू नो प्रसाद देने का वो था, और जो उनको भूखों को जैसे कहते थे भोजन कराना, उनके ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोगों के एक कहीं पर याद में रह गए हैं। क्योंकि वो प्रसाद जो होता था वो हम लोग जब सब लोग एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार जाते थे, और जब कम्बल वाले बाबा हम लोग को प्रसाद देते थे तो सब लोग बहुत खुश जाते थे कि अब तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे हम लोगों के। तो मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स तो वहीं से तय हो गए थे।
3: और जब विशाल ने आपको आशीर्वाद बाबा का तब से ही मिला हुआ है पूरे परिवार को,
1: आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि वो प्रसाद ही कहीं पर जब विशाल मुझे सुना रहे थे, और मैंने विशाल से कहा विशाल डू यू नो दैट आई एम मेट हिम, और विशाल के लिए नो, आई सेड यस आई एम बेटर. तो वो सबसे बड़ी एक बात थी जो हम दोनों को ये बात.
3: तो इस पूरे मूवी के दौरान, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स आपने पैसे लगाए, लेकिन इस मूवी के दौरान चूंकि आपका खुद एक पर्सनल लगाव, एक टच रहा है, आप जानती रही हैं उनको, तो आपने ये थ्रू आउट कोशिश की इस बात को देखने और जानने की कि पूरी तरह से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए मूवी, कहीं भी जैसे वो थे वैसा ना दिखे पर्दे पर, ऐसा ना हो, वो जैसे थे एक्चुअली वो वैसे दिखने चाहिए, कहानी बिल्कुल वही हो.
1: सो विशाल ने जब हम लोग को कहानी सुनाई थी और सीन बाय सीन सुनाई थी, उस वक्त जब वो सुना रहे थे कहानी तो भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं कहते थे विशाल तुमने कैसे लिखी है ये कहानी. तो मैं कहूंगी जो एक परसेप्शन था, जो एक विजन था विशाल का, वो आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे निर्देशक होते हैं जिनको कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी एक. विशाल वैसे भी बहुत ही स्पिरिचुअल खुद भी हैं और बहुत ही वो भी मानने वालों में से हैं. सो हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है इस प्रोजेक्ट को तो सिर्फ विशाल कर सकते हैं, और हम लोगों ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी.
3: पहली बार मैंने खुद ऐसी फिल्म देखी है जब प्रचार उस तरह का नहीं था. प्रचार था भंडारा, प्रचार था मंदिरों में जाना, प्रचार था संतों से मिलना. ये स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब ये सोच कैसे आई?
1: ये सोच थी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सब होता चला गया, बिकॉज पैसे तो हम लोग के पास वाकई में नहीं थे प्रचार के, क्योंकि हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस फिल्म में कोई भी प्रचार ऐसा होता तो शायद ये फिल्म इससे बड़ी हो गई होती, मगर हम लोगों ने जो नहीं किया प्रचार वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म को जिसने चलाया है वो दर्शक है, उन्होंने चलाया है और उनके जो रिएक्शन है उन्होंने चलाया है, और इस फिल्म की जो सादगी और जो जो सहजता थी उसने चलाया है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नहीं थे पैसे खर्च करने के लिए, जो कि नॉर्मली फिल्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जितना फिल्म का बजट होता है उतना ही शायद पब्लिसिटी का भी बजट होता है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस फिल्म में. मगर जिस तरीके से ये फिल्म चली है वो दर्शकों ने चलाई है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म जो है वो कुछ ऐसा लेकर के आई, दर्शकों का एक ऐसा इमोशन लेकर के आई कि उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग जाइए फिल्म देखने के लिए, और लोग गए फिल्म देखने के लिए. मगर एक बात इसमें और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो टीम थी, विशाल और उनकी एक मतलब एक छोटी सी टीम है मगर बहुत ही मेहनती टीम है, और वो लोग निकल गए थे जब हमारी फिल्म थोड़ा सा कहीं पर ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो लोग निकल गए थे अपने एक ट्रिप पर, और वो हर जगह पे गए और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी गुजरात से, सूरत और सब जगहों पर जाकर के उन्होंने, जब थिएटर्स में गए वो उन मंदिरों में गए जहाँ पर कि जाकर के उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कहीं पर बाबा से प्रार्थना करी होगी, और वो सब उन्होंने सुनी और खुद उतर आए बाबा इस फिल्म को चलाने के लिए, और उन्हीं का चमत्कार है जो कि आज फिल्म इतना सुंदर बिजनेस कर रही है. मगर हम लोगों को वो...
3: और एक और बात अभी मतलब सुनने में ये आया था कि शायद, जो कि शायद आपने डिनाई भी कर दिया है, कि लगभग 100 करोड़ के आसपास कुछ नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मामला था.
1: I will still deny that.
3: ऐसा है, लेकिन भारी भरकम कुछ आ रहा है आप लोगों के पास
1: अमाउंट, कुछ ऐसा हम लोग
3: कोई बहुत बड़ी डील की बात वो कर रहे हैं.
1: जो आपने भारी भरकम की बात करी, तो हम लोग ने विशाल और हम सब प्रोड्यूसर जब बात करते हैं तो हम लोगों को वो भारी भरकम दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर भी, मगर हाँ हमारे पास ऑफिस है और हम लोग जब अभी थोड़े से और दिन का टाइम लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिल्म चल रही है उस हिसाब से विशाल का कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म थिएटर में जाने के हिसाब से, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि 100 करोड़ लोग जब, सॉरी 1 करोड़ लोग जब इस फिल्म को देख लेंगे तो हम लोग के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे कि हम लोग नंबर्स गिने, फाइनेंस गिने और इस तरीके की.
3: फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म की को प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अयोध्या पहुंची. उन्होंने हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म की सफलता को हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ते हुए अपने अयोध्या दौरे को बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अप्रैल में हनुमान गढ़ी और राम मंदिर आई थी. उस समय हनुमान अंश फिल्म पर काम चल रहा था और वो चाहती थी कि फिल्म शुरू करने से पहले सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ले लें.
4: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी, राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले। और आज मैं वापस आई हूँ जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई, वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई, क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुंचे हैं।
3: इससे पहले फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बागेश्वर धाम भी पहुंची थी। दरअसल एक वक्त जब फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट चुकी थी, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर यह छलांग लगाई थी। इसका खुलासा खुद फिल्म प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने किया। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।

0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया नागर हाल ही में दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची। अनुप्रिया के मुताबिक एक समय उनके फिल्म हनुमान अंश का प्रदर्शन काफी गिर गया था। फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर केवल 30 स्क्रीन पर आ गई थी। उस समय उन्होंने बागेश्वर महाराज से मुलाकात की थी।
1: जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं आई थी, एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे फिल्म से जुड़ा प्रश्न लेकर आई थी, और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी। और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
0: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
1: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया, और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
0: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन को पहुंच रहे हैं फिल्मी सितारे अनन्या पांडे, चंकी पांडे और संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन। बप्पा के पंडालों में विघ्नहर्ता के भक्तों का दिख रहा है अपार प्यार। नासिक में एक सुनार ने बनाई सोने की 291 सूक्ष्म मूर्तियां, तो एक पंडाल में बप्पा दे रहे हैं नशा मुक्ति का संदेश। सतारा में बप्पा के नरसिंह अवतार की अनूठी झांकी, देखने को उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। रायसेन जिले में निकली भगवान श्री कृष्ण की पालकी सवारी, भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले हरि, नाचते गाते नजर आए भक्त। नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनके पंडाल श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरीके से जगमगा रहे हैं महाराष्ट्र, और खासकर अगर हम देखें मुंबई के पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी बप्पा के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहे के पंडाल में पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त जैसे सितारों ने हाजिरी लगाई। आज आपको गणपति के इस सबसे लोकप्रिय पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के दूसरे अनोखे पंडालों के दर्शन भी आपको आज कराने जा रहे हैं। उस पंडाल में भी आपको लिए चलेंगे जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बिल्कुल बनाया गया है। आखिर में हम बात करेंगे गणपति के विवाह की। भिलाई में तमिल समुदाय के लोगों ने धूमधाम से रिद्धि सिद्धि संग गणपति का विवाह संपन्न किया, क्या है ये धार्मिक परंपरा आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां गणपति उत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शुमार हैं। पहले शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ लालबाग चौराहे के पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसके बाद संजय दत्त, चंकी पांडे और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने बप्पा के चरणों में सिर झुकाया। रिपोर्ट देखिए।

साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए आते हैं पप्पा, सुख समृद्धि धन धान्य संग रोशनी लाते हैं पप्पा। इसीलिए तो उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो नामचीन है जो सितारों की तरह सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं। लाल बागचा राजा को देखने, पूजने और उन्हें अपनी मनोकामना बताने अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे। दोनों ने बप्पा के चरणों पर सर झुकाया। संजय दत्त ने आशीर्वाद के तौर पर बप्पा के चरणों का सिंदूर अपनी ललाट पर लगाया, साथ ही पत्नी के माथे पर तिलक लगाया। फैन से मिलते, उनका अभिवादन स्वीकार करते, संजय दत्त सभी से मुस्कुरा कर मिले। इसी तरह अभिनेता चंकी पांडे अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे, बप्पा के चरणों में प्रणाम किया और चढ़ावा अर्पित किया। और हाँ, बेटी अनन्या के साथ सेल्फी लेना नहीं भूले। गणपति के इस पंडाल में जहाँ लाखों लोग रोजाना श्रद्धा से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं जानी मानी हस्तियां भी पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं। सोमवार की रात बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान लाल बागचा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आई। नेवी ब्लू पठानी कुर्ता और माथे पर पारंपरिक तिलक लगाए शाहरुख खान ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ लाल बागचा राजा के दरबार में पूजा की। शाहरुख ने बप्पा के चरणों में मत्था टेका और बप्पा से आशीर्वाद लिया और मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा अर्पित की। परिवार को पहले पुरोहित ने माथे पर तिलक लगाया, उसके बाद मैनेजर पूजा ददलानी ने भी उनके माथे पर तिलक लगाया। दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते और उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे। संयोग है कि शाहरुख के बंगले का नाम भी मन्नत है और लालबागचा राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है।

0: साल 2023 में शाहरुख खान अपने बेटे अब्राम के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बप्पा के चरणों में नारियल मिठाइयां अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। साल 2024 में भी शाहरुख खान अब्राम के साथ ही विघ्नहर्ता के चरणों में नतमस्तक हुए, बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया और देश भर के प्रशंसकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल 2025 में शाहरुख खान गणेशोत्सव के दौरान शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर थे, लेकिन इस साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दरबार में पहुंचे। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी गणपति की स्थापना होती है और परिवार करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की डेढ़ दिन की आराधना करता है। ये गणपति के प्रति शाहरुख की आस्था की एक और तस्वीर है। मंगलवार को शाहरुख टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे और वहां स्थापित गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख ने पूरे श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना की और माथे पर तिलक लगाया। संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां गणपति के पंडाल में माथा टेक चुकी हैं। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई के पंडालों की भव्यता देखने लायक है। कहीं पूरा पंडाल राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है तो कहीं पर पंडाल में भगवान कृष्ण की लीला नजर आती है, कहीं बप्पा को भगवान शिव के अवतार के रूप में सजाया गया है तो कहीं पर गणपति महाराजा के अवतार में नजर आते हैं। जैसी भावना वैसी भक्ति और इसी हिसाब से गणपति को अलग अलग अंदाज दिया गया है। चलिए आपको मुंबई के जाने माने पंडालों के दर्शन करवाते हैं जहाँ की रौनक देखकर आप दंग रह जाएंगे।

0: सामान मोह लेते हैं मंगल मूर्ति। विशाल देह, भव्य चेहरा और बोलती हुई आंखें, जैसे स्नेह बरसा रही हूँ। बप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला है और ढोलक की थाप पर जयदेव जयदेव की पुकार है। यूं तो मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं, लेकिन इनमें भी अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चा महाराज की चर्चा खूब होती है और इसकी वजह है इनका भव्य पंडाल। राजमहल जैसे पंडाल में बप्पा की प्रतिमा महाराजा के अनुरूप ही है। हाँ, खास बात यह है कि पंडाल को भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं ना कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ा चा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से, बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं।
2: सर, में हम लोग को ये प्लान था कि गई टाइम शिवाजी महाराज का बताया था।

0: फुटबॉल वाले टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर जो लीला उनकी, तो उस तरीके से हम लोग ये अरेंज किया हुआ है।
1: अंधेरी के बाद चलिए आपको सांता क्रूज इलाके के गणपति के दर्शन कराते हैं। सर पर जटा और जटाओं में गंगा, गले में सर्प और रुद्राक्ष और कमर में मृगछाल। बताने की जरूरत नहीं कि बप्पा को शिव जी के अवतार में स्थापित किया गया है।
2: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहाँ पर पाया है। शिव जी के रूप में गणपति बप्पा यहाँ के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर शिव जी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान है। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। भीतर की तरफ गणपति बप्पा शिवजी के अवतार में हैं, इसलिए सबसे पहले लोग शिवजी का ही दर्शन करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री गणेश के पिता हैं। फिर से एक बार भीतर की तरफ चलते हैं। तमाम पदाधिकारी इस समय इस पंडाल से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। कितना साल मना रहे हैं इस बार और गणपति इस बार आपने शिवजी के रूप में लाया क्यों?
3: ये हमारा 44 वर्ष पूरा हो गया इस साल। हमारी स्थापना 1983 में हुई थी और ये सार्वजनिक गणेश मंडल गौठन लेन, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि गौठन एक ये ऐसी एक हमारी जो सांताक्रूज में गौठन है जिसमें गणपति लाया जाता है, बाकी का और किधर कोई गौठन में गणपति नहीं लाते। और हमारे इधर एक खास बात यह है कि गौठन के अंदर हमारे जो रहवासी है यहाँ पे जो 80% लगभग कैथलिक समाज के हैं और ये बस 2 मिनट की दूरी पे हमारे इधर बुरी समाज है, मस्जिद है हमारे इधर, जो बाकी दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी हमको बहुत सहयोग मिलता है।
4: यहाँ के कार्यकर्ते बहुत लगाव से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं।
1: गणपति की प्रतिमा को अलग ढंग, अलग रंग और अलग अंदाज में बनाया और स्थापित किया जाता है। कहीं तो बप्पा परंपरा से जुड़ते हैं तो कहीं विज्ञान से। उपनगर मुंबई के भटवाड़ी के राजा को ही देख लीजिए, जहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थीम बनाया गया है और इसके जरिए इस तकनीक के फायदे और नुकसान समझाने की कोशिश है।
5: जेवा इंटरनेट नव्हतं, जेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द ही जन्माला आला नव्हता।
1: जितना खास ये पंडाल है उतनी ही विशेष है ये प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तरह कागज से बनाई गई है।
2: देश की तरक्की में AI की कितनी ज्यादा मदद है, AI कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है। खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी AI की हेल्प लेकर के आगे बढ़ रही है, AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है। इस बार ये मंडल अपना 98वां साल मना रहा है।
6: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
2: आपसे जानने की कोशिश करते हैं AI ही क्यों इस बार।
6: एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड्स जो मार्केट में चल रहा है या जो सोसाइटी में चल रहा है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स है, एआई के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसके लिए हमने हमारा मंडल का स्पेशलिटी, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं। तो हमने एआई कैसा यूज करना है, एआई के फायदे क्या है, एआई अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग एआई कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है।
1: बापा के अनोखे और मनमोहक पंडालों में मुंबई का ये अंधेरी सा राजा पंडाल भी है, जिसे अयोध्या के भव्य राम मंदिर की थीम पर इस बार सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। पंडाल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप और उसकी नक्काशी की बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वही भव्य राम मंदिर के बैकग्राउंड में विराजित गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप यकीनन भक्तों को मुंबई में ही राम मंदिर का एहसास दे रहा है।
2: ये तो हो गई बप्पा का दर्शन आपके लिए, लेकिन थोड़ा थीम देखें। अच्छा खासा कारीगरों को मुझे लगता है जुटाया गया होगा, महीने भर की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के इतना शानदार हवेली की तरह श्रीराम का अवतार, श्रीराम का मंदिर, श्रीराम की भूमि अयोध्या को आखिरकार उपनगर मुंबई के अंधेरी में स्थापित किया गया।
1: अयोध्या से लेकर मुंबई तक भगवान के रूप जरूर अलग हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हर दिल में एक जैसी है। मुंबई में रहने वाला आम हो या खास, उनके लिए अंधेरी चा राजा के इस राम मंदिर थीम वाले दरबार का दर्शन एक खास अनुभव है।
7: इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ, मानो कितने दिन की मेहनत लगाई है और जिस तरह से इन्होंने रेडी किया, ऐसा 5 मिनट के लगे स्वयं अयोध्या नगरी में ही आ गए हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल है।
8: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा ने हमें बुलाया है इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतने सुंदर लग रहे हैं बप्पा।
1: दरअसल हर साल गणेशोत्सव में ऐसे भव्य और आकर्षक दरबार को तैयार करने में खासकर बॉलीवुड आर्टिस्ट और सेट डिजाइनर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बार यहाँ एक अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार राम मंदिर की थीम को तैयार करने में फाइबर जैसे यूजेबल मटेरियल से ये पूरा पंडाल करीब 4-5 महीने में तैयार किया गया। दरअसल आयोजनकर्ताओं के लिए पंडाल आकर्षक होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना भी जरूरी है।
9: ये एनवायरमेंट फ्री है, फाइबर से बनाया हुआ पूरा चीज है, तो उसको कम से कम 4-5 महीना इसको प्रिपरेशन में लगा, और जो हमारा आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह है वो दिल से ये मंदिर को बनाया, क्योंकि हमने इससे पहले साल कष्टमंजन हनुमान मंदिर यहाँ पर बनाया था, जो राम जी का वो अति प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान जी को लाने के बाद हमारा ये लगा कि हमारा कमेटी को कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चित मंदिर है पूरा देश विदेशों में, तो ये बार मुंबई कर को एक अच्छा थीम यहाँ पर देखने मिल रहा है, अंधेरी का राजा का साथ जो राम मंदिर का भी दर्शन हो रहा है।
1: यानी एक तरफ अयोध्या के रामलला की भक्ति भाव है तो दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश की आराधना। इस पूरी भव्यता के बीच संदेश सरल सा है, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है श्री राम की नगरी अयोध्या और मुंबई का गणेशोत्सव, दोनों की आस्था यहाँ एक ही परिसर में नजर आ रही है।
9: जो बॉलीवुड के लोग भी तमाम देशों का अलग अलग देश प्रांत से आते हैं मुंबई में अपना कैरियर को लेकर, जो अपना मन्नत है वो बप्पा का चरण में रखते हैं, तो वो मन्नत पूरा होने में बप्पा को चढ़ावा भी करते हैं।
2: क्या बात है, गणपति बप्पा
9: मोरिया।
2: देखिए आपको बताएं कि ऐसी एक दान पेटी खुली थी मुंबई के लालबाग के राजा में, जहां कई तरह की ऐसी भी चिट्ठियां पढ़ने को मिली जिसमें पिता ने अपने बेटे के नौकरी की बात करी थी, एक चिट्ठी ऐसी मिली जिसमें एक माँ ने अपने बेटे की शादी की बात करी थी, और एक चिट्ठी एक प्रेमी द्वारा लिखी गई थी जो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ कई ऐसी चिट्ठियां भी आई जिसमें बप्पा के लिए लोगों ने धन्यवाद भी लिखा है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अंधेरी के राजा के दरबार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या आम क्या खास, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्समैन तक यहां आकर के दर्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चमत्कार है यहां के बप्पा में, ऐसे लोगों की मान्यता है। वीडियोजली स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
10: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल ये विवाह तमिल समुदाय की धार्मिक परंपरा रही है। बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाइयों को गूंजने का रास्ता खोला है। रिपोर्ट देखिए।

0: जैसे वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा, ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं, वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है।
0: दरअसल लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
2: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित, मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी है तो किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है, जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: ममता की कोई सीमा नहीं होती, और जब मौत के मुंह से निकलकर कोई मासूम अपनी मां की आगोश में वापस लौटता है तो वो नज़ारा हर किसी की आंखें नम कर देता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इंसानी जाबाजी और माँ बच्चे के अटूट प्यार की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। वंती तीस्ता नदी के तेज बहाव में जब एक नन्हा गजराज मौत से जंग लड़ रहा था, तब 5 जाबाज मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला, उसे बचाया और फिर वन विभाग की मदद से उसे उसकी मां तक पहुंचाया गया।
7: दिल छू लेने वाली ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आती है। माँ बच्चे के मिलने की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तस्वीरों में आप एक माँ की ममता देख सकते हैं, अपने बिछड़े बच्चे से मिलकर माँ किस तरह खुशी का इजहार करती है, उसे अपनी आगोश में लेती है, दुलार करती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर कोई माँ बच्चे के बिछड़ने और मिलने की इस भावुक कहानी को जानना चाहता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में दोनों बिछड़ते हैं, फिर मछुआरे अपनी माँ से बिछड़े नन्हे गजराज का नदी में रेस्क्यू करते हैं और फिर बच्चे को उसकी माँ से मिलाते हैं। हाथी के बच्चे को बचाने और फिर उसकी माँ से मिलाने की ये कहानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की है। जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तेज बहाव में आकर हाथी का ये बच्चा पानी में बहने लगा। वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। नॉर्थ बंगाल फिशमैन फोरम के 5 सदस्य मिठू दास, विश्वनाथ दास, राजेश दास, गोपाल दास और बबलू दास तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा और मदद के लिए चिंघाड़ते हुए देखा। हाथी के बच्चे को पानी में बहता देख मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना नाव का रुख उसकी ओर कर देते हैं। ये काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। नदी के तेज बहाव में मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव चलाकर उसका पीछा किया और फिर उस तक पहुंचे। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर किनारे ले आए। मछुआरों ने इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की मदद से हाथी को वापस उसकी माँ से मिलाया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक माँ और बच्चे के मिलन की नहीं है बल्कि उस इंसानी हिम्मत की भी कहानी है जिसने एक नन्हे गजराज को मौत के मुंह से निकालकर उसकी माँ के गोद तक पहुँचाया। जिन 5 मछुआरों ने हाथी के बच्चे को बचाया है उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अपनी माँ से ये बच्चा कैसे बिछड़ा। जब हाथियों का झुंड अपलचंद जंगल की कांथाबारी रेंज के पास नदी पार कर रहा था, उसी समय हाथी का ये बच्चा नदी की धारा में बहकर करीब 4 किलोमीटर दूर चला गया, जिसे तीस्ता की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वही बच्चा अब अपनी माँ की आगोश में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़।